0: तो दोस्तों बातों का सिलसिला जारी है। आज हम बात करें हैं महिला सुरक्षा के बारे में, क्योंकि महिला सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बात करनी बेहद जरूरी है। 50% की आबादी यानी आधी आबादी महिलाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हम सब लगाते हैं, लेकिन क्या वाकई ये बेटियां सुरक्षित हैं? इनके क्या अधिकार हैं? और अगर जरूरत पड़ती है तो क्या फरीदाबाद पुलिस या फिर हमारे देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो इनके लिए कुछ खास सहूलियत लेकर आई है, चाहे वो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स हों या फिर कोई ऐप। ऐसी कुछ बातें जानने की कोशिश करें हम महिला सुरक्षा से जुड़ी हुई स्वयं उनसे, जो महिला सुरक्षा के क्षेत्र में 24 घंटे कार्यरत है, SHO महिला सेल NIT फरीदाबाद इंस्पेक्टर माया जी से।
1: माया जी, अब मैं जानना चाहूंगी कॉन्फिडेंशियलिटी की बात, जैसे आपने कही कि बहुत कॉन्फिडेंस में रहती हैं, सब कुछ जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, कोई भी जानकारी जो है बाहर नहीं शेयर की जाएगी, लेकिन परिवार को कॉन्फिडेंस में लेना भी जरूरी है।
2: बिल्कुल।
1: सो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, वो कैसे खुद को सेफ रख सकती हैं? क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जहां परिवार को पता ही नहीं होता कि बच्चा कहां जा रहा है।
2: देखिए, जब भी कोई महिला या लड़की या फिर, तो सबसे पहले हमें यही सुनने को मिलता है कि घर में मत बताना। ये बिल्कुल आपने मुझसे बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये हमारे सामने दिक्कत आती है, लेकिन हम बिल्कुल उनको काउंसलिंग करके तैयार करते हैं कि नहीं, माँ बाप को अपने साथ रखना बहुत जरूरी है और हम खड़े हैं आपके साथ। तो हम ऐसे में बच्चे का कहीं पर भी मतलब नाम जो है प्रकाशित नहीं करते हैं, ना ही किसी सोशल मीडिया पर नाम डालते हैं, और ना ही किसी पड़ोस में। जब भी हम विजिट करते हैं उसके घर पर, तो हम बिल्कुल सिविल कपड़ों में हम जाते हैं, हम यूनिफॉर्म में भी नहीं जाते हैं। तो उसकी जो मतलब मान सम्मान का जो है लड़की का पूरा ध्यान रख के हम काम करते हैं। और माँ बाप को लेकिन हम जरूर बताते हैं, ऐसा नहीं है कि हम माँ बाप को बिल्कुल नहीं बताएंगे
1: जी।
2: क्योंकि वही सबसे पहले उनके सिक्योरिटी गार्ड का काम करेंगे, और उनको गवाह के रूप में भी हम जो है रखते हैं कि उनके बच्चे के साथ ऐसी घटना हुई है, और हम काउंसलिंग करके माँ बाप को रेडी कर लेते हैं। और जो बच्चे हैं उनको बिल्कुल डर रहता है कि माँ बाप को या रिश्तेदारी में ये बात नहीं पता लगनी चाहिए, तो हम उनको समझाते हैं कि आपका नाम कहीं पर भी नहीं आएगा। और जैसे वो जब थाने में आते हैं तो वो बिल्कुल डरे हुए आते हैं, और फिर जब हम उनकी काउंसलिंग करते हैं तो उनमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, फिर वो अपनी लड़ाई लड़ने को पूरा तैयार रहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज आप कहीं भी जाएं अपने पेरेंट्स को एकदम सच बता के जाएं, क्योंकि जब आप सच नहीं बताते हैं तो दिक्कत और ज्यादा बढ़ती है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाता है और पुलिस उस दिशा में खोज करने की कोशिश करती है, ढूंढने की, उस केस को सॉल्व करने की कोशिश करती है, अगर आप ही झूठ बोलेंगे अपने पेरेंट्स से या पुलिस से, तो वहां पर केस पहले ही कमजोर पड़ जाता है। माया जी, लीगल राइट्स के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि आप हमारे लिसनर्स को, हमारे व्यूअर्स को बताएं, क्योंकि लीगल राइट्स, जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि महिलाओं को अपने हक पता ही नहीं होते हैं, इसलिए वो सालों तक अपराध को झेलती आई हैं।
2: बिल्कुल। देखिए, जो डोमेस्टिक वायलेंस जिनके साथ होता है वो बिल्कुल अपना मतलब खर्चे की जो जैसे कुछ एक महिलाएं ऐसा ही होती हैं कि नहीं, मुझे रहना तो साथ ही है लेकिन ये मुझे खर्चा नहीं देता है। तो ऐसे में जो फरीदाबाद में प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं हेमा जी, तो उनके पास जाकर हम सलाह देते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफिसर को आप साथ लें, उनके माध्यम से आप अपना खर्चे का दावा डालें कोर्ट में। तो ये सुविधाएं उनके लिए हैं। और एक कुछ एक जैसे होता है कि काफ़ी दिनों से अपने घर पर महिला रह रही है और वो अपने ससुराल में जाना चाहती है, तो हम ऐसे में भी प्रोटेक्शन ऑफिसर को उनके साथ मतलब खड़े रहने के लिए उनको हिदायत देते हैं कि भाई आप वहां पर एक एप्लीकेशन दे। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर जो कि एक अलग महिला अधिकारी हैं, लेकिन वो पुलिस के साथ जुड़कर काम करती हैं, तो वो लीगली मतलब उनकी हर पहलू पर मदद करती हैं। और अगर किसी के साथ बहुत ही ज्यादा मार पिटाई या दहेज के लिए कुछ होता है, तो हम 498 में मुकदमा दर्ज करते हैं। पहले हम काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग के माध्यम से हम जो है मतलब दोनों पक्षों में सुलहनामा करवाने की कोशिश करते हैं। नहीं होता है तो हम 498A IPC के तहत जो है मुकदमा दर्ज कर देते हैं। और फिर इन्वेस्टिगेशन करके जो भी ठीक होता है, जो भी साक्ष्य सबूत सामने आते हैं, उसी प्रकार से हम काम करते हैं
1: जी, जी।
2: और कई बार क्या डोमेस्टिक वायलेंस में कई बार बच्चों की कस्टडी को लेकर बड़ा एक मुद्दा सामने आता है
1: फैमिलीज में,
2: तो उसमें देखिए ये बिल्कुल ठीक बात है कि आए दिन यही होता है कि बच्चा मैं रखना चाहता हूँ या, तो उसमें पुलिस का कोई भी हम डिसीजन हम उनको नहीं देते हैं, लेकिन हम वही प्रोटेक्शन ऑफिसर के माध्यम से उनकी एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगवाते हैं, ताकि क्योंकि ये इस पे कोर्ट ही जो है डिसीजन ले सकता है। तो हम ये सारी चीजें उनको बताते हैं। और जो महिला विरुद्ध अपराध है जैसे रेप केसेस से संबंधित है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित है तो ये सारी जानकारी हम महिलाओं को देते हैं।
1: जी जी। और अब मैं यही आपसे जानना चाहूंगी चलते चलते कि किस तरीके के प्रोग्राम्स आप लोगों में अवेयरनेस के लिए करते हैं, खासतौर पर से जैसे आपने बताया पॉक्सो को लेकर बच्चों को आप अवेयर करते हैं, गुड टच बैड टच स्कूल में आप प्रोग्राम्स कराते हैं, महिलाओं को जागरूक करने के लिए किस तरीके की कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ आप बढ़ते हैं?
2: देखिए महिलाओं को क्योंकि बच्चों को तो स्कूल में जाके समझा दिया जाता है लेकिन महिलाओं को हम जैसे जो गांव के सरपंच हैं हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप एक बड़ा मतलब अपने गांव की सभी औरतों को एक जगह इकट्ठा करें, तो हम गांव-गांव में जाकर या फिर सोसाइटी में जाकर रिहायशी एरियो में जाकर जो है औरतों को अवेयरनेस करते हैं। क्योंकि रात में जब पुलिस के पास मतलब मेरे पास जब कॉल आता है तो वो ज्यादातर महिलाओं का ही आता है कि मेरा पति मुझे पीट रहा है, तो फिर उस टाइम मुझे लगता है कि इनको क्यों ना अवेयर ही किया जाए। तो क्योंकि 112 की जो गाड़ियां हैं वो भी ऑन रोड रहती हैं, तो हम रिहायशी एरियो में जाकर महिलाओं को बिल्कुल अवेयर करते हैं और उनको बताते हैं कि उनके क्या क्या राइट्स हैं और वो कब पुलिस से कैसे और किस नंबर पे कॉल करके, जैसे 112 के बारे में हम बताते हैं, 112 की गाड़ियों के बारे में हम बताते हैं, और उनको हम ये भी बताते हैं कि अगर आप रास्ते में कहीं रात को लेट हो गए हैं और आपके पास कोई व्हीकल नहीं है, आपका फोन भी नहीं है आपके पास, तो आप अकेले चलने से अच्छा ये है कि किसी दुकान पे खड़े होके या जो भी आसपास में है उनसे एक मतलब फोन लेकर 112 पे कॉल करें, तो 112 की गाड़ी जो है वो उनके घर तक उनको छोड़ कर आएगी। तो ये सभी जानकारियां पुलिस डोर टू डोर जाकर उनको देती है और कुछ एक महिला इसका फायदा भी बहुत उठा रही है। ऐसा नहीं है कि मतलब अवेयर नहीं हो रहे हैं लोग, अवेयर भी होते हैं। तो मतलब हम इस तरह के सम्मेलन करके औरतों से मिलके एक हमने red.com टीम बनाई हुई है, red.com टीम के द्वारा हम एक फॉर्म फिल करवाते हैं कि आपको फरीदाबाद में आपको अपने एरिया में ऐसा कौन सी जगह है जहां पर आपको सबसे ज्यादा डर लगता है
1: जी।
2: उसमें उस महिला का नाम हम उसमें फिल नहीं करवाते हैं लेकिन हमें उनके आंसर से वो जगह हम हॉटस्पॉट के रूप में मान लेते हैं और उसको हम बिल्कुल फिक्स कर देते हैं। तो वहां पर जो red.com टीम है वो इसमें बड़ा ही हमें मदद दे रही है कि इसमें पुलिस की लड़कियां होती हैं और वो झुग्गी एरिया में मतलब कॉलोनियों में और ये सेक्टर में मतलब जाके जरूर हर एक से ये फॉर्म फिल करवा के हमें जानकारी देती है, तो वहां पर हम गश्त अपनी बढ़ा देते हैं, कोई राइडर खड़ी कर देते हैं
1: ताकि वो एरिया सेफ हो जाए,
2: ताकि वो एरिया सेफ हो जाए। और हॉटस्पॉट का जो है आए दिन हमारे जो अधिकारी हैं वो हमसे रिपोर्ट लेते रहते हैं कि कितने हॉटस्पॉट आपने सेफ किए हैं और कितने हॉटस्पॉट को आपने चुना है
1: जी।
2: तो ये सब एक माध्यम मतलब थाने में बैठकर ही नहीं किया जाता, ये डोर टू डोर जाके किया जाता है।
1: मतलब एक चार दीवारी में बैठ के नहीं बल्कि सड़कों पर निकलकर डोर टू डोर जाकर घरों में मिलकर ये चीजें जो है वो
2: मैं एक बात और बताना चाहूंगी। देखिए पुलिस अपना पूरा प्रयास कर रही है आप लोगों को जगाने में, आप लोगों की सेफ्टी को लेकर, लेकिन हमें इसमें आपका साथ चाहिए। हमें खासकर मतलब जब तक आप लोग हमारी बतलाई हुई बात को अपने दिमाग में नहीं बिठाएंगे, आप उन पे अमल नहीं करेंगे और आप हमारे बताए हुए दिशा निर्देशों पे नहीं चलेंगे तो पुलिस का भी प्रयास कहीं ना कहीं विफल फिर हो ही जाता
1: है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज मैं चाहूंगी माया जी आप चलते चलते बताएं, आपने 112 की बात करी तो एक ऐप है जो हर नागरिक के लिए है, उस ऐप के बारे में हमें जरूर बताइए जो सेफ्टी को लेकर स्पेशली बनाई गई है।
2: देखिए 112 इंडियन ऐप, जो 112 इंडियन ऐप है वो सभी के लिए है, उस पर कोई भी कॉल कर सकता है जरूरतमंद, मतलब अगर किसी ने एक्सीडेंट होते हुए देखा है, कोई इंसान दूसरे इंसान की मदद करना चाहता है लेकिन उसको पता नहीं है कि मैं कहाँ कॉल करूँ, तो वो 112 पे कॉल करे। 112 इंडियन ऐप जो है हर लड़की हर लड़के हर आदमी औरत के फोन में होना चाहिए क्योंकि ये पूरे भारत में चलता है और ये हर जगह पर चलता है, चाहे वो ट्रेन में है चाहे आप एयरपोर्ट में है मतलब कहीं पर भी है। तो 112 इंडियन ऐप पूरे इंडिया में है, आपको कोई भी दिक्कत आती है तो 112 इंडियन ऐप आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करेंगे तो वो कुछ इंफॉर्मेशन मांगता है, उसको फिल करें साइन अप करें और अपना नंबर जो है उस हेडक्वार्टर में रजिस्टर्ड करवाएं, और जब आप रजिस्टर्ड करवाएंगे तो हेडक्वार्टर से भी आपके पास कॉल आएगा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं
1: जी।
2: तो उस पे सिर्फ आपने फर्स्ट कॉल पे यही बोलना है कि मैंने आज अपना नंबर रजिस्टर्ड किया है।
1: okay.
2: तो 112 इंडियन ऐप अगर किसी के भी मोबाइल में होता है तो आप ये समझिए कि उसके पास उसके साथ हर वक्त पुलिस जुड़ी हुई है, हर वक्त डॉक्टर जुड़ा हुआ है, हर वक्त ऐसी संस्थाएं जुड़ी हुई है जहां पर वो उनकी मदद कर सकते हैं, जिस भी संस्था से उसको मदद चाहिए होती है।
1: जी जी, यानी अगर 112 यानी 112 इंडियन ऐप प्ले स्टोर iOS स्टोर पर आपने जाना है और ये डाउनलोड करनी है। ये ऐप जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपसे आपकी जानकारी पूछी जाएगी, आपका नाम, आपका फोन नंबर, फीमेल या मेल, और आपकी लोकेशन वगैरह, ये बेसिक जानकारियां आपसे पूछी जाएंगी। जब आप ये सारी जानकारियां उसमें ऐड कर देंगे तो आपका नंबर जो है वो रजिस्टर हो जाएगा, OTP एक आएगा, वो आपको उसमें फिल करना है जो कि ऑटोमेटिक आपके फोन पर आ जाएगा। बस उसके बाद आपका जैसे ही नंबर रजिस्टर होता है आप इमरजेंसी सिचुएशन में इस ऐप का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। आप कहीं पर भी हों, किसी भी परिस्थिति में हों, पुलिस आपकी मदद के लिए है, आपकी सेफ्टी के लिए है। सो इस ऐप को आप अपने निजी सुरक्षा सलाहकार के रूप में भी देख सकते हैं जो आपको सुरक्षा मुहैया कराते हैं। माया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद है कि हम महिला दिवस सिर्फ नाम के लिए नहीं मनाएंगे, और जितनी भी महिलाएं हमको देख रही हैं, सुन रही हैं, वो कभी भी जरूरत पड़ेगी तो पुलिस का सहारा अवश्य लेंगी और अपने आप को सुरक्षित महसूस कराएंगी। थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू।
1: तो बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं सुरक्षा संवाद में। हम धन्यवाद करना चाहेंगे फरीदाबाद पुलिस का और साथ ही उन सभी लिसनर्स का जो हमें देखते हैं और हमारे व्यूअर्स जो हमें यूट्यूब या इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हमें कमेंट करके अपनी बातें भी बता रहे हैं। अगर आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं, अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो 8010781078 पर मैसेज कर सकते हैं। हमारी ऐप रेडियो मानव रचना 107.8 प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस पॉडकास्ट को आप कभी भी दुनिया के किसी भी कोने में किसी के साथ शेयर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। फिलहाल मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और सुरक्षित रहिए।

हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर एक लंबे समय से मैं आपको लेकर जाती हूं और आप लोगों को ह्यूमैनिटी के बारे में याद दिलाती हूं, उन सभी अनसंग हीरोज से मिलवाती हूं जो आज भी मानवता के ढेर सारे काम कर रहे हैं, और उन सभी लोगों की मानवता की इन गाथाओं को और इन किस्सों को आप तक पहुंचाती हूं। दरअसल इस प्रोग्राम का जो ध्येय है या कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इतना सा है कि हम सब इंसान हैं और हम अपनी इंसानियत या ह्यूमैनिटी को ना भूलें, और इसीलिए मानवता की राह पर हर रोज हम चल सकते हैं कोई एक नेक कार्य के साथ। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस नेक कार्य को डेली कर रहे हैं और उन्होंने इसे अपना पैशन बना लिया है। आज की इस कड़ी में हम

0: जिनसे बात करने वाले हैं वो एक एडवोकेट हैं, एडवोकेट रितु कपूर शर्मा, एक फाउंडर और डायरेक्टर हैं रीत फाउंडेशन की। रीत फाउंडेशन की शुरुआत कैसे हुई और रीत फाउंडेशन दरअसल क्या कर रही है, महिलाओं के सशक्तिकरण से लेके उनके अधिकारों तक की सारी कहानी आज हमें बताने वाली हैं एडवोकेट रितु कपूर, और उसके लिए करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी, पहले तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए आज, और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। जैसे कि आपने बताया कि हमें कुछ ना कुछ मानवता की तरफ कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, और ये बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई है आपने, जिसकी वजह से लोगों के भी एक जागरूकता आएगी और उन्हें लगेगा कि हाँ हमें भी कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए करते रहना चाहिए।
0: देखिए, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, मानवता करने के लिए आपको कोई भी सोचे समझे प्लान की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आपको लगे कि हाँ आपके पास समय है, अपने आसपास देखिए, और अगर आपको लगता है कोई भी इंसान उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है और क्या आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं, और अगर आप उसकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। सो इसीलिए ये खास कार्यक्रम, क्योंकि मैं आपको ऐसे लोगों से रूबरू करवाती हूँ जो लोगों के लिए सही मदद पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। रितु जी, रीत फाउंडेशन, आप पेशे से एक एडवोकेट हैं, और दरअसल देखा जाए तो एडवोकेट्स इतने बिजी होते हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और अपने काम से उन्हें शायद किसी के भले करने का समय नहीं होता, बट आप एक बहुत ही खूबसूरत सी फाउंडेशन चलाती हैं। सो इसके पीछे की कहानी, इसे आपने स्टार्ट कैसे किया और आज रीत फाउंडेशन कहाँ है?
1: ज़रूर, मैं रीत फाउंडेशन के बारे में ये आपसे शेयर करना चाहूँगी कि किस तरह से हमने इसकी शुरुआत की। जैसे कि सब अपने अपने लिसनर्स को आपने बताया ही कि पेशे से मैं वकालत करती हूँ, एडवोकेट हूँ, और उसमें हम जब मैं शुरुआती अपने काम में लोगों से मिलने लगी, जो महिलाएं बहुत ही वेल एजुकेटेड, यहाँ तक कि जब मैं आपको अगर बताऊँ तो मैंने केसेस देखे हैं IFS ऑफिसर्स जो बहुत अच्छे इंटरनेशनली भी अपॉइंटेड रही हैं अपने उस ड्यूरिंग देयर टेन्योर, और IB स्कूल्स की सीनियर टीचर्स, इंटरनेशनल स्कूल की सीनियर टीचर्स, एंड MNCs में डायरेक्टर लेवल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पे काम करने वाली जो महिलाएं हैं, जब मैं उन जैसी महिलाओं से मिली इस दौरान, इस पेशे के दौरान, और जब मुझे लगा, मुझे समझ में आया कि इतनी वेल एजुकेटेड लेडीज़ जो हैं और इतने अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं फाइनेंशियली, बट स्टिल उनके पास लीगल राइट्स की नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो इतने सालों से ये घरेलू हिंसा सहती रही। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिनके पास अगर घरेलू हिंसा नहीं तो बहुत अलग तरीके की इमोशनल और मेंटल हरासमेंट से वो गुजर रही थी, लेकिन क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं थी, उन्हें ये पता नहीं था उनके पास लीगल राइट्स कौन कौन से हैं, उनके कुछ एप्रीहेंशंस थी, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठते थे। सबसे पहला तो जो हमारे समाज में एक ये चीज़ चली आ रही है कि लोग क्या कहेंगे, सबसे पहला। दूसरा एप्रीहेंशन उनका ये होता था कि मैं घर में रहकर अपने ही लोगों से कैसे झगड़ा कर सकती हूँ, कैसे केस डाल सकती हूँ। तीसरा, मैं फाइनेंशियली क्या करूँगी। जो लेडीज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, उनको ये लगता है कि अगर मैंने आवाज़ उठाई तो ये सारे जो फाइनेंशियली मुझे हेल्प मिल रही है, आर्थिक सहायता जो कही जाती है हिंदी में, कि मेरे जो पति या मेरे जो घर के लोग हैं, ससुराल के लोग हैं, ये मुझे घर से निकाल देंगे और मेरे पति ये सारी चीज़ें रोक देंगे, जो मेरे बच्चों की फीस है, तो उस इन सब वजहों की वजह से वो अपने ना तो आवाज़ उठाती हैं और ना ही उन्हें लीगल राइट्स ये पता है। तो जब मुझे उन सब लेडीज से मेरा मिलना हुआ और मैंने उन्हें सब राइट्स उनके बताए, तो बहुत सारी महिलाओं की हमेशा ही यही एक उन्होंने हम मुझसे शेयर किया कि हमें पता ही नहीं था कि हम घर में रहते हुए भी राइट टू रेजिडेंस क्लेम कर सकते हैं, हम मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं विदाउट टेकिंग डिवोर्स। क्योंकि क्या हो रहा है भावना जी, हमारे समाज में जैसे पिक्चरों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है लोगों के ऊपर, तो उसके वजह से लोगों को सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी पता है, डिवोर्स, तलाक। अगर मेरे पास कोई भी महिला आती थी तो वो यही बोलते थे, मैम मुझे अपने हस्बैंड से डिवोर्स चाहिए, मैम बहुत झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, और अदरवाइज नहीं तो ये हरासमेंट बहुत सालों से चल रहा है,

0: मुझे मिला और ये लगा कि हाँ ये बहुत एक मददगार एक चीज़ हो रही है लोगों के लिए, और उनको नहीं पता उनके लीगल राइट्स, इसलिए वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। तो उस समय मैंने 2021 में ये श्रीत फाउंडेशन के बारे में सोचा और इससे हमने स्टार्ट किया। और रीत फाउंडेशन में हमने बहुत सारी महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार बताए, जिससे वो जितने भी हम मदद कर पाए और जितने भी हम उनको सशक्त कर पाए हैं। आज की डेट में 15,000 से 20,000 हमने गुरुग्राम में महिलाओं के साथ काम किया है और उन्हें उनके कानूनी अधिकार बताए हैं। इसमें जब मैंने ये रीत फाउंडेशन स्टार्ट की तो एक हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था, शक्ति प्रोजेक्ट
1: जी।
0: शक्ति प्रोजेक्ट का लॉन्च किया गया था, हमारे IPS ऑफिसर हैं मैम राजश्री मैम, ऑनरेबल राजश्री मैम जी ने हमारा जब गुरुग्राम में ही ये लॉन्च हुआ। और उस दौरान भी हमने ये सेशंस किए तो महिलाओं को उनके सारे कानूनी अधिकार बताए गए, और ऐसे ही हमने 5 से 10 सेशंस लगातार इसमें किए। और उसके बाद हमने लॉन्च किया दुर्गा प्रोजेक्ट। दुर्गा प्रोजेक्ट में भी हमने ऐसे सेशंस किए जहाँ जहाँ बहुत सारे, मैं DLSA के साथ भी जुड़ी हुई हूँ, DLSA होता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, वहाँ से भी हमें बोला जाता है, इधर कहीं गांव में कहीं कहीं हमें कहा जाता है कि मैम वहाँ पर भी एक सेशन ले लीजिए, एक महिलाओं को जाकर एक जागरूकता का एक वो चला सेशन आप ले आए तो अच्छा है, महिलाओं को थोड़ा पता चलेगा। तो हमें रीत फाउंडेशन के अंतर्गत हमने जितने हम कवर कर सकते थे हमने वो कवर किया है। और अभी रिसेंटली जो हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं गुरुग्राम के, श्री विकास अरोड़ा जी, उन्होंने गुरुग्राम पुलिस के साथ, हमने रीत फाउंडेशन के साथ मिलकर एक डिजिटल सहेली, ये गुरुग्राम पुलिस का ही इनिशिएटिव है, उन्होंने ही किया, रीत फाउंडेशन ने उनके साथ उनकी मदद की इसमें लॉन्च में। और ये डिजिटल सहेली बहुत ही अच्छा है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में ज़रूर बताऊंगी
1: जी,
0: और बताना चाहूंगी क्योंकि बहुत ही मददगार होगा ये सब महिलाओं के लिए, जितने भी लिसनर्स हैं आपके। और उसके बाद एक और हमारा प्रोग्राम हम इसी में ही शुरू कर रहे हैं रीत फाउंडेशन में, सामूहिक कन्यादान। तो उसमें जितने भी अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स हैं जिनके साथ उनकी पेरेंट्स को मुश्किल आ रही है उनकी शादी करने के लिए, तो वहाँ पर भी हमने ये एक अपना एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो इस तरह से हमारी कोशिश पूरी है कि हम रीत फाउंडेशन के थ्रू और महिलाओं को, जितनी भी महिलाओं को हम मदद कर सकते हैं कानूनी तौर पे और वैसे भी, तो हम अपनी तरफ से एक कोशिश है।
2: देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमेशा कहता है टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, बट मैं रीत फाउंडेशन के लिए कह सकती हूँ महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा और शायद महिलाओं से। ये एक बहुत खूबसूरत सी फाउंडेशन है जो महिलाओं के लिए बहुत खूबसूरत काम कर रही है। अब ये किस तरीके के इनिशिएटिव्स हैं, आप इनका लाभ कैसे उठा सकते हैं, इसके बारे में और कैसे जान सकते हैं, बस एक प्यारे से गाने का इंतजार। छोटा सा गाना सुना रही हूँ, जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ। Feel good, feel love.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। और ये जो कदम है आज बढ़ा रहे हैं हम रीथ फाउंडेशन के साथ, और मानवता की जो कदम है ना ये महिलाओं के लिए उठाए जा रहे हैं, क्योंकि रीथ फाउंडेशन स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए बहुत सारे काम कर रही है। ऋतु जी, आपने कहा कि हम महिलाओं के लिए ढेर सारे काम करते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स, चाहे दुर्गा प्रोजेक्ट है या फिर डिजिटल सहेली वाला प्रोजेक्ट है, या फिर कहना चाहिए कि उनके डोमेस्टिक वायलेंस के लिए वो किस तरीके से अपने अधिकारों के, अपने राइट्स को वो प्रैक्टिस कर सकती हैं, ये आप सिखाते हैं। सो किस तरीके से ये इनिशिएटिव्स लेते हैं आप?
1: इसकी शुरुआत, जो आपका ये क्वेश्चन है इसके आंसर से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक केस के बारे में बताना चाहूंगी। एज अ एडवोकेट मैंने 1 महीने की शादी से लेकर मैंने 36 साल की शादी तक के केसेस हैंडल किए हैं।
0: जी।
1: तो जहाँ 1 महीने की शादी थी, उस जो बिटियाँ थी जब मेरे से मिली और पेरेंट्स के साथ आई वो, तो उनके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा, मैं आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड, मैं बहुत खुश हुई उनसे मिलकर कि 1 महीने के बाद कोई पेरेंट्स अपनी बिटिया को ये स्टैंड ले रहे हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं कि हम, क्योंकि ये इस दौर से, इस डोमेस्टिक वायलेंस से, और बहुत सारी हरासमेंट्स थी उनकी उसमें मैरिटल स्टेटस में, तो जब उन्होंने उनका साथ दिया पेरेंट्स ने, तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी। कि नहीं तो हमारे समाज में ये होता है कि नहीं अभी तो ये शुरुआत है, अरे ऐसे तो हर लड़की के साथ होता है। बहुत सारी मेरी ही क्लाइंट्स आकर हमें ये बोलती हैं कि मैम मेरी तो मम्मी ही मेरा साथ नहीं देते हैं, या मेरी बड़ी बहन मेरा साथ नहीं देती है, मेरी मम्मी मुझे बोलती हैं कि अरे ये तो हर महिला के साथ होता है, हर औरत को इससे गुजरना पड़ता है, मुझे भी तुम्हारे पापा ने एक दो बार हाथ उठाया है तो क्या हो गया, और बड़ी बहन के ऊपर भी हाथ उठाया है। सब लड़कियों का ऐसे ही घर बनता है, देखना कुछ सालों के बाद सारी की सारी बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी। ऐसा बोलकर इन सारी महिलाओं को, उसके दौरान उनके बच्चे हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं डिपेंड हो जाती हैं, और वो जिंदगी इसी तरह से गुजरती जाती है। ऐसे ही जो मैं अपने केस के बारे में बता रही हूँ, जो 1 महीने की शादी के बाद जो लड़की आ गई वापस, और उसने ये कहा कि नहीं मैं नहीं जा सकती बिकॉज ऑफ फ्यू रीजन, सर्टेन रीजन्स, और पेरेंट्स ने जब साथ दिया, तो जो उनके परिवार के लोग थे, और जैसे कि मामा, चाचा, ताया, बहुत सारे और रिश्तेदार, वो खड़े हो जाते हैं ये कहकर कि आप ये बहुत गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, ये आज आपकी लड़की वापस आ गई है और आप ये कर रहे हो, हमारी भी बेटियां वापस आ जाएंगी, आप इसको वापस भेजो। तो बहुत ही मेरे लिए एक प्राउड की बात थी कि मदर ने आकर ये मुझे बताया कि मैम जब मेरे खुद के सगे भाइयों ने मुझे ऐसा कहा, जो कि मामा थे लड़की के, कि तुम इनको वापस भेजो हमें नहीं पता, तो मैंने उन्हें बोला कि आपने रिश्ता मुझसे तोड़ना है तो तोड़ सकते हो, आप मुझसे बात करनी बंद करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मैं अपनी बेटी को जीते जी वहां मरने के लिए नहीं भेजूंगी।
0: एग्जैक्टली,
1: मैं नहीं भेजूंगी, मैं इसके साथ खड़ी हूँ, आप लोगों को जो करना होगा करना। तो मेरे लिए एक बहुत, मैं हमेशा उस फैमिली को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया सोसाइटी में ये, और आज वो मेरी, वही मेरी क्लाइंट जो है वो सेकेंड टाइम शी इज मैरिड, एंड मैरिड टू अ नॉन मैरिड गाय। ही वॉज अनमैरिड एट दैट टाइम व्हेन ही गॉट मैरिड, तो इसकी सेकेंड मैरिज थी और उसकी फर्स्ट मैरिज थी, तो ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। और yes. मुझे बहुत अच्छा लगा ये भी सुनकर कि चलो सोसाइटी थोड़ी चेंज हो रही है, एक्सेप्टेंस आ रही है सोसाइटी में। तो यही इसी के साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि हमने जब ये सारे एग्जाम्पल्स, कुछ अच्छे कुछ बुरे, कुछ हम देखते थे बहुत अलग अलग तरीके के, कि कुछ में बहुत हिम्मत है और कुछ बिल्कुल ही हिम्मत नहीं कर रहे हैं, कुछ माँ बाप साथ छोड़ देते थे और उनकी बेटियों को बोलते थे कि नहीं अगर तुमने ये स्टेप उठाया या तुम एडवोकेट के पास गई तो हम तुमसे बात करनी छोड़ देंगे, वापस जाओ। और कई लड़कियां जो हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी, तो उनको ये था कि अगर पेरेंट्स आएंगे वो केस के लिए फीस देंगे तभी मैं फीस दे पाऊंगी और मैं केस कर पाऊंगी। तो वहां पर भी हमारी रीत फाउंडेशन ने उनको बहुत साथ दिया। एक महिला थी जिनकी छोटी सी बिटिया बहुत ही छोटी फीडिंग मदर थी वो, और बहुत ही छोटी 6-7 महीने की बेटी को फादर जबरदस्ती छीन के ले गया था। वो फाइनेंशियली भी बहुत इंडिपेंडेंट नहीं थी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से थे वो कपल, और उन्होंने मेरे पास आए, भेजा किसी की रेफरेंस से आए कि मैम ऐसे ऐसे इनके साथ हो गया है, प्लीज़ इनकी बिटिया को वापस दिलवाया जाए। तो हमने बहुत जल्दी 2-3 दिन में ही डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला। मैं उसके बारे में आप बहुत डिटेल में बताऊंगी डोमेस्टिक वायलेंस के अभी इस एग्जांपल के बाद। और उनका जब हमने केस डाला तो हमने जैसे आपके सामने ये बात रखी कि छोटी सी बच्ची है और ये फीडिंग मदर हैं, और तो अगले ही दिन बिटिया को मतलब नोटिस, उनको जो दूसरी पार्टी थी नोटिस करवाया गया, बिटिया को बुलवाया गया और माँ को बिटिया हैंड ओवर की गई। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे जहाँ पर भी हम किसी की मदद कर पाए और जहाँ पर भी हमें लगा कि हाँ रीत फाउंडेशन के थ्रू हम ये वाली मदद किसी की कर सकते हैं, जहाँ वो फाइनेंशियली अपनी आर्थिक स्थिति में इस तरह से नहीं है कि वो किसी लॉयर को अफोर्ड कर सके, हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत प्रावधान हैं, ऐसे पैनल एडवोकेट्स हैं हमारे DLSA में, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में, वो वहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन हमने अपनी तरफ से कोशिश की हुई है रीत फाउंडेशन के थ्रू, जहाँ पर हम इस तरह की महिलाओं को हम मदद दे सकें।
0: तो दोस्तों एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, किस प्रकार के इनिशिएटिव्स और किस प्रकार की महिलाओं की मदद की जाती है रीत फाउंडेशन में, ये तो आपने जान लिया। अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जो चलाए जाते हैं, और अगर कोई भी ऐसी महिला है जो आती है और रीत फाउंडेशन को वो अगर कोशिश करती है एड्रेस करने की कि भाई मुझे मेरी मदद कर दीजिए, तो ऐसे में ये फाउंडेशन सबसे पहले आगे आती है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं एडवोकेट ऋतु कपूर शर्मा जी के साथ, जो कि फाउंडर और डायरेक्टर हैं रीथ फाउंडेशन की। वैसे तो अगर मैं इनके नाम के आगे जितनी भी उपलब्धियां इनके पास है वो गिनाने लगूंगी तो ये जो एक घंटा है यूं ही खत्म हो जाएगा। बट मैं ये कहना चाहूंगी, ये एक ऐसी महिला है जो सशक्तिकरण फैलाने की कोशिश कर रही है। ऋतु जी, अब बात करते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण की, और उसमें एक बहुत अभिन्न हिस्सा निभाता है ये डोमेस्टिक वायलेंस। हर महिला कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इस डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। जिन महिलाओं की शादी हो गई है उन्हें शायद ये पता भी नहीं है कि घर में जो डेली बेसिस पर उन्हें ताने दिए जा रहे हैं ये भी डोमेस्टिक वायलेंस का एक हिस्सा होते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शायद वी आर बॉर्न विद दिस। अच्छा, ताना वो इट्स ओके, ये तो हर महिला को शादी हुई है तो उसके साथ प्लस वन आपको दो चार ताने तो मिलेंगे ही। आज खाने में नमक अच्छा नहीं है, तुम अच्छी नहीं दिखती हो, इतने साल बाद तुम्हारी शक्ल ऐसी हो गई है, ये सब ताने हैं। और बिसाइड्स दैट, शायद महिलाओं के परिवार को लेकर जो बातें कही जाती हैं या फिर वहां से आने वाले लोगों के बारे में जो कहा जाता है, ये सब बड़ी कॉमन चीजें हैं घरों में। बट शायद पुरुषों को ये नहीं पता है कि अब महिलाएं भी सशक्त हो रही हैं और उन्हें भी अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। सो रीथ फाउंडेशन इसमें कैसे मदद करती है?
1: जो डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू हिंसा, उसमें एक इतना अच्छा ये एक्ट आया था 2005 में, ये स्पेशल एक्ट आया था। और मैं हमेशा जितनी भी मेरी क्लाइंट्स, मेरे सेशंस, मैं हमेशा इसमें ये उनको जागरूक करना चाहती हूँ। और मैं आपके सब लिसनर्स को भी ये बात कहूँगी कि ज़रूर इस एक्ट के बारे में पढ़ें, क्योंकि इतना कॉम्पैक्ट और इतना स्ट्रॉन्ग एक्ट है ये महिलाओं के लिए। क्योंकि और चीज़ें हैं, पहले से आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि पहले प्रावधान नहीं थे, प्रावधान पहले भी थे, मेंटेनेंस के हैं, इंटरिम रिलीफ के हैं, कस्टडी के हैं। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा कॉम्पैक्ट एक्ट है और ऐसा वो है जहां आपको सबसे पहला सेक्शन 17 जो है, सेक्शन 17 को मैं थोड़ी देर के बाद बताती हूँ क्योंकि वो रेजिडेंस से करता है, मैं 18 के बारे में बताती हूँ। सेक्शन 18 जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, वो बात करता है प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन बहुत अलग अलग तरीके की होती है। प्रोटेक्शन ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई गनमैन घूमना शुरू हो जाएगा, कि ज्यादातर लोग सोचते हैं अच्छा एक प्रोटेक्शन कोर्ट से मिल रही है हमें, तो कोर्ट की प्रोटेक्शन तो यही होती है कि हाँ कोई पुलिसमैन हमारे साथ आ जाएगा और हमारे घर के बाहर बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। आजकल की डेट में बहुत अलग अलग तरीके की, जैसे वो मेरे वर्क प्लेस पे आ जाता है, मेरा हस्बैंड आकर वहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट करता है, सो आई वॉन्ट यूर ऑनर टू प्लीज रिस्ट्रेन हिम टू डू दैट, उसे रोका जाए इस चीज से। और मुझे ये प्रोटेक्शन चाहिए कि वो घर में बहुत ज्यादा घरेलू हिंसा में मेरे साथ, यही जो आपने कहा तानेबाजी, गाली गलौज, इस तरह की जो चीजें हो रही हैं वो मेरे साथ ना की जाए। पहली ये प्रोटेक्शन, दूसरी मेरे वर्क प्लेस पे ना करें, तीसरा कि मेरे जो बहुत सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स उनमें आकर बहुत ज़्यादा ये मैसेजेस कन्वे किया जा रहा है कि मैं इस तरह की महिला हूँ, ये देखो ये ऐसे करती है, या किसी वजह से हम आज की डेट में सेपरेट रह रहे हैं, मैं अपने मायके में आके रह रही हूँ क्योंकि घर में बहुत घरेलू हिंसा थी, तो इसको ये रिस्ट्रेन किया जाए, इसे रोका जाए कि ये मेरे सारे फ्रेंड सर्कल, मेरे वर्क प्लेस, मेरे रिलेटिव्स, इनमें ऐसी कोई भी मेरे बारे में बात ना करें जहां पर मेरी इंसल्ट हो, जहां पर मेरा कहीं पर भी कुछ भी गलत हो मेरे साथ। अब ये हो गई प्रोटेक्शन की बात। उसके बाद आते हैं कि जो महिलाओं को रेजिडेंस का बहुत डर होता है, जितनी भी महिलाएं हैं उनको सबसे ज्यादा डर ये होता है कि मैम अगर हमने ये केस डाला तो मैं रहूंगी कहाँ, मुझे तो घर छोड़ना पड़ेगा। तो मैं उनको बोलती हूँ नहीं, आपको घर छोड़ना नहीं पड़ेगा। ऐसे कैसे मैम, मैं इसी घर में रह के, सास ससुर हैं मेरे और मेरे हस्बैंड हैं, यहाँ पर मेरे साथ ऐसे बदतमीजी हो रही है तो मैं कैसे इस घर में फिर रह सकती हूँ, और मैं उनके ही अंगेंस्ट केस भी डाल दूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। तो तब मैं उन्हें बताती हूँ कि सेक्शन 17 पढ़ो। तो जितने भी आपके लिसनर्स भी हैं उनको मैं प्लीज़ ये बोलूँगी, सेक्शन 17 डील्स विद शेयर हाउसहोल्ड। शेयर हाउसहोल्ड होता है जिसमें आप शादी करके आए हैं, उसी घर में आप रह रहे हैं, सालों से रह रहे हैं, आपके बच्चे उसी घर में हुए हैं, आप अपने ज़िंदगी बिता चुके हैं, तो आपको कोई भी उस घर से बाहर नहीं निकाल सकता। तो हम ये एक सबसे पहला जाकर एक इंटरिम रिलीफ लेते हैं कोर्ट से कि नॉट टू डिस्पोजेस हर फ्रॉम दिस हाउस, शी हैज फुल राइट टू स्टे इन दिस हाउस, वहाँ पर उसको पूरा हक है इस घर में रहने का, बिकॉज ये इसी घर में शादी करके आई है, इसके पास और कोई घर नहीं है, पति यहीं रहते हैं, तो इनको क्यों निकाला जाएगा जस्ट बिकॉज क्योंकि इन्होंने आवाज उठा ली। तो शेयर हाउस होल्ड के साथ साथ एक और प्रावधान इसमें दिया है, कई बार कई महिलाओं के पास शेयर हाउस होल्ड नहीं है, वो रेंटेड अकोमोडेशन में रह रही हैं, हस्बैंड नौकरी कर रहे हैं, वाइफ नौकरी कर रही हैं, या वाइफ नहीं भी कर रही हैं, तो वो एक रेंट दे रहे हैं। और अब कोई झगड़ा हो गया है, अब झगड़ा हो गया है तो हस्बैंड जो है घर छोड़ के चले गए हैं, और अब वो टेंशन में है कि अब बच्चों की फीस का क्या होगा, रेंट का क्या होगा, मैं कैसे गुजारा करूंगी अपना
0: जी।
1: तो सेक्शन 19 जो है वो डील करता है राइट टू रेजिडेंस से। राइट टू रेजिडेंस है कि जहां पर ये कहा जाता है कि अगर आप ने कुछ छोड़ के चले भी गए हो तो भी रेंट आप ही दोगे। आप इस महिला को ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते कि आप इनको घर से बाहर निकालने की सलाह कर लो, कॉन्स्पिरेसी कर लो या कुछ ऐसा कर लो। तो सेक्शन 17 और 19 रेजिडेंस से डील करता है, 18 प्रोटेक्शन से डील करता है, 20 जो है वो मॉनेटरी रिलीफ से डील करता है, जैसे कि हर रोज दिन डे टू डे के जो एक्सपेंसेस होते हैं तो वो वाले बच्चे उनको बहुत टेंशन होती है कि मैम ये ग्रॉसरी का खर्चा नहीं देगा, मैम जैसे ही मैंने केस डाला तो ये बच्चों की फीस रोक देगा, पेट्रोल का खर्चा नहीं देगा, मैं कहाँ से ये इलेक्ट्रिसिटी का नहीं देगा, तो मैं कैसे ये चीज़ें चलाऊंगी। तो वो हम सारा का सारा कोर्ट से सेक्शन 20 में मॉनिटरी रिलीफ ये लिख सकते हैं कि ही इज अर्निंग दिस मच और ये करता आ रहा है सारे ये खर्चे, पूरे परिवार का खर्चा ये चला रहे हैं। अगर महिला भी काम करती है तो डेफिनेटली कोर्ट वो भी कंसिडर करते हैं, ऐसा नहीं है कि महिला काम कर रही हैं और पुरुष जो है वो कमा कर उनको देना ही देना है, तो कोर्ट बहुत अच्छे से दोनों का इनकम एंड एसेट एफिडेविट मंगवा कर और जितना उन्हें समझ आता है कंसिडर करके एंड देन दे डिसाइड द मॉनिटरी रिलीफ। सेक्शन 21 जो है वो कस्टडी से डील करता है
0: जी।
1: कोई भी माँ जो 5 साल से तो पहले उसे बच्चे से अलग किया ही नहीं जा सकता, और अगर वो अलग करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर भी ये प्रावधान दिया हुआ है कि वो कस्टडी अपनी वो क्लेम कर सकती हैं उसमें। 23 बहुत स्ट्रॉन्ग है
0: जी।
1: जो लास्ट में आप बताना चाहूँगी सेक्शन 23 घरेलू हिंसा का, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, हर महिला को ये बहुत ज़्यादा एक एप्रीहेंशन है केस डालने के टाइम पर कि मैम अगर मैंने ये केस डाला ये 2-3 साल चलेगा केस, ये लंबा चलता है, मैंने बहुत सुना हुआ है, मैं कोर्ट नहीं आना चाहती, लोग बोलते हैं कोर्ट में आप धक्के खाते रहोगे, ऐसा होता है कि इतनी देर देर तक ऑर्डर्स ही नहीं आते। तो मैं हमेशा उन्हें एक बात समझाती हूँ कि सेक्शन 23 जो है वो इंटरिम रिलीफ से डील करता है। तो इंटरिम रिलीफ होता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी, जितनी भी देर केस चलेगा, तो हम जब जज साहब के पास जाते हैं या कोर्ट में हम केस डालते हैं तो हम यही बोलते हैं कि केस तो चलता रहेगा, तो उसके दौरान अभी इस टाइम पे जो मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है प्रोटेक्शन की, वो है नॉट टू डिस्पोजेस की, मुझे घर से निकाला ना जाए, वो है मेरी मॉनेटरी रिलीफ की
0: जी,
1: मेरे बच्चों की फीस ना रोकी जाए, ये बच्चों ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल ना देना रोक दे, ये रेंट ना देना रोक दे, तो वो विद इन 6 मंथ्स कोर्ट आपको रिलीफ दे देती है। विद इन 6 मंथ्स होता है, नहीं तो मैक्सिमम ये 8-9 मंथ्स तक स्ट्रेच होगा
0: जी,
1: डिपेंड करता है बहुत सारे और सर्कमस्टांसेस पे भी। तो ये एक बहुत बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग प्रावधान है जो मैं जब भी अपने रीत फाउंडेशन के भी मैं सेशंस लेती हूँ तो मैं इसके बारे में ज़रूर बताती हूँ सब महिलाओं को कि प्लीज़ घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में ज़रूर पढ़ें, और जितनी भी महिलाएं जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रही हैं, इसकी जो डेफिनेशन है घरेलू हिंसा की, डोमेस्टिक वायलेंस की, वो यही है कि जो भी महिला, चाहे वो बहन हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर क्यों ना हो, तो वो इस केस को डाल सकते हैं और अपने राइट क्लेम कर सकते हैं।
0: बड़ा ज़रूरी है दोस्तों, महिलाओं के साथ अगर मैं बात करूँ ना तो वो सैक्रिफाइस तो उन्हें पता है, उन्हें ये पता है हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, बट उनके राइट्स क्या हैं ये उन्हें नहीं पता है। और ये नेक काम रीत फाउंडेशन कर रही है, ना सिर्फ उनके साथ हैंड होल्डिंग करके उनकी मदद कर रही है, लेकिन उन तक ये सारी की सारी जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रही है, जिससे कि महिलाएं किसी भी प्रकार से किसी भी कंडीशन में वो ना तो किसी का शिकार हो और ना ही ऐसी हिंसा को बर्दाश्त करें। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। आज मानवता की राह पर हम चल रहे हैं रीत फाउंडेशन के साथ। एडवोकेट ऋतु कपूर शर्मा हमारे साथ बैठी हैं, जो कि फाउंडर डायरेक्टर हैं। ऋतु जी, अब मैं ये जानना चाहूंगी, ढेर सारे लोग आपको सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना के जरिए, और सारी महिलाओं को अब लगने लगा है कि वो तो इतने सालों से डोमेस्टिक वायलेंस बर्दाश्त कर रही थी और उन्हें पता ही नहीं था उनके लिए इतनी सारी चीजें हैं, इतना प्रावधान भी है। अगर कोई रीत फाउंडेशन के साथ एसोसिएट होना चाहता है, वॉलंटियर करना चाहता है, या आपसे किसी भी प्रकार की कोई कानूनी सलाह चाहता है, या इस फाउंडेशन के जरिए किसी भी प्रकार की कोई रिलीफ चाहता है, सो वो आपके साथ कैसे एसोसिएट हो सकते हैं, किन नंबर्स पर वो जा सकते हैं, और अगर उन्हें अपनी ही राइट्स के बारे में जानना है तो वो आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं?
1: रीत फाउंडेशन इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है और फेसबुक पे भी अवेलेबल है, एंड नहीं तो डायरेक्ट वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना फ़ोन नंबर बता सकती हूँ, 7042615753, सो दे कैन डायरेक्टली गेट इन टच विद मी। और अगर उन्हें लगता है कि वो किसी भी तरीके से अगर वॉलंटियरली जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो उसके लिए भी, और अगर किसी भी प्रकार की उन्हें मदद चाहिए तो कभी भी वो हमें फ्री, दे आर फ्री टू कॉल अस एनीथिंग।
0: सो भाई, अगर महिलाओं को ये लग रहा है कि उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय, अत्याचार हो रहा है, अब जरूरी नहीं है कि हर चीज आपकी डिवोर्स पर जाकर ही रुके। कई बार सिर्फ एक छोटी सी सलाह से भी आपका जीवन सुधर सकता है। सो इन सारी चीजों के लिए आपके पास है रीत फाउंडेशन, जो न सिर्फ आपको ये सारी सलाह देंगी लेकिन साथ के साथ आपके लिए मदद का हाथ भी बढ़ाने वाली है। तो भाई, रीत फाउंडेशन अलग अलग किस्म के काम करती हैं। डिजिटल सहेली के बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगी। जिस प्रकार आपने कहा कि गुरुग्राम ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और पुलिस के साथ मिलकर अब वो डिजिटल सहेली लॉन्च किया गया है, जिससे कि अगर किसी भी प्रकार के साइबर फ्रॉड्स महिलाओं के खिलाफ किए जा रहे हैं तो उनको रिपोर्ट किया जा सकता है, तो उसके लिए क्या नंबर है और क्या है ये डिजिटल सहेली?
1: जरूर, उसके बारे में मैं भी जरूर बताना चाहूंगी। रिसेंटली हमारे कमिश्नर साहब श्री विकास अरोड़ा जी ने इसका लॉन्च किया है, डिजिटल सहेली। सो वुमेन्स डे पे उन्होंने एक तरह से सब महिलाओं को, गुरुग्राम की महिलाओं को उन्होंने ये अपनी तरफ से गिफ्ट दिया है। लेकिन ये जानकर आपको खुशी होगी कि सिर्फ गुरुग्राम ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया से इसमें रिस्पांस आना शुरू हो गया है। ये डिजिटल सहेली एक ऐसी चैट बॉट है, ये चैट बॉट है व्हाट्सएप पे। एक नंबर है जिस नंबर को मैं बताना चाहूंगी, 5x9 81002। इस नंबर को कोई भी अगर महिला सेव करती हैं और उन्हें ऐसा लगता है किसी भी प्रकार के उनके साथ कोई भी साइबर हरासमेंट हो रही है, जैसे कि कोई मॉफ्ड पिक्चर्स हैं उनकी, कोई उन्हें गलत पिक्चर्स उनकी बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है, कुछ बच्चे हैं जो आजकल के यंग जनरेशन के बच्चे, कई बार वो ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं कि मिसगाइड हो जाते हैं और अपनी ऐसी पर्सनल पिक्चर्स शेयर कर देते हैं अपने पार्टनर के साथ और बाद में जाकर वो ब्लैकमेल होते हैं, तो उनके लिए भी अगर उन्हें कहीं पर भी लगता है तो उन्हें समझ नहीं आता कि हम अपने पेरेंट्स के पास जाएं, हम पुलिस के पास जाएं, हम किसको बताएं, तो वो डायरेक्टली इस नंबर को अपने व्हाट्सएप पे सेव करके और वो रीच आउट कर सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं, उन्हें बताना होगा कि ये ऐसे में मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है और ये मेरी गलत पिक्चर्स वहाँ पर डाल दी गई हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी आई हैं जिन्होंने ये बोला है कि हमारी पिक्चर्स डालकर गलत साइट्स पे और हमारे नंबर्स डाल दिए जाते हैं, आउट ऑफ रिवेंज भी ऐसा लोग करते हैं। तो अगर ऐसा भी उनके साथ हो रहा है तो गुरुग्राम पुलिस ने ये फैसिलिटी उनको दी है और मल्टीपल अकाउंट्स खोल लेते हैं, गलत अकाउंट्स खोल के उनकी तरफ से चैट करते हैं और जानबूझ के उनके उनको डिमीन करने का एक तरीका है उनके लिए। तो अगर ऐसा उनके साथ कुछ हो रहा है तो वो वहाँ पर इस चैटबॉट में जैसे ही इन्फॉर्म करेंगी तो विद इन 24 आवर्स वो मटीरियल डिलीट कर दिया जाएगा, विद इन 24 आवर्स। ये प्रॉमिस है गुरुग्राम पुलिस की तरफ से और उसका रिस्पांस इतना अच्छा आ रहा है कि सब तरफ से, ऑल ओवर इंडिया से कॉल्स भी आ रही हैं और बाहर से भी एक दो इंटरनेशनल लोगों ने भी कांटेक्ट करने की कोशिश की कि उनके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा होगा जिसके वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा। तो ये बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई है, तो आई रियली वॉन्ट कि सब लिसनर्स इसको ध्यान से सुने, ये नंबर सेव करें, 5x9 81002। 1002। और अगर कुछ किसी भी महिला के साथ, उनके सर्कल में किसी के साथ ऐसा हो रहा है, तो जरूर उन्हें बताएं और ये मदद करें।
0: सो भाई देखिए, बहुत जरूरी है महिलाओं को, कि हम हमेशा ये कहते हैं, अगर आप अपनी सोशल मीडिया पर कोई भी पिक्चर डालते हैं, संभल कर डालिए, उसकी प्राइवेसी सेटिंग्स पर जाइए, उसे लॉक करिए, क्योंकि कहीं कोई इसका मिसयूज ना करे। सो अगर उसके मिसयूज से बचना चाहते हैं, तो आपके पास डिजिटल सहेली है, खुदा ना खास्ता कोई कॉन्शियसली आपकी पिक्चर्स को चुरा लेता है, उन्हें मॉर्फ करता है, उन्हें किसी साइट पर डाल देता है या अदरवाइज कहीं इस्तेमाल करता है, तो ये सारी चीजें रिपोर्ट की जा सकती है और डिजिटल सहेली की सहायता से आप इसे पुलिस तक पहुंचा सकते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हमने एक लंबी सी डगर तक गए हैं रीत फाउंडेशन के साथ। रीत फाउंडेशन महिलाओं के लिए ढेर सारे काम कर रही है, ना ही सिर्फ उन्हें उनके राइट्स के बारे में बता रही है, लेकिन साथ के साथ देखा जाए तो रीत फाउंडेशन ढेर सारा काम कर रही है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। रितु जी आज हमारे साथ हैं, एडवोकेट रितु कपूर शर्मा, जो कि फाउंडर और डायरेक्टर हैं रीत फाउंडेशन की। चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ढेर सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष, बहुत सारे बच्चे आपको सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना के जरिए। मुझे बताइए, जाते जाते आप उन सभी को क्या खास मैसेज देना चाहेंगी?
1: मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि लव इज नथिंग व्हेन गिवन टू अ रॉन्ग पर्सन, एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्ट ऑफ लव इज समटाइम इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एक्ट to walk away.
0: Yes.
1: So if you feel that you are being harassed and you are not being respected over there, so then immediately leave that place. Or agar hame aisa lagta hai ki hum kisi ki asliyat samne aane ke bawajood bhi usko nahi chhod pa rahe hain aur hame aisa lagta hai ki hum use pyar karte hain, to aisa nahi hai, wo pyar nahi hai. Aur उस दौरान, इस पूरी जर्नी में हम उस इंसान को नहीं खो रहे, हम अपने आप को खो रहे हैं। तो प्लीज़ ये इस गलत फहमी में ना रहें, जो बच्चे या जो भी महिलाएं हैं, कि ये शायद प्यार है, मैं प्यार करती हूँ, ऐसा नहीं है। और इस उसमें से निकलें और अपनी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव उसमें रहें, एक पीसफुल लाइफ जिएं, आवाज़ उठाएँ और जिसकी भी मदद कर सकें मदद करें।
0: बिल्कुल, देखिए महिलाओं के लिए मैं हमेशा कहना चाहती हूँ, उन्होंने ना अपना सरनेम बना लिया है सैक्रिफाइस, और उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जीवन सिर्फ सैक्रिफाइस के लिए बना है, बट आइडली आपका जीवन जीने के लिए बना है। आपको भी जिंदगी के उतने ही साल मिले हैं जितने पुरुषों को मिले हैं, सो जरूरी नहीं है कि सारा सैक्रिफाइस आप ही करें। आप अपने जीवन को खुशी से जिए, हंसिए, मुस्कुराइए, और जो अधिकार आपके लिए न सिर्फ समाज ने, सरकार ने बनाए हैं, कानून ने बनाए हैं, उन्हें भी प्रैक्टिस करिए। अगर आपका जीवन खूबसूरती से गुजर रहा है, बहुत अच्छी बात, लेकिन कहीं कोई उतार चढ़ाव आ रहा है और लग रहा है कि कहीं कोई परेशानी है, तो आपके पास बहुत सारे हाथ ऐसे हैं जो आगे बढ़कर आपको थामने के लिए तैयार हैं। एक सॉलिड ऐसा हाथ है रीत फाउंडेशन, जिसके बारे में आज हमने ढेर सारी बातें सुनी, लेकिन समय की थोड़ी सी किल्लत है भाई, एक ही घंटे का समय होता है और उसमें आपको गाने सुनाते हुए ये पूरी रीत फाउंडेशन की कहानी सुनानी थी। सो अगर आप रीत फाउंडेशन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो जाइए सोशल मीडिया के, इतने सारे हैंडल्स हैं, कॉन्टैक्ट करिए, जाइए, जानिए वो किस प्रकार के काम करते हैं और जुड़ जाइए एडवोकेट रितु कपूर शर्मा के साथ। तहे दिल से धन्यवाद रितु जी, आज आप स्टूडियो में आए, कीमती समय निकाला, लेकिन इतनी बेहतरीन जानकारी आपने हमारे सभी लिसनर्स को दी है। आई एम श्योर जितनी भी महिलाएं, पुरुष, बच्चे आज भी को आपको सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना के जरिए, उन्हें समझ में आ रहा होगा कि उनका जीवन कितना वैल्यूएबल है।
1: थैंक यू सो मच भावना जी यहाँ हमें बुलाने के लिए, और आई होप कि इस प्रोग्राम के जरिए हम और बहुत सारी महिलाओं को सशक्त कर पाएंगे आज। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सो दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, और आपसे इजाजत लेते हुए वादा कर देती हूँ अगले हफ्ते मैं होंगी आपके साथ, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे यानी आरजे भावना को दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: क्या है चित चोर?
1: 1 2 3 4
0: क्या है चित चोर?
1: You sing like Kishore, but शादी का दे.
0: Oh yes, September 8.
1: Oh, very late.
0: Darling, wait.

0: सच है बिल्कुल,
1: तू है बुलबुल,
0: सच है बिल्कुल, यू आर वंडरफुल।
1: लग जा गले ए, लग जा गले, दुनिया जले, छम छम छम छम छम छम छम, एक गण हम तुम पे दिल निसार करता है, रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है, रोज

0: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजी भावना। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। सैटरडे को 5 बजते ही आरजे भावना आपके पास आ जाती है और आपके पास लेकर आती है सशक्तिकरण की एक खूबसूरत सी कहानी। और आज की कहानी है मोनिका मनचंदा जी की। देखिए भाई, आपको पता है एक लंबे समय से मैं इस कार्यक्रम को लेकर आ रही हूँ। सशक्तिकरण की मैं अगर बात करूँ और खासतौर पर महिलाओं की, तो वो मेरे दिल के बड़ी करीब है। और आज मोनिका मनचंदा जी से हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं उनके जीवन के बारे में। मोनिका मनचंदा जी जो कि एक हेल्थ और वेलनेस कोच हैं, एक रेकी हीलर हैं, एक बॉडी फैसिलिटेटर हैं, इसी के साथ साथ साउंड हीलर हैं, टेरो कार्ड रीडर हैं, बॉडी साइकोलॉजिस्ट भी हैं, इसके साथ साथ आइस बाथ गाइड भी हैं। आइस बाथ गाइड आजकल आपको पता है बहुत ही ज़्यादा नई चीज़ है, बट मैंने नोटिस किया है कि इससे भी आप अपने न्यूरो सिस्टम को रिचार्ज कर सकते हैं। सो आइस में जब आप अंदर जाते हैं और ठंडे ठंडे पानी से आपकी पूरी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है। कैसे एक्टिवेट होता है ये बताएंगे, लेकिन इसके लिए करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में।
1: थैंक यू भावना जी।
0: मोनिका जी, पहला सवाल, इस कार्यक्रम का पहला सवाल हमेशा एक स्टैंडर्ड सवाल रहा है, बिकॉज व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज कि वुमेन एम्पावरमेंट में जो एम्पावरमेंट की डेफिनेशन है ना, ये हर महिला के लिए अलग होती है। सो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, हाउ डू यू परसीव एम्पावरमेंट, आपको क्या लगता है व्हाट इज एम्पावरमेंट?
1: देखिए, मेरे लिए एम्पावरमेंट वो है जहाँ पर वुमेन अपने बारे में ऐसी डिसीजंस ले सकती हैं जहाँ पे उन्हें खुद को सेटिस्फेक्शन मिलती है, अपने लिए कुछ करती हैं। अपने लिए थोड़ा सा ही, चाहे छोटी से छोटी डिसीजन हो, चाहे घर पे अपनी पसंद की चीज बनाना हो या अपने लिए कोई ऐसा डिसीजन लेना हो जो उन्हें लगता है कि यस, ये सिर्फ मेरा डिसीजन है और इसको कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, और ये मेरे लिए वुमेन एम्पावरमेंट।
0: वाकई, मतलब अगर हम देखें तो महिलाओं के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि वो अपने जीवन को एक बार अपने तरीके से जीने का मौका तो पाएं। क्योंकि होता क्या है कि आइडियली जब एक महिला पैदा होती है, महिला तो नहीं, एक बच्ची पैदा होती है, और उसके महिला बनने तक या फिर उसके मरने तक उसके पूरे जीवन के डिसीजंस हैं ना, वो कहीं कोई और ले रहा होता है। कभी उनके पापा ले रहे होते हैं, कभी उसके भाई ले रहा होता है, कभी उसके पति ले रहे होते हैं, कभी उसके ससुर ले रहे होते हैं। सो उन, और फिर एक जिंदगी का पड़ाव तब आता है जब शायद कोई उनका बेटा या बेटी उनके जिंदगी के डिसीजन ले रहे होते हैं। बट वेन इज द टाइम अ वुमेन गेट्स एन अपॉर्चुनिटी कि वो अपने जिंदगी के डिसीजन ले। सो एम्पावरमेंट वहीं शुरू हो जाती है जहाँ महिला अपने डिसीजन खुद ले पाए। सो जरूरी ये है कि महिलाओं को मौका मिले कि वो अपने जीवन को अपने नजरिए से जी जरूर पाए। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट। आज हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं मोनिका मनचंदा जी से। आज के एपिसोड में मोनिका जी हमारे साथ हैं, जो एक हेल्थ और वेलनेस कोच हैं, एक रेकी हीलर हैं, एक आइस बाथ गाइड हैं, एक साउंड हीलर हैं, एक टैरो कार्ड रीडर हैं, बॉडी साइकोलॉजिस्ट हैं, ब्रेथवर्क फैसिलिटेटर हैं। भाई इतनी सारी चीज़ें इन्होंने की हुई हैं, बट मुझे ये कहना चाहिए कि इन ऑल ये एक सशक्त महिला हैं। मोनिका जी, चैलेंजेस की बात करते हैं। महिला, और मैं हमेशा ये कहती हूँ उनका सरनेम है चैलेंज, उसके बाद जो ओरिजिनल आपको सरनेम मिलता है ना वो थर्ड लेवल पर आता है, बट पहले लेवल पर चैलेंज आते हैं। सो बचपन से पैदा होने से एक चैलेंज है। पहले तो कन्या भ्रूण हत्या इतनी होती थी कि पैदा होना चैलेंज था, फिर धीरे धीरे अलग अलग चैलेंजेस। सो सदी बदली, इरा बदले और चैलेंजेस भी बदले। अगर मैं आज के जमाने की बात करूँ, सो क्या लगता है किस प्रकार के चैलेंजेस महिलाएं फेस कर रही हैं?
1: देखिए, आज की बात करूँ ना तो आज भी बहुत इम्प्रूवमेंट है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे पैटर्न्स चलते आ रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात अगर हम कर रहे हैं ना, तो आज भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि अपने बारे में सोच ही नहीं रही हैं
0: एक्चुअली।
1: आज भी उनके लिए उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनके आसपास के लोग ज़्यादा मैटर करते हैं। इम्प्रूवमेंट है, जैसे जैसे सदी बदल रही है महिलाएं भी और एम्पावर्ड हो रही हैं, बट अगर मैं बात करूं 80% अभी भी महिलाएं वही हैं जो कि अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देती हैं, चाहे वो अपनी हेल्थ को लेकर हो, चाहे अपनी इमोशनल हेल्थ को लेकर हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। बट अगर मैं अगर हम बात करते हैं ना कि आज ये डिसीजन मुझे अपने लिए लेना है, तो आपके माइंड में 10 चीज़ें और आ जाती है कि मेरा ये कौन सोचेगा, मेरे हस्बैंड कैसे सोचेंगे या बच्चों के लिए कैसे करेंगे, लेकिन मैं क्या सोचती हूँ वो सबसे एंड का क्वेश्चन आता हूँ।
0: यस,
1: सो इसके लिए आज भी महिलाएं अपने बारे में कम और आसपास अपने लोगों के बारे में ज्यादा सोच रही हैं।
0: वाकई, सो अगर मैं बात करूँ चैलेंज की, तो ये एक बड़ा चैलेंज है।

उसके पीछे देखिए बहुत सारी चीजें छुपी हैं। अगर आप देखें कि आज आपने एक डिसीजन लिया अपने लिए, अपने बारे में सोचते हुए कि मुझे एक्स वाई जेड करना है, बट आप वो एक्स वाई जेड करने के लिए सबसे पहले उसकी में जरूरत होगी पैसों की, वो पैसे कहाँ से आएंगे, सो आपने उन पैसों को कहाँ से कॉम्प्रोमाइज करके अपनी इच्छा के लिए लगाया, और फिर आपने ये जो फीलिंग आपके साथ आ जाती है कि अगर मैं ये पैसा, ये समय या फिर ये फैसिलिटी अपने लिए इस्तेमाल कर रही हूँ और उसके एवेज में कोई और है जिसको ये फैसिलिटी नहीं मिल रही है, जो मेरे ही परिवार का सदस्य है या मेरा ही बच्चा है या मेरे ही पति हैं या मेरे ही भाई बहन हैं, तो ये जो गिल्ट है ना, ये महिलाओं को बहुत ज़्यादा सताता है। मान लीजिए कि एक महिला है जो कि घर से कहीं जाना चाहती है और अगर उसके पास एक्सेस टू कार है या एक्सेस टू व्हीकल है, तो कैन यू बिलीव कि सबसे पहले वो ये सोचेगी कि आज अगर मैं अपने लिए इसे इस्तेमाल कर रही हूँ तो ऐसा तो नहीं कि इसकी ज़रूरत पीछे घर वालों को होगी। सो शी वुड बी द लास्ट पर्सन टू थिंक कि कोई भी फैसिलिटी को मैं सबसे पहले अवेल करूँ देन माई फैमिली मेम्बर्स। ये भी एक चैलेंज है कि महिलाएं अपने आप को कब तक यूं ही प्रायोरिटी लिस्ट में कम रखती रहेंगी। सो कब आएगा वो समय जब महिलाएं अपने आप को प्रायोरिटाइज करेंगी, बताइएगा मुझे, जरूर बताइएगा मैसेज करके 8010781078 पर।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है वी यानी विमेन एम्पावरमेंट। आज की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं खूबसूरत सी मोनिका मनचंदा जी से। मोनिका जी, अब एक सवाल आपके जीवन से। आप एक सशक्त महिला हैं, बट आप सशक्त तब हैं जब आपने कुछ सशक्तिकरण के डिसीजंस लिए थे। अगर मैं आपके जीवन के कुछ ऐसे डिसीजंस के बारे में जानना चाहूं जो आपने लिए और आज आप रिग्रेट नहीं करती हैं, एंड टुडे यू लुक बैक एंड यू सी एंड यू फील व्हाट एन एम्पावरिंग डिसीजन, अच्छा हुआ मैंने ये डिसीजन लिया, अदरवाइज आज मैं रिग्रेट कर रही होती।
1: भावना जी, आज अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में देखूं तो मुझे सबसे बढ़िया डिसीजन अपना लगता है कि मेरी शादी के बाद, डॉटर होने के बाद, मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे आगे पढ़ाई करनी है।
0: वाओ,
1: अपने लिए कुछ करना है, क्योंकि पढ़ाई का हमेशा से शौक था, लर्न करने का शौक था। बट शादी होने के बाद कई बार होता है ना कि अब क्या करना है। बट जब मेरी डॉटर पैदा हुई, उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं रुकना है, मुझे आगे और पढ़ना है। और मैंने अपना कॉलेज दोबारा किया, अपनी पढ़ाई दोबारा की, अपना प्रोफेशन को और बेटर बनाया। और जो आज मैं देखती हूँ, अपनी लाइफ को देखती हूँ और अपने बच्चे को देखती हूँ, जब मेरी डॉटर मुझे कहती है मम्मा आई एम प्राउड ऑफ यू, उस टाइम पे मुझे लगता है कि मेरा ये डिसीजन बिल्कुल ठीक था एंड आई रियली फील प्राउड ऑफ मी। क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे ये डिसीजन को लेके मेरी डॉटर में भी वही हिम्मत आएगी कि वो भी रुकेगी नहीं। वो किसी भी एज में, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं होती जब आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए सबसे एम्पावरिंग डिसीजन था, जहाँ पे मैंने अपने साथ साथ अपनी डॉटर को या मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं उनको भी एम्पावर किया है कि आप कभी भी किसी भी मोड़ पे, किसी भी पड़ाव में अपनी लाइफ के स्टार्ट कर सकते हैं।
0: ओह स्वीट। मोनिका जी, पर एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी कि जब आपने ये डिसीजन लिया कि बेटी होने के बावजूद घर पर छोटा बच्चा है, आप अपनी एजुकेशन पूरी करेंगे, आप वापस कॉलेज ज्वाइन करेंगी, क्या इस डिसीजन में आपको किसी ने सपोर्ट किया?
1: देखिए, इस चीज में मैं जरूर ये चीज बोलूंगी कि कुछ चैलेंजेस थे, क्योंकि डॉटर बहुत छोटी थी और उस टाइम पे ऐसा था कि मेरे को ये देखना था कि मैं घर पे किस तरीके से ये बात भी लेकर आऊं कि मेरी डॉटर हुई है और मुझे कॉलेज करना है।
0: yes.
1: तो बहुत पेशेंस के, बहुत सोचने के बाद मैंने जब ये एक ऑफर, एक प्रपोजल रखा अपनी फैमिली के आगे, तो मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। और अगर मैं बात करूं, हम महिलाओं की बात करते हैं ना, कि हम एक दूसरे को अगर सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, क्योंकि वो चाहती थी कि, उन्हें मालूम था कि मुझे पढ़ने का शौक है, एंड शी वॉज द वन जो उन्होंने बोला कि आप जाओ और पढ़ो। और डॉटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उनके सपोर्ट से ही मैं आगे कर पाई। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर महिलाएं भी एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं तो भी आप में बहुत हिम्मत आ जाती है और आप लाइफ में कुछ कर पाते हैं।
0: देखिए, ये सवाल ना अक्सर मैं महिलाओं से पूछती हूँ, क्योंकि जब तक महिलाएं एक दूसरे के साथ नहीं खड़ी होंगी, बहुत सारी बची हुई महिलाएं अपने जीवन के सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगी। वी का मतलब ही यही है, जब महिलाएं एक साथ आए और एक दूसरे को सपोर्ट करें तो हम सही मायने में सशक्तिकरण को पाएंगे। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

नमस्कार, मैं हूँ राकेश ओम प्रकाश मेहरा और आप सुन रहे हैं 107.8 मानव रचना।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की खूबसूरत सी कड़ी। और आज हम बात कर रहे हैं मोनिका मनचंदा जी से। मोनिका मनचंदा जी जो कि एक हेल्थ और वेलनेस कोच हैं, एक रेकी हीलर हैं, एक आइस बाथ गाइड हैं, एक बॉडी साइकोलॉजिस्ट हैं, ब्रेथवर्क फैसिलिटेटर हैं, साउंड हीलर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और एक बहुत ही टैलेंटेड महिला हैं। चलिए अब हम बात करते हैं महिलाओं की और साथ के साथ उनकी एक आदत की, क्योंकि ये एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, एक वेलनेस कोच हैं। तो मोनिका जी से हम ये जानना चाहते हैं कि महिलाएं अक्सर इस सशक्तिकरण की जर्नी में अपनी अच्छी हेल्थ को नेग्लेक्ट करती हैं। सो उस अच्छी हेल्थ के लिए किस प्रकार से वो अपने आप को तैयार कर सकती हैं और कैसे इम्बाइब कर सकती हैं एक अच्छी सेहत को।
1: देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि हम हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ में सिर्फ हमारा खाना ही नहीं आता है, हेल्थ में हमारे इमोशंस भी आते हैं। अगर हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, आपको सबसे पहले महिलाओं को ये देखना चाहिए कि वो कुछ टाइम, चाहे आधा घंटा ही अपने लिए रोज की मरा में निकाल रहे हैं, जहाँ पे वो जो भी वो चाहती हैं, चाहे वो खाना हो, चाहे वो डांस हो, चाहे कुछ भी जो उनका खुद का मन करे, वो उन्हें जरूर अपनाना चाहिए ताकि उनकी इमोशनल हेल्थ जो रहती है, फिजिकल हेल्थ तो देखिए हमारी हम खाने के साथ ठीक कर सकते हैं, बट इमोशनल हेल्थ जो होती है उसको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को और बाकी लोगों को भी खुश नहीं कर पाते हैं।
0: वाकई ये वाकई अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी चीज है। महिलाओं को अच्छी सेहत के लिए हमेशा एडवाइस किया जाता है और उसका एकमात्र कारण है कि अगर महिला खुश होगी तो वो अपने पूरे परिवार को खुश रख सकती है। अब नॉट दैट कि एक पुरुष खुश नहीं होगा तो वो अपने पूरे परिवार को बिना खुश हुए भी खुश रख सकता है, बट परेशानी ये है कि महिला केयर ज्यादा करती है, महिला के पास जिम्मेदारियां ज्यादा है और इसीलिए एक महिला का गुड हेल्थ या फिर कहना चाहिए वेलबींग जो है वो शायद उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और जहां मैं बात कर रही हूँ प्रायोरिटी की, तो यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि महिलाओं की प्रायोरिटी उनकी अच्छी सेहत कभी भी नहीं होती है। सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी होती है कि घर का जो काम है ना वो सुचारू रूप से हो जाए, उसके बाद हम अपने बारे में सोच लेंगे। अगर आप भी ऐसा सोचती हैं तो एक यस लिखकर भेज दीजिए मुझे 8010781078 पर। और इसे आप कैसे बदल सकते हैं, इसके टिप्स बस कुछ ही पलों में लेकर आ रही हूँ। मोनिका जी बताने वाली है कि आप अपने आप को अपनी प्रायोरिटी कैसे बना सकती हैं। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम। और हम बात कर रहे हैं मोनिका मनचंदा जी से, जो एक हेल्थ और वेलनेस कोच हैं, एक साउंड हीलर हैं, एक टैरो कार्ड रीडर हैं, एक बॉडी साइकोलॉजिस्ट हैं, साथ के साथ ब्रेथवर्क फैसिलिटेटर हैं, आइस बात गाइड भी हैं। सो आजकल अलग अलग पद्धतियों से आप अपने लिए एक अच्छी सेहत और वेलबींग क्रिएट कर सकते हैं। मोनिका जी, अगर मैं बात करूँ महिलाओं के लिए कुछ टिप्स की, सो क्या कहना चाहेंगी, व्हाट शुड दे डू इन देयर लाइफ? क्योंकि ना एक बड़ा मुझे लगता है एक सबसे अहम सवाल जो है, लोग आजकल न्यूट्रिशनिस्ट के पास नहीं जाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम उनके पास जाएंगे या किसी हीलर के पास जाएंगे तो पता नहीं वो हमें क्या एडवाइस करेंगे जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हम कर नहीं पाएंगे। सो क्या कुछ टिप्स हैं जो आप यहाँ आज इस प्रोग्राम में देना चाहेंगे?
1: देखिए भावना जी, सबसे पहले तो मैं ये टिप देना चाहूंगी कि आपको डरने की जरूरत नहीं होती है। न्यूट्रिशनिस्ट भी आपको घर का खाना, नॉर्मल खाना दे सकते हैं, आपके प्लान को, आपके खाने पीने को आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने लिए, जैसे महिलाओं के माइंड में होता है ना, जैसे आपने बोला कि सबसे पहले इम्पोर्टेंस अपने घर वालों को देती है, तो वहाँ पे ही जब आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, आप खाने की बात करते हैं, आप हेल्थ की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारा ये काम रहता है कि आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग ही आपका खाना पीना बने, जहाँ पे आप पे भी वो प्रेशर ना आए और वो आपके इमोशंस भी खराब ना कर दे कि आप खाना बना रहे हो और आपको ये हो रहा है ओहो मैं अपने लिए क्यों बना रही हूँ। तो ये जो गिल्ट आता है ना, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि न्यूट्रिशनिस्ट के पास जब आप जाते हैं, आप उनसे डिस्कस करते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग ही प्लान बनाते हैं। ऐसा नहीं रहता है कि आपको ऐसी कोई चीज़ दे दें जो कि आप कर ही ना पाएं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, आप अपने हीलर्स के पास जाएं। कई बार इमोशनली हम ईटिंग करना शुरू कर देते हैं, कई बार हमारे इमोशंस और हमारा खान पान बहुत कनेक्टेड होता है। कहते हैं ना कि हम लोग कभी खुश होते हैं तो हम खाना खाते हैं, हम उदास होते हैं तो भी हम खाना खाते हैं। तो जब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं तो हमारा खाना, हमारी बॉडी, हमारा माइंड सब कुछ ही अच्छा हो जाता है। तो अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, अपने लिए बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं पर जाएंगे, आप किसी हीलर पर जाएंगे या आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट पर जाएंगे तो आपको सब कुछ बंद कर दिया जाएगा और आपकी चीज़ें जो भी आप रेगुलर लाइफ में कर रहे हैं उस पर और एक एड ऑन हो जाएगा, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, बट आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा और वहाँ पे ही आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और आपकी फैमिली की हेल्थ भी और बेहतर होने लग जाएगी।
0: मैं पर्सनली सभी को एडवाइस करूँगी कि एक बार जिंदगी में अपनी डाइट बनवाने के लिए किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास ज़रूर जाइए। एक सबसे अच्छी चीज़ ज़रूर होगी और वो महिलाओं के लिए मैं कह रही हूँ कि आपके रोज़मर्रा का मेन्यू जो है ना काफ़ी आसान हो जाएगा। आपको एटलीस्ट ये तो रहेगा कि इतनी सारी चीज़ों में से आपको चूज़ क्या करना है, नहीं तो भाई अगर देखा जाए तो इतनी सब्जियां, इतनी दालें, इतने सारे तरीके के खाने, और आजकल के ज़माने में तो हम कॉस्मोपॉलिटन लाइफ जी रहे हैं जहां हमारे पास हर राज्य का खाना है। तो जब इतना इलैबोरेट कुकिंग होती है ना तो महिलाओं पर बड़ा प्रेशर होता है, आज इडली बना लीजिए तो कल आपने पोहा बनाना है, परसों आप सोच रहे हैं कि आप राजमा चावल बनाएं तो कल आप कढ़ी चावल बनाएंगे। सो एटलीस्ट न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाने से आपकी कुछ लिस्ट तो कम हो जाएगी और आपको ये पता लगेगा जो आप चूज कर रहे हैं वो कितना हेल्दी है, कितना न्यूट्रिशियस है, और फिर आप बड़े अच्छे से अपनी आने वाली जनरेशन को, अपने परिवार के सदस्यों को हेल्दी और न्यूट्रिशियस खाना खिला पाएंगे। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण के इस खूबसूरत से कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातें की मोनिका जी से। इनफैक्ट बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट बहुत सारे चैलेंजेस ये खुद भी फेस करती हैं। मतलब अगर हमें ऐसा लगता है ना कि जो न्यूट्रिशनिस्ट होती हैं उनकी जिंदगी तो बहुत ही आसान हो जाती होगी, सो ऐसा नहीं है। पर लाइफ के इन उतार चढ़ाव से निकलकर इन्होंने जीवन में एम्पावरमेंट को हमेशा चुना। मोनिका जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे स्टूडियो में आई। लेकिन जाने से पहले हमारे सभी लिसनर्स को क्या मैसेज देकर जाना चाहेंगे आप?
1: थैंक यू सो मच भावना जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और शायद कुछ बातें ऐसी करें जिससे इंस्पायर होके बाकी महिलाएं भी थोड़ी एम्पावर्ड रहें। तो मेरी सिर्फ टिप यही है कि अपने लिए कुछ टाइम निकालें पूरे दिन में, चाहे आप 10 मिनट ही निकाल रहे हैं अपने लिए, बट अपने लिए ज़रूर निकालें। और अपनी हेल्थ का, अपनी इमोशनल हेल्थ का भी ध्यान रखें, जिसकी वजह से आप खुश रहेंगे तो आप बाकी सबको भी खुश रख सकते हैं।
0: सो इमेजिन करिए कि पूरे दिन में amongst all the 24 hours that you get, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ना अपने लिए देने के लिए पर्सनल 10 मिनट भी नहीं होते हैं। अब ये मत कहिएगा कि आप खाना खा रहे हैं तो वो आपका पर्सनल टाइम है, बट ऑफकोर्स आप सो रहे हैं तो पर्सनल टाइम है, या आप अपने ऑफिस में हैं तो वो आपका पर्सनल टाइम है। ये सारा समय डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो समय जब आप कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, वो समय जब आपको पता है कि इस समय में मुझे कुछ नहीं करना है और वो आप अपने लिए फोकस करते हुए दे रहे हैं, उस समय को हम रियल मी टाइम कहते हैं। और उस मी टाइम में मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि महिलाओं को ना अपने इमोशंस को चूज करना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन में ना बहुत सारे इमोशनल उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। अ गुड डे, अ बैड डे, अ गुड हेयर डे, अ गुड बैड हेयर डे, प्रॉबेबली अ गुड ड्रेस डे और अ बैड ड्रेस डे, सो मेनी थिंग्स। और कई कई बार तो बहुत ही बुरा खाना बनता है, सो उसकी भी आपको बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। सो आप देखिए, जब आप एक परफेक्ट जीवन जीना चाहती हैं औरों के लिए, अपने लिए, और वो पॉसिबल नहीं होता है, सो ऐसे में अगर आपके पास समय मिलता है अपने लिए, सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। और उन 10-15-20 या आधे घंटे में असेस करिए कि आप अगले दिन को और भी खूबसूरत कैसे बना सकती हैं। वक्त है आपसे इजाजत लेने का, कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। एक गाना सुनाते हुए आपसे इजाजत ले रही हूँ, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते मैं आने वाली हूँ आपके पास लेकर एक और खूबसूरत सी सशक्तिकरण की कहानी। लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: तीर मार गोरी,
1: अरे हाँ चोरी चोरी,
0: मेरा दिल निशाना बना यारो।
2: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम साथी। आप सभी को पता है साथी खास कार्यक्रम जिसमें मैं आप ही की मेंटल हेल्थ और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के अलग अलग सॉल्यूशंस लेकर आती हूं, और इसके लिए हर बार मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आती हूं, और उस टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे साथ होती है मेरी साथी एक्सपर्ट। और आज की मेरी साथी और एक्सपर्ट है डॉक्टर खुशबू। तो करेंगे हम इनसे ढेर सारी बात, लेकिन आज का टॉपिक बता देती हूं भाई। आज हम बात करने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए जो नौकरी करने जाते हैं, और जब आप नौकरी करने जाते हैं तो आप भागते हुए जाते हैं क्योंकि आपको अपने वर्किंग आवर्स कंप्लीट करने होते हैं। लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन में ये कहा जाता है कि आपके आने का समय है और जाने का समय बिल्कुल भी नहीं है। काम जब तक खत्म ना हो जाए तब तक आपको जाना नहीं है, और यहाँ पर कई बार आपके वर्किंग आवर्स बढ़ जाते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम इस डिबेट की बात करें जो सोशल मीडिया पर चल रही है कि आइडियली सही मायने में मेंटल हेल्थ के लिए, वर्क लाइफ बैलेंस के लिए आपके कितने वर्किंग आवर्स होने चाहिए, तो आज इस पर बात कर लेते हैं कि एक इंसान को कितनी देर तक बांध कर रखना चाहिए हर रोज के हिसाब से, और उन 24 घंटों में से वो कितना समय अपने काम को दे और बाकी कितना समय वो अपनी जिंदगी को दे, जिससे कि वो ना सिर्फ मेंटली फिट रहे लेकिन वो हेल्दी भी रहे। सो आज इस पर ढेर सारी बात करेंगे, और उसके लिए करेंगे स्वागत डॉक्टर खुशबू का रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में।
3: थैंक यू सो मच।
2: सबसे पहला सवाल कि हम ये जो वर्किंग आवर्स की बात कर रहे हैं ना, इन्हें डिफाइन कैसे किया जाए?
3: देखिए, आपने बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है कि देयर इज नो सर्टेन डेफिनेशन फॉर वर्किंग आवर्स, राइट? आप देख लीजिए सोशल मीडिया पे आजकल जो देखो वो एक अलग आवर्स का वो बता रहे हैं, बट मेरे ख्याल से वर्किंग आवर्स की कोई लिमिटेशन होनी भी नहीं चाहिए
2: जी।
3: क्योंकि आप किसी को ऐसे बांध के, एक ह्यूमन बींग को बांध के आप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं कर सकते
2: जी।
3: ठीक है, तो सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए, आपको वो एनवायरमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए जिससे कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं किसी भी लेवल के, मैनेजरियल लेवल, मिडिल लेवल, वो विलिंगली उस एनवायरमेंट को चूज करें और आके वहाँ पे काम करना चाहें
2: जी।
3: सबसे पहले हमें जो वर्क प्लेस पॉलिटिक्स है इससे चीजों को खत्म करना चाहिए।
2: बिल्कुल,
3: क्योंकि हमें नहीं पता कि वो वर्क प्लेस पॉलिटिक्स एट द एंड किस एम्प्लॉयज को किस हद तक बर्नआउट वाले फेज में ले जाती है, वी डोंट नो
2: जी।
3: तो टाइमिंग, जैसे कि, और टाइमिंग्स की बारे में बात कही जाए तो वो कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता है
2: जी।
3: बहुत सारी कंट्रीज हैं जो 4-day वर्किंग में बिलीव करती हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो अभी छोटे शहर हैं जो मेट्रो सिटीज में कन्वर्ट नहीं हुए हैं अभी, वो 6 days का प्रोविजन रखते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन, आपने बिल्कुल सही कहा था कि लोगों के आने का समय तो तय है, लेकिन इंसान एम्प्लॉय जब अपने जाने के समय को चुनता है या जाता है तो जो हायर अथॉरिटीज होती हैं उनको लगता है कि अभी क्यों जा रहा है, इतनी जल्दी कैसे जा सकता है।
2: Yes.
3: तो ये कोई पैरामीटर नहीं है। इससे आप इंसान को, माना कि उस इंसान की जरूरत है काम करना, पैसे कमाना अपने जिंदगी को सर्वाइव करने के लिए, लेकिन आप उसको सिर्फ बिठा सकते हो। जैसे बोला जाता है ना कि आप उसकी आत्मा को तो वहां रोक सकते हो, शरीर को बिठा सकते हो, लेकिन उसकी आत्मा, मन, दिमाग, वो आपको काम करके नहीं देगा। तो यस, मतलब कोई भी टाइम्स डिफाइन करना इज नॉट अ बिग डील, लेकिन आप उसके साथ ये जरूर डिफाइन करें कि आपने जो बंदे को टास्क दिया है वो टास्क आपको फुलफिल होके मिल रहा है गिवन टाइम पीरियड और नहीं, है ना। तो इसलिए टाइम 8 घंटे काम करके, 9 घंटे काम करके, बहुत सारे लोग हैं जो 8-9 घंटे में भी सुबह से एक फाइल रिजोल्व नहीं कर पाते
2: जी।
3: और बहुत सारे लोग हैं जो 2 घंटे में भी अपनी 10 फाइलों को रिजोल्व कर लेते हैं। तो इंसान की, सबसे पहले आपको यह आइडेंटिफाई करना है, एक तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जानना बहुत जरूरी है
2: जी।
3: उसका एक्सपर्ट एरिया जानना बहुत जरूरी है, और कभी कभी टाइमली आपको ये जानना भी जरूरी है कि वो किस फेज ऑफ माइंड में जी रहा है
2: जी।
3: उस हिसाब से आपको इन सारी चीजों को प्लान करना चाहिए, जो कि अभी भारत में तो मुझे बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि लोगों को, आधे ज्यादा लोगों को यही कॉन्सेप्ट नहीं पता कि व्हाट इज मेंटल हेल्थ एक्ट।
2: और इनफैक्ट जब मैं वर्किंग आवर्स की बात कर रही हूँ, तो जब आप किसी काम को पैशनेटली कर रहे होते हैं जो आपको बहुत पसंद है, तो आप देखिए कि आपको समय का पता ही नहीं चलता है। कई बार हम सुबह सुबह कोई चीज करने बैठते हैं और उससे करने में इतने मगन हो जाते हैं कि जब हम उसको करके खत्म करके उठते हैं, वी रियलाइज शाम हो गई है। अब ऐसे में अगर आप कहें कि कोई इंसान सुबह से शाम तक, यानी अर्ली मॉर्निंग 7-8 बजे शुरू कर दे और शाम के 8 बजे तक काम करता रहे, तो 12 घंटे आप किसी से प्रैक्टिकली काम नहीं करवा सकते हैं। तो हम फिजिकल लेबर की बात करें या मेंटल लेबर की बात करें, दोनों ही कंडीशन में ये डिफाइन करना जरूरी है कि हम इस इंसान से एक्सपेक्ट क्या करें। और ऐसे में मुझे लगता है सही तरीका हो सकता है क्वांटम ऑफ वर्क, कि कितना काम एक इंसान से आप एक्सपेक्ट करें। उस क्वांटम ऑफ वर्क को आप डिफाइन कर सकते हैं कि अमूमन एक घंटे में या दो घंटे में या चार घंटे में एक इंसान इतना काम कर सकता है एवरेज निकालकर, और उसके बाद एक काम डिफाइन कर दीजिए। वो इंसान चाहे उसे दो घंटे में करे, चार में करे, दस में करे, तो एटलीस्ट उसे ये तो पता होगा ना कि रोज सुबह मुझे जाके इतना काम करना है। और अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो इस काम को कितने जल्दी करता है, कितनी क्वालिटी के साथ करता है और कितनी आसानी से करता है। और अगर वो समय ले रहा है तो फिर उसे ये पता होगा कि मैं ही काम को धीरे कर रहा हूँ। सो मैं ये जानना चाहती हूँ डॉक्टर खुशबू आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन चीजों का कोई अंत नहीं है। मतलब आप देखिए, कई बार जो लेबरर्स होते हैं जो कि फिजिकल लेबर भी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बड़ा मुश्किल होता है कि वो एक जगह जब अपनी फैक्ट्री में जाते हैं या कहीं पर जाते हैं तो उनके साथ परेशानी ये है कि काम बढ़ गया है या फिर क्वांटम ऑफ वर्क ज्यादा हो गया है, तो ऐसे में आपको एक्स्ट्रा टाइम काम करना पड़ेगा। तब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस बात का ख्याल ही नहीं रखती है कि भाई वर्किंग आवर्स भी डिफाइन होने चाहिए। सो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि भाई इसको कैसे बैलेंस किया जाए और खुद एक वर्कर या फिर ऑर्गेनाइजेशन कैसे इसे मैनेज करें।
3: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये तो है कि हमें 8 घंटे काम करना है, लेकिन आपने कभी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं सोचती कि जब उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अगर 20 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और अगर 10 एम्प्लॉयज़ हैं

0: अभी फिनिश करके आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, एम्प्लॉय बेचारा करना है, नौकरी है, परिवार चलाना है, लेकिन आपने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि ठीक है अगर आज मैंने इसे ये काम कराया तो इसके बदले इसको मैं या तो 2 घंटे का मॉनिटरी गेन दूं,
1: yes.
0: या तो मैं इसको कंपनसेटरी ऑफ दूं, या फिर इसके कोई जो भी लाइक हम अगर अच्छी है किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे जो आपके ट्रिप्स होते हैं या अनदर प्रेजेज या अप्रिसिएशन होते हैं वो इस बेसिस पे किए जाए। नहीं तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का होता है कि ये तो आपका धर्म कर्म और सब कुछ है, आप इस फैमिली का हिस्सा हैं, तब yes. आप एक फैमिली बना देते हो उस ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन कहीं ना कहीं आपने तो बोल दिया है 2 अच्छे वर्ड्स, लेकिन आपके जो 2 अच्छे वर्ड्स हैं वो पहले ही एम्प्लॉय के मेंटल पीस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर चुके हैं
1: जी।
0: तो ये बात बिल्कुल सही है। और आधी से ज्यादा क्या 80% ऑर्गेनाइजेशन इसी फंडे पे चल रही है। इवन आजकल तो आप देखिए लोग सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, और वो सरकारी नौकरी जो होती है वो 1 या 2 से ज्यादा निकलती नहीं है पोस्ट, है ना। और तो जब ऑब्वियसली जब हमारी सरकारी नौकरी एक व्यक्ति के सरकारी नौकरी के पैसों में जब हम 3 लोगों से काम ले सकते हैं तो फिर अभी वो चीज तो है ही नहीं इसके। इसलिए हमें ये करना है इसमें कि सबसे पहले तो जैसे कि पहले ही मैम ने बोला कि क्वांटम ऑफ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वेरीज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, है ना। मैंने पहले भी ये चीज बोली कि मुझे नहीं पता मैं 8 घंटे में एक ही फाइल चला पाती हूँ और सामने वाला बंदा 2 घंटे में अपनी फाइल्स को करके जाता है। तो आजकल क्या है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है कि जिस बंदे ने 2 घंटे में फाइल कर ली उसी को और 10 फाइल दे देते हैं, क्योंकि अब ये करेगा क्या बेचारा, 4 बजे तक बैठना है इसे। बट तो फिर आप क्या कर रहे हो, आप सामने वाले को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, और एक ना एक दिन वो उस ऑर्गेनाइजेशन से रिजाइन करेगा और टॉर्चर होने के लिए वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करेगा। तो ये प्रोसेस जो है वो स्पेशली इन प्राइवेट सेटअप आपको रोजाना की जिंदगी में देखने को मिल जाएगा। इंसान एक से परेशान होता है, दूसरे में जाता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि दूसरे में वही टॉर्चर चल रहा है। तो सबसे पहले अगर कोई HR डिपार्टमेंट नाम की चीज है उस जगह पे तो उनको यही आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमें वर्क रिलेटेड टास्क देने चाहिए रादर देन द टाइमिंग रिलेटेड टास्क, है ना। अगर मुझे पता है कि 8 घंटे में मुझे एक ही काम करना है तो मैं तो 8 घंटे में क्या उसे आराम आराम से पूरे दिन में करूंगी। देन यू हैव टू स्पेसिफाई कि दिस इज द 1 टास्क एंड यू हैव टू डू इट विद इन 1 आवर और 2 आवर, देन दे कैन डू इट अकॉर्डिंगली। और उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका ऑर्गेनाइजेशन आउटपुट इंक्रीज होगा और एम्प्लॉय टर्नओवर रिड्यूस होगा, और उसके साथ यू कैन फोकस ऑन द एम्प्लॉयज मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग साइमल्टेनियसली।
1: भाई बड़ी बड़ी कंपनियों के जब हेड्स ये कह देते हैं कि 90 घंटे काम कर लीजिए, या फिर वो ये कहते हैं संडे की छुट्टी देने की जरूरत क्या है, इंसान रोज आए और रोज काम करे। सो क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि जिंदगी की डेफिनेशन क्या है? क्या जिंदगी की डेफिनेशन सिर्फ इतनी है कि आप अपने घर को चलाने के लिए जहां नौकरी कर रहे हैं और जहां से आप वेतन पा रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप पूरे हफ्ते के 7ों दिन रेस्ट ही नहीं करेंगे, आप कोई और रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं करेंगे, आप रिलैक्स नहीं करेंगे, पर आप सिर्फ यही काम करते रहेंगे? सोचने वाली बात है। पर अब डॉक्टर खुशबू, इसमें एक अहम सवाल उठता है, इस प्रकार की भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां 6 दिन तो काम किया जाता ही है, आप मिनिमम 8.5 घंटे काम करते हैं। सो ऐसे में आप देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप बीमार हैं या फिर आपकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे इसलिए घट रही है क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि वही काम आप डेली कर रहे हैं और आप एक लंबे समय के लिए कर रहे हैं। सो ऐसे में आप अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आपकी मेंटल हेल्थ पर इम्पैक्ट डालती है। और आज के जमाने में जहां हम डेफिनेटली कह रहे हैं प्राइवेट जॉब्स हैं, प्राइवेट का मतलब यही है कि वहां गारंटी कुछ नहीं है, अगले ही दिन आपको सैक कर दिया जाए या फिर ये कहा जाए कि ये ज्यादा आवाज उठाते हैं या फिर ये ज्यादा कानून बता रहे हैं, सो कोई ना कोई कारण बताकर आपको वहां से हटा दिया जाता है। सो इस डर के कारण बहुत सारे एम्प्लॉयज शायद कुछ कह नहीं पाते या फिर वो कभी इस बात को उठा नहीं पाते, और जब तक एक संगठन नहीं बनता है या फिर एक कमिटी या ग्रुप नहीं बन पाता है तब तक लोग आगे भी नहीं आ पाते। तो ऐसे में अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे बचाया जाए जो इम्पैक्ट वो आपकी मेंटल हेल्थ पर करता है?
0: आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे कि आजकल अभी मैं पिछले दो तीन दिन से कुछ आर्टिकल्स पढ़ रही हूँ जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि ये जो एक हमारे यहाँ जनरेशन बन रही है ना, अल्फा बीटा मिलेनियल्स एंड जेन जी, तो द वर्क प्लेस दे आर नॉट रेडी टू हायरिंग द जेन जी पॉपुलेशन। व्हाई, व्हाट इज द रीजन? मतलब किसी ने सोचने की कोशिश की क्यों? क्योंकि जब हम भी अपने एम्प्लॉयज के साथ काम करते हैं तो नाउ वी कैन सी द डिफरेंस इन बिटवीन द जेन जी एंड द मिलेनियल्स, राइट? बिकॉज उन लोगों में ये चीज की समझ आ रही है, अवेयरनेस आ रही है कि दे आर रेडी टू रेज देयर वॉइस कि भैया ये हमारे संग गलत है और हमारे फंडामेंटल चीजें क्या हैं, हम क्या करेंगे और इसी टाइम पीरियड में करेंगे। तो इसीलिए

0: आजकल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जेंजीज को लेना प्रेफर नहीं कर रही है अभी पिछले 2-3 दिन से, इवन आज मॉर्निंग में भी मैंने ये आर्टिकल पढ़ा है, क्योंकि मिलेनियल्स क्या है, दे आर मोर सबमिसिव एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू लाइक ओबलाइज द हायर अथॉरिटीज इन टर्म्स ऑफ, आई एम नॉट सेइंग कि मतलब उनको आता नहीं है जवाब देना, वो आता है, बट जो मिलेनियल पॉपुलेशन है उसमें जो एक एल्डर्स के लिए रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें वो दिन पे दिन, और इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि जेंजीज रॉन्ग है, नहीं है, और जबकि मैं चाहती हूँ कि ये चीजें होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जहां आपकी चीजें शुरू होती हैं कहां खत्म होती हैं, आपकी अपनी बाउंड्रीज सेट होनी चाहिए, अदरवाइज एक्सप्लॉइट करने के लिए तो बाहर बहुत लोग बैठे हुए हैं और आपको हमेशा रेडी रहना है आपके मेंटल हैरेसमेंट के लिए, ऑलवेज रेडी. तो आप यही कर सकते हैं, एक तो सबसे पहले सेट योर बाउंड्रीज एंड ऑलवेज रेडी, नहीं ऑलवेज तो नहीं कहूंगी, बट आपको पता होना चाहिए कब हाँ और कब ना कहना है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ है, आप ट्रॉमा में होंगे, आप डिप्रेशन में होंगे, कोई सर्टेन पैरामीटर नहीं है उसको नापने का, लेकिन जब आपकी बॉडी में से जो बर्नआउट होते हैं, जो सिम्टम्स दिखते हैं, वो सिर्फ आप ही देख सकते हैं, और आपने अभी अभी रिसेंटली देखा है कि इस वजह से कितने यंग एम्प्लॉयज सुसाइड कर रहे हैं.
1: Yes.
0: कितने यंग एम्प्लॉयज हैं जो सुसाइड कर रहे हैं, बिकॉज नौकरी छोड़ नहीं सकते हैं, बिकॉज वी ऑल हैव लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ EMIs एंड बच्चों की एजुकेशन है, बूढ़े माँ बाप की दवाई है, व्हाटएवर द रीजन, बट क्या है, तो आप इन सबसे एक टाइम पे इतना एग्जॉस्टेड और बर्नआउट हो जाता है, ठीक है, रस्ट आउट आप कर नहीं सकते, बर्नआउट हो गया, बर्नआउट हो जाता है, आप बिना बताए सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो उसके लिए ये जरूरी है. जैसे आजकल मैं जितने अपने फेलो कलीग से बात करती हूँ, दे ऑलवेज से कि हमारी नींद पूरी नहीं होती, एवरीबडी इज सेइंग द सेम लाइन, और लोग एक दूसरे से पूछते हैं, अच्छा बताओ सैटरडे संडे क्या कर रहे हो
1: जी?
0: हम तो पूरी नींद करेंगे अपनी.
1: Yes.
0: हमें सोना है, सोने दो. तो कैन यू इमेजिन अगर लाइक एवरीबडी इज मेंशनिंग लाइक कि इफ यू आर डिप्राइव्ड इन टर्म्स ऑफ स्लीप, तो डेफिनेटली इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट योर प्रोडक्टिविटी.
1: बिल्कुल
0: राइट, योर मेंटल हेल्थ, योर पीस, इट विल इंक्रीज द इरिटेशन, इट विल इंक्रीज द फ्रस्ट्रेशन एंड अग्रेशन एज वेल. तो वही सारी चीजें, एक बेसिक नीड की बात कर रही हूँ जो कि नींद, जो कि मेरा हक है
1: जी,
0: बट मैं नहीं सो पाती क्योंकि मैं मेट्रो सिटी में रहती हूँ और 2 घंटे का सुबह ट्रैवल करती हूँ, 2 घंटे का शाम को ट्रैवल करती हूँ. तो आजकल मैं लोगों से ये भी सुनती हूँ अपनी मेंटल हेल्थ को प्रिवेंट करने के लिए कि हम तो भाई एक वीक ऑफ ले लेंगे, है ना. पहले के लोग जो थे, अगर आप देखो कंपैरिजन करो, तो वो लोग विदाउट एनी सिक, वो मतलब सिक लीव CL और उसके अलावा कोई छुट्टी लेना प्रेफर नहीं करते थे क्योंकि सैलरी डिडक्ट हो जाएगी. बट आज अब मतलब मैं आपको डिफरेंसेस बता रही हूँ कि लोग किस तरीके से अपनी मेंटल हेल्थ को प्रिवेंट कर रहे हैं. लोग कहते हैं कि नहीं भैया हम तो हफ्ते का एक ऑफ ले लेंगे, राधर देन कि हम एक हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाएं और वहां पे हम 10-15-20-25 हजार का खर्चा बनाए, उससे अच्छा है कि हम अपनी 2-3 हजार रुपए की सैलरी कटा के एक छुट्टी लेके रिलैक्स करके फिर से वापस आएंगे. ठीक है, तो इस तरीके से आप मेंटल हेल्थ कर सकते हो, दूसरा अपने प्रिवेंट कर सकते हो. दूसरा ये है कि आप अपने लिए छोटे छोटे स्मॉल सेलिब्रेशंस हैं जो आप ऑफिस में एक दूसरे के संग, फेलो कलीग्स के संग सेलिब्रेट कर सकते हो. माना कि ये सारे टास्क HR को करने चाहिए, बट स्टिल अगर HR नहीं भी, क्योंकि HR के लिए भी पॉसिबल नहीं है इतने लार्ज स्केल पे ये सारी चीजें इतना ईजिली सिस्टमैटिकली अरेंज कर पाना, तो यू कैन सेलिब्रेट योर स्मॉल अचीवमेंट्स विद योर फेलो कलीग्स, योर फ्रेंड्स. एंड आप जैसे कि माना कि हायर अथॉरिटीज को ये भी बुरा लगता है कि आप चाय और स्नैक्स के लिए जा रहे हो, बट डेफिनेटली दीज काइंड ऑफ एक्शंस व्हेन यू आर नॉट रेडी टू डू वर्क और आपको अपना वेंट आउट करना है, तो ये स्मॉल टी ब्रेक्स एंड स्मॉल कॉफी ब्रेक्स इज वेरी गुड टू वेंट आउट योर नेगेटिव थिंग्स एंड अगेन यू आर रेडी फॉर योर वर्क. सो ये छोटे छोटे टास्क हैं जिसको आप कर सकते हो, शेयरिंग कर सकते हो. माना आप HR या ग्रीवियंस सेल में जाकर रिपोर्ट नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट देयर इज वन पर्सन जिसके संग आप ये सारी चीजें शेयर करके उसको रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि रिड्यूस नहीं किया तो वो बर्नआउट होगा, बर्नआउट होगा तो आप अपनी जान खो के उसके साथ साथ आप अपने बहुत ही लाइक जो फैमिली है, सिबलिंग्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा छोड़ के चले जाओगे.
1: भाई बस इसी टॉपिक पर मैं आने वाली थी कि जब एक इंसान कहीं नौकरी करता है तो उसके लिए परेशानी ये है कि वहां पर जो हो रहा है वो सिर्फ उसका पर्सनल है, क्योंकि नौकरी आपने चूज की है, पैसा आपको कमाना जरूरी है, चाहे वो महिला है या पुरुष है. आज के जमाने में एक घर को चलाने के लिए और एक अच्छा जीवन जीने के लिए, अब आप ये कहेंगे जी घर को चलाने के लिए तो आप बहुत बेसिक चीजों के साथ जी सकते हैं, लेकिन जब आप घर चला रहे हैं तो उसमें आपको जीना भी है और जीने के लिए बहुत सारी ख्वाहिशें हैं जिन्हें पूरी करनी है. सो उसमें घर आता है, गाड़ी आती है, वेकेशन आता है, कपड़े आते हैं, ज्वेलरी आती है, लाइफस्टाइल आता है, सब कुछ आता है, तो उसे आप कैसे मेंटेन करें. अब आप अपने आप को इन सब चीजों से डिप्राइव नहीं करेंगे तो आप नौकरी पर जाएंगे, नौकरी पर जाकर आप कमाएंगे। और ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना कि हर इंसान ही स्टार्टअप खोल ले या फिर एक एंटरप्रेन्योर बन जाए और वो सबको एम्प्लॉय करने लग जाए। सो जब कुछ चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो ऐसे में अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखना जरूरी है। लेकिन होता क्या है, इन सारी चीजों का इम्पैक्ट जाकर कहाँ आता है, परिवार पर। आप मान लीजिए कि बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया जो मेरे साथ भी होता है कि हम हमेशा ये महसूस करते हैं कि हमारी जिंदगी में ना स्लीपलेसनेस है। इनफैक्ट मैं कई बार आश्चर्यचकित होती हूँ जब मैं बुजुर्गों से मिलती हूँ और वो ये कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती, और हम ये कहते हैं हमारी नींद पूरी नहीं होती। हमें ऐसा लगता है कि हम रात को कितने भी बजे सो जाएं, सुबह जब उठना होता है ऑफिस जाने के लिए तो हमें बहुत थकान महसूस होती है। एक दिन हमें ऐसा मिले जब शायद 12 बजे तक कोई हमें ना उठाए या 1 बजे तक हमें कोई ना उठाए, बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेचर्स कॉल, जिम्मेदारियां, आपके घर में मेड हैं, बाकी सारी डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, वो सब लोग भी तो होते हैं और कहीं ना कहीं आपको इन सबको देखना भी है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा है कि आप अपने आप में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। कई बार नींद पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कई बार आप अपने काम पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और ये जो कॉम्प्रोमाइज है ये आता है आपके परिवार पर। तो चलिए अब आ जाते हैं परिवार पर। देखिए, हम सब कुछ कर रहे हैं एक परिवार के लिए, लेकिन इसका सारा इम्पैक्ट पड़ता है एक परिवार पर। डॉक्टर खुशबू, ये आप इस बात को बिल्कुल मानेंगी कि जब एक इंसान स्लीपलेस महसूस करता है, चाहे वो माता है या पिता है, तो वो घर पर चिड़चिड़ा सा हो ही जाता है। आपसे काम नहीं किया जाएगा क्योंकि आप इतना थक कर आए हैं। तो आप मान लीजिए कि आपको बहुत ही सेंसिटिव या फिर कॉन्सेंट्रेशन वाला काम करना है, मान लीजिए आप बच्चों के पेपर चेक कर रहे हैं, या फिर आप किसी डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, या फिर आप डॉक्टर हैं, रात को ही एक ऑपरेशन करके आए हैं, अगले दिन फिर सुबह आपको पहुंचना है और कहीं ना कहीं आप ये एक्स्ट्रा टाइम में सो नहीं पाए हैं। सो इमेजिन करिए, ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि आपसे चूक हो सकती है, पर वो चूक अलाउड नहीं है क्योंकि वो काम है। तो आपका सारा जो इम्पैक्ट है ना वो आ जाता है परिवार पर। सो जब आप घर आते हैं तो आप थके थके रहते हैं, आप डिसइंटरेस्टेड रहते हैं, परिवार के लोगों से आप ठीक से बात नहीं करते हैं। अब परिवार के लोग ये सोचते हैं अरे भाई ये थके हुए ने सो जाने दो, और प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि आप शादियों को अवॉइड करते हैं, आप गैदरिंग्स को अवॉइड करते हैं, आप पार्टीज को अवॉइड करते हैं। इनफैक्ट जो फैमिली डिनर्स होते हैं जहां की पूरा परिवार बैठकर खाना खा रहा है, आप उसको भी अवॉइड करते हैं। आप ये चाहते हैं बस मुझे सो जाने दो, तो कहीं ना कहीं सो जाने दो, या फिर एक्स्ट्रा काम करना है, आज मीटिंग आ गई, आज मेरी कॉन्फ्रेंस है, आज सेमिनार है, इन सब चीज़ों में परिवार बहुत सफ़र करता है। और फिर हम ये बात करते हैं कि आजकल परिवारों में वो प्यार नहीं है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये वर्किंग आवर्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है एक परिवार के बिल्कुल बिखर जाने का।
0: बिल्कुल सही। आजकल आप बताइए मुझे कि आजकल जैसे कि ये भी कुछ दिनों से आर्टिकल में आ रहा है कि भारत में दिन पे दिन डाइवोर्स रेट क्यों बढ़ते जा रहे हैं, भारत में दिन पे दिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं, भारत में आते हर दिन हर जनरेशन ये क्यों बोलती है कि हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच में जनरेशन गैप क्यों है, वो मेरी बात नहीं समझते हैं। जैसे कि एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं बहुत बच्चों से बात करती हूँ जब भी, तो यूजी के अगर मैं अंडर ग्रेजुएट बच्चों को देखूँ तो वो बच्चे आज सब यही कहते हैं कि मैम नहीं, हमारी मम्मी नहीं समझती, हमारे पापा नहीं समझते। बट क्यों नहीं समझते, मतलब ये जानने की कोई कोशिश नहीं करता। बच्चे अपनी बोल रहे होते हैं, माँ बाप अपनी बोल रहे होते हैं काउंसलिंग सेशंस में, तो लेकिन ये जानने की कोई कोशिश नहीं करता कि क्यों हो रहा है ये
1: जी।
0: बिकॉज आजकल आप देखिए मेट्रो सिटीज में अगर दोनों पेरेंट नहीं कमाएंगे तो सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। अगर वो दोनों कमाने की तरफ रुख कर लेते हैं तो बच्चे की जो अपब्रिंगिंग है, जो उसके लिए आपका एक मदर फादर वाला जो एक कनेक्शन जो बॉन्ड है वो उसका उसकी नैनी के संग बिल्ड हो रहा है, वो उसका उसके क्रश में बिल्ड हो रहा है, राइट? तो ये सारी चीजें कहाँ हैं? तो अगर उसे अपनी कोई प्रॉब्लम भी है तो बच्चा आजकल नैनी के पास पहले जाता है रादर देन द पेरेंट्स।
1: एग्जैक्टली,
0: ठीक है। जहाँ वाइफ को कुछ कंसर्न है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं फैमिली में, कुछ वो अपने हस्बैंड के संग शेयर करना चाहती है, फिर रात को डिनर टेबल पे जब वो दोनों मिलते हैं तो अगर वो कुछ बताना शुरू करती है, यार प्लीज अभी ये सब बातें मत करो, अभी मेरा माइंड जो है उस पोजीशन में नहीं है कि मैं तुम्हें समझ पाऊँ, ठीक है, वो समझना इतना पीछे छूट जाता है कि वो कंधा वो किसी और को बना लेता है इंसान, हस्बैंड या वाइफ जो भी स्पाउस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। सबसे पहली बात, आप अपने बच्चे को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं। कितने सारी फैमिलीज हैं जहाँ पे जब फादर रात को आते हैं तब तक बच्चे सो चुके होते हैं, और जब फादर मॉर्निंग में उठते हैं तब तक बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: मतलब वीकेंड पे सिर्फ उन लोगों का इंट्रैक्शन होता है एक फादर और एक बच्चे का। और ऐसा मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ओनली फॉर फादर, देयर आर लॉट्स ऑफ मदर्स एज वेल, कि उनका इंट्रैक्शन ही इतनी मुश्किल से हो पाता है। तो आप सोचिए कि वो उसको किस तरीके से उसके होम असाइनमेंट्स में हेल्प करेंगी, किस तरीके से उसके लिए प्ले टाइम निकालेंगी, किस तरीके से उसके आउटडोर गेम्स को पूरा करेंगी। तो फिर आप बात करते हो कनेक्शन की, और घूम फिर के बाद अगर ये मैंने पेरेंट्स को डिफॉल्टर ठहरा दिया डेफिनेटली, बट लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो अपनी अलग तरीके की ड्यूटीज में बंधे हुए हैं क्योंकि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, अच्छा एनवायरमेंट देना चाहते हैं, उसके लिए वो नौकरी कर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं हम ये समझ लें, क्योंकि आप मुझे बताइए, एक अगर मैं 30,000 अर्न करती हूँ और एक महीने बाद मैं 40,000 दूसरी नौकरी से अर्न कर लेती हूँ, तो कोई बहुत खास बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ मेरे दिमाग का डिफरेंस है 10,000 रुपए। बट इस 10,000 रुपए के चक्कर में मैं अपनी कितनी सारी चीजों को खोती हूँ, उन सेक्रीफाइसेस को मैं नहीं देखती हूँ कि उसके बदले मैं कितनी चीजें खो रही हूँ। तो ये हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि एक तो हम किस तरीके की जॉब करें जिससे कि मैं अपने स्पाउस को, अपने इन लॉज को, इवन अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को टाइम दे पाऊं। तो अगर आप ये सब कर पा रहे हो और उन 10,000 को खो रहे हो, तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा घाटा नहीं है आपके लिए। इट्स अ वेरी गुड डिसीजन कि यू आर रेडी टू गिव द टाइम फॉर योर फैमिली, क्योंकि वहां अगर आपने आज इन्वेस्ट किया तो जब आप अपने ओल्डर पीरियड में होंगे तो शायद उसका जो फल हो वो आपको वहां देखने को मिले, उन 10,000 के घाटे का फल वो आप अपने ओल्डर एज में देख पाए। तो ओवरऑल ये डिसीजन हमारा है, लेकिन कहीं ना कहीं एज अ एडल्ट हमारी गलती है कि हम लोग भी सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, है ना। और मुझे नहीं लगता कि 10,000 रुपए में जो लग्जरी बैग आप 30 में नहीं खरीद पा रहे हैं, और आई एम श्योर कि आप वो 40 में भी नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें सिर्फ और सिर्फ हमारा वहम है कि हम थोड़े सा आगे बढ़ गए तो हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, लेकिन उसके उस अचीव की कॉस्ट बहुत बड़ा लॉस भी होता है। तो वही चीजें हैं कि डेफिनेटली वर्किंग आवर्स आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं, आपके फैमिली रिलेशंस को खराब कर रहे हैं, लेकिन उसको अपने अंदर लेने की हम ही लोग कोशिश कर रहे हैं उस वर्किंग आवर्स को, और उन चीज़ों को हम ही ने सेट किया है। अगर हम उन चीज़ों को बोलें, उनके अगेंस्ट वॉल्यूम पिच करें, तो डेफिनेटली चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन वही है कि जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जब तक कोई काउंसिल ना बने या जब तक कोई कमेटी ना बने तो चीज़ें होना मुश्किल होती है, बिकॉज नौकरी सबकी नीड है और नौकरी के बिना हमारा सर्वाइवल नहीं है। बट एट द एंड ये हमारी फैमिली को, मेंटल पीस को और इवन फिजिकल हेल्थ को, सबको दिन पे दिन डिटेरियोरेट कर रही है। आप अपनी बॉडी से पूछिए, आजकल 25-30 साल का इंसान जब नीचे से बैठ के उठता है तो बोलता है मेरी कमर में दर्द, मेरे पैरों में दर्द, क्योंकि हम अपने लाइफस्टाइल को कुछ भी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ लाइफस्टाइल पाने के लिए भाग रहे हैं। तो डेफिनेटली इट्स लाइक वर्किंग आवर्स इज लाइक वेरी बैड कि आप एक अनलिमिटेड तक काम करो और उसके बाद अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को परेशान करो।
1: सो कहीं ना कहीं अपने वर्किंग आवर्स खुद डिफाइन करिए और अपने परिवार के लिए समय कैसे निकालेंगे और उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट जाता जा रहा है ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब डॉक्टर खुशबू, बड़ा अहम सवाल, हम कहते हैं हर जगह ह्यूमन रिसोर्स या फिर HR, वैसे तो इस पर बहुत सारे जोक्स बने हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन का भी कुछ रोल होता है। सो इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में किस प्रकार से अपने एम्प्लॉयज की मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा जाए, किस प्रकार से ये ध्यान रखा जाए कि हम उनके वर्क लाइफ बैलेंस को भी मेंटेन कर पाएं और उन्हें ना सिर्फ उनकी प्रोडक्टिविटी पर हम कोशिश करें कि हम थोड़ा सा असेस करें और साथ के साथ उन्हें अच्छी प्रोडक्टिविटी देने में मदद करें, लेकिन साथ के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अप्लाई की जा सकती हैं, इम्प्लाई की जा सकती हैं, इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं, जिससे कि एम्प्लॉयज़ भी खुश होकर काम करने के लिए आए।
0: बिल्कुल ठीक का HR टर्म जो है आजकल भारत में बड़ी फैसिनेटिंग वर्ड है एक, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको सबसे अच्छा सेल जो एकदम ब्यूटीफुल सा बना हुआ मिलेगा वो आपको HR डिपार्टमेंट ही मिलेगा, बड़ा अट्रैक्टिव, बहुत सारी चीजें। बट अब वो कितना अट्रैक्टिव होने के साथ साथ कितना रिसोर्सफुल भी है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए HR एक, अगर देखा जाए किताबी नॉलेज के बेसिस पे या लोगों से इंट्रैक्शन के बेसिस पे, HR डिपार्टमेंट इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। बट अब कितने स्टेप्स वो लोग पहुंचते हैं और कितना उसमें इंप्लीमेंट कर पाते हैं बहुत ज़रूरी है। जैसे कि HR का ही काम है कि सबसे पहले तो कुछ ग्रीवेंसेस सेल बनाना
1: जी।
0: जैसे HR से जब हमें हायर करता है तो सबसे पहले उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि एवरीथिंग शुड बी कॉन्फिडेंशियल,
1: यस।
0: बट मैंने आधी से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में देखा है HR ही वो डिपार्टमेंट होता है जो सारी इन्फॉर्मेशन के इधर से उधर पहुंचाता है
1: जी।
0: तो ये मेरा कहना है कि HR डिपार्टमेंट बहुत सिंसियर और बहुत सिस्टमैटिक होना चाहिए, क्योंकि उसके हाथ में लोगों की, मतलब फिजिकल हेल्थ तो छोड़ो, मेंटल हेल्थ की एक पूरी वर्कशॉप करवाना, चीज़ें करवाना, वो सारी उसके हाथ में। तो आपके पास ग्रीवेंसेस सेल होने चाहिए चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने डायरेक्ट हेड की अगर हमें कंप्लेन करनी है या उसके बारे में कुछ प्रॉब्लम शेयर करनी है तो हम किसको रिपोर्ट करें, नो वन इज देयर,
1: यस,
0: है ना। ठीक है अगर फेलो कोलीग से है तो वी कैन अप्रोच आवर हेड और द सुपरवाइजर राइट, बट अगर सुपरवाइजर से ही प्रॉब्लम चल रही है तो मैं किसके पास जाऊँ
1: जी?
0: एटलीस्ट ठीक है मेरी कम से कम हो सकता है कि मेरी सुनने से या वेंट आउट करने से आधी प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाए. तो इस तरीके के कुछ हमें ऐसे रिसोर्सेज मिलने चाहिए कि एम्प्लॉयज को एटलीस्ट वेंट आउट. आजकल तो आप देखिए जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें तो ऐसे कथारसिस रूम वगैरह भी होते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज जाते हैं अपना, जैसे कि पंचिंग बैग्स हैं और इस तरीके के साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए जो टूल्स हैं वो आपको अवेलेबल हैं. आप जाइए थोड़ी देर वहाँ टाइम इन्वेस्ट करिए और आप काम कंपोज होके फिर से वापस अपने आ सकते हैं. इसके साथ साथ जैसे कि एचआर है, अप्रेजल मिलना तो खैर हमारा राइट है डेफिनेटली एज एम्प्लॉय, लेकिन उसके साथ साथ मॉनेटरी गेन के साथ साथ यहाँ पे कुछ नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स भी होने चाहिए एम्प्लॉयज के लिए. जैसे कि आजकल मैंने देखा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दे आर प्रमोटिंग, द ऑर्गेनाइजेशन आर प्रमोटिंग द हैप्पीनेस इंडेक्स लीव काइंड ऑफ थिंग्स. ठीक है तो ठीक है अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इसके अलावा भी छोटी छोटी चीजें हैं जैसे कि आप टाइम टू टाइम कुछ पिकनिक्स प्लान कर सकते हैं, टाइम टू टाइम आप अपने एम्प्लॉयज की फैमिली गेट टुगेदर करवा सकते हैं. ठीक है आप टाइम टू टाइम बच्चों जो मतलब एम्प्लॉयज हैं उनके बच्चों के लिए कुछ इवेंट प्लान कर सकते हैं. ठीक है इस तरीके से आप उनको एनुअल पर्पज पे कोई ट्रिप स्पॉन्सर कर सकते हैं. ठीक है माना कि हर ऑर्गेनाइजेशन का इतना बजट नहीं होता, बट छोटी छोटी चीजें जैसे कि अगर आपका सैटरडे वर्किंग है तो आप सैटरडे को 2-3 घंटे का कोई एक अच्छा सा वर्कशॉप या इवेंट, वाइब्रेंट कलरफुल, ये नहीं है लेक्चर बेस्ड
1: जी,
0: इट शुड बी अ प्रैक्टिकल बेस्ड जहाँ पे लोग पार्टिसिपेट कर सकें, अपनी चीजों को बोल सकें, रेस कर सकें, कुछ इस तरीके की चीजें जिससे कि उनको भी लगे कि यहाँ पे हम लैपटॉप और एक केबिन के अलावा भी हमारी थोड़ी बहुत लाइफ है. आप छोटी मोटी लाइक स्टॉल्स लगा के फूड फेस्टिवल काइंड ऑफ चीजें ऐसे सेलिब्रेट करिए. तो ये बहुत छोटी बातें लग रही होंगी आपको मेरी कि ये क्या बच्चों जैसी बातें कि फूड स्टॉल्स लगाना या ये करना, लेकिन जब आप अपनी उस सीट से उठते हो और उस लैपटॉप से पीछे उठ के जाते हो ना और आप इस तरीके का एक घंटा भी एनवायरमेंट, तो आप देखते हो कि वहां पे आप कैसे एक बच्चे की खुशहाली वाली जिंदगी जी पाते हो.
1: Yes.
0: चार लोगों के संग आप सेल्फी क्लिक करते हो, चीजें ट्राई करते हो, अपनी एक दूसरे के संग फीलिंग शेयर करते हो, तो आप जब वापस आते हो देन यू कैन रियलाइज कि देयर इज अ ह्यूज गैप प्री एंड पोस्ट
1: जी
0: थिंग्स,
1: तो एनर्जाइज्ड हो जाते हैं.
0: यस तो वो चीजें ना बहुत जरूरी है, और ऐसा नहीं कि साल में एक बार कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमें अपने डॉक्यूमेंटेशंस को पूरा करना है कि एचआर ने कुछ कराया, बट एचआर का ये राइट है कि उसे ये चीजें प्लान करते रहना चाहिए. आप बहुत जल्दी नहीं कर सकते बट वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ एटलीस्ट यू शुड डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स. तो डेफिनेटली धीरे धीरे ही एक कल्चर बिल्ड होता है, और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बिल्ड करना इज नॉट एन ईजी टास्क. ठीक है तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जब अच्छा होता है तो तभी वो ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर को इंक्रीज करता है. तो ये कल्चर आपके ही हाथ में है, तो आपको ही अपना 100% इसमें देंगे तो आप लोगों से 200% की उम्मीद कर पाएंगे.
1: भाई डेफिनेटली एचआर के हाथ में बहुत कुछ होता है, लेकिन एचआर भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, और कई बार आपने देखा होगा कि एचआर के पास सिर्फ एक ही बात होती है कि भाई हम खुद एम्प्लॉई हैं. सो ये जो हैप्पी प्लेसेस है ना, इनको सिर्फ सपने में नहीं लेकिन हकीकत में कन्वर्ट किया जा सकता है, और इसके लिए छोटे छोटे कदम अपनाने की जरूरत रहते हैं, कोई मेजर चेंजेस की जरूरत नहीं होती है. एट द एंड ऑफ द डे हम सब इंसान हैं और हम इंसानों की तरह समझदार हैं और हमें चीजें समझ में भी आती हैं. बस जरूरत ये है कि छोटे छोटे ब्रेक्स मिलते रहें, मोनोटोनस जिंदगी ना हो, जिससे कि इंसान मान लीजिए कि आप और कुछ नहीं तो स्लीप एक्टिविटी ही रखें कि हाँ भाई पूरे दिन में अगर आप 8 या 8.5 घंटे काम करते हैं तो जाइए 1 घंटे आप रेस्ट कर सकते हैं, ये बिल्कुल अलाउड है अगर आपका काम खत्म हो गया है. तो उससे क्या होगा कि इंसान एनकरेज होगा कि यस वो भी जल्दी जा सकेगा, वो भी और काम,
0: और इवन आपका एक इंटरवल का टाइम भी फिक्स स्लॉट होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके कॉन्ट्रैक्ट उसकी पॉलिसीज में ये बहुत मस्ट है कि आपके पास एक सर्टेन स्लॉट होना चाहिए आपके लंच के लिए.
1: Yes.
0: ये नहीं है कि आपको जब टाइम मिले आप खा लो, तो मतलब मैंने तो 10 मिनट में ही खा लिया अपना लंच, अब मैं फिर से वापस बैक टू लाइक माय लैपटॉप. नो आपका, और वो भी मेरा ये सजेशन है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक सर्टेन टाइम फॉर लंच होना चाहिए एंड अदर टी ब्रेक जो भी है आपके, क्योंकि उससे क्या होता है जब सर्टेन टाइम होता है ना सबके लिए तो सब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाते हैं.
1: Yes.
0: है ना, अब मेरा टाइम अलग है, मेरे फ्रेंड का टाइम अलग है, तो हम तो मिल ही नहीं पाते हैं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नीड टू सेट दीज काइंड ऑफ थिंग्स एज वेल. तो ये भी एक तरीके का बूस्टिंग फैक्टर है जो आपके डिप्रेशन एंजाइटी को थोड़ा सा कम कर पाता है जब आप अपने फ्रेंड्स से पास जा पाते हो, उनके संग थोड़ा सा चाय कॉफी ये सब टाइम स्पेंड करते हो. तो लंच आवर इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, इसलिए बोलते हैं ना कि फैमिली में एटलीस्ट डिनर टाइम सबका साथ होना चाहिए. तो ये चीज बहुत जरूरी है।
1: तो जब परिवार के रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं डिनर लंच टाइम से, तो बिल्कुल ऐसे ही आप एक ऑर्गेनाइजेशन के भी रिश्तों को और मजबूत बना सकते हैं और अपने एम्प्लॉइज को एक अच्छा टाइम दे सकते हैं। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हमने बहुत सारी अच्छी बातें की, बट जाते जाते हमारे सभी लिसनर्स को क्या खास आप बताकर जाना चाहेंगी?
0: टॉपिक आज का बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि हम सभी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और स्पेशली फीमेल्स हैं, तो हम तो इसको ज्यादा, मैं ये नहीं कहती कि मेल्स का डिफिकल्ट नहीं होता
1: जी,
0: क्योंकि आजकल कोई भी, मुझे नहीं लगता कि जेंडर के बेस पे हम कुछ भी कह सकते हैं, बट फॉर फीमेल्स लाइक मैं कह सकती हूँ 10-20% उनपे ज्यादा बर्डन होता है जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली, किड्स एंड ऑल। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नीड टू सेट योर प्रायोरिटीज फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी ये एक बहुत नॉर्मल हमारी बॉडी का और एक नॉर्मल फिनोमिना है कि अगर मैंने 8 बजे से काम करना चालू किया है तो आपकी बॉडी भी वो 2 बजे आपको एक अलार्म देने लग जाती है कि नाउ डन फॉर द डे,
1: यस
0: डन, ठीक है। तो आप कभी ऐसे कभी वैसे मतलब उस चीज को करते हो, बट आप खुद नोटिस कर सकते हो जो परफॉर्मेंस आपने 10 से 12 के बीच में दी है वो परफॉर्मेंस आप 2 से 4 के बीच में नहीं दे पाते हो। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यू नीड टू सेट योर प्रायोरिटी। इफ समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट देन यू हैव टू फिनिश इन द अर्ली मॉर्निंग, राइट। इफ नथिंग लाइक इफ सम वर्क इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, तो आप उसको प्रायोरिटीज में सेकंड लिस्ट पे शेयर करिए, ठीक है। तो ये चीजें जरूरी है, और उसके साथ अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, देन टेक अ ब्रेक, इट्स वेरी मैंडेटरी एंड इट्स योर राइट,
1: यस।
0: प्रिविलेज नहीं दे रहा है कोई भी आपको, तो प्लीज उसको ये मत सोचिए कि छुट्टी के लिए जो हमें पूछना पड़ता है या फिर कभी कहना पड़ता है, जैसे बहुत सारी जगह मैं सुनती हूँ कि लोगों को छुट्टी नहीं मिल रही है,
1: yes.
0: है ना, किसी को कहीं वेडिंग अटेंड करनी है, किसी को फ्यूनरल अटेंड करनी है इवन, है ना, तो छुट्टी नहीं मिल रही है। तो क्योंकि काम की प्रायोरिटी क्या है और इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में क्या है उस रिलेशन की, ये सिर्फ आपको पता है, मुझे नहीं पता कि आपके लिए वो टास्क कितना इम्पोर्टेंट है उस दिन के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी चीज़ों को खुद डिफाइन करें और काम को खुद ऐसा करें कि सामने वाला आपको मना ही ना कर पाए, क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज़ हम बार बार मैनेजमेंट और अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी वजह से और एम्प्लॉयज़ को भी सफ़र करना पड़ता है,
1: yes.
0: ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है कि आप 4 से 5 घंटे में 8 घंटे की प्रोडक्टिविटी दे पा रहे हैं कि नहीं, और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो प्लीज़ दीजिए, क्योंकि मैनेजमेंट आपको सैलरी देता है और आपसे एक्सपेक्ट करता है, और अगर मैनेजमेंट आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है तो उसके लिए यू नीड टू सेट एंड यू हैव टू टेक सम एक्शंस, है ना, या फिर अप्रोच समवन जिसको आप कर सकते हैं। और अपनी प्रायोरिटी फैमिली से पहले नौकरी नहीं है, कभी भी याद रखिए, आपके रिश्ते सबसे पहले होने चाहिए तब जॉब होनी चाहिए, और सबसे पहली बात है कि अगर आप इन दोनों को बैलेंस कर लें तो उससे अच्छा तो लाइफ में कुछ भी नहीं है। थैंक यू
1: भाई, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर कुशमीन। और इनफैक्ट ये भी याद रखना चाहिए, जहां वर्किंग आवर्स की बात कर रहे हैं, हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सो एक अच्छी फैट सैलरी के लिए, एक अच्छे पैसे के लिए ऑर्गेनाइजेशन का ग्रो करना भी जरूरी है। तो ऐसे में एम्प्लॉई को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और साथ के साथ उनके जो अधिकार हैं उनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो जब इन दोनों चीजों में आप बैलेंस बना लेंगे ना, तो आप ना सिर्फ खुशी से नौकरी करेंगे, एनर्जी से नौकरी करेंगे, लेकिन ना सिर्फ आप ग्रो करेंगे, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी ग्रो करने देंगे। तहे दिल से धन्यवाद डॉक्टर खुशबू, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहेंगे रेडियो मधुबन 107.8 FM के साथ। मैं करूंगी आपसे मुलाकात अगले हफ्ते प्रोग्राम साथी में, लेकिन तब तक के लिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। फील गुड, फील लाइफ।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रोग्राम ये मेरी लाइफ में, मैं हूँ प्रियंका आपके साथ। हर के प्रोग्राम ये मेरी लाइफ शुरू हो गया है, जहाँ आपके साथ मैं पूरे दो घंटे के लिए होती हूँ। जी हाँ, ये वक्त होता है 1 बजे से 3 बजे तक का, जब आपके पास होती हूँ, जहाँ आपसे ढेर सारी बातें करती हूँ, आपको गाने सुनाती हूँ, उसी के साथ ही आपके प्यारे प्यारे से मैसेज होते हैं। तो बस आप यूँ ही अपना प्यार अपनापन हम तक पहुँचाते रहें और मैसेज के जरिए से ढेर सारी बातें हमसे करते रहें। हमारा नंबर है 8010781078। और साथ के साथ क्या हाल चाल, जी हाँ कैसे हैं आप मुझे बताइए। और इसी के साथ कोई गाना आपको इंजॉय करना है तो आप मुझे जल्दी से मैसेज कर दीजिए। और मेरे बारे में जानना चाह रहे हैं तो मैं बहुत अच्छी हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ, स्टूडियो में आती हूँ, बातें करती हूँ तो और अच्छी हो जाती हूँ। और ख़ास तौर पर जब आपसे बात करते करते आपको 90s के गाने सुनाती हूँ तो मैं क्या ही बताऊं कि मैं कितनी अच्छी होती हूँ। जी हाँ, क्योंकि जो 90s का दौर है ना, ये इतना खूबसूरत दौर, जब उस दौर की फिल्मों की बात करें या हम म्यूज़िक डायरेक्टर की बात करें या लिरिसिस्ट की बात करें या फिर मतलब हर एक एक चीज़, अगर आप फिल्म की गानों की उठा करके देखें तो हर एक एक चीज़ में बहुत ही गजब, जी हाँ वो गजब की चीज़ है। तो 90s का दौर इसलिए भी सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। जब सिंगर्स की बात करें तो अलका याग्निक, उदित नारायण, कुमार सानू, अभिजीत भट्टाचार्य और विनोद राठौर और SP बाला सुब्रमण्यम, कविता कृष्णमूर्ति जैसे ऐसे सिंगर्स जिन्होंने अपनी आवाज़ से सबके दिलों में एक खास जगह बनाई। और उसी के साथ ही अगर हम कलाकारों की बात करें तो एक से बढ़कर एक कलाकार, फिर वो चाहे सलमान खान, शाहरुख खान, काजोल, माधुरी दीक्षित, है ना, ये सभी जो कलाकार हैं जिन्होंने एक अलग ही छाप छोड़ी। तो इसलिए भी 90s का जो 90 का दौर है वो खूबसूरत कहा जाता है। तो चलिए गाने आपको मैं सुनाती हूँ और आज के प्रोग्राम में भी मैं ढेर सारे प्यारे प्यारे से गाने आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। और आज के प्रोग्राम में क्या है खास, यानी आप लोगों के लिए आज के प्रोग्राम में क्या है, ये भी आपको मैं ज़रूर बताऊँगी। तो एक गाने से इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ।

0: Din tana nadir da tanum tana dere nadin tana nadir da tanum tana dere nadin tana nadir da tanum tana dere nadin tana nadir da tanum tana dere nadin tana nadir da tanum da da da.
1: मैं हूं प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव कृष्ण 107.8 एफएम पर और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ. और ये मेरी लाइफ में अब वक्त है आपको बताने का कि आज के प्रोग्राम में मैं आप लोगों के लिए क्या लाई हूं. तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे हैक्स जो हमारे काम को, हमारी लाइफ को ईजी बनाएंगे. जी हाँ, कुछ ऐसे ही घर में काम आने वाले आसान जो हैक्स होते हैं, जो DIY हैक्स होते हैं, वो मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगी. और इसी के साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे मनोज सैनी, जो कि एग्रीकल्चर कंसल्टेंट है और प्लांट्स के बारे में बताते हैं, प्लांट्स की जो क्वालिटीज हैं उसके बारे में बात करते हैं. और इसी के साथ ही कई सारी बातें और कुछ सवाल होते हैं जो हम इनसे करते हैं. तो आज के प्रोग्राम में ये सारी बातें होने वाली है. तो आपका कोई प्रश्न है या कोई बात आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8010781078. तो चलिए कुछ ऐसे ही DIY हैक्स आपके साथ में शेयर करूंगी जो कि हमारे काम को इजी बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है. तो आज जो मैं हैक्स लेकर आई हूँ, हो सकता है आपके वो काम आए और उसी के साथ ही आप अपने अपने काम को, अपनी जो लाइफ है उसको ईजी कर सकते हैं, जो कि आज के टाइम पे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं हम अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि चलिए कुछ ऐसे हैक्स हमारे पास में हैं जो वाकई हमें हमारी चीज़ों को आसान बना देते हैं. तो चलिए बात होगी इस पर. रेडियो मानव रिश्ना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम पे मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ.
2: ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन.
3: गुरुदेव, यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए.
4: हाँ गुरुदेव.

इस गाने को आपने सुना रेडियो मानवप्रश्न 107.8 एफएम पर और मैं हूँ प्रांका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और मैं आपको चलिए बताती हूँ कुछ ऐसे हैक्स जो बड़े ही कमाल के हैं। जी हाँ, देखिए कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि जो हमारा पूरा जीवन है वो बीते जा रहा है, जो हमारी लाइफ है वो इतनी जल्दी फास्ट फास्ट भाग रही है ना कि ऐसा लगता है कि कैसे हमारे इतने घंटे बीत गए, कैसे ये दिन बीत गया पता ही नहीं चलता है, सुबह से शाम कब हो जाए मालूम ही नहीं चलता। और जब से हम और ज़्यादा बिजी, वो एक वक्त आता है ना जैसे हम जब शादी नहीं हुई होती, शादी से पहले वाला जो टाइम होता है वो ऐसा होता है जब हमें बस अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी चीज़ों को करना है। लेकिन शादी होने के बाद ये एक जिम्मेदारी जो है जो और ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि जो हमारे पास शादी से पहले जिम्मेदारियाँ होती हैं शादी के बाद और ज़्यादा बढ़ जाती है। बच्चों की देखभाल, घर की देखभाल, फिर ऊपर से वो बाहर का काम करना, घर संभालना है ना, और बहुत अच्छे तरीके से घर संभालना, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं काफ़ी बर्डन पैदा करती है। कई बार ऐसा होता है कि अपने पास टाइम ही नहीं होता है और हमें सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना है, घर भी साफ़ सुथरा रखना है, हर एक चीज़ जैसे होनी चाहिए वैसे हमें रखनी है। तो ऐसे में या तो हम अपना जो बचा कुचा समय होता है जो बाकी चीज़ों को देते हैं और अपने लिए समय रह जाता है, या फिर अपने आप को समय देने के लिए घर जैसा हम चाहते हैं वैसा पर्टिकुलर नहीं हो पाता है। तो देखिए कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ चीज़ें छूट ही जाती हैं। तो मैं तो आपसे एक ही चीज़ कहूँगी कि सारी चीज़ें ठीक है लेकिन अपने लिए भी वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने लिए वक्त नहीं निकलेगा तो एक वक्त ऐसा आएगा जब हम सोचेंगे कि काश अगर हमने अपने लिए वक्त निकाला होता तो आज जो हम इतने बीमार हैं, आज जो हम इतने कमज़ोर हैं, आज जो हमारी स्थिति है वो काश नहीं होती। इसलिए सब अगर फ्यूचर में हेल्दी रहना चाहते हैं, अपने आप को फ्यूचर में अच्छा देखना चाहते हैं तो आज ही से इसकी तैयारी शुरू कर दें। और कितना अच्छा हो ना कि जब हमारे पास वक्त भी हो और जैसा हम घर जाते हैं, जैसा हम चाहते हैं कि ऐसी हमारी जॉब हो, घर आए तो सारा काम भी हो जाए और समय भी बचे, तो कितना अच्छा लगता है ना ऐसे सोच के कि समय भी बच जाए और जैसा हम चाहते हैं लाइफ में वैसा भी हो। तो इसीलिए कुछ ऐसे हैक्स होते हैं जो वाकई बड़े कमाल के होते हैं और आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही हैक्स लेकर के आई हूँ। और किचन हैक्स पर मैं बात करूँगी क्योंकि जब छुट्टी होती है ना तो सबसे ज़्यादा किचन में ही टाइम लगता है। आप देखिए हर एक एक छोटी जो जगह है, हर छोटा एरिया है, हम अगर उसको गौर से देखें तो हर वो कोना, हर वो जगह सफाई मांगती है ना, और जो लोग साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखते हैं उनका अच्छा खासा समय जाता भी है। तो कुछ ऐसे में ऐसी चीज़ें जो आपके बड़ी काम आ सकती है, तो चलिए आपको मैं बताती हूँ। और ज़रा सिंक को देखिए जी, सिंक को मैं इसलिए कह रही हूँ देखने के लिए क्योंकि सिंक एक ऐसी जगह है जिसे जितना साफ रखा जाए उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि हमारे जो झूठे बर्तन होते हैं वो उसमें जाते हैं ना, तो बर्तनों की सफाई जो है अगर वो सिंक साफ रहेगा, बर्तन अच्छे से साफ होंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से क्लीन रहते हैं। और वहीं अगर हमने बर्तन साफ किया और सिंक को साफ नहीं किया तो सारे बैक्टीरिया जो है उसमें जमे रहते हैं, तो इसके लिए भी एक बढ़िया सा हैक है। जी हाँ, देखिए बेकिंग सोडा और विनेगर वाला जो बड़ा कॉमन हैक है जो आपको पता होगा इसके बारे में, लेकिन ये हैक जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ ये आपको शायद से ना पता हो। अब कॉफ़ी तो देखिए हर किसी के किचन में होती है ना, तो बस आपको कॉफ़ी का सहारा लेना है और अपने बंद पड़े सिंक को साफ करना है या बहुत टाइम से ख़राब हो रखा हो उसे साफ करना है, और सिंक में कुछ ना कुछ जाता रहता है जिससे वो क्लॉग होने लगता है, और कॉफ़ी से अपने क्लॉग सिंक को आप साफ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक चम्मच कॉफ़ी लेनी है और एक चम्मच डिश सोप लेना है और एक गिलास गर्म पानी लेना है। और अब इसका क्या करना है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले एक कटोरी में कॉफ़ी, डिश सोप और थोड़ा सा जो गर्म पानी है वो डालकर एक लिक्विड तैयार कर लें। अब इस लिक्विड को अपने बंद पड़े सिंक में आप अच्छे से डालें और कुछ 5 से 10 मिनट तक रहने दें और फिर गर्म पानी उसके ऊपर डाल दें। आप सिर्फ कॉफ़ी ग्राउंड्स और पानी डालकर भी सिंक को साफ कर सकते हैं और फिर देखिएगा कि आपका सिंक जो है वो कितना ज़्यादा क्लीन हो जाएगा और जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो खुल जाएंगे और ये बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा और फिर जो है आप इसको इस्तेमाल कीजिए। ये तरीका सबसे बेस्ट है। तो कैसा लगा ये तरीका, है ना कितना ज़बरदस्त। चलिए आपको कुछ और हैक्स बताऊंगी और साथ के साथ

0: मैं हूँ प्रियंका आपके साथ रेडियो मानवृष्ण 107.8 FM पर और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ। और ये मेरी लाइफ में मैं आपको बता रही हूँ कुछ ऐसे ही जबरदस्त हैक्स जो आपके काम को आसान कर देते हैं। जी हाँ, तो अब ऐसा ही एक और जबरदस्त हैक मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। और ये हैक मैं आपको बताऊँ उससे पहले आप चलिए आप ध्यान दीजिए अपनी मिक्सी की तरफ। जी हाँ, और मैं मिक्सी की तरफ ध्यान देने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब जो अगला हैक है वो मिक्सी से ही रिलेटेड है। जी हाँ, तो हमारा जो ब्लेंडर होता है वो अक्सर आपने देखा होगा कि जो उसके ब्लेड वाला एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा रहता है कि कुछ कुछ उसमें लगा हुआ होता है, क्योंकि वो इस तरीके से बना हुआ होता है कि उसके आसपास कुछ ना कुछ ऐसा जम जाता है जिसे हम अच्छे से साफ भी नहीं कर पाते हैं। जैसे हम स्मूदी बनाते हैं तो वो कई बार उसमें रह जाती है, या कई बार हम चटनी बनाते हैं तो चटनी जो है वो ब्लेड के आसपास लगी होती है। तो जितना साफ करने की कोशिश करें बट वो उतने अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाता, और ये अक्सर प्रॉब्लम देखने में आती है जिस वजह से हम अगर कुछ और बनाते हैं उसमें और दूध से रिलेटेड अगर कोई चीज़ हम बना रहे हैं तो या तो उसमें स्मेल आ जाती है या ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें जो हैं जो देखने को मिलती हैं, तो क्या अब इसका कोई उपाय है? जी हाँ, तो इसका उपाय बिल्कुल है, और इसी के साथ ही आप क्या कर सकते हैं, कैसे इसकी सफाई कर सकते हैं, चलिए वो मैं आपको बताती हूँ, जिससे आपके जो मिक्सी जार है, जो ब्लेंडर है, वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा। और फिर आप जैसे मान लीजिए आपने चटनी बनाई है, उसके बाद अगर आप उसे अच्छे से धोकर के अगर आप शेक बनाते हैं तो कोई स्मेल भी नहीं आएगी और वो खराब भी नहीं होगा, और किसी भी तरह से कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। आराम से आप इसमें किसी भी तरह की चीज है वो बना सकते हैं। तो चलिए इसकी सफाई का आपको मैं तरीका बताती हूँ। आपको लेना है 1 चम्मच डिश सोप और 1 चम्मच नींबू का रस लेना है और 1/2 कप गर्म पानी लेना है। अब आपको क्या करना है, अपने जार में डिश सोप, गर्म पानी और नींबू का रस 1 चम्मच लिया था वो डाल दें। इसके बाद जार का ढक्कन आप लगाएं अच्छे से और करीबन 1 मिनट तक इसे अच्छे से चलाएं। जी हाँ, अब 1 मिनट बाद आप जार को खंगाल लें, अच्छे से धो लें। अब ना आपको स्क्रब से इसे घिसना पड़ेगा, ना ही बदबू आएगी, और ना ही आपको ये दिक्कत आएगी कि मेरा जार ख़राब हो गया है, भाई इसको कैसे साफ करो। तो अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, बल्कि आसानी से आपका जार पूरे तरीके से क्लीन हो जाएगा, उसके ब्लेड पूरे क्लीन हो जाएंगे और किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं आएगी। और अगर आपका जार थोड़ा पुराना है तो आप इसे इस तरीके से धो करके और अच्छे से धोइए, धोने के बाद में आप इसे धूप में रख दीजिए। तो कई बार ऐसा होता है कि जिनके प्लास्टिक के जार होते हैं उसमें स्मेल बैठ जाती है, तो आप अगर धूप में रखोगे तो वो स्मेल भी धीरे धीरे चली जाएगी। तो ये तरीका जो बहुत ही कहें कि आपके लिए आसान रहेगा, और आपको भी अगर किसी पहली चीज़ की स्मेल आपके दूसरे जो भी आप ब्लेंड कर रहे हैं उसमें आ जाती है, तो अब आपको वो दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आप जो भी बनाएं, फिर आप चाहे उसमें शेक बनाएं या जो भी बनाएं, वो बहुत ही बढ़िया बनने वाला है। तो चलिए अब इसी बात पर इंजॉय करते हैं अगला गाना, और अगला हैक आपको मैं बताऊंगी थोड़ी सी देर में। रेडियो मानवृष्ण 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ।
1: मैं जिंदगी

0: सुनार जी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइव रेडियो मानव वैष्णव 107.8 एफएम पर और मैं हूँ प्रांका आपके साथ. और आपके साथ मैं किचन हैक्स पर बात कर रही हूँ और आपका समय बचाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ. कुछ ऐसे बड़े चुनकर मैं हैक्स लेकर आती हूँ जो कि बड़ी ना कॉमन लाइफ में काम आने वाला है. आजकल होता क्या है, समय की कमी के कारण हम या तो अपनी हेल्थ पर ध्यान दे लें या अपने घर पर ध्यान दे लें, यानी किसी ना किसी चीज़ से अक्सर ऐसा होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना. और जो महिलाएं हैं ना वो अक्सर अपनी चीज़ों को इतना अच्छे से रखना चाहती हैं कि वो अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है. लेकिन अब आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा. आप अपना घर भी अच्छे से रखेंगे, आपकी लाइफ भी अच्छी चलेगी, आप समय भी बचा पाओगे और अपने ऊपर ध्यान भी दे पाओगे. जी हाँ, तो इसीलिए मैं कुछ ऐसे ज़बरदस्त हैक्स आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ. और मैं आपको बता रही हूँ किचन हैक्स जिस पर काफ़ी सारा टाइम जाता है. जी हाँ, किचन जिसने संभाली, मतलब हैट्स ऑफ है उन्हें, क्योंकि किचन का बहुत सारा काम होता है. अब ऐसे में छोटी मोटी सी जो चीज़ें होती हैं ना उस पर तो ध्यान ही नहीं जाता. तो अब जब समय बचेगा तो आप छोटी मोटी सी चीज़ों को देख भी पाओगे और अपना भी ध्यान रख पाओगे. तो चलिए अब आपको बताती हूँ किचन के वुडन कैबिनेट्स के बारे में. दरअसल होता क्या है कि कुछ ऐसे कैबिनेट्स या फिर घर पर कोई लकड़ी का फर्नीचर होता है जो लकड़ी से प्रॉपर बना हुआ है, हम उसे साफ करते करते अक्सर थक जाते हैं और जैसे ही पॉलिश धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है तो वो जो फर्नीचर है वो उस तरीके से वो खूबसूरत जैसे पहले अट्रैक्टिव दिखता था, खूबसूरत दिखता था, वो वैसा नहीं रह जाता क्योंकि जो पॉलिश है उसकी वो धीरे धीरे उतरने लगती है ना, तो उस पर शाइन नहीं आती. अब ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि हम महंगे महंगे जो पॉलिश होते हैं वो लेकर के आते हैं. लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एक आपके ही घर में पड़ी जो चीज़ है उससे आप अपने फर्नीचर को चमका सकते हैं? जी हाँ, हमारे घर पर ही वो चीज़ होती है और वो होता है एसेंशियल ऑयल. जी हाँ, जो कि ये वाला काम बहुत आसानी से करता है. जी हाँ, अब आप एसेंशियल ऑयल हैक की मदद से वुडन फर्नीचर को चमका सकते हैं. और इसके लिए आपको एक काम करना है, एक चम्मच लेमन या टी ट्री एसेंशियल ऑयल होता है जो आम घरों में होता, नहीं होता तो आप मंगा करके रख लीजिए, आपके भी काम आएगा. आपको ये लेना है, एक साफ कपड़ा लेना है और एक ब्लोटिंग पेपर लेना है. अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप वुडन जो फर्नीचर है उसके दाग आप साफ करें. इसके लिए एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें दाग पर आप लगाइए और 10 से 15 मिनट के लिए रखें और इसके बाद ब्लोटिंग पेपर से उसे साफ कर दें. अब एक बूंद ऑयल को कपड़े में लेकर पूरा फर्नीचर साफ कर दें. आप देखेंगे आपके कैबिनेट, आपके फर्नीचर, जो भी टेबल कुर्सी है वो सब जो है उसमें से दाग जा चुके हैं और वो शाइन करेंगे और आपको वही देखने में बड़ा मजा आएगा कि हुआ क्या, ऐसे काम. इतने सारे पैसे हम पॉलिश में लगाते हैं, वुडन पॉलिश में लगाते हैं ना, तो अब आप पैसे खर्च नहीं बल्कि सेव कर पाएंगे. जी हाँ, सिर्फ एक छोटी सी एसेंशियल ऑयल की शीशी से आप अपने फर्नीचर को आराम से साफ कर सकते हैं. तो ये हैक भी जो बड़े ही कमाल का और कई दिन तक आपका फर्नीचर ऐसे ही रहेगा, तो आप ये करके देखिएगा. तो चलिए इसी बात पर अगले हैक की तरफ हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले इंजॉय करते हैं अगला गाना. रेडियो मानव वैष्णव 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रांका आपके साथ.

गाने को आपने सुना रेडियो मानव प्रश्नाओ 107.8 एफएम पर। मैं हूं प्रियंका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और आज मैं आपको बता रही हूँ कुछ ऐसे हैक्स जो हमारे काम को आसान कर देते हैं। और चलिए अब आपको बताती हूँ एक ऐसा हैक जो कि मुझे लगता है कि हर कोई चाहता होगा, क्योंकि होता क्या है जब लाइट चली जाती है और इन्वर्टर भी नहीं होता, तो ऐसे में मोमबत्ती का हम सहारा लेते हैं ना, मोमबत्ती जगह जगह पर लगाता है कि रोशनी थोड़ी सी रहे। या कई बार ऐसा होता है कि लाइट ज़्यादा लंबे टाइम तक गई और इन्वर्टर का भी, क्योंकि अपना एक टाइम पीरियड होता है 8 घंटे 9 घंटे, मतलब ऐसे जितनी वो चार्जिंग ले पाता है उस हिसाब से चलता है, और उसके बाद वो भी फिर बंद हो जाता है। और फिर हमें याद आती है मोमबत्तियाँ। जी हाँ, तो आज भी, मतलब पहले के टाइम पर भी कैंडल्स का इस्तेमाल होता था, और आज भी लाइट चली जाए घरों में तो अक्सर कैंडल्स पाई जाती हैं कि कहीं लाइट चली जाए तो हम इसे ला सकते हैं। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब मोमबत्ती जला करके हम किसी फर्नीचर पर रख देते हैं। अब देखिए, कहीं ऐसे समतल जगह पे रखा तो ठीक है, लेकिन कहीं अगर ऐसे लकड़ी वाली जगह पे रखा तो जो मोम गिरती है और वो जम जाती है, और जमने के बाद में पहली बात तो निकलती नहीं, और अगर बड़ी मुश्किल से निकालते भी हैं तो वो एरिया बड़ा ड्राई हो जाता है, वो देखने में ही बड़ा अजीब सा लगता है। और ये अक्सर घरों में देखने को मिलता है कि फर्नीचर पे कहीं ऐसे मोम की वजह से ना वो फर्नीचर का कलर उड़ गया है, या फर्नीचर वो उस जगह से बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके फर्नीचर पर ऐसे जो मोम है वो बैठ गई और वो गंदा लगता है, उसे निकालने के लिए हम कई ऐसे पॉइंटेड चीज़ों से स्क्रैप करते हैं जो कि फर्नीचर को ख़राब करता है ना, तो कुछ ऐसा ही एक तरीक़ का जो मैं अभी आपसे शेयर करूँगी, और एक मतलब बर्फ़ से आपका काम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको 2 से 3 या 4 टुकड़े आपको बर्फ़ के लेने हैं, और एक प्लास्टिक बैग लेना है, एक साफ़ कपड़ा लेना है, और एक ड्रॉप एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल को तो आप अगर नहीं है तो घर में रख लीजिए, ये बड़े काम का होता है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले बर्फ़ के टुकड़े को प्लास्टिक बैग में आप रखिए और उसे मोम के ऊपर रखिए। अब ये क्या होगा कि जब वो मोम के कॉन्टेक्ट में आएगा तो मोम टाइट हो जाएगी, और इस वजह से जब आप मोम को ठंडी करोगे तो वो सख्त हो जाएगी और बड़ी ही आराम से निकल जाएगी। तो इसमें आपको कोई झंझट, कोई मेहनत करनी नहीं है, आपको सिर्फ बर्फ रखनी है उसके ऊपर, और इसके बाद देखेगा कि मोम जो है जिसने एकदम पकड़ा हुआ है आपके फर्नीचर को, वो बिल्कुल टाइट हो जाएगी, जम जाएगी और वहाँ से बड़ी आसानी से निकल जाएगी। अब आपको क्या करना है, क्योंकि मोम वहाँ से निकल चुका है तो गीली हुई जगह को पहले तो साफ करना है कपड़े से। अब उसके बाद लेना है एसेंशियल ऑयल और उसकी ड्रॉप आप कुछ उसमें डालिए और फर्नीचर को साफ कर दीजिए। बिल्कुल चकाचक फर्नीचर हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा, और यहाँ भी आपके पैसे बच जाएंगे। अक्सर हम अपने घरों में ना कोई ऐसी नोकीली चीज़ से, ऐसे जो पॉइंटेड चीज़ें होती है ना, उससे लेकर के ना मोम को निकालने की कोशिश करते हैं, उससे दो चीज़ें ख़राब होती है। पहले तो मोम जो है वो जल्दी से निकलती नहीं है, और दूसरा फर्नीचर पर जो निशान पड़ते हैं ना वो बहुत ही बुरे लगते हैं, और कहीं ना कहीं दुख भी लगता है कि अरे कैसे निशान पड़ गए, है ना। तो अब आपको दुख करने की ज़रूरत नहीं, बड़ी आसानी से मोम भी निकल जाएगा, और एसेंशियल ऑयल से आपने फर्नीचर को साफ कर दिया वो भी एकदम चकाचक। तो ये आप कीजिएगा, तो कुछ ऐसे हैक्स जो आज मैंने आपसे शेयर किए। चलिए इसी बात पर एंजॉय करते हैं अगला गाना, और आप हमारे साथ जुड़ेंगे मनोज सैनी जी जो कि एग्रीकल्चर कंसल्टेंट हैं और प्लांट्स के बारे में आपको बताएंगे। तो आपका कोई सवाल, कोई बात जो शेयर करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8010781078।

पुरस्रार चंदन का दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है। हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में।

जवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती थी, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?

एक दिन एक थका प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया। महुआ को देखते ही उस पे रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छटपटाती महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है।

0: साधु नेता।
1: इस क्या कहती हैं आप?
0: मैं सच कहती हूँ, तुम तो मेरे गुरु हो। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक अक्षर सिखाने वाला गुरु और एक राग सिखाने वाला।
1: आप शास्त्र पुराण भी जानती हैं? मैंने क्या सिखाया है आपको?
0: क्यों नहीं सिखाया ये गीत?

0: इस उठता तेज जहन, अब ये गीत हमसे नहीं गाया जाएगा।
1: क्यों?
0: इससे बड़ी आप कोई क्या गा सकता है? आपने तो जान डाल दिया इस गीत में।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं प्रांका आपके साथ हर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ। और इतनी सारी बातों के बीच अब एक बार फिर से वक्त हो चला है एक ऐसे टॉपिक का जिस टॉपिक का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं, और वो टॉपिक है हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ। जी हाँ, बहुत अच्छा लगता है देखकर जब लोग पर्यावरण की ओर ध्यान देते हैं, अपने घर के चारों ओर पेड़ लगाते हैं, और जिनके पास ज्यादा जगह नहीं है वो अपनी बालकनी को या अपने टेरेस को या किचन गार्डन है छोटा सा या कोई छोटा ऐसा गार्डन है जो आपके पास में है, आप उसको खूबसूरत बनाने के लिए हर वो चीज लगाते हैं जो दिखने में भी खूबसूरत है और हमारे हेल्थ के लिहाज से भी वो अच्छी है। तो इस पर और बहुत सारी हम आज बात करेंगे, और हमारे साथ स्टूडियो में है मनोज सैनी जी जो कि एग्रीकल्चर कंसल्टेंट है। सर, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद प्रियंका जी, आपने बहुत अच्छा एक टॉपिक लिया है और जो कि आज के लिए जरूरी भी है। सब लोग मेडिसिनल प्लांट्स और पर्यावरण के प्रति बहुत ध्यान रख रहे हैं, तो हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम
2: जी बिल्कुल, वाकई में एक बहुत बड़ा और एक बहुत प्यारा टॉपिक है। प्यारा इसलिए कि जिन लोगों को पेड़ पौधों से प्यार है उनके लिए तो एक बहुत अच्छी चीज़ जो मनोज जी बताएंगे, लेकिन वो जो इस पर काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल आज की इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मनोज जी पिछले कुछ समय से हमें मेडिसिनल प्लांट्स की वैल्यू बता रहे हैं, हमें वो प्लांट जो मेडिसिन का काम करते हैं और हमारे घर में होने चाहिए, और बहुत बेसिक प्लांट है जिनके बारे में बात हो रही है। तो इसी चर्चा को, इसी वार्तालाप को हम एक बार फिर से आगे बढ़ाएंगे, और बात होगी मेडिसिनल प्लांट्स की, जिसमें भाई कुछ नाम हैं प्लांट्स के जो मैं आपको बताना चाहूंगी। क्या आपने लट जीरा नाम सुना है प्लांट का? अगर नहीं सुना है तो आपने चिरचिटा तो जरूर सुना ही होगा। अगर ये भी नाम नहीं सुना है तो मनोज जी आपको बताएंगे कि ये पेड़ क्या होता है, कैसा दिखता है और इसकी विशेषताएं क्या है। इसी के साथ ही हम बात करेंगे कनेर की, और बेर की हम बात करेंगे, बेर के कितने सारे फायदे हैं और अमरूद तो वरदान है भाई। तो इन सारे प्लांट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मनोज जी, आप सभी लिसनर्स आपको सुन रहे हैं, सभी जो लोग हैं वो अच्छा लगता है जब सुनकर आपकी बातों के जवाब के जरिए से वो अपनी बातें भी हमसे शेयर करते हैं। तो सर, जितने भी लिसनर्स आपको सुन रहे हैं आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
3: मैं तो यही कहना चाहूँगा प्रियंका जी, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और उनकी जो भी औषधीय पेड़ हैं उनके गुणों के बारे में खुद तो जाने ही, अपने बच्चों को भी बताएं, और एक जो नॉलेज होती है वो अभी शुरू से ही अगर बच्चों को देंगे तो वो ये भविष्य में हम लोग इसकी ओर और अग्रसर हो जाएंगे, और हमें मालूम पड़ेगा, हम दवाइयों को अधिक एलोपैथिक दवाइयां लेने के उससे आयुर्वेद की तरफ भी हम जा सकते हैं और इनका उपयोग हम कर सकते हैं। तो चर्चा में हम बताते हैं सबसे पहले लटजीरा के बारे में।
2: जी
3: लटजीरा प्रियंका जी जो है इसको चिरचिटा कहते हैं, ये कई बीमारियों में इलाज में मदद करता है, दांतों की समस्याओं के लिए, त्वचा के रोगों के लिए, पाचन तंत्र की समस्याओं और घावों के इलाज के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। इसके क्या लाभ हैं? जैसे हम दांतों के लिए लटजीरा की जड़ से दातून करेंगे, जैसे हम नीम के दातून करते हैं उसी तरह से इसका उपयोग हम दातून करने के लिए भी कर सकते हैं। इससे पारिया और मसूरों की कमजोरी दूर होती है और मुंह की बदबू भी ठीक होती है। तो एक तो इनके दांतों के लिए फायदा ये है, त्वचा के लिए इसका ये बेनिफिट है कि इसके पत्तों को पीसकर हम फोड़े फुंसी जो होते हैं और जो भी चर्म रोग होते हैं इसमें भी लटजीरा बहुत सहायक होता है। और अगला इसका फायदा है कि पाचन तंत्र में भी लटजीरा के पत्तों का प्रियंका जी काढ़ा बनाकर ना, और ये जो अपच होती है, कब्ज जैसी समस्याएं होती हैं उसके लिए ये बहुत लाभकारी होता है। इसका घावों में भी प्रयोग करते हैं, लटजीरे की जड़ को तिल के तेल में पकाकर घाव पर लगाने से दर्द कम हो जाता है और घाव जल्दी ठीक हो जाते हैं। और इसका जैसे सर्दी खांसी में भी बहुत हम इसका उपयोग कर सकते हैं, इसके पत्तों का रस पीने से सर्दी और खांसी ठीक हो जाती है। तो आपने देखा कि इसके कितने जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं और ये किस तरह से काम आता है, मोटापा कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बीजों का सेवन करने से भूख कम लगती है और वजन कम करने में भी बहुत ये मदद करता है। तो गाँव में या किसान को जैसे सांपों वगैरह से भी दिक्कत होती है तो वो सांपों के जहर के लिए भी लटजीरे का उपयोग किया जा सकता है। और एक सूजन के लिए भी लटजीरे का उपयोग करने से ना सूजन कम हो जाती है और इसके बहुत ही मेडिसिनल लाभ हैं। दूसरा मैंने जैसे आपको बताया कि दातून के लिए हो गया, मुंह के छालों के लिए हो गया, चर्म रोगों के लिए हो गया, सर्दी खांसी के लिए और मोटापे के लिए भी इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: तो यानी काफी सारे फायदे हैं जो लट जीरा के हैं। अच्छा, इसका नाम जो है लट जीरा, क्या आप बता सकते हैं इसका नाम कैसे पड़ा?
3: नाम का तो ये जो आयुर्वेदिक बुकों में लिखा होता है, लटजीरा एक जड़ी बूटी है और ये जो नाम तो बोटैनिकल नाम है, जैसे अपामर्गा बोलते हैं इसे।
2: अच्छा।
3: वटामर्गा। और ये जो भी है इनके नाम वगैरह बोटैनिकल इस तरह से ही इस्तेमाल करते हैं।
2: अच्छा। और आम भाषा में इसे लटजीरा या चिरचिटा कहा जाता है ना? जी जी जी। तो इस प्लांट के बारे में और इसकी जो पूरी वैल्यू है वो हमें मनोज जी ने बताई है और अभी हम इनसे बात करेंगे कनेर प्लांट की। कनेर तो आपने देखा भी होगा और हो सकता है कि आपने आपके आसपास लगा हो, आपने घर में लगा रखा हो, लेकिन इसके फ़ायदे अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बताने वाले हैं कनेर के फ़ायदे। तो उससे पहले चलिए हम एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं प्रियंका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम।

इस गाने को आपने सुना रेडियो मानव रिश्ता 107.8 FM पर. मैं हूँ प्रियंका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ. और हमारे साथ में है मनोज सैनी जी जो कि एग्रीकल्चर कंसल्टेंट है और हम मेडिसिनल प्लांट के बारे में इनसे बात कर रहे हैं. जब भी हम इन प्लांट्स की यानी कि मेडिसिनल प्लांट्स की हम बात करते हैं तो वो प्लांट्स जिनके बारे में हमें नॉलेज होती है हम सिर्फ उन्हीं को लगाना अपने घर में पसंद करते हैं. लेकिन बहुत कुछ है जो हमारे आसपास होता है जिनके बहुत सारे फायदे होते हैं. सोचिए अगर उनका भी ज्ञान हमें हो जाए तो मुझे लगता है कि हमारी बालकनी में एक

0: एक और जगह बन जाएगी उन प्लांट्स को लगाने की, या फिर हमारे किचन गार्डन में बन सकती है, या कहीं भी आप जिस एरिया पे प्लांट लगाते हैं वहां पर एक अच्छी खासी जगह बन जाएगी। तो कुछ ऐसे ही प्लांट जिनको आप अपने घर में भी लगा सकते हैं, या बाहर कहीं ऐसे अच्छा स्पेस आपके पास में तो आप वहां भी इसको लगा सकते हैं। फल तो देता ही है लेकिन साथ के साथ इसके फायदे भी बहुत सारे हैं। चलिए अब बात करते हैं कनेर की। सर अब कनेर के बारे में आप इन्फॉर्मेशन दीजिए।
1: प्रियंका जी, कनेर को ओलेंडर भी कहते हैं, बोटानिकल
0: ओलेंडर
1: जी, और भारतीय भाषा में इसको करवीर भी कहते हैं।
0: अच्छा,
1: तो एक पेड़ के कई नाम होते हैं। एक बहुत ही सुंदर और औषधीय गुणों से भरपूर ये पौधा होता है। ये पाइल्स, जोड़ों के दर्द, पाचन समस्याओं, त्वचा रोगों और हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। तो देखिए आप इसकी कितनी मेडिसिनल वैल्यू है। लेकिन ये विषाक्त भी होता है, इसको सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए।
0: विषाक्त माने कड़वा?
1: विषाक्त मतलब कि इसके अंदर जहर,
0: जहर
1: जी, विषाक्त उसको कहते हैं। और कनेर के कई फायदे होते हैं, ये पाइल्स में इस्तेमाल करते हैं, जोड़ों के दर्द में, कनेर के पत्तों का लेप या काढ़ा जोड़ों के दर्द में राहत दिलाता है। पाचन संबंधी समस्याएं भी इससे दूर होती हैं, जैसे कनेर के फूल आपने देखे होंगे कब्ज में और पेट के कीड़ों को दूर करने में भी ये मदद करते हैं। इसका त्वचा रोग में भी इस्तेमाल हम करते हैं। कनेर के पत्तों का लेप बनाकर या छाल को खुजली और त्वचा रोगों में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। और जैसे आजकल हार्ट की बीमारी तो आप समझते हैं ज्यादातर बढ़ भी रही है, और हमारे खान पान और इस वजह से, तो ये उसके लिए भी स्वास्थ्य कनेर के पत्तों का काढ़ा हृदय संबंधी समस्याओं के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। तो लोग आजकल इसका इस्तेमाल करते हैं, लोगों को मालूम भी है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसका और इसके पत्तों का बहुत फायदा होता है, इसे हम मलेरिया में, बुखार में, सिर दर्द में और अन्य बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रियंका जी, मेरा यही रहता है कि भाई ठीक है, एक आयुर्वेद डॉक्टर या उसको कंसल्ट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इनकी मात्रा और किस तरह से लगाना और प्रॉपर डिटेल अगर होते हैं तो इसका बहुत ही फायदा होता है। और मैं साथ के साथ इसके कुछ नुकसान भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसको बहुत सेफ इस्तेमाल करना है, क्योंकि एक पेशेवर डॉक्टर की सलाह लेनी है इसके लिए। और कनेर के पत्तों या फूलों का सेवन करने से पहले उनकी खुराक भी निश्चित करनी है। यदि आपको किसी समस्या का अनुभव होता है, आप हम इसको यूज करते हैं, और तो आप एक डॉक्टर का जरूर परामर्श लें। इसके नुकसान प्रियंका जी, जैसे मैं आपको बता रहा था कि कई भाग विषाक्त मतलब विष होता है, और इसका सेवन करने से स्वास्थ्य की भी कई समस्याएं आ सकती हैं। और जैसे त्वचा पे अगर हम लगाते हैं, हमारी त्वचा में उससे एलर्जी भी हो सकती है, तो उसको पहले ट्रायल बेसिस पे लगा के थोड़ा सा देखना चाहिए। और इसका कनेर का अर्क का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि ये थोड़ा विषाक्त होता है, तो इसलिए सलाह डॉक्टर की भी लेनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल, डॉक्टर की सलाह तो सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन कनेर के बारे में आपने कहा कि ये जहरीला होता है, तो अगर इसका इस्तेमाल करना है तो फिर कैसे कर सकता है?
1: जी, मैंने जैसे बताया कि इसकी मात्रा, जैसे कि हम जोड़ों के दर्द के लिए या पाचन संबंधी, तो इसका हम लेप जो होता है, इसका एक लेप तो हम लगाते ही हैं। और जैसे कि जोड़ों के दर्द के लिए, और काढ़ा मैंने बताया, काढ़ा तो आप जानते ही हैं किस तरह से वो लगा सकते हैं। और कनेर के जैसे पत्तों का लेप है, और दांत खुजली वगैरह में उसका वो रहता है, और काढ़ा हृदय संबंधी, उसके लिए हम काढ़ा बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: जी, तो कनेर के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपने सुनी, लेकिन मैं एक बार फिर से, जैसे कि सर ने भी कहा और मैं भी आपसे कहूँगी कि आप खुद के डॉक्टर ना बने। माना कि ये सब मेडिसिनल प्लांट्स हैं, लेकिन आप इसका इस्तेमाल डायरेक्टली करें तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ वो उसी रूप में इस्तेमाल की जाए। कई बार होता है कि कोई दवाई है तो उसमें उसके अर्क का इस्तेमाल हो रहा है, और कितनी मात्रा में हो रहा है, तो इस तरह से होता है। लेकिन हम खुद ही इसका इस्तेमाल करें, बजाय इसके जाने इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिए और हम यूँ इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये आप गलती ना कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं बेर की। जी हाँ, बेर तो आप सभी को पसंद ही होंगे, एक सीज़न होता है इसका जब ये आते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त। और बेर खाने से इसके कई लाभ हमें मिलते हैं, फिर चाहे पेट की बात हो या स्किन की बात हो या और भी बहुत सारे फ़ायदे जो हमें अक्सर बेर से मिलते हैं। लेकिन क्या सिर्फ जो इसके फ़ायदे हैं वो बेर तक ही सीमित है या इसका पूरा जो पेड़ है वही पूरा फ़ायदेमंद है? तो मनोज जी आप बताइए आप बेर के बारे में।
1: प्रियंका जी, आपने बेर का पेड़ देखा होगा कितना घना होता है, तो सबसे पहले तो आजकल की गर्मी में कितनी छाया मिलेगी, इतना ऑक्सीजन मिलेगा, और सबसे जो एक तो आपने खाए होंगे कितने अच्छे मीठे लगते हैं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: कुछ तो बड़े बेर होते हैं, कुछ जुजू बेर होते हैं जो छोटे होते हैं, लाल, वो अरावली की पहाड़ियों में छोटे कांटेदार होते हैं, स्वादिष्ट भी होते हैं और पाचन में भी बहुत सहायक होते हैं। और सबसे अधिक यही है कि भाई ठीक है, इसको लगाने के लिए या इसको बहुत कम देखभाल की आवश्यकता होती है, और ये घना होने के कारण बहुत छायादार होता है, कटीले तो होते हैं लेकिन स्वास्थ्य संबंधी भी, खाने से आपका पाचन में भी बहुत फर्क लगेगा, मीठा भी होगा और आपको प्रोटीन्स भी प्रोवाइड करेगा।
0: एक बात जो सबको ध्यान में रखनी है, हम जैसे कनेर की बात की जो कि थोड़ा सा जहरीला होता है, तो आप खुद के डॉक्टर ना बनिए, भले से मेडिसिनल प्लांट है लेकिन डॉक्टर की एडवाइस, एक आयुर्वेद डॉक्टर जो होता है उसकी एडवाइस बहुत ज़रूरी है और उसके बाद ही आप स्टेप लीजिएगा। चलिए अब सर बात कर लेते हैं अमरूद के पेड़ की। अमरूद तो देखिए फ़ायदेमंद होता ही है, इसमें विटामिन सी होता है और इसी के साथ ही हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन क्या इसके पत्ते भी उतने ही काम के होते हैं सर?
1: जी प्रियंका जी, अमरूद सभी जानते हैं, सभी ने देखा है, लेकिन आजकल इसकी मेडिसिनल वैल्यू तो है ही। आजकल अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आप एक साल में ही अमरूद अपने घर में उगा सकते हैं, छोटे गमलों में भी प्लांट्स में।
0: अच्छा, घर में उगाया जा सकता है?
1: हाँ, और वो स्पेशल वैरायटीज हैं। आजकल हिंदुस्तान में भी बहुत टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कि भाई आप एक साल में सीधा फ्रूट ले सकते हैं अपने घर बालकोनी में, छत में। ये ऐसा प्लांट है जो आप घर, अपने घर के ताजे अमरूद साल में ही आप खा सकते हैं। आपने थाई अमरूद, थाई पिंक अमरूद के बारे में भी देखा होगा कितना बड़ा होता है, और वो हम सिर्फ मात्र 2 साल के अंदर हम उससे प्रोडक्शन ले सकते हैं, अपने घर में भी लगा सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और भारत पूसा की भी कई वैरायटी हैं जो कि बहुत जल्दी और एक बहुत, आपने देखे होंगे आजकल साइज भी बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं अमरूद, जो देसी अमरूद होते हैं उनके साइज थोड़े छोटे होते हैं और एक एक किलो और उससे भी अधिक वाला, मीठे भी होते हैं और पाचन में तो वो मदद करते ही करते हैं। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया हो गई है कि हमें काफ़ी टाइम इंतज़ार नहीं करना, जैसे हमने देसी पेड़ लगाया तो हमें कम से कम 4-5 साल इंतज़ार करना पड़ता है, आजकल ग्राफ्टिंग की वजह से हम 1 साल में 2 साल में अपने घर पे भी, अगर गार्डन है तो हम गार्डन में भी उगा सकते हैं, और अगर आप गमले में या एक बड़े ड्रम में अपने छत पे रखना चाहते हैं तो अपने घर के अमरूद, थाई पिंक भी और हिसार की और पूसा की कई वैरायटीज हैं, वो अपने घर में लगा सकते हैं और अपने घर का फ्रेश अमरूद खा सकते हैं।
0: इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक चीज के गमलों में आपने बोला कि उगा सकते हैं, बट गमले का साइज भी डिपेंड करता है।
1: हाँ जी, जैसे मैंने बताया ये ग्राफ्टिंग वैरायटी हैं और ये छोटे गमले में भी तो हो जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्शन लेनी है तो कम से कम आप 20 इंची से बड़ा, या आप एक जैसे पानी के ड्रम होते हैं बड़े वाले, अगर आपको छत पे रखने की व्यवस्था है तो उसमें रख सकते हैं, अदरवाइज 20 इंची 24 इंची और ग्रो बैग में भी आप उसको लगा सकते हैं, ना उठाने की दिक्कत है और ये ट्रस्टेड है और हमने खूब इस पे काम किया हुआ है, और मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि हमने गार्डन में लगाए हैं और कुछ प्लांट्स मेरे पास हैं भी जो मैं शो भी कर सकता हूँ कि इस तरह से आप अपने घर में लगा सकते हैं और अपने घर का गार्डन भी छत पे बना सकते
0: जी। और ये किस तरह का प्लांट होता है, क्या नाम बताया था आपने?
1: थाई पिंक
0: अमरूद
1: जी।
0: तो अगर आप, ये नर्सरी में मिल जाते हैं?
1: जी हाँ, इजीली मिल जाते हैं, आजकल ग्राफ्टेड प्लांट हैं, और आजकल प्रियंका जी मैं बताना चाहूंगा, बहुत अधिक जगह नहीं चाहिए, 100 या 200 गज का आपके घर में प्लॉट भी है तो आप बहुत सारे बहुत अधिक पौधे लगा सकते हैं, फ्रूट वाले भी और मेडिसिनल प्लांट भी, जिससे कि आपका घर तो शोभामान रहेगा, आपको ऑक्सीजन भी मिलेगी और एक अपने घर के कोई भी ऐसे फ्रूट्स हैं वो अपने घर के ही आप खा सकते हैं।
0: एक अलग एक्साइटमेंट होती है घर के फ्रूट्स की, ना बात ही अपनी होती है, फिर चाहे बाहर के जैसे फ्रूट्स होते हैं वैसा ही टेस्ट हो, लेकिन वो अपनी मेहनत होती है तो ज़्यादा स्वाद भी आता है और अपने ऊपर प्राउड भी महसूस होता है। तो बहुत बढ़िया, तो आप भी ये थाई पिंक अमरूद अगर खाना चाहते हैं, वो भी घर के पके हुए घर में लगे हुए अमरूदों का मज़ा आप लेना चाहते हैं, तो आप नर्सरी जाकर इसे आराम से ला सकते हैं। और जिस तरीके से मनोज जी ने बताया कि कितने साइज़ के गमले लेने हैं उसमें आपको ग्रो करना है, तो ये एक इसलिए क्योंकि हमें कई बार नहीं पता होता कि कितने गमले में उगाना, हम छोटे छोटे से पॉट्स में उगा देते हैं जिस वजह से दिक्कत हो सकती है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच मनोज जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी सारी बातें की, थैंक यू सो मच
1: जी। प्रियंका जी बहुत बहुत धन्यवाद।

इस गाने को आपने सुना रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. मैं हूँ प्रियंका और अब मेरे यानी प्रियंका के चलने का हो गया है वक्त. तो आज का सफर यहीं तक. प्रोग्राम कैसा लगा हमें आप जरूर बताइएगा और बताने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं. हमारा नंबर है 8010781078. तो चलिए मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी. और जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर जाकर के रेडियो मानव रचना का ऐप डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद जाइए पॉडकास्ट सेक्शन में और वहां जाकर के एंजॉय कीजिए सभी प्रोग्राम्स. जी हाँ, तो ये जो रेडियो है अब आप आई रेडियो के माध्यम से रेडियो मानव रचना को आप कहीं भी सुन सकते हैं और आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए आप वहां पर रेडियो मानव रचना के ऐप को एंजॉय कर सकते हैं. तो आप बेझिझक कहीं भी जाइए और एंजॉय कीजिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. तो चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए बाकी आगे आने वाले प्रोग्राम्स को एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत. बाय.

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, इन दिनों बात हो रही है आपसे लेखक सराहपा के बारे में। पिछले एपिसोड में बहुत सारी बातें मैंने आपसे की थी सराहपा की जिंदगी के बारे में, उनके लेखन के बारे में। दोस्तों,

सराबा के युग में दर्शन की अनेक उलझी हुई गुत्थियां देखने को मिलती हैं। उनकी बारीकियों को जानना बहुत मुश्किल है। जीवन, जगत, माया, शरीर, तंत्र मंत्र, आचार विचार, मुक्ति, गुरु, सब के बारे में अनेक आचार्यों के अलग अलग मत मिलते हैं। उन सब का अति संक्षिप्त परिचय देना भी यहाँ संभव नहीं है, इसलिए उन सब को स्थगित करते हुए दोहा कोश में कही गई सराबा की उक्तियों का सार संक्षेप करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब बात आती है सराबा के दर्शन की, तो उनका दर्शन क्या था उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। लेकिन फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, सरहपा परमात्मा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, इसलिए वो आत्मा में भी विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि परम तत्व ना एक है और ना दो है, ना अद्वैत है ना द्वैत है, ना विशिष्टाद्वैत है, वो अनेक भी नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि इस परम पद का ना आदि है और ना अंत है, ना इसका कोई मध्य है, ना ये उत्पन्न होता है और ना ही निर्वाण होता है, ये किसी दूसरे का नहीं है तो अपना भी नहीं है, वो तो बस है। इस तरह सरहपा इसको समझाने का प्रयास करते हैं। ऐसा लगता है कि जो समझाना चाह रहे हैं उसे व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, वो अभिव्यक्ति से परे हैं। सिद्धों के रहस्यवाद के मूल में उनकी परम तत्व संबंधी अवधारणा है। लेकिन दोस्तों, सरहपा से जुड़ी और भी बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं, आपके साथ साझा करता रहूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फहीम के साथ यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, सराहपा कहते हैं कि आत्मा शून्य है और संसार भी शून्य है। शून्य और निरंजन ही परम पद है, इसमें पाप और पुण्य कुछ नहीं होता। परम पद का ज्ञान प्राप्त होने पर ही आपको सिद्धि मिल सकती है। परम पद महासुख की एक अवस्था का नाम है। ये महासुख देता कौन है? इस पर सराहपा ने कहा कि महामुद्रा ही महासुख दिलाती है। इसको प्राप्त करने के लिए पवित्र या अपवित्र का विचार नहीं करना चाहिए। महासुख की प्राप्ति के पश्चात चित्त का भटकना बंद हो जाता है। महामुद्रा का कोई विकल्प नहीं है, ऐसा कहना है लेखक सराहपा का। लेकिन सराहपा के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, आपको बताऊंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, सराफा कहते हैं कि चित्त एक मूल बीज है, इसलिए चित्त देवता है। मन और चित्त अलग अलग होता है। मन चंचल होता है परंतु चित्त स्थिर होता है। इसलिए सराफा कहते हैं कि चित्त से चिंता को निकाल देना चाहिए। इस चित्त को जबरदस्ती बांधना गलत है और बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ना भी गलत है। चित्त की इस सहज अवस्था को ना तो गुरु बता सकता है और ना शिष्य समझ सकता है। ये सहज अमृत के समान है, जहां इंद्रियां समाहित हो जाती हैं, विषय की इच्छा भी नष्ट हो जाती है, चित्त का अंतर भी मिट जाता है। वहां जो आनंद प्राप्त होता है वो ही महासुख है। इसलिए सराफा कहते हैं कि घर में रहिए, पत्नी के साथ रहिए, साधु वेश और ध्यान सब छोड़ दीजिए, बालक की तरह रहिए। बच्चा जैसा चाहता है वैसा ही करता है। अगर चित्त के विपरीत काम करोगे तो दुख जरूर मिलेगा। इसलिए नाचो, गाओ और अच्छी तरह विलास करो, उसी में योग की उपलब्धि होगी। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, सरापा कहते हैं कि घर में रहिए, पत्नी के साथ रहिए, साधु वेश और ध्यान सब छोड़ दीजिए, बालक की तरह रहिए। बच्चा जैसा चाहता है वैसा ही करता है। अगर चित्त के विपरीत कोई काम किया तो दुख जरूर मिलेगा, इसलिए नाचो गाओ और अच्छी तरह जिंदगी को गुजारो, उसी में योग की उपलब्धि होगी। दोस्तों, इस प्रकरण में सरहपा उपदेश देते हैं कि मनुष्य को सहज जीवन जीना चाहिए। कठोर नियमों में मन और शरीर को बांधकर जीवन को कष्टमय नहीं बनाना चाहिए। जो चित्त को अच्छा लगे वही कीजिए। चित्त तो राजा है, राजा उसका स्वभाव स्वच्छंद है, यही मनुष्य का मुक्ति दाता है। सरहपा भोग का विरोध नहीं करते, वो कहते हैं कि निष्काम भाव से भोग करना चाहिए। इस प्रकरण में वो कहते हैं कि यदि आपने मन के विपरीत कार्य किया तो आप व्यवस्थित नहीं रह पाएंगे, इसलिए भोग करें परंतु उससे मुक्त हो जाएं। ये सहज साधना है। इस तरह की बात समझाते हैं अपने शब्दों के माध्यम से सरहपा। सरहपा के बारे में बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, सराफा का मानना है अगर आपने मन के विपरीत कोई भी काम किया तो आप व्यवस्थित नहीं रह पाएंगे, इसलिए भोग करें परंतु उससे मुक्त हो जाएं। ये सहज साधना है। इस तरह सराफा अंत में जीवन की स्वाभाविक प्रकृति का उपदेश देते हैं। वो विवाह का विरोध नहीं करते। आप विवाहित रहकर सहज मार्ग अपना सकते हैं। सहज मार्ग गुरु के ज्ञान से दिखाई देता है। चित्त की अपनी प्रकृति से सहज ही प्राप्त हो जाता है और ये सब काया के भीतर विद्यमान है। दोस्तों, सराफा भारत के 84 सिद्धों में से एक सिद्ध हैं। वो ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मणों की तत्कालीन व्यवस्था को अंगीकार नहीं करते थे। वो ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का खंडन करते थे, खंडन। साथ ही जाति भेद का भी समर्थन नहीं करते। दार्शनिक रूप में वो मनुष्य को सहज जीवन जीने के लिए प्रेरित किया करते थे और कर्मकांड का पूरी तरह से खंडन किया करते थे। अब इसी बात के साथ आपका दोस्त फहीम भी आपसे आज्ञा चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई, किसान का बेटा हूँ, ये गर्व से कहता हूँ।
1: किसान भाइयों, आज आपसे बात हो रही है फसल के भंडारण की, यानी कटाई के बाद फसल का भंडारण कैसे किया जाए। तो जो बातें आपके साथ में साझा करूंगा, उनको जरा ध्यान से सुनना। भाई देखिए, फसल की कटाई के बाद आप लोगों के द्वारा कुछ फसल को बीज के लिए और कुछ फसल को अपने उपयोग के लिए स्टोर कर लिया जाता है। किसान भाइयों, आपके द्वारा जो फसल अपने लिए रखी जाती है, उसका भंडारण वो ड्रम या अन्य किसी बंद मुंह वाले कंटेनर में किया जाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर उसका उपभोग किया जा सके। लेकिन फसल का भंडारण करते समय बरती जाने वाली कुछ सावधानियां भी हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना है। जैसे बीज के लिए जो भंडारण किया जाता है, उसमें कीटनाशक का उपयोग किया जाता है, ताकि उसे आगे की बुवाई के लिए सुरक्षित रखा जा सके। ज्यादातर किसानों द्वारा फसल का भंडारण जूट के थैलों में या फिर बोरियों में किया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी जरूरी बातें हैं आपके भंडारण से संबंधित, वो सारी बातें करूंगा। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते। किसान भाइयों, आज बात हो रही है फसल के भंडारण के बारे में। भंडारण से पहले फसल को सूरज की रोशनी में सुखाना बहुत जरूरी होता है। फसल की कटाई का जो काम है ना, वो ज्यादातर मशीनों के जरिए किया जाता है, जिसकी वजह से फसल में नमी होती है। अगर इसी तरह से फसल का भंडारण किसान भाइयों के द्वारा किया जाता है तो फसल के खराब होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इसीलिए फसल की कटाई के बाद कुछ दिनों के लिए फसल को सूरज की रोशनी में सूखने दें, ताकि उसमें नमी ना रहे, और इसी के साथ साथ अनाज को अच्छे से साफ भी कर लेना चाहिए। होता क्या है, फसल की कटाई के वक्त बहुत सारे जो दाने होते हैं ना, वो टूट जाते हैं, या उसमें धूल मिट्टी हो सकती है, और जो कुछ तिनके हैं जिनकी जरूरत नहीं है, वो तिनके भी आ जाते हैं, जो कि फसल की रौनक को कम कर देते हैं। फसल को स्टोर करने से पहले उसकी अच्छे से सफाई जरूर करनी चाहिए, ताकि फसल को फफूंद जैसी समस्याओं से बचाया जा सके, क्योंकि इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, जब भी फसल को लगती हैं, आपकी फसल बर्बाद हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों, इन सारी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। करेंगे कुछ और भी बातें करेंगे, जैसे फसल का स्टॉक कैसे करना चाहिए, इन सारी बातों को आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। किसान भाइयों, बात हो रही है आज फसल के भंडारण के बारे में। आपकी फसल

दोस्तों, एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। किसान भाइयों, बात हो रही है भंडारण के बारे में, और जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, फसल का स्टॉक बोरों में किया जाता है। तो नीचे फर्श पर लकड़ी के तख्ते बिछा दें या फिर चटाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि फसल सुरक्षित रह सके। और वो जो आपकी जगह है जहां पर आप भंडारण करेंगे, उस जगह को हम कह सकते हैं भंडार गृह। भंडार गृह को मेलाथियान के घोल से अच्छे से धो लेना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखना है। फसल का भंडारण करते समय ये बात जरूर ध्यान रखें, फसल को साफ जगह पर ही स्टोर करें। और जो आपका भंडार गृह है वो जितना साफ होगा उतनी ही आपकी फसल सुरक्षित होगी। इसलिए सफाई का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसके अलावा किसान भाइयों, फसल का स्टॉक करना बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। फसलों को सुरक्षित भंडारण के लिए बहुत सी वैज्ञानिक तकनीकें अपनाई जाती हैं। इन तकनीकों की वजह से फसल में जो फफूंद लग जाती है, इस फफूंद से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। लेकिन कभी कभी लोगों को भंडारण की पूरी तरह से जानकारी ना होने की वजह से आधी से ज्यादा फसल का नुकसान हो जाता है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आपका किसी भी तरह का नुकसान हो किसान भाइयों, इसीलिए हर बार मैं आपसे जो बात करता हूँ आपके फायदे की करता हूँ। वैसे तो आपको बातें मालूम है, लेकिन समय बदला है, बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं जो शायद आप तक नहीं पहुँच पाई हैं। वो सारी बातें आप तक पहुँचाता हूँ जिससे कि आपकी फसल बेहतर से बेहतर हो सके और आपको फायदा ज्यादा से ज्यादा मिल सके। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप फहीम के साथ और सुन रहे हैं अन्नदाता।

दोस्तों, छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की। किसान भाइयों, भंडारण के बारे में बहुत सारी बातें आपसे मैंने की हैं, लेकिन साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, खास तौर से ये बताना चाहता हूं कि फसल को जितना हो सके नमी से दूर रखना, कीड़ों से दूर रखना, चूहों से दूर रखना। फसल में अगर ज्यादा नमी होती है ना, तो ये सूक्ष्म जीवों के विकास को बढ़ावा देती है। इसी वजह से भंडारण करना बहुत जरूरी बताया जाता है, ताकि फसल को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। फसलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए भंडारण किया जाता है। छोटे किसानों की बात करें तो छोटे किसानों के द्वारा सिर्फ अपने उपभोग के लिए फसल का उत्पादन किया जाता है, लेकिन बड़े पैमाने पर फसल का उत्पादन भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए भंडारण किया जाता है। फसलों का भंडारण ज्यादातर प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भी किया जाता है, जैसे बाढ़ आना, सूखा पड़ना। इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उस समय में ये भंडारण हमारे बहुत काम आता है। फसलों के भंडारण के लिए सही स्थान की व्यवस्था होनी चाहिए। भंडारण करते समय ये ध्यान रहे, फसल में नमी बिल्कुल ना हो। नमी की वजह से पूरी फसल खराब हो सकती है। मैं बार बार आपको नमी के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि नमी आपकी फसल के लिए एक तरह से जहर है। आपसे कुछ और भी बातें करूंगा, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: एक दरिया मोड़ा उसने, एक समंदर बांध रखा है, किसान के एक टूटे हल ने पूरे देश को संभाल रखा है।
1: देखिए किसान भाइयों, बहुत सारी बातें आपसे कर ली हैं भंडारण के बारे में, और भंडारण का काम इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए कुछ बातें होती हैं ज़रूरी, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब भाई आपको सावधानी बरतनी है, जितनी सावधानी बरतेंगे आपकी फसल जो आप स्टोर करना चाहते हैं, जिसका भंडारण करना चाहते हैं, वो लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी, और जब भी आपको लगे कि इस फसल का हमें उपयोग करना है तो आप उपयोग कर सकते हैं, और बिना किसी खराबी के, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी रोग के, बिना किसी कीट के, यानी कि आपकी सावधानी से आपकी फसल बिल्कुल सुरक्षित रहेगी और आपको इसका दाम भी अच्छा मिलेगा। दाम अच्छा मिलेगा तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आएगी। अब इसी मुस्कान के साथ आपका दोस्त फहीम आपसे आज्ञा चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं, और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलते चलते सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम सलाम।

0: हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आदित्य सागर आ चुका हूँ लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो 107.8 के साथ, फील गुड फील लाइव। हर बार की तरह यही कहूंगा, लेकर के आया हूँ एक और यूनिक शो, एक और यूनिक केस स्टडी आपके लिए, एक और नई कंपनी आपके लिए। बात करेंगे, इंडस्ट्री को आपको समझाएंगे, कंपनी को बताएंगे, फाउंडर्स के बारे में बताएंगे, की ड्राइवर्स आपको बताएंगे, तमाम चीजें आपको बताएंगे जो आपकी हेल्प कर सकती हैं ये समझने में कि अगर अपना को स्टार्ट करना है तो कैसे किया जा सकता है। विल टॉक अबाउट इट, बट फिलहाल मेरा सलाम कबूल करिए, लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील लाइफ।
1: ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन।
2: गुरुदेव, यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए।
1: हाँ गुरुदेव। ना इज्जत की चिंता,

ये नकली माल बनाए, ऊपर अकेले भी अंदर नकली घी और जाए, टॉपलीन का बदल के नंबर टेरीलीन बनाए, या बेईमानी तेरा हाथ रात

राजा बन के हम सन्यासी काम है चलते रहना, मौका है वीर बना लो हाथ न मलते रहना, हाथ की चूड़ी पांव की पायल या हो गले का कहना।

पधारे, चिंता चरस चिदम और चेले साथ साथ हैं सारे। टिकटे लेकर भी गाड़ी में खड़े शरीफ बेचारे, और ये देखो भगवान के चमके पड़े हैं पाप सारे।

उम्मीद कर रहा हूँ गाने पसंद आए। अब इसी के साथ अपने शो को हम आगे लेकर चलेंगे, मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी इंडस्ट्री है वो है फिनटेक। फिनटेक दो वर्ड से मिलाकर के एक वर्ड बना है, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। अब फिनटेक जो इंडस्ट्री है वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आप मोटे मोटे तौर पर ये लगा लीजिए कि एक अम्ब्रेला, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके नीचे बहुत सारी सब कैटेगरीज आती हैं, फिर उनमें कंपनीज जो हैं वो फॉल करती हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे। पेमेंट्स होते हैं, लैंडिंग होती है, इंश्योरेंस होता है, वो एक अलग वर्टिकल हो जाता है इंश्योर टेक नाम से, इन्वेस्टमेंट होती है जिसको हम वेल्थ टेक बुलाते हैं, बैंकिंग होती है, खासतौर पर नियो बैंकिंग जो हम बोल रहे हैं, एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो मोटा मोटा ओवरव्यू ये है कि एक अम्ब्रेला टर्म है फिनटेक, जिसमें काफी सारी चीजें फॉल करती हैं। उसमें भी आप ये कह सकते हैं कि सब इंडस्ट्रीज हैं। अगर 2025 के आंकड़े को देखें तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिनटेक इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए एंड यूके। ठीक है, जो इंडियन फिनटेक मार्केट है उसकी वैल्यू है समवेयर अराउंड 100 बिलियन यूएस डॉलर, और ये 2027 तक ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है 150 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच सकती है। जो इसका ग्रोथ रेट है ग्रोइंग एट अ सीएजीआर ऑफ 20%। जहां पर आप ये देख सकते हैं अच्छा खासा कि इंडिया में ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा फिनटेक स्टार्टअप्स एग्जिस्ट करते हैं, और जो अलग अलग सेगमेंट्स में डील करते हैं, पेमेंट्स में अलग होते हैं, इंश्योरेंस में अलग हैं, पर्सनल फाइनेंस में अलग हैं, लैंडिंग में अलग हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी, बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है, और इसमें आप किसी भी कंपनी को जानते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, गूगल पे इसमें फॉल करता है, पेटीएम इसमें फॉल करता है, और मतलब ये जो इंडिया में डील करते हैं, इनमें से कुछ कंपनीज इंडिया की नहीं है बट स्टिल इंडिया में ऑपरेट करते हैं, और हम डे टू डे लाइफ में इनको यूज भी करते हैं। एक्को जैसी कंपनीज इसमें फॉल करती हैं। ये सब कुछ फिनटेक का पार्ट है, यानी कि हमारी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है ये। तो आज हम इस इंडस्ट्री को समझेंगे, उसके बाद बताएंगे आज हम कंपनी कौन सी लेकर आए हैं आपके लिए। पर अभी फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बताएंगे ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में कि किन किन ड्राइवर्स के आधार पर या कौन कौन से वो की पॉइंट्स हैं जिनके बलबूते पर ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी बनी है, सो दैट आपकी हेल्प हो थोड़ी सी इंडस्ट्री को और अच्छे से समझने में और थोड़ा उसको डीकोड करने में। लेकिन फिलहाल मजा लें गानों का और जुड़े रहें हमारे साथ।

0: वेलकम बैक, मैं आरजे सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। यहां पर हम आज की जो इंडस्ट्री आपको समझा रहे हैं वो है फिनटेक, और इसमें हम बात करने वाले हैं ग्रोथ ड्राइवर्स की। तो पहला ग्रोथ ड्राइवर है यूपीआई, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आमतौर पर हम सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे हमें किराने का सामान खरीदना हो, सब्जी खरीदनी हो, या किसी मॉल में शॉपिंग करनी हो, यूपीआई हम लोग यूज करते हैं। और मुझे बेहद खुशी हो रही है बताते हुए कि भारत जो है वो मोस्ट सेलिब्रेटेड फिनटेक इनोवेशंस में कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड वाइड। एज ऑफ अप्रैल 2025 यूपीआई ने 12 बिलियन ट्रांजेक्शंस पर मंथ जो है हैंडल करी हैं, इनफैक्ट 12 बिलियन से भी ज्यादा। और इस ट्रांजेक्शन की अगर आप वैल्यू देखेंगे ना, इट इज मोर देन 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ से ज्यादा की ट्रांजेक्शन हमने खाली यूपीआई के थ्रू की है। यूपीआई जो है इंडिया से स्टार्ट हुआ, बट अभी काफी सारी कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया है। सिंगापुर ने अडॉप्ट किया है, यूएई ने अडॉप्ट किया है, फ्रांस ने जो है अडॉप्ट किया है, और ये भारत का जो डिजिटल फाइनेंस डिप्लोमेसी है उसको प्रमोट करता है। मतलब ग्लोबल लेवल पर एक ऐसी चीज जो बहुत काम की है, बहुत कारगर है, और इतना स्मूथली ट्रांजेक्शन हो जाती है, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और मल्टीपल कंट्रीज जो है वो इसको अडॉप्ट कर चुकी है अभी तक, और इसकी काफी तारीफ होती है। सो यूपीआई एक बहुत मेजर पॉइंट है, बहुत बड़ा की ड्राइवर है अगर हम ग्रोथ की बात करें। इनफैक्ट हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं वो तक यूपीआई यूज करते हैं, तो इसको डेफिनेटली हम कंसीडर करेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग, या जिसने सबसे ज्यादा पुश किया है इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में, इट इज यूपीआई। दूसरा फिर इसमें आता है गवर्नमेंट सपोर्ट। काफी सारे प्रोग्राम्स चलाए गए, लाइक डिजिटल इंडिया, जनधन योजना, आधार एंड इंडिया स्टैक। इन्होंने रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया। सरकार का भी बहुत अहम योगदान है इसमें, बहुत अहम रोल रहा है, बहुत भूमिका रही है, तभी जाकर ये सक्सेसफुल हो पाया है। इसी के साथ आरबीआई की तरफ से भी कुछ रेगुलेटरीज एंड पॉलिसीज जो है बनाई गई हैं, सेबी की तरफ से बनाई गई हैं, आईआरडी की तरफ से बनाई गई हैं, एनपीसीआई की तरफ से बनाई गई हैं, जो इन्वेस्टर्स को एंड जो इनोवेटिव माइंड्स हैं उनको कॉन्फिडेंस देता है कि सरकार हमें सपोर्ट करती है, अथॉरिटीज हमें सपोर्ट करती है, गवर्निंग बॉडीज हमें सपोर्ट करती हैं, तो इसके लिए वो निश्चिंत रहते हैं। सो या दिस इज सो अमेजिंग कि सरकार भी इतना प्रमोट कर रही है, हमारी अथॉरिटीज को पुश कर रही है, और ये सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, इन्वेस्टर्स को भी ट्रस्ट है, लोगों को भी ट्रस्ट है। सो या दैट्स हाउ इट इज ग्रोइंग। लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद ग्रोथ ड्राइवर्स में आगे बात करेंगे और बताएंगे आपको और कुछ चीजों के बारे में जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री ग्रो कर पाई। बट कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून, फील गुड, फील लाइव।
1: हमसे रोशन है चांद और तारे, हम खुदा मन समझिए गैरत का।

देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपके गाने पसंद आ रहे हैं। नाउ बिना किसी देरी के अपने शो को आगे लेकर चल रहे हैं। मैं हूँ सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। और आज जो इंडस्ट्री हम आपके लिए लेकर आए हैं दैट इज फिनटेक। ठीक है, हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच रही हैं या हमें सुविधा प्रदान कर रही हैं, किसी भी तरीके से हम उनको यूज कर रहे हैं। तो दो हमने अभी तक समझे जो बहुत मेजर फैक्टर रहे हैं इसकी ग्रोथ में, यूपीआई एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। थर्ड आता है मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन। अगर आप देखेंगे सो ओवर 850 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, जिसमें अगर आप आंकड़ा देखें स्मार्टफोन का फिल्टर लगाएंगे तो 650 मिलियन से ज्यादा जो हैं वो खाली स्मार्टफोन यूजर्स हैं। और जो रूरल इंडिया है वो भी एक मेजर यूजर बेस बना है डिजिटल पेमेंट्स एंड बैंकिंग के लिए। और मैं हर बार ये बात बोलता हूं जब भी हम किसी इनोवेशन की बात करते हैं कि अगर किसी भी चीज का आपको ये देखना है कि वो कितने काम की है या वो कितनी जिंदगियों में पहुंच चुकी है या सही मायने में वो एक कामयाब प्रोजेक्ट है या नहीं, तो उसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि आप रूरल इंडिया विजिट करिए और वहां पर अगर लोग उसको यूज कर रहे हैं दैट मीन्स हमारा मॉडल सक्सेसफुल है। और ये हो पाया है यूपीआई के केस में। इनफैक्ट गांव में जो लोग जाते हैं ना सब्जी बेचने के लिए या और भी कोई चीज बेचने के लिए, उन तक के पास क्यूआर कोड्स होते हैं, गांव के लोग भी स्कैन करके पेमेंट्स कर देते हैं। मैं वो कह रहा हूं कि गांव में इस टेक्नोलॉजी का अगर पहुंचा दिया और वहां के लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया, इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि गांव की लाइफ बहुत अलग होती है। वहां के लोग भी इनोवेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, बट उनकी प्रायोरिटीज अलग होती है, उनका माइंडसेट अलग होता है। इसलिए वहां पर भी ये चीज पहुंच पाई जिसकी वजह से अच्छा खासा हमें बूम देखने को मिला फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। देन इसके बाद नेक्स्ट जो मैं ग्रोथ ड्राइवर यहां पर बताना चाहूंगा दैट इज डेमोग्राफिक एडवांटेज। ठीक है, मोर देन 65% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो 35। ठीक है, 35 साल से कम उम्र के लोग हैं 65% भारतीय। तो इसकी वजह से जाहिर सी बात है टैक्स सेवी ऑडियंस हमारे पास ज्यादा है और टैक्स सेवी जो ऑडियंस होती है वो डिजिटल जो वर्ल्ड होता है उससे काफी अट्रैक्टेड होती है, उसको पसंद करती है। इसीलिए डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें बढ़ोतरी दिखाई दी। और लास्ट इसमें ग्रोथ ड्राइवर का मैं रीजन डेफिनेटली बताऊंगा COVID-19 बूस्ट को। भाई पैंडेमिक ने काफी कुछ बदला हमारी जिंदगी में, एक मासिव शिफ्ट हमें दिखाई दिया फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल ट्रांजैक्शंस, जिसमें हमें डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स की, हमें ऑनलाइन लर्निंग दिखाई दी, हमें और बहुत सारी ऐसी कंपनीज दिखाई दी जो आई और लोगों ने ट्रस्ट किया उनके ऊपर। क्योंकि उस टाइम पर यह हो रहा था आप किसी चीज को टच नहीं कर सकते, हर चीज को आप एक डाउटफुल नजर से देख रहे थे। सो या COVID-19 ने भी काफी पुश किया इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में। अब ये हुई दोस्तों ग्रोथ ड्राइवर्स की बात। हमने 5 ग्रोथ ड्राइवर यहां पर आपको बताई, यूपीआई, गवर्नमेंट सपोर्ट, मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन, डेमोग्राफिक एडवांटेज एंड COVID-19 बूस्ट। अब इसके साथ हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। आगे आपको बताएंगे सेगमेंट्स के बारे में, काफी सारे सेगमेंट्स हैं इसमें जो हमने यहां पर डिस्कस भी किए थे, उसको डिस्कस करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, फील गुड फील लाइव।

मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ, शहर फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। दोस्तों, इस शो में हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रीज के बारे में, कंपनीज के बारे में, पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं। फिलहाल जिस इंडस्ट्री को आपको हम समझा रहे हैं अच्छे से, ये इंडस्ट्री है फिनटेक। इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स आते हैं, उनको समझते हैं थोड़ा सा। पहला सेगमेंट आता है पेमेंट्स, ठीक है। इसमें मेजर प्लेयर्स हैं फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भारत पे। ये होते हैं डिजिटल वॉलेट्स या QR बेस्ड UPI। दूसरा आता है लैंडिंग टैग, जिसमें आपको दिखाई देता है क्रेडिट बी, कैश ई, जेस्ट मनी, PayU, स्लाइस, जिसमें आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाता है। तीसरा आता है वेल्थ टैग, जिसमें ये कंपनीज फॉल करती हैं लाइक ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स,

ग्रो, ईटी मनी एंड सो ऑन। इसमें आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो सेगमेंट आता है दैट इज इंश्योरटेक। इसमें आता है पॉलिसी बाजार, एको, डिजिट, वन एश्योर। इसमें आपको डिजिटल इंश्योरेंस जो है वो आप परचेज कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, तो आपके लिए काफी सुविधाजनक हो गया है। पहले क्या हुआ करता था कि शॉप्स हुआ करती थी लोकल ऑफलाइन मार्केट में, आप उनके पास जाते थे, उनको जहां से कमीशन मिलता था वो वही इंश्योरेंस आपको दिखाते थे, तो इसलिए बहुत सारी डील्स हम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहुंच सकती थी और हमारे को शायद पसंद आ जाती, बट वो नहीं पहुंच पाई किसी कारणवश। इसलिए अभी जब डिजिटल हुआ सब कुछ, तो इन चीजों ने, इन कंपनीज ने काफी हेल्प की हमारी, और अब हम पैसे भी बचाते हैं और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चूज करना हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फिनटेक सेगमेंट आता है नियो बैंकिंग, लाइक जुपिटर, फ्री, नियो, ओपन। ये डिजिटल ओनली बैंक्स होते हैं जहां पर कोई आपको फिजिकल ब्रांच नजर नहीं आती है, बट आपका एक बैंक अकाउंट होता है जिसमें आप सारी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। उसके बाद लास्ट जो फिनटेक सेगमेंट आता है दैट इज रेगटेक, जिसमें कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो साइनजी, आईडीफाई, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मदद करती हैं रेगुलेशंस जो है वहां पर कंप्लाई करने के लिए बाय यूजिंग एआई एंड ब्लॉकचेन। तो ये बहुत स्मार्टली इसको डिजाइन किया गया है, स्मार्टली स्ट्रक्चर्ड एक इंडस्ट्री है जिसमें सेगमेंट वाइज चीजें बनाई हुई हैं ताकि स्मूथ ट्रांजैक्शंस होती रहें, ताकि सब कुछ स्मूथ तरीके से चलता रहे। तो पेमेंट वाला जो फंडामेंटल है उसमें आपको मेजरली दिखाई देंगे लोग जो यूज करते हैं, तो पेमेंट्स के लिए अलग से एक सेगमेंट है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। लैंडिंग के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। वेल्थ टेक के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। इंश्योरेंस टेक जो है उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। सो लाइकवाइज इस सारे सेगमेंट्स की अलग अलग पॉलिसीज बनाई हुई हैं ताकि ट्रांजेक्शन स्मूथ रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो और स्कैम ना हो किसी भी तरीके का। सो या दीज आर द सेगमेंट्स। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है फिनटेक इंडस्ट्री, आज हम आपको समझा रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं अभी तक आप इतना समझ पाए हैं कि आप जो इन्वेस्ट करते हो और आप जो पे करते हो, आप जो लोन लेते हो, आप जो इंश्योरेंस खरीदते हो, आपको इतना पता है कि एटलीस्ट ये फिनटेक में फॉल करती हैं सारी चीजें। आगे फर्दर कुछ चीजें हैं जो आपको बताएंगे, उसके बाद कंपनी के बारे में बात करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

बमक बम बमक बम बमक बम बमक तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा

देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं फिर एक बार यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये म्यूजिकल ब्रेक पसंद आया। अपने शो को अब आगे लेकर चल रहे हैं हम। फिनटेक हमारी आज की इंडस्ट्री है, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। मैं हूँ सागर और इस टाइम आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मानवरचना 107.8 FM के साथ। फिनटेक में अगला जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ की ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो भी देखिए, बाय नाउ पे लेटर, BNPL, इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी क्रेडिट बेस्ड कन्वीनियंस जो मॉडल है उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है। इसीलिए ये एक नई इंडस्ट्री उभर के सामने आई है, जिसमें हमने आपको बताया भी था जो लैंडिंग टैग होते हैं, जो आपको पर्सनल लोन दे सकते हैं लाइक पे यू, स्लाइस, कैशी, क्रेडिट बी। इसके बाद आता है डिजिटल लैंडिंग रेगुलेशंस। RBI ने नई गाइडलाइंस जो है वो इम्प्लीमेंट की है ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन रह सके और किसी को प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई पैसा ले रहा है तो किसी भी तरीके का कोई स्कैम ना हो, कोई इशू ना हो, कंपनी झूठ ना बोले, क्लाइंट झूठ ना बोले, इस तरीके से गाइडलाइंस है वहां पर। थर्ड आता है यहां पर एम्बेडेड फाइनेंस। जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं उन्होंने इंटीग्रेट की हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे ओला ऑफर करती है आपको माइक्रो लोन्स, ठीक है। तो ये काफी अमेजिंग पार्ट है कि आप अगर वो कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, पैसे नहीं है आपके पास, आप माइक्रो लोन वहां पर ले सकते हैं। एंड फर्दर इसमें आप डीप डाइव करके समझ सकते हैं माइक्रो लोन्स होते क्या है। बट फिलहाल ये एक अलग सा ट्रेंड हमें दिखाई दिया है जिसको कंपनीज ने इनिशिएट किया है और ये बखूबी लोगों ने अडॉप्ट किया है। उसके बाद आता है AI and ML, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन रिस्क असेसमेंट। हमारे एल्गोरिथम्स काफी एडवांस हो गए हैं जिसमें अंडरराइटिंग जो है वो की जाती है, फ्रॉड डिटेक्शन किया जाता है, कस्टमर प्रोफाइलिंग की जाती है और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि क्या आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है लोन लेने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि फ्रॉड करने का वो इंसान सोच रहा है, तो इसलिए अंडरराइटिंग की जाती है, अच्छे से समझा जाता है, पूरी प्रोफाइलिंग की जाती है। तो इसलिए डिजिटल वर्ल्ड में नई नई चीजें निकल के सामने आई हैं, जो हम कहते हैं कि काफी इंप्रूव हुई हैं चीजें, काफी स्मूथ तरीके से ट्रांजैक्शंस हो पा रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्लॉकचेन एक्सपेरिमेंट्स। RBI ने डिजिटल रूपी पायलट एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन इनिशिएटिव जो है वो लिए, जिसने रीडिफाइन किया हमारे इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर को। तो RBI के इनिशिएटिव्स है, RBI काफी मदद कर रहा है। RBI आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, तो RBI इज द मेजर बैंक जो सारे बैंक्स के पीछे होता है। अगर कभी कोई ग्रीवेंस होता है या बैंक के लेवल पर कोई चीज एड्रेस नहीं हो पाती है तो लोग RBI तक जाते हैं और उनकी बात सुनी जाती है। इसलिए RBI बहुत अहम भूमिका निभाता है और बैंक्स के लिए सारी गाइडलाइंस जो बनाई जाती हैं वो RBI ही बनाता है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी बात आपको बताइए फिनटेक की आप समझ पाए हैं। लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, मैं हूं सागर, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं रेडियो मानवरचना 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक। मैं हूं सागर। शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप जुड़े हुए रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ। फील गुड, फील लाइव। हमारी इंडस्ट्री है आज की फिनटेक, जिसमें हमारी आज की कंपनी डील करती है। अब हम शो को आगे लेकर चलेंगे और आपको कुछ और चीजें बतानी है, और उसके बाद हम कंपनी की तरफ चलेंगे। तो अब तक देखिए, सारी अच्छी अच्छी बातें मैंने आपको बता दी। ग्रोथ ड्राइवर्स मैंने आपको बता दिए, की सेगमेंट्स मैंने आपको बता दिए, ट्रेंड्स और इनसाइट्स कुछ आपको दे दिए। थोड़ा सा ग्लोबल स्टैंडिंग की बात करते हैं। तो ये मैं बता चुका हूं आपको कि इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड नंबर पे आती है ग्लोबली। अगर हम देखें तो फिनटेक स्टार्टअप्स में हम बस यूएस एंड यूके से पीछे हैं। इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स, जहां पर 46% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन जो हुई है 2022 में वो केवल इंडिया से हुई है। वहीं पर अगर हम इंडियन फिनटेक यूनिकॉर्न्स की बात करें, मतलब जिनकी वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा है, उसमें कुछ कंपनीज है जो इंडियन है, लाइक रेजर पे उसमें है, फोन पे उसमें है, पेटीएम उसमें है, क्रेड उसमें है, ग्रो उसमें है, पाइन लैब्स उसमें है, जेरोदा उसमें, और ये बहुत लंबी लिस्ट है। और यकीन मानिए, यूनिकॉर्न बनाना इज नॉट एन इजी थिंग, है ना। तो उसके बाद हम बात करें अगर यूपीआई मॉडल की, तो उसको काफी सारी कंट्रीज में स्टडी भी किया जा रहा है और इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, या फिर उससे इंस्पायर होकर सिमिलर सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं यूके में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में। और इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि सिंगापुर में इसको ऑलरेडी यूज किया जा रहा है, यूएई में इसको यूज किया जा रहा है, फ्रांस में इसको यूज किया जा रहा है, और जहां पर यूज नहीं किया जा रहा है वहां पर सिमिलर मॉडल्स बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इन सब के आधार पर देखा जा सकता है कि फ्यूचर आउटलुक जो है इंडिया का फिनटेक का बहुत अच्छा है, जहां पर ये माना जा रहा है कि इंडिया का जो फिनटेक रेवेन्यू है वो ट्रिपल हो जाएगा बाय 2030, समवेयर अराउंड 400 बिलियन US डॉलर्स। टीयर टू एंड टीयर थ्री जो सिटीज हैं वो मेजर प्लेयर्स बनते हैं इन फिनटेक कंजम्पशन हब्स, वहां पर ज्यादा आपको दिखाई देगा। बैंक्स और फिनटेक्स के बीच में जो कोलैबोरेशन है उससे काफी एक्सेलरेशन हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इनोवेशन हमें दिखाई दे रहा है वहां पर अच्छा खासा। क्रॉस बॉर्डर फिनटेक है, ठीक है, जो हमने बताया यूपीआई जो है वो मल्टीपल पार्टनरशिप्स कर रहा है ग्लोबल पेमेंट प्रोवाइडर्स के साथ, ताकि और स्मूथ हो जाए चीजें अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है तो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर इन पाइपलाइन और जिनके ऊपर काम हो रहा है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी चीजें आपको बताई हैं समझ पाए हैं आप, और काफी हद तक आप फेमिलियर हैं फिनटेक इंडस्ट्री से। लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको बतानी है, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ऐसे एरियाज जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है वो भी आपको बताते हैं। उसके बाद फिर फर्दर बात करेंगे कंपनी की। तो कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून, फील गुड, फील लाइफ।

मैं हूँ आरजे सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानव वैष्णव 107.8 एफएम के साथ। फील गुड फील लाइव। फिनटेक हमारी इंडस्ट्री है और इस टाइम हम लास्ट सेगमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, और लास्ट हमारा जो सेगमेंट है दैट इज चैलेंजेस। कितना स्मूथ सब कुछ नहीं होता है, कुछ चैलेंजेस हैं और जो हर चीज के साथ होते हैं। नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो यहां पर जो चैलेंजेस उनकी बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला, जब भी हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तो डेटा प्राइवेसी बहुत बड़ा कंसर्न उठ के सामने आता है, और साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे कंसर्न्स हैं जिनको शायद टाइट करने की जरूरत है, जिनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा काफी बार हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है लोगों को, काफी सारे स्कैम्स हुए हैं और जो आम हो चुके हैं हमारे जीवन में, इसलिए ये एक मेजर कंसर्न है हमारे सामने। दूसरा है फाइनेंशियल लिटरेसी। अभी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि अपने फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है, इसलिए फाइनेंस मैनेज करना हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, ताकि जब वो बड़ा हो, जब वो एडल्ट हो और जब उसके पास पैसे हो, कमाने लगे, वो ट्रांजैक्शन करने लगे, तो उसको पता हो अच्छे से कि कहां यूज करना है, कब यूज करना है, कितना यूज करना है। वहीं पर अगर हम बात करें तो एक तरीके से थोड़ा सा मोनोपोली जैसा सिनेरियोज कुछ कुछ इंडस्ट्री में दिखाई देता है, जो सब इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कुछ बिग प्लेयर्स हैं, सिर्फ उनके ऊपर निर्भरता है और उनकी लगभग लगभग सिमिलर फी होती है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, तो ज्यादा विकल्प बच नहीं पाते हैं। हालांकि नए नए स्टार्टअप जो हैं वो आ रहे हैं, मैं ये भी कहूंगा कि हमारे बीच में भी कुछ गैप्स हैं, हमें भी बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता है। एंड देन उसके बाद लास्ट इसमें चैलेंज जो आता है वो है रेगुलेटरी बैलेंस। एक बहुत क्रूशियल पॉइंट हो जाता है ये, अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके फाइनेंसिस को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये है हमारी इंडस्ट्री फिनटेक। अभी उम्मीद कर रहा हूं यहां का 360 डिग्रीज एक पर्सपेक्टिव आपको मैं दे चुका हूं। अब लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद फाइनली हम बात करेंगे आज की कंपनी की। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं सागर और शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। फील गुड फील लाइफ।

का पुरस्कार चंदनगढ़। दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है, हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

फाइनली बिना किसी देरी के कंपनी की बात करते हैं। सो भैया, हमारी आज की कंपनी जो फिनटेक में डील करती है वो है कुवेरा। कुवेरा एक इंडियन फिनटेक वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये आपको अलाउ करता है टू इन्वेस्ट इन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, डिजिटल गोल्ड, फिक्स डिपॉजिट एंड इवन इन US इक्विटीज, जो मैं कह सकता हूँ कि बहुत कम ऐसा होता है कि ऐसे सारे एप्लीकेशन पर नहीं होता है। तो US इक्विटीज में भी आप यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑल एट वन प्लेस, एट वन प्लेटफॉर्म। 2016 में स्टार्ट हुई, बेंगलोर में हेडक्वार्टर्स हैं, पेरेंट कंपनी है एरिवोक एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। बाद में इसको क्रेड ने एक्वायर कर लिया 2024 में, ठीक है। अ जीरो कमीशन फ्री टू यूज इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है। अब बात करते हैं स्टार्ट कैसे हुई। तो जो फाउंडर्स हैं उन्होंने एक ब्रूटल ट्रुथ आइडेंटिफाई किया यहां पर कि वेल्थ मैनेजमेंट जो इंडिया में है वॉज बिल्ट फॉर द रिच, नॉट फॉर द मिडिल क्लास। तो जो ट्रेडिशनल एडवाइजर्स थे वो कमीशन चार्ज किया करते थे, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो उन प्रोडक्ट्स को पुश किया करते थे जिनमें उनका कुछ प्रॉफिट हो। लेकिन मिडिल क्लास इंसान जो यार जिसको पता नहीं बहुत सारी चीजें, और या फिर उसको पता भी है तो वो कहां पर जाए। मतलब अगर आपको खरीदना है कोई म्यूचुअल फंड तो आपके पास डायरेक्ट वो एक्सेस नहीं था, बहुत कम ऐसे लोग थे जिनके पास वो एक्सेस आ पाता था अगर आप ट्रेडिशनली बात करेंगे तो। यहां पर ये कंपनी आती है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो कंफ्यूज थे, मिसलेड थे या इग्नोर किए जा रहे थे। तो कुवेरा जो है वो इसलिए बनाया गया टू डेमोक्रेटाइज इन्वेस्टिंग बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। प्लेटफॉर्म ऑफिशियली लॉन्च किया गया था अराउंड 2017 विद रोवो एडवाइजरी टूल्स। ओके, आइडिया बहुत सिंपल था, रिमूव मिडलमैन, रिमूव कमीशंस, इंक्रीज इन्वेस्टर रिटर्न्स, सिंपल सॉर्टेड। अगर कमीशन नहीं पे करना है, किसी को बीच में पैसा नहीं खिलाना है, जाहिर सी बात है सारा पैसा आपका होगा, प्रॉफिट भी आपका, नुकसान भी आपका। तो ये एक थॉट जो है इसके साथ इस कंपनी को जो है शुरू किया गया। सो इंस्टेड ऑफ अर्निंग फ्रॉम कमीशंस, कुवेरा ने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो ऑफर करने शुरू कर दिए, नो डिस्ट्रीब्यूटर कट, याद रखिएगा। टेक और ऑटोमेशन का इस्तेमाल किया टू गाइड यूजर्स, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पे फोकस किया गया, नॉट क्विक ट्रेडिंग। एंड ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड जो है वो दे कैन इंक्रीज योर रिटर्न्स बाय अप टू 1-1.5% एनुअली, ठीक है। जो अगर आप थ्रू आउट द टाइम, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को मन लोग लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं, तो जब कंपाउंड होकर आएगा तो बहुत ज्यादा लगता है वो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस कंपनी। लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील।

0: यहाँ तो नहीं आया बेटी, पुल पे होगा शायद।
1: पुल पे वहाँ अकेला क्या कर रहा है?
2: वेलकम बैक, मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। तो भैया हमारी जो आज की कंपनी है कुवेरा, इसके बारे में आपको बता चुके हैं, थॉट क्या था, कैसे स्टार्ट हुई, व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट। लेट्स टॉक अबाउट द फाउंडर्स। पहला नाम आता है गौरव रस्तोगी, ही इज द CEO ऑफ दिस कंपनी। ये मॉर्गन स्टैनली में पोर्टफोलियो मैनेजर के तौर पर जॉब किया करते थे पहले। अगर आप इनकी एजुकेशन की बात करते हैं, IIT दिल्ली से इन्होंने कंप्यूटर साइंस में जो है पढ़ाई की है, पर शिकागो बूथ से इन्होंने अपना MBA किया है। ठीक है, वेल्थ को बहुत अच्छे से समझते हैं, वेल्थ को बहुत अच्छे से समझा है काम करके, सिस्टम में रह करके। और ये चीज इन्हें समझ में आ गई थी कि कॉमन जो इन्वेस्टर्स है ना, उनको अमूमन इग्नोर किया जाता है, या फिर उनके ऊपर प्रेशर है, बहुत कमीशन देना है, प्रॉफिट पूरा नहीं मिल पाता उन्हें। दैट वॉज द थिंग। सेकेंड नेम इज नीलाभ सान्याल, COO, चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है एक्सिस कैपिटल के। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर सर्व कर चुके हैं, एक्सिस बहुत बड़ा ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, इन्वेस्टमेंट को समझते हैं, हाउ मनी वर्क्स को समझते हैं, कस्टमर्स के इंटरेस्ट को समझते हैं, सो ही इज ऑल्सो सर्विंग वेल। थर्ड नेम इज मयंक शर्मा, CTO, चीफ टेक्निकल ऑफिसर। 2017 में इन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन किया, क्लाउड आर्किटेक्ट रह चुके हैं। ठीक है, इस कंपनी का टेक बैकबोन जो है वो इनके हवाले है। अब आप ध्यान से देखेंगे ना, तीनों लोगों का अलग अलग अनुभव है, अलग अलग डोमेन से आते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन एक सिमिलर सेम पैशन जो है वो शेयर करते हैं। किसी ने बोला कि मैं टेक बना दूंगा, इतना अच्छा बना दूंगा, क्योंकि भाई टेक फिनटेक की हम लोग बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, तो ऐसे में टेक का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो काम मयंक ने किया, हाउ मनी वर्क्स वो काम नीलाभ ने किया, पोर्टफोलियो को समझना, इन्वेस्टर्स की प्रॉब्लम को समझना, वो काम किया गौरव रस्तोगी ने। तब जाकर के इन तीनों ने मिल करके ये कंपनी जो है बनाई। सो इट्स नॉट अ कॉलेज ड्रॉप आउट स्टार्टअप स्टोरी, इसलिए ग्लोरीफाई नहीं करना चाहेंगे हम उस चीज को कि कॉलेज

वेलकम बैक, मेरा नाम सागर। शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। हम लोग यहां पर जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, कंपनी का नाम है कुवेरा। चलिए बात करते हैं इसकी यूएसपी की, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। कुवेरा का सबसे बड़ा वेपन है 100% फ्री इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। कोई कमीशन नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन फी नहीं, कोई हिडन चार्ज नहीं। एंड दिस इज इनसेन इन फाइनेंस, क्योंकि अगर मान के चलिए ना, 1% भी अगर वहां पर कोई इंसान कमीशन रख देता है, 0.5% भी अगर कोई कमीशन वहां पर प्लेटफॉर्म रख देता है, वो भाई बड़े अमाउंट पे बहुत ज्यादा हो जाता है। और अगर सेम चीज आपके प्रॉफिट के तौर पे आपके पास रहे तो इट्स अ ग्रेट थिंग ना। तो ये है इस कंपनी की सबसे बड़ी यूएसपी। एडिशनल यूएसपीज क्या है? डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स आपको मिलते हैं, कोई ऐसा नहीं कि बीच में मिडिलमैन बैठा हुआ है, डायरेक्ट आप खरीदते हैं। टैक्स हार्वेस्टिंग टूल्स आपको मिलते हैं, फैमिली अकाउंट ट्रैकिंग आपको मिलती है, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग आपको मिलती है, यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग इंटीग्रेशन यहां पर मिलता है, विच इज अ बिग थिंग। तो ये उस कंपनी की यूएसपीज हैं जो उसको आगे लेकर के जा रही हैं। बात करेंगे यहाँ के की ड्राइवर्स की। फर्स्ट इज जीरो कमीशन मॉडल। अगेन, पीपल हेट हिडन चार्जेस, ट्रांसपेरेंसी हमें चाहिए। तो कुवेरा जो हमारी आज की कंपनी है, उन्होंने एग्जैक्टली यही किया कि उनको हटा दो भाई, ठीक है। टेक प्लस रोबो एडवाइजरी, ठीक है, बिगिनर्स के लिए बहुत सिंप्लीफाई कर दिया भाई, बहुत सिंप्लीफाई कि आप डिसीजन लीजिए, उनको गाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपेंडेंसी हटा दी, ह्यूमन एडवाइजर जो हुआ करते थे, क्योंकि वो अपने हिसाब से पुश करते थे जहां पर उनका फायदा होगा। अमूमन ऐसा देखा गया जहां पर उनको कमीशन ज्यादा मिलेगा, उनका प्रॉफिट ज्यादा होगा, उसको वो लोग आगे पुश किया करते थे, उसको हटा दिया गया। मिडिलमैन हट गया, कमीशन हट गया, व्हाट एल्स वी नीड। तो कितना सिंप्लीफाई कर दिया एक प्लेटफॉर्म से। फाइनेंशियल अवेयरनेस बूम लाई इंडिया में 2018 के बाद, ज्यादा एसआईपी इन्वेस्टर्स हमने देखे, डिजिटल अडॉप्शन हमने ज्यादा देखा, डिस्ट्रस्ट देखा गया ट्रेडिशनल एडवाइजर्स में, जिसकी वजह से लोगों ने टेक प्लेटफॉर्म्स को जो है ऑप्ट करना शुरू किया। और वहां पर क्योंकि कंपनी पहले से ही तैयार थी, इन्होंने पहले से ही सिस्टम ऐसा बना के रखा हुआ था कि जब लोग आएंगे तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो सिंप्लीफाई करते टाइम सही टाइम पर सही चीज कर दी गई और लोगों को भी समझ में आया कि भाई हमें जो है अपने पैसे को अपने पास रखना है। दैट्स हाउ दे आर ग्रोइंग। तो ये वो कोर रीजन है जिसकी वजह से ये कंपनी जो है ग्रो कर रही है, जो इसके की ड्राइवर्स हैं। हालांकि 2024 में क्रेड ने जो है फैसला लिया कि हम वेल्थ मैनेजमेंट में एंटर करेंगे, तो उन्होंने जो है इसको एक्वायर कर लिया। अब यहां पर प्रीमियम यूजर्स भी आ गए क्योंकि क्रेड आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, प्लस इन्वेस्टमेंट का इंजन ऑलरेडी कुवेरा ने एक्सेल किया हुआ था। That's how ये कंपनी इतनी बड़ी बन पाई। I hope it helps. लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। Stay tuned, feel good, feel live.

वेलकम बैक, मेरा नाम सागर। शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आज हमने जिस कंपनी की बात करी है उस कंपनी का नाम है कुवेरा। अब यहाँ पर हम कुछ कुछ चीजें आपको बताएंगे, उसके बाद इसको हम यहाँ पर कंक्लूड करना चाहेंगे आज के शो को। फर्स्ट थिंग, कुवेरा इज नॉट जस्ट अ प्लेटफॉर्म, इट्स अ स्टेटमेंट। ये कमीशन बेस्ड एडवाइजर्स को भाई सब चैलेंज करता है, मिस सेलिंग कल्चर को चैलेंज करता है। सेकेंड, फ्री इज नॉट चैरिटी, इट्स स्ट्रेटजी। कुवेरा अर्न करता है थ्रू इकोसिस्टम पार्टनरशिप्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट इंटीग्रेशन, लॉन्ग टर्म यूजर वैल्यू। तो फ्री मींस का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, दे आर स्मार्ट इनफ टू फिगर इट आउट कि कैसे और हम पैसा यहां से कमा सकते हैं। थर्ड, टारगेट ऑडियंस इज नॉट मासेस। तो यहां पर बहुत सिंपल है, जो फाइनेंशियली अवेयर लोग हैं डेफिनेटली यार वही लोग आएंगे। आ सकता है कोई भी इंसान डेफिनेटली आपको, बट वो फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मासेस तक, इसलिए शायद बहुत कम लोगों ने इस कंपनी का नाम सुना होगा। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रस्ट इज द रियल करेंसी, ये बात इस कंपनी को समझ में आई। फाइनेंस कंप्लीटली ऑल अबाउट ट्रस्ट गेम। कुवेरा ने अपना ट्रस्ट बिल्ड किया थ्रू ट्रांसपेरेंसी, नो कमीशन, क्लीन यूजर इंटरफेस। दैट्स हाउ कंपनी जो है लोगों के बीच पहुंच पाई, जुबान पर चढ़ पाई। दैट्स हाउ इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जो है वो जगा इस कंपनी में। एंड एक्विजिशन टेल्स अ स्टोरी, क्योंकि भैया क्रेड ने एक्वायर किया है। क्रेड अपने आप में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो फुल फाइनेंशियल इकोसिस्टम हो गया कंपनी का। तो ये है जी, ये कंपनी हमारी आज की कुवेरा। डिस्पाइट हैविंग सो मैनी प्लेयर्स इन फिनटेक मार्केट, स्टिल हमारी आज की कंपनी जो है आई मार्केट में ग्रो कर पाई, लोगों के बीच में ट्रस्ट गेन कर पाई, इन्वेस्टर्स का ध्यान ले पाई, एंड बूम एवरीथिंग इज स्मूथ। अब इसी नोट पर चलते हैं, आशा करता हूं आज का शो आपको पसंद आया होगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, आपको आज की केस स्टडी कैसी लगी मुझे बताइए 8010781078 पर। अब फिर लौटेंगे लेकर एक और शो, लेकिन अब जो मुलाकात होगी वो होगी हमारी अगले हफ्ते। तब तक अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

0: हाय हाय रे, नहीं लगी नहीं लगी। हाय मेरे 2.5 लाख, अरे हाय मेरे 5 लाख, अरे हाय मेरे 6 लाख।
1: वेल हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आज का हूं लेकर के शो वॉइस ऑफ यू। उसकी बहुत सारी वजहें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वजह तो ये है कि आपके लिए एक एजुकेशनल शो के तौर पर काम करता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, बहुत सारे दिलचस्प इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज हमारे हर एक एपिसोड में हमारे साथ यहाँ पर जुड़ते हैं। जैसे कि आज का ही देख लीजिए, आज हमारे साथ भुवन भाई जुड़े हुए हैं। भुवन भाई उदयपुर के रहने वाले, मुंबई में रहते हैं, इस टाइम चित्तौड़ में है। कितने अतरंगी इंसान है, फिल्म मेकर है, कॉन्टेंट बनाते हैं, बहुत क्रिएटिव इंसान है। तो भुवन जैन हमारे आज के मेहमान होने वाले, बहुत सारी बातें इनके साथ हम करेंगे। प्राइम फोकस हमारा रहने वाला है कंटेंट के ऊपर, टू गेट स्टार्टेड एज अ कंटेंट क्रिएटर, कैसे इसको सीखा जा सकता है एंड हाउ टू ग्रो इन दिस वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया। लेकिन ये सारी बातें हम लोग करेंगे, सबसे पहले भुवन का स्वागत करेंगे। स्वागत के बाद तो भुवन, स्वागत है आपका।
2: थैंक यू सागर भाई, थैंक यू सो मच यार मुझे शो पे लाने के लिए।
1: भुवन, मेरा पहला प्रश्न आपसे रहेगा, मैं बहुत क्यूरियस हूं जानने के लिए, प्लीज बताइए मुझे और हमारे लिसनर्स को कि आप क्या करते हैं, आपका डोमेन क्या है।
2: तो बेसिकली मैं कंटेंट क्रिएटर हूं। मैंने पिछले 5 साल पहले जो है मेरी कंटेंट क्रिएशन जर्नी शुरू करी, उसके साथ साथ मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। तो जब मैं थिएटर और कॉन्टेंट जब एक साथ कर रहा था तो राइटिंग का कीड़ा जागा मेरे अंदर। तो राइटिंग के साथ साथ हुआ कि यार मैं डायरेक्शन में भी कुछ कुछ एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो वो एक एक सीढ़ी चढ़ते गए तो समझ में आया कि यार ये सारा खेल तो एक, इसको फिल्म मेकिंग बोलते हैं। तो लगा कि यार इस फिल्म मेकिंग में बड़ा मजा आता है, कि यार सब कुछ जब करने मिल रहा है कि यार एक्टिंग भी मैं कर रहा हूँ, डायरेक्शन में भी मजा आ रहा है, राइटिंग में भी मजा आ रहा है, तो क्यों ना इस पूरी आर्ट को ही एक्सप्लोर किया जाए। तो बस भाई यही चल रहा है।
1: बहुत सुंदर। अगर मैं यहाँ पर फिल्म मेकिंग बात करूँ, आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, तो मैं पूछना चाहूंगा, अगर कोई इस टाइम आपको सुन रहा है, कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की जा सकती है, कौन सी वो नॉन नेगोशिएबल स्किल्स हैं जो एक इंसान के पास होनी चाहिए फिल्म मेकिंग करने के लिए।
2: यार इंस्टाग्राम बहुत अच्छा ऑप्शन आ चुका है अब, जहाँ पर आप अपने अंदर कुछ भी है, मैं मानता हूँ कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ तो है ही है, बस आपको जो है कि वो थोड़ा सा ढूंढना है कि यार सबके अंदर क्या डाल के भेजा है भगवान ने। सबकी कहानी अलग अलग है, सब अपने अपने पीओवी से अपनी दुनिया जी रहे हैं, और वही फिल्म है एक तरीके की। तो करते जाओ, बनाते जाओ, कुछ भी कैमरा उठाओ, कुछ भी लिखो, शूट करो, एडिट करो, उसको पोस्ट कर दो, बस वही एक फिल्म है। अगर आप, मैं मानता हूं कि अगर आपने ऐसा 100 बार कर लिया तो आप जो है एक फिल्म मेकर बन जाओगे, क्योंकि आप जो है आपने बारीकी से हर चीज सीख ली है कि भाई अच्छा एडिट कैसे होता है, अच्छा लिखा कैसे जाता है, तो सारी चीजें आप सीख ही जाओगे उससे।
1: बहुत सुंदर। अगर मैं आपकी बात करूं तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए अपनी यात्रा से, अपने जर्नी से, कि आपको कभी श्योर हुआ कि हाँ यार मुझे फिल्म मेकिंग करनी है, क्या मैं उस प्रोसेस की बात कर सकते हैं हमें?
2: मतलब स्टार्टिंग से वो मुझे पता नहीं कहाँ से आया, बचपन से ही एक खुद पे कॉन्फिडेंस का वो अंदर से था कि यार मेरा तो हो ही जाएगा, तो वो चीज़ काफ़ी हेल्प करी। और वो नहीं सोचा कि यार नहीं होगा, तो वैसा ही था कि हो ही जाएगा। तो आज से 3 साल पहले की बात है, मतलब 3 अक्टूबर 2023 के दिन मैंने एकदम डिसाइड कर लिया कि यार आज से मैं फिल्म मेकर ही हूँ। मान नहीं लिया कि किसी के कहने से नहीं, आज से मैं हूँ बस। तो बस उसके बाद से जो है वो जर्नी एकदम शुरू हो गई कि यार अब मैं हूँ, तो अब क्या क्या करना है, उसके बाद मैं अब सोचता हूँ कि भाई क्या, उससे जो है धीरे धीरे जर्नी शुरू हो गई भाई।
1: जी बहुत सुंदर। तो कुल मिलाकर एक कॉन्फिडेंस होता है, एक अंदर से आवाज आती है कि मैं हूँ भाई ये इंसान, तो आइडेंटिटी जब आप उन्हें ट्रिगर कर लेते हो तो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्ट्स। बहुत अमेजिंग। आपकी अपनी यात्रा हो सकती है दोस्तों, इस टाइम अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आपकी बिल्कुल एक अलग जर्नी हो सकती है, आपको कोई और चीज ट्रिगर कर सकती है। जस्ट बी फ्री ऑफ इट एंड सिंपली एक्सप्लोर एज मच एज यू कैन। तो सिंपल सा इतना ही बता रहे हैं हमें हमारे साथ भुवन यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो अभी लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो को कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: वेलकम बैक मैरिज सागर शो। यहाँ पर चल रहा है वॉइस ऑफ यूथ। हमारे आज के गेस्ट हैं मिस्टर भुवन जैन, और अभी तक हमने बात करी है इनके प्रोफाइल के बारे में, इनके डोमेन के बारे में, हाउ इट ऑल स्टार्टेड, फिल्म मेकिंग के बारे में। भुवन, अब मैं यहाँ पर सीधा मुद्दे पे आना चाहूंगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कॉन्टेंट क्रिएशन की, तो एग्जैक्टली कॉन्टेंट क्रिएशन में क्या क्या चीजें लगती हैं, किन किन चीजों की हमें जरूरत होती है?
1: कॉन्टेंट क्रिएशन में बस आप चाहिए, आप चाहिए और आपका एक फोन चाहिए, बाकी आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आपकी कहानी है और आप हो, और आप कन्वे करो उसको, और ऑडियंस पसंद करती है। आप जितना नेचुरल रहते हैं ऑडियंस के सामने, उतना ज्यादा आपको ऑडियंस पसंद करती है। आप जितना फेक बनने की कोशिश करते हो तो ऑडियंस पकड़ लेती है आपको कि यार ये बंदा तो थोड़ा सा झूठा है। तो कॉन्टेंट क्रिएशन के लिए कुछ भी टूल नहीं चाहिए। लोग बोलते हैं कि महंगा कैमरा चाहिए, महंगे माइक्स चाहिए, महंगे ट्राइपॉड्स चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ऑडियंस जो है, जितना आप नेचुरल रहते हैं, आप जितना उनको एंटरटेन कर सकते हो, क्योंकि ऑडियंस को बेसिकली एक ही चीज चाहिए जो है एंटरटेनमेंट। अगर आप किसी भी तरीके से वो दे पा रहे हो तो वो बेस्ट है, बस वही चाहिए आपको।
0: मैं आपके प्रोसेस की बात करना चाहूंगा। आपको जब एक थॉट आता है, उस थॉट से लेकर के जब आप उसका पूरा कंटेंट बना चुके होते हो, उसको एज अ पीस ऑफ कंटेंट आप जनरेट करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर चुके हो, तो मुझे पूरा प्रोसेस बताइए कि यहाँ से मुझे थॉट आया, उसके बाद मैंने ये किया, उसके बाद मैंने ये किया, ऐसे किया, ऐसे किया, वो पूरा।
1: तो सबसे पहले भाई चीज शुरू होती है कि टाइम पास है। तो मेरा बड़ा वैसा है कि भाई टाइम पास करना है तो खुद का टाइम पास कैसे करूंगा मैं? मैं दिमाग में ही खुद की कहानियां बना रहा होता हूँ। वो ज्यादातर होता है मैं अगर ड्राइव कर रहा हूँ या फिर जो है मैं नहा रहा हूँ, तो मैं मतलब मेरा दिमाग जो है खाली है, अभी कुछ भी नहीं है मेरे पास करने को। तो बोरिंग काम जब भी कर रहे होते हो तो आपका दिमाग अपने आप एंटरटेनमेंट का सोर्स ढूंढ लेता है कि यार कुछ भी जो है कहानी दिमाग में चलनी शुरू होती है। तो वो जो कहानी जब दिमाग में चलती है तो बड़ा हिट करती है वो, कि अरे यार ये तो बड़ा मजा आ रहा है यार। तो मुझे होता है कि ये मजा जो है मैं सबको देना चाहता हूँ। तो जो चीज मुझे हिट करी वो मैं लोगों को हिट करवाना चाहता हूँ। तो उस थॉट को सबसे पहले मैं अपने पेपर पे उतारता हूँ कि यार मैं इसको किस तरीके से जो है वो विजुअली दिखा पाऊंगा। फिर पेपर पे आने के बाद जो है वो फिर पहला काम होता है कि भाई अब इसको शूट किया जाएगा। फिर शूट होता है, फिर उसके बाद तो एडिट होता है, फिर जो है चीज आपके सामने होती है, आप देखते हो कि यार जो मैंने इमेजिन किया था क्या वैसा मजा आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। जब वो श्योरिटी हो जाती है कि यार हाँ भाई यार जैसा मैंने सोचा था वो मजा आ रहा है, तो अब जो है ये मजा लोगों के लिए पोस्ट कर दिया जाए इंस्टाग्राम पे, बस यही है भाई।
0: और आपका शूटिंग का एडिटिंग का क्या प्रोसेस होता है?
1: शूटिंग का प्रोसेस यही होता है भाई कि मतलब मेजरली कंटेंट तो आईफोन से शूट हो जाता है भाई। अगर कुछ बड़ी कहानी है या फिर लगता है कि यार इसमें तो कैमरे की जरूरत है ही है, कि बहुत बारीकी मुझे दिखाने की जरूरत है, या फिर मेरी कहानी जो है वो बेटर क्वालिटी डिजर्व करती है, तो जब जो है वो कैमरा से शूट किया जाता है उसमें पूरी टीम की जरूरत होती है भाई। कि एक डीओपी होगा, कुछ लाइट संभालने वाले होंगे, कुछ असिस्टेंट होंगे, तो वो सारे सब मिलके होता है। उसके बाद एडिटिंग, अगर फोन से शूट हुआ है तो बेसिकली फोन में ही एडिट हो जाता है, नहीं तो अगर जरूरत होती है तो कुछ दोस्त है मेरे जो एडिटर्स हैं उनके साथ मिलके जो है मैं एडिट करवा देता हूँ। बेसिक सा यही रहता है।
0: यहाँ पर अगर नीति बात कर लिए तो मैं यहाँ पर थिएटर की भी बात करना चाहूंगा। मुझे ये और बताइए कि वो इंसान यहाँ पर जो इस टाइम आपको सुन रहा है, अगर उसको थिएटर अपना स्टार्ट करना है, कौन सी वो कोर स्किल्स है जो एक इंसान के पास होनी चाहिए एज अ थिएटर आर्टिस्ट?
1: मुझे लगता है भाई थिएटर, अगर आप में कुछ स्किल नहीं भी है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मुझे लगता है कि हर इंसान को लाइफ में एक बार थिएटर करना ही चाहिए, क्योंकि मेरे साथ क्या हेल्प हुई कि भाई मैंने थिएटर में अपने आप को ढूंढा कि बेसिकली मैं कौन हूँ। जब आप थिएटर में जाते हो तो वहां पर जो है आपको तरह तरह के लोग मिलते हैं जो आप ही की तरह कुछ सोचते हैं। एक नई दुनिया में आप जाते हो तो वहां पर सबसे पहली चीज आपको सिखाई जाती है कि ऑब्जर्व करना, और दुनिया को ऑब्जर्व करने से पहले खुद को ऑब्जर्व करना। तो मेरे लिए वो स्किल बहुत काम करेगी। मैंने वहां पर खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया कि अच्छा भाई मेरा फेवरेट कलर क्या है, मेरी पसंद क्या है, मेरी नापसंद क्या है, मैं कैसे चलता हूँ, मैं कैसे बोलता हूँ। तो ये सारी स्किल्स तो मुझे थिएटर से ही पता चली कि यार ऐसा भी कुछ होता है। तो मैं तो कहूंगा कि आपको अगर खुद से मिलना है तो लाइफ में एक बार थिएटर तो जरूर करना ही चाहिए, वो आपको आपकी पर्सनैलिटी को ग्रो करेगा, मुझे ऐसा लगता है।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है कि थिएटर इज अ ग्रेट मीडियम टू नो योरसेल्फ कि आपके प्रेफरेंसेस क्या है, आप खुद को और ज्यादा अच्छे से जान सकते हो, खुद के करीब हो जाते हो, दैट इज द थिंग।
1: बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल।
0: दोस्तों वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, बहुत छोटा सा यहाँ पर हॉल्ट होगा, उसके बाद अपने शो को कंटिन्यू करेंगे और अब अपने शो को हम उसके लास्ट फेज की तरफ लेकर के आ रहे हैं। तो जाइएगा, जुड़े रहिए मेरे यानी सागर के साथ।

0: आई होप आपको अच्छा लग रहा है, वाइब पसंद आ रही है। भुवन भाई हमारे आपको अच्छी लग रहे हैं, सीधा ताजा ताजा लेकर के आए आपके राजस्थान से, और बहुत बड़ी बातें यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है प्रैक्टिकल वे में इसको ब्रेक डाउन करके हम आपको बात समझा पाए कि एग्जैक्टली चीजें ऐसे काम करती हैं। अगले प्रश्न की तरफ आएंगे। भुवन, हमने थिएटर की बात करी, हमने कंटेंट इकोनॉमी की बात करी, ये तो बात होगी आर्ट एंड क्राफ्ट की। एक प्रश्न यहाँ पर छोटा सा मेरा ये उठता है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए कौन सी हैबिट्स आप फॉलो करते हो, क्या चीजें हैं जो आप फॉलो करते हो जिससे आपको लगता है कि आपकी क्रिएटिविटी एनहांस होती है?
1: बिल्कुल भाई यार, जब आप काम आर्ट शुरू करते हो तो स्टार्टिंग में आपके अंदर जो है सारी रॉ चीजें होती है कि यार बचपन से लेके मैंने ये सब ऑब्जर्व किया था और ये सब अपने आर्ट में मैंने दिखा दिया। एक टाइम बाद आपको रियलाइज होता है कि यार मेरे पास जितना भी था वो मैंने सब दे दिया है, मेरा गाड़ा तो जो है अब खाली हो चुका है। तो एक स्किल आपको हेल्प करती है कि आप जो है रियाज रोज करो। रियाज में क्या हो सकता है कि एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं राइटिंग को अपना रियाज मानता हूं कि मैं दिन भर में जो भी कुछ कर रहा हूं वो मैं रात को अगर लिख लूं तो जो जो मुझे हिट किया है दिन भर में वो मैं एक बार लिख लूं तो वो सारी चीजें एक बार दिमाग में स्टोर हो जाती है कि यार हाँ यार आज मेरे साथ कुछ ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था। तो मेरे पास अगर चीजें लिखी हुई होती है तो एक बार ऐसा है कि ये मेरा एक नया घड़ा है जो मैं कभी बाद में यूज करूंगा कि ये सारी ऑब्जर्वेशंस में कहीं पे यूज कर सकता हूँ। तो राइटिंग एक अच्छा ऑप्शन है एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर या फिर फिल्म मेकर कह सकते हो आप, ये मैं रोज करता हूँ।
0: यहाँ पर अगेन मैं बोलना चाहूंगा, भुवन भाई जो बता रहे हैं वो उनके लिए काम करता है, एज अ क्रिएटिव पर्सन आपके लिए क्या चीज काम करेगी, कौन सी आपको हिट कर सकती है, आपको खुद फिगर आउट करना है, वो आपकी अपनी यात्रा होने की। सो अमेजिंग,
1: बिल्कुल भाई बिल्कुल।
0: भुवन यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा पैसे की। देखिए हम ये तमाम बातें कर रहे हैं, हम आर्ट क्राफ्ट की बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, आर्टिस्ट होना एक ब्लेसिंग होता है मुझे ऐसा लगता है, लेकिन बॉटम लाइन ये भी है कि हमें उस आर्टिस्ट को जिंदा रखने के लिए उसके घर में दाल चावल जरूरी हमें चाहिए होंगे, उस दाल चावल को इंश्योर करने के लिए पैसा कैसे होता है, चाहे थिएटर हो या कंटेंट हो, दोनों का मैं जानना चाहूंगा।
1: थिएटर भाई, थिएटर से तो कोई नहीं कमा रहा है मुझे लगता है आज की दुनिया में। थिएटर एक जस्ट फील्ड प्रैक्टिस है आपकी, एक आर्टिस्ट जैसे क्रिकेटर जो है वो स्टेडियम में मैच खेलने से पहले काफी फील्ड

0: आर्टिस्ट के लिए जाते हैं, तो वैसा ही एक एक्टर या फिर आर्टिस्ट के लिए कि आपको फील्ड प्रैक्टिस बहुत जरूरत है, आपको एक बेटर एक्टर बनने के लिए तो वो बहुत जरूरत है आपको, तो वहां से तो नहीं आप कमा पाओगे। कुछ लोग कमा रहे हैं जो इस फील्ड में बहुत महारत हासिल कर ली है जिन्होंने, पर कंटेंट में भाई अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो है भाई पैसा अभी तो। फिलहाल तो कंटेंट क्रिएटर अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और मतलब बेसिकली इंस्टाग्राम से तो पे नहीं होता है आपको, जो ब्रांड्स ब्रांड्स जिनको आप प्रमोट करते हो अपने वीडियोस के थ्रू, उसमें आप जो है वो वहां से आप पैसा कमा रहे हो। तो वही है कि जितना काम आप ज्यादा अच्छा करते रहोगे, जितना आप बेसिकली जितने आप मार्केट में चल रहे हो, अगर मैं शॉर्टली अगर कहूँ, जो लोग ज्यादा चल रहे हैं वो लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। और वही है कि सबकी एक ही कोशिश रहती है कि हम कितने रेलेवेंट रहे और कितने चलते रहे मार्केट में।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भवन। बहुत सारे लोग इस टाइम आपके आवाज को सुन पा रहे हैं, काफी लिसनर्स हैं हमारे फरीदाबाद के, कुछ दिल्ली के, कुछ गुड़गांव की तरफ के, और की आवाज इस टाइम पर लाइव है। कोई ऐसा बच्चा जो इस टाइम आपकी आवाज सुन रहा है, बिल्कुल फ्रेशर है, कंटेंट शुरू करना है, एक बहुत जिस्ट उसको दे सकते हो, एक रोड मैप बना के दे सकते हो कि ऐसे ऐसे आप कंटेंट को लेकर के जाइए, क्या ये टाइम पास है, सीरियस है, फुल टाइम है, क्या क्या हो सकता है, जो भी आपको लगता है?
0: देखो भाई, मैं अगर सच सच बताऊं तो कंटेंट जो है बहुत पावरफुल टूल है और हर इंसान को करना ही चाहिए अगर आप जो है ग्रो होना चाहते हो किसी भी फील्ड में। फिलहाल तो अभी यही चल रहा है कि अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो भी उनको कंटेंट बनाना पड़ रहा है, अगर आप एक डॉक्टर हो और आप चाहते हो कि आपके पास ज्यादा पेशेंट आए तो भी आप कंटेंट बना रहे हो, तो हर आदमी अभी कंटेंट बना ही रहा है। तो अगर आप साथ साथ अगर आप अभी भी शुरू करना चाहते हो तो कोई ज्यादा लेट किया नहीं आपने, बस शुरू कर दो। और बेसिक सा एक रोड मैप अगर मैं किसी को भी दूं, जो मैंने भी फॉलो किया था और मैं जो है मेरे काफी दोस्तों को भी बोलता हूँ कि ये सबसे आसान तरीका जो मैंने फिगर आउट किया, कि सबसे पहले एक वीडियो लो और उसको बस बना डालो और सोच लो कि मैं जो है इसको ना तो जज करने वाला हूं कि अच्छा बना या बुरा बना, बस अभी मुझे सिर्फ बनाने का काम करना है। जब तक मेरी 100 वीडियो नहीं बन जाती तब तक मैं जज नहीं करूंगा खुद को, या फिर किसी को जज करने का मौका नहीं दूंगा, कि अफेक्ट नहीं होगा दूसरों के ओपिनियन से कि यार तू तो बहुत गंदा कर रहा है, या फिर तुझे तो सही एक्टिंग नहीं आती, सही एडिटिंग नहीं आती, सही डायरेक्शन नहीं आता। तो वो सारी चीजें आप 100 वीडियो के बाद सब कुछ सीख जाओगे। हाँ हाँ हाँ ऐसा।
1: बहुत सुंदर, बहुत ही उत्तम बात बोली है कि बेसिकली यहाँ पर जो बताने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि काम करते मैं ना पूछ पाए हूँ और आपके जहन में हो तो प्लीज फील फ्री।
0: बस भाई यही ओपिनियन है कि काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो और सब हो जाता है भाई, बस बड़ा का सोच लो, बड़े सोचने से सब कुछ हो जाता है भाई, बस
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत
0: यही
1: सुंदर,
0: बात है
1: थैंक
0: भाई।
1: यू सो मच मोहन भाई, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और ये तमाम बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए, थैंक यू सो मच। ऑलराइट दोस्तों, अब इसी नोट पर वक्त है अपने शो को यहाँ पर खत्म करने का। उम्मीद करता हूँ आज के शो से हर बार की तरह कुछ मूल्य आप लोगों तक हम पहुंचा पाएंगे। चलता हूँ फिर लौटूंगा लेकर एक और शो, लेकिन अब मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, कहने से रहिएगा धनदार्थ सागर।

फिर आप क्या हैं? हैं? आखिर तो आप फूल हैं, औलाद नहीं हैं, अजी बुलबुल हैं किसी बाग के, सयाद नहीं हैं।

शर्मो हया का पर्दा दुश्वार नहीं है, अजी हल्का सा एक पर्दा है, दीवार नहीं है।

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

गुड मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों, बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ अपने साथ और आपके पास। जी हाँ, देखिए सुबह सुबह का टाइम है, शो की करते हैं शुरुआत। और आपको बता दूँ, आज देखिए ये जो प्रोग्राम है ये 2 घंटे का है, क्योंकि अब से ना मैं आपके पास 2 घंटे के लिए आती हूँ और बहुत सारी करती हूँ बातें, यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे। जी हाँ, हर दिन आपके साथ रहती हूँ और इसी के साथ साथ और बहुत सारी होती हैं बातें, चाहे बात करें हेल्थ की, चाहे बात करें फिटनेस की, योगा की, मेडिटेशन की। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि देखिए हम बात तो ज़रूर करते हैं यहाँ पर क्विज की भी, और बात होती है स्पोर्ट्स की भी। तो जी हाँ, बहुत सारी बातें लेकर के आपके पास आ जाती हूँ। मॉर्निंग की करते हैं खूबसूरत सी शुरुआत, और आज क्या है कुछ खास वो बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए,

वेलकम बैक रेडियो मैनोविनेट नाउ 107.8 एफएम सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों, बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ आपके पास। और बातें हमारी चल रही हैं तो अभी फिलहाल सेगमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का, वो है दिल धड़कने दो। और इस सेगमेंट में बात होती है आपकी हेल्थ और फिटनेस की। जी हाँ, तो हेल्थ और फिटनेस की होंगी बहुत सारी बातें, आपको बस इसी तरह से जुड़े रहना है और ढेर सारे मैसेज करते रहने हैं। जी हाँ, कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखिए यहाँ पर गुड मॉर्निंग भी लिख रहे हैं और प्रोग्राम की देखिए जो अच्छा आपको लगता है ये भी मुझे बता रहे हैं, तो दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। और इसी के साथ साथ देखिए मैं आपको बताती हूँ हेल्थ से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, क्योंकि हमारा सेगमेंट है दिल धड़कने दो। और दिल धड़कने दो में अभी फिलहाल बात हो रही है इस गर्मी के मौसम की। जी हाँ, देखिए गर्मी का ये जो मौसम है ना, ये अपने साथ कई सारी बीमारियां लेकर के आता है। ऐसे में अपने आप को, खुद को ठीक रखना जरूरी है। अब देखिए इन दिनों क्या होता है ना, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, एनर्जी कम रहती है और पेट की गड़बड़ी आम हो जाती है। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं पूरे सीज़न बिना डॉक्टर के आप इसे बिता दें पूरा सीज़न और आपकी इम्यूनिटी भी दमदार बनी रहे, तो सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना होगा। हर सुबह खाली पेट आपको जो है कुछ फ्रूट्स का या कुछ फल का से सेवन जो है वो करना है। आप देखिए क्या होता है ना कि जब आप कुछ अच्छा खाते हैं तो आपकी सेहत बनी रहती है, इम्यूनिटी बनी रहती है, और इम्यूनिटी बनी रहनी ज़रूरी है। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आपको खानी चाहिए जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छी है, और आपको बता दूँ कि वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली आप मार्केट में जाएंगे तो लोकल फ्रूट है, आपको आसानी से सीजनल फ्रूट आपको मिल जाएंगे। और ऐसा भी नहीं कि आप बाद में कहें कि साक्षी ये तो फ्रूट है ही नहीं, ये तो इतने महंगे हैं। महंगे भी नहीं है और सेहत के लिए भी अच्छे हैं, इसीलिए आप तक ये सारी जानकारी लेकर के आती हूँ। चलिए बताऊँगी इसके बारे में कौन से ये फ्रूट्स हैं, लेकिन फिलहाल ले दी हुई छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मारे ब्रश 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक वीडियो मानव रचना 7.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। फिलहाल सेगमेंट दिल धड़कने दो में हम कर रहे हैं ढेर सारी बातें। जी हाँ, सेगमेंट दिल धड़कने दो जो कि आपके लिए लेकर के आती हूँ, जिसमें हम करते हैं आपकी सेहत से जुड़ी बातें, हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी बातें। जी हाँ, अब बात मैं कर रही हूँ कुछ ऐसे सीजनल फूड्स की, जिससे आप खाली पेट लेते हैं तो आप जो है भाई इस गर्मी के मौसम में आपकी सेहत बनी रहेगी। तो अगर आप सुबह सुबह सुबह खाली पेट अगर लेते हैं पपीता, तो भाई सुबह की शुरुआत आपकी काफ़ी अच्छी होगी। समझ लीजिए कि आपका पाचन जो तंत्र है, यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा और इस गर्मी के मौसम के लिए बिल्कुल सही रहेगा। जी हाँ, देखिए पपीते में पाया जाने वाला जो पेपेन एंजाइम होता है, ये ना सिर्फ खाना पचाने में मदद करता है, बल्कि अगर आपको एसिडिटी है या फिर कॉन्स्टिपेशन है या फिर कोई भी, अगर देखिए आपको रिलेटेड कोई ब्लोटिंग इश्यूज हो रहे हैं, तो ये सब में राहत दिलाता है। अब बस इसे खाना कैसे है, आपको सुबह एक कटोरी ताज़ा पपीता जो है खाली पेट खा लेना है और बस देखिए कमाल का जादू जो है ये फिर होने लगेगा। इसी के साथ साथ अगर आप गर्मियों में ये जो गर्मियों का राजा फल है ये खाते हैं, तब भी आपको बहुत फायदा होने वाला है। अच्छा, यहाँ मैं बात आम की नहीं कर रही हूँ, राजा फल इसलिए इसको कह रही हूँ क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि फलों का राजा तो वैसे आम है, नो डाउट आम है, लेकिन भाई जिसमें सबसे ज़्यादा पानी आपको मिलता है वो है वाटरमेलन। जी हाँ, यानी कि तरबूज, जिसमें करीबन कुछ 92% तक पानी मिलता है हमारी बॉडी को, और जो शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और गर्मियों में उसे बचाता है, इसके खतरे से हमें बचाता है। लेकिन अगर आप रोज़ तरबूज खाएंगे तो आपकी बॉडी का जो बैलेंस है, जो टेम्परेचर है, वो बैलेंस में बिल्कुल रहेगा। और इसे बस क्या करना है, सुबह खाली पेट एक कटोरी आपको तरबूज जो है वो खाना है। लेकिन याद रखें, खाली पेट दूध या पानी आप तुरंत बिल्कुल भी ना लें जब आप तरबूज खाते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, क्योंकि पानी की तो देखिए ज़रूरत भी नहीं होती, तो दूध भी मत लीजिएगा। आपको क्या करना है, बस तरबूज खाना है और बस हो गया। अब इसमें आपको 92% तक पानी जो है ये मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ साथ बात करें अब देखिए फलों के राजा की, जो मैं कह रही थी, और वो है आम। आम जो है इसे फलों का राजा तो कहा ही जाता है, जो गर्मियों में इसका स्वाद जो है देखिए हर एक को पसंद आता है, हर कोई आम खाना पसंद करता है और ये कई सारे गुणों से भरपूर भी है। विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर प्रचुर मात्रा में इसमें पाए जाते हैं, जो ना सिर्फ इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं बल्कि हमारी बॉडी को एनर्जी देने का भी काम करते हैं। जी हाँ, तो देखिए अगर आपको भी चाहिए ना एनर्जी, आम खाना शुरू कर दीजिए। बस आपको क्या करना है, पका हुआ आम जो है वो लेना है। बस आपको क्या करना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसे सीमित मात्रा में खाना है, क्योंकि ये शुगर जो है इसमें थोड़ी हाई होती है, इसलिए आपको कम ही खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और देखिए आम में थोड़ी सी गर्मी भी होती है, तो आपकी बॉडी पे जो है, देखिए आपको हो सकता है कि कई लोगों को ये समस्या रहती है कि अगर आम ज़्यादा खा लेते हैं तो उनको जो है थोड़े दाने हो जाते हैं या फिर उनको जो है पेट खराब होने की समस्या रहती है, तो बहुत ज़्यादा मत खाइए, कम इसकी जो क्वांटिटी है ना उसमें खाइए, तो आपको नुकसान नहीं होगा, नहीं पहुंचेगा, आपकी बॉडी बिल्कुल दुरुस्त रहेगी। चलिए कुछ और फ्रूट्स के बारे में भी आपको बताऊंगी जो कि खाली पेट आपको ले लेने चाहिए। कौन से हैं फिलहाल बताती हूँ कुछ ही देर में, आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए। ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 7.8 FM, फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों, बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ. फिलहाल चल रहा है हमारा सेगमेंट दिल धड़कने दो. जी हाँ, दिल धड़कने दो मैं आपसे बातें करती हूँ आपकी हेल्थ और फिटनेस की. जी हाँ, और यहाँ पर आपको बता दूँ कुछ फ्रूट्स के बारे में आपको बता रही हूँ. ये जो लोकल सीजनल फ्रूट्स मिलते हैं ना, कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए. और गर्मी में तो ज़रूरी भी है कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो मज़बूत बनी रहे, क्योंकि तो ये बहुत सारी बीमारियाँ ना अपने चपेट में ले लेती है. और अगर आप भी चाहते हैं ना कि ये जो बीमारी है आपको अपने पेट में बिल्कुल भी ना ले, तो उसके लिए आपको अपना ख्याल तो रखना पड़ेगा. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि खाली पेट अगर आप कुछ फ्रूट्स लेते हैं तो आपकी सेहत बनी रहेगी, जैसे कि पपीता, तरबूज, साथ ही साथ बात करें यहाँ पर आम की, तो ये भी अच्छा है. लेकिन अब बात आती है दूसरे फ्रूट की. जो हमारा जो है अगला फ्रूट है वो है मेलन. जी हाँ, खरबूजा. खरबूजा भी तरबूज की तरह ही शरीर को ठंडक रखता है, ठंडे में रखता है आपके शरीर को, साथ ही पानी की कमी से बचाने में भी काफ़ी मदद करता है. इसमें पोटाशियम है, फाइबर है, विटामिन सी है, और इसमें जो है आपकी बॉडी को देखिए जो एनर्जी देने वाले कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी ना सिर्फ बॉडी के लिए हेल्पफुल है बल्कि आपकी त्वचा को भी चमकदार बनाते हैं. कुछ ऐसे पोषक तत्व भी हैं. अब इसे खाना कैसे? सुबह नाश्ते से पहले आप एक कटोरी खरबूजा ज़रूर खाएं. अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप सारे फ्रूट्स को एक साथ ना खाएं, एक दिन आपने जो है खरबूजा खाया, एक दिन तरबूज खाया, एक दिन आम खाया सुबह ब्रेकफास्ट में, एक दिन आपने जो है पपीता खाया, तो इस तरीके से आप इंक्लूड कर सकते हैं. अब अगले फ्रूट की बात आती है और वो है हम सभी का फेवरेट सेब. जी हाँ, देखिए सेब जो है इसको अक्सर सर्दियों का फल माना जाता है, लेकिन गर्मियों में भी इसका असर जो है वो शानदार है. इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो गर्मी के मौसम में होने वाली थकान और कमजोरी से बचाता है. और वैसे भी कहते हैं ना, an apple a day keeps doctor away. इसीलिए अगर आपको डॉक्टर से रहना है दूर, अपनी रखनी है इम्यूनिटी मजबूत, तो खाइए ढेर सारा सेब, ढेर सारा एप्पल, ताकि आपकी सेहत बनी रहे. सुबह खाली पेट आप एक ताज़ा सेब ज़रूर खाइए, छिलके समेत खाइए ताकि फाइबर मिले. जो बहुत सारे लोग हैं जो छिलका पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए छिलके के साथ खाने के लिए, तो इससे फाइबर आपको मिलेगा. नहीं तो मर्जी वैसे आपकी है, खा रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसी के साथ साथ कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है, जैसे कि फलों को आपको खाली पेट खाने से देखिए उनके पोषक तत्व जो है वो जल्दी और बेहतर तरीके से हमारी बॉडी में एब्जॉर्व होते हैं. तो इसी के साथ आपको पहले कुछ नहीं खाना है, आपको खाली पेट खाना है. इसी के साथ साथ एक ही फल रोज़ आपको खाना है. आपको जो है बारी बारी हर दिन आप जो है अपना फल जो है वो बदलते रहिए, सारे मिक्स मत कीजिए, एक एक करके खाइए. फलों को आप काट कर देर तक बिल्कुल भी ना रखें, ये बहुत ज़रूरी है. ताज़े फल ही डाइट में आप शामिल कीजिए, जो आप हाथ के हाथ उसको काट के खाएं. फल खाने से तुरंत बाद आपको पानी भी नहीं पीना है, कम से कम 30 मिनट के गैप के बाद ही आपको पीना है पानी, इससे पहले आपको पानी नहीं पीना है. चलिए, ये तो रही हमारी हेल्थ और फिटनेस की बहुत सारी बातें. और इसी के साथ देखिए आप होंगे और भी बहुत सारी बातें, अपने प्रोग्राम तो लेकर आ ही जाती हूँ, लेकिन अब करते हैं आगे बातें. स्ट्रेच प्लीज हमारा सेगमेंट है और इस सेगमेंट में मैं करती हूँ आपके साथ मेडिटेशन, योगा की बातें. जी हाँ, अब देखिए हमने अपनी सेहत का ख्याल तो रख लिया, हमने ये तो पता कर लिया ना कि किस तरह से आप अपनी फिटनेस को बनाए रखेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपकी फिजिकल बॉडी जो है अच्छी है, बनी हुई है और आप अच्छे से अपनी फिजिकल बॉडी पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी ये भी है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ पर भी काम करें. तो उसके लिए ज़रूरी है कुछ बातों का ख्याल रखना और योगा करना, मेडिटेशन करना. उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं या कौन कौन से ऐसे योगा आसन है जो आपके लिए अच्छी है, बताऊंगी कुछ ही देर में. फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। जी हाँ, बातें हमारी चल रही हैं बहुत सारी। अब देखिए, बात करते हैं हमारे अगले सेगमेंट की जो है स्ट्रेच प्लीज। चलिए, इस सेगमेंट में बातें हमारी चलती हैं, आपको योगा के बारे में आपको बताती हूँ। देखिए, योगा जो है ये एक शब्द नहीं है, एक जिंदगी का तरीका है। ये सिर्फ बॉडी को ट्विस्ट या स्ट्रेच करना इसमें नहीं होता है, ये अपने मन को, अपनी सांसों को और अपनी सोल को एक रिदम में लाना होता है। जब हम योगा करते हैं, हम सिर्फ हेल्दी नहीं बनते हैं, बल्कि हम खुद को और ज़्यादा अपने करीब लाते हैं, स्ट्रेस से दूर जाते हैं और सुकून के पास चले जाते हैं। योगा का मतलब है जुड़ना। जी हाँ, अपने आप से, अपनी एनर्जी से और इस पूरे यूनिवर्स से, चाहे वो सूर्य नमस्कार हो या फिर अनुलोम विलोम। हर पोस्चर के पीछे एक पर्पस होता है, फिट बॉडी, काम माइंड और पीसफुल सोल। तो बस रोज आप कुछ मिनट अपने निकालिए अपनी जिंदगी के, आप कुछ पूरे दिन के एक आपको कुछ मिनट निकालने हैं और आपका जो है, देखिए ये ध्यान जो है आपको केंद्रित करना है और उसके बाद आपको शुरू करना है अपना योग, क्योंकि योग से अगर आप जुड़ जाते हैं तो बस आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं और आप देखेंगे, देखिए आपकी ज़िंदगी जो है ना बिल्कुल एक नया मोड़ ले लेगी, एक बैलेंस जो है आ जाएगा, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ इससे बन जाएगी। तो चलिए, योग जो है ये इम्पॉर्टेंट है, योगा इम्पॉर्टेंट है, पोस्चर कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, योगा आसन कितना ज़रूरी है, कौन कौन से योगा आसन करने चाहिए, ये सारी बातें आपके साथ ज़रूर करूँगी। लेकिन फिलहाल अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैनोवरेश्वर 7.8 एफएम सुन रहे हैं। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों, बहुत सारी बातों के साथ मैं आ जाती हूं यहां पर आपके पास। और प्रोग्राम रिचार्ज मॉर्निंग में टाइम चल रहा है हमारे खूबसूरत से सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज का, जिसमें बात करती हूँ योगा के बारे में। जी हाँ, देखिए योगा जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और योगा जो है एक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। अब बात करते हैं हम एक ऐसे योगिक प्रैक्टिस की जिसने ना सिर्फ इंडिया को बल्कि वर्ल्ड हेल्थ मैप पर अपने आप को प्लेस किया है। एक ऐसी योगिक ये प्रैक्टिस है। जी हाँ, ये देखिए ऐसा ज़रूरी है कि आप इसे ज़रूर करें, इससे जो है आपकी एनर्जी जो है ये बरकरार रहती है। और आज मैं बात कर रही हूँ सूर्य नमस्कार यानी कि सन सैल्यूटेशन की। सूर्य नमस्कार एक पूरा बॉडी वर्कआउट है, बिना किसी मशीन के इसे किया जाता है। जी हाँ, किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। 12 स्टेप्स में ये जो योगिक प्रैक्टिस है यानी कि सूर्य नमस्कार जो है ये डिवाइडेड है, और साथ ही ये आसन जो है ये ना सिर्फ आपकी बॉडी को स्ट्रेच करता है बल्कि आपके माइंड ब्रेन साथ ही आपके ब्रेथ को और सोल को भी एक बैलेंस में लाता है। जी हाँ, तो चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे अब किस तरह से इसे किया जाता है, यानी कि इसके कौन कौन से जो है, देखिए इसमें अलग अलग क्योंकि ये डिवाइडेड है, 12 अलग अलग पोजेज में ये डिवाइडेड है। तो अब बात करते हैं क्योंकि स्टेप्स जो है इसके 12 स्टेप है। पहला स्टेप है प्राणायाम यानी कि प्रेयर पोज। सीधे खड़े हो जाएं आप पहले और दोनों हाथों को जोड़ लें, अपने दोनों हाथ जो आपके चेस्ट के बिल्कुल सामने होने चाहिए। ये आता है पहला स्टेप जो है प्राणायाम आसन। और इसके बाद आता है अगला यानी कि स्टेप जो है वो है हस्ताउत्सानासन, यानी कि सांस लेते हुए दोनों हाथ जो है ऊपर आपको उठाने हैं और पीछे थोड़ा सा आपको बेंड करना है। आपकी जो कमर है वो हल्की सी बेंड होगी। अब आपको अपने हाथों को रेज करना है और पीछे की तरफ आपको बेंड करना है। ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप आता है देखिए आपका जो है पादहस्तासन। अब इसमें होता है हैंड टू फुट पोज यानी कि सांस आपको छोड़नी है, आगे झुकना है और हाथ पैरों के पास लेके जानी है। इससे आपकी बॉडी जो है एक अच्छे पोस्चर मेंटेन करती है और धीरे धीरे, मैं ये मानती हूँ कि एकदम से आप जो है बहुत ज़्यादा बेंड नहीं कर पाएंगे, तो धीरे धीरे जिनकी कमर में दर्द रहता है या जिनको कोई भी ऐसी दिक्कत है कमर से जुड़ी हुई या फिर आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी में अभी ये दिक्कत आ रही है, तो शुरुआत में ये दिक्कत रहती है लेकिन जब आप धीरे धीरे इसे करने लगेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। अब इसके बाद आता है अगला स्टेप जो कि है चौथा स्टेप, और वो है अश्वसंचालनासन। जी हाँ, इसको करने के लिए आपको अपने राइट लेग आपको पीछे लेके जाना है, लेफ्ट लेग आपको फोल्ड करना है और चेस्ट जो है आपको ऊपर रखनी है। और ये है हमारा चौथा पोज। और पांचवा पोज आ जाता है प्लैंक पोज यानी कि डंडा आसन। दोनों पैर पीछे आपको ले जाने हैं, सीधा बॉडी प्लैंक जो है ये बन जाए, इस तरीके से आपको ये पोज करना है। जिसके बाद सीधा सीधा आते हैं हम अगले हमारे स्टेप पे जो है आपका अष्टांग नमस्कार। जी हाँ, इसमें क्या करना है आपको, चेस्ट चिन और दोनों घुटने जमीन पर आपके 8 पॉइंट टच करते हैं। ये है हमारा अगला आसन। इसके बाद आ जाता है कोबरा पोज यानी कि भुजंगासन। इसके बारे में चलिए आपको बताऊंगी लेकिन फिलहाल अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ रोजाना। और साथ ही अभी फिलहाल हमारी बात चल रही है सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज में, योगासन की। और आपको बता रही हूँ 12 स्टेप जो कि आते हैं सूर्य नमस्कार में। बात कर रहे हैं 7वें स्टेप की, जो है भुजंगासन यानी कि कोबरा पोज। सांस लेते हुए आपको चेस्ट ऊपर उठानी है, और पहले आपको लेट जाना है, उसके बाद जमीन पे, उसके बाद आपको जो है आपको चेस्ट ऊपर लेके जानी है, और हाथ के सपोर्ट से आपको इस तरह से करना है। तो कोबरा पोज जो है ये मेंटेन होता है। इसके बाद आता है माउंटेन पोज, यानी कि आपका जो है वो आता है पर्वतासन, यानी कि हिप्स ऊपर हील नीचे, इन्वर्टेड वी शेप आपको इससे बनानी होती है। जिसके बाद अश्व संचालासन एक बार फिर से हम करते हैं 9वें स्टेप में। लेग आपको लेफ्ट लेग, पहले जो है आपने देखा होगा कि हमने राइट लेग से किया था, अब लेफ्ट लेग की बारी, आगे लेके जाना है। और उसके बाद आपका जो राइट लेग है वो पीछे होगा, लेफ्ट आगे होगा। और सेम जैसे कि हमने 4th स्टेप में किया था कि आपको ये फोल्ड करना है, चेस्ट ऊपर की तरफ आपको रखनी है। और ये हमारा हो गया जो नेक्स्ट स्टेप है, यानी कि जो अश्व संचालासन है इसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद एक बार फिर से आ जाता है यहाँ पर, देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक आसन, और वो है पादहस्तासन। दोनों पैर साथ आपको लेके आने हैं और उसके बाद झुक जाना है। ये आपके पेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ये आपकी फुल बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। 11वें स्टेप में हम आते हैं हत्सा उत्सानासन पे, और सांस लेते हुए आपको फिर से दोबारा से खड़े होना है और हाथ को ऊपर लेके जाने हैं। जिसके बाद आपके जो फर्स्ट स्टेप है वो एक बार फिर से आता है, यानी कि जो प्राणायाम आसन है वो फिर से आता है। फिर से आपको हाथ जोड़ने हैं, और यहाँ पर आप बिल्कुल शांत रहेंगे, और साथ ही ग्रेटफुल भाव के साथ आपको जो है ये जो पूरा सूर्य नमस्कार है इसे ख़त्म करना है। ये सिर्फ एक, देखिए एक पूरा, एक पूरा जो स्टेप से बनता है ना, ये पूरा ये 12 स्टेप के साथ एक सूर्य नमस्कार बनता है। और इसी में अगर आप सिर्फ ये एक आसन कर लेते हैं ना, मानो जैसे आपने पूरे योगासन जो है अपने कर लिए हैं, और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा जो है वो ज़रूर मिलेगा। इसके कुछ बहुत ही बेहतरीन अगर मैं आपको बेनिफिट्स बताऊँ तो ये बॉडी का एक कम्प्लीट वर्कआउट है। लेग्स, आर्म्स, बैक, चेस्ट सब जो है इंगेज होता है। इससे आपकी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, पोस्चर, और साथ ही कोर स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होती है। सांस के फ्लो के साथ मूवमेंट होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है हमारे लंग्स के लिए और हमारे ब्रीदिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये आपके वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। और जिनको बॉडी टोन करनी है ना अपनी, यानी कि टोनिंग आपको करनी है, आपकी स्किन टोन अच्छी होनी चाहिए, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। माइंड को ये शांति और क्लैरिटी देता है, स्ट्रेस से दूर करता है, और एनर्जी देता है भरपूर मात्रा में। आपके डाइजेशन को बूस्ट करता है, स्ट्रेंथ को आपको बढ़ाता है, और इम्यूनिटी देता है। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात यह है कि रोज़ाना अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपका दिन पॉजिटिव रहता है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब इसी के साथ यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद हम करेंगे और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि अब टाइम जो है ये हो चला है अगले सेगमेंट का। कौन सा है ये अगला सेगमेंट बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कमाल के गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।
1: सिमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ हर दिन, यानी कि डेली आपके साथ 2 घंटे यहाँ रहती हूँ, बहुत सारी करती हूँ बातें। फिलहाल बातें हमारी चल रही हैं क्योंकि अब हमारे अगले सेगमेंट का टाइम है। सेगमेंट का नाम है पावर प्ले विद साक्षी। जी हाँ, पावर प्ले विद आरजे साक्षी में हम करते हैं बहुत सारी बातें स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई, बहुत सारी स्पोर्ट्स अपडेट आपके पास लेकर के जरूर आती हूँ। अच्छा, अब एक आपको बताने वाली हूँ, बहुत ही खास जानकारी आप तक पहुँचाने वाली हूँ। जी हाँ, बात मैं कर रही हूँ एक बहुत ही कमाल के मूवमेंट के बारे में, और ये एक नहीं बल्कि दो हैं। सबसे पहले आता है खेलो इंडिया, और इसी के साथ साथ दूसरा है फिट इंडिया मूवमेंट। देखिए, नए भारत का ये स्पोर्टी अंदाज है, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं बल्कि एक विजन है जिससे हमारा देश एक फिट, एक्टिव और स्पोर्ट्स ओरिएंटेड सोसाइटी की तरफ बढ़ रहा है। बात करें खेलो इंडिया प्रोग्राम की, ये लॉन्च हुआ था योर 2018 में। इनिशिएट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। आजकल सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, स्पोर्ट्स भी एक प्रॉमिसिंग करियर बन चुका है, पर कई टैलेंटेड बच्चे सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज, कोचिंग या अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है। इसी गैप को ब्रिज करने के लिए सरकार ने खेलो इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया। जी हाँ, खेलो इंडिया का मेन गोल है ग्रास रूट्स लेवल पर स्पोर्ट्स टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, ट्रेन करना और स्पोर्ट उनको जो है खेलने के लिए सपोर्ट करना। अब होता यह है कि स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक ये स्कीम इंश्योर करती है कि हर एक यंग एथलीट को एक प्लेटफॉर्म मिले जहां वो अपना टैलेंट दिखा सके। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि एनुअल स्पोर्ट्स डे भी किए जाते हैं, तो एनुअल खेलो इंडिया गेम्स स्कूल और यूनिवर्सिटी लेवल का नेशनल गेम्स इनको कहा गया है। इनका ये गेम्स होते हैं जहां देश भर के टैलेंटेड प्लेयर्स कम्पीट करने आते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की जाए तो सिलेक्टेड एथलीट्स को कुछ 5 लाख रुपए पर ईयर तक दिए जाते हैं एज अ स्कॉलरशिप उनको मिलते हैं, और या फिर हो सकता है कि 8 साल तक उनको ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन और इक्विपमेंट्स के लिए भी दिया जाता है। जिन बच्चों में टैलेंट है वो देखिए, टैलेंट जो है कभी छुपता नहीं है, और सरकार इसीलिए ये मूवमेंट को लेके आई है ताकि जो बच्चे टैलेंटेड है वो पीछे ना रहे, हमारा देश आगे बढ़ता रहे। बात करें देखिए यहाँ पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो छोटी सिटीज और टाउन में मॉडर्न स्टेडियम और ट्रेनिंग सेंटर डेवलप किए जा रहे हैं और ज्यादा। इनफैक्ट सर्टिफाइड कोचेस, टैलेंटेड जो स्काउटिंग है और साथ ही परफॉर्मेंस एनालिसिस जैसे फीचर्स से एथलीट्स का होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाता है। ये मूवमेंट सिर्फ मेडल जीतने तक लिमिटेड नहीं है, ये एक माइंडसेट क्रिएट करता है जिसमें हर बच्चा स्पोर्ट्स को सीरियसली जरूर लेता है। तो अगर आप में भी है ये बात तो आप भी जुड़ जाइए इस मूवमेंट के साथ। चलिए, फिलहाल आज हमने जाना है कि ये जो खेलो इंडिया मूवमेंट है ये क्या है, लेकिन इसके साथ साथ एक और मूवमेंट जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो है फिट इंडिया मूवमेंट। इसमें क्या है, ये कब लॉन्च हुआ और इसे किस तरह से जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, और क्यों देना चाहिए और क्यों जरूरी है इसके साथ जुड़ना, चलिए बात करेंगे इस पे। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बातें हमारी चल रही हैं और आपको बता रही हूँ एक बहुत ही खास जानकारी आप तक पहुँचा रही हूँ। अच्छा, हम बात करें हमारे सेगमेंट पावर प्ले विद आरजे साक्षी के, इस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में। अब जी हाँ, खेलो इंडिया मूवमेंट के बारे में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से सरकार जो है, यानी कि हमारी गवर्नमेंट जो है, वो हेल्प कर रही है स्टूडेंट्स की, ना सिर्फ स्कूल लेवल के बल्कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल तक के, कि उनका जो हिडन टैलेंट है वो हिडन ना रहे बल्कि देश के लिए वो देखिए आगे बढ़ते रहे, कोई भी चीज़ की कमी ना हो इस गैप को पूरा करने के लिए, कि उनको सही कोचिंग मिले, सही इक्विपमेंट मिले, सही जगह खेलने के लिए, ताकि वो जो है अपने टैलेंट को और ज़्यादा उभार सके और ज़्यादा जो है वो अच्छे से सीख सके। इसीलिए खेलो जो है मूवमेंट जो है वो लेकर आई। इसी के साथ साथ एक और मूवमेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का है और वो है फिट इंडिया मूवमेंट। जी हाँ, फिट इंडिया मूवमेंट जो है ये 29 अगस्त 2019 यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन इसे लॉन्च किया गया और ये इनिशिएट किया था हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज के देखिए जो फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल है, इसमें फिटनेस एक लग्जरी नहीं, नेसेसिटी बन चुकी है और इसी थॉट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया फिट इंडिया मूवमेंट। इनफैक्ट देखिए, इस मूवमेंट के लिए पीएम मोदी ने खुद कहा था कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। फिट इंडिया का मकसद है हर भारतीय को हेल्थ और वेलनेस के प्रति अवेयर बनाना, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर कोई ऑफिस गोइंग या कोई रिटायर अगर हो चुके हैं। क्योंकि अक्सर होता है ना कि भाई हम ये सोचते हैं कि खेल कूद वाली बात है तो सिर्फ बच्चों को ही करना चाहिए, हम बच्चों को आगे कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। चाहे आप ऑफिस जाते हैं, चाहे आप घर में हैं, चाहे जो आप हाउसवाइफ हैं, होम मेकर हैं या फिर आप रिटायर हो चुके हैं, हर किसी को फिटनेस जो है ये ज़रूरी है उन्हीं के लिए और ये नेसेसिटी हमारी, कोई ये जो है लग्जरी नहीं है, ये हमारी ज़रूरत जो है अब बन चुकी है। अब बात करें इस मूवमेंट के गोल की तो देखिए, फिजिकल फिटनेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, रोजाना एक्सरसाइज, योगा, साइकिलिंग और वॉकिंग जैसी डेली हैबिट्स को इंकरेज करना, मेंटल वेलनेस के प्रति थोड़ा सा और सजग होना यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन और हेल्दी रूटीन प्रमोट किए जाते हैं इसी मूवमेंट के अंदर। इनफैक्ट स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिस और मिनिस्ट्रीज सभी को फिट इंडिया सर्टिफाइड जो है बनाया जा रहा है, जहां रेगुलर फिटनेस एक्टिविटीज कंपलसरी कर दी गई हैं। फिट इंडिया मोबाइल ऐप और फिटनेस स्कोर ट्रैकर जैसे टूल्स भी जो है वो लोगों को डिजिटली एक्टिव बनाए रखते हैं। आज हर स्कूल में फिटनेस वीक्स और हर ऑफिस में वेलनेस ब्रेक और साथ ही हर मोहल्ले में मॉर्निंग वॉक क्लब शुरू हो गए हैं। फिट इंडिया अब एक मूवमेंट से ज्यादा एक लाइफस्टाइल जो है ये बन चुका है। जब हर गली में फुटबॉल घूमेगा, जब हर बच्चा योगा करेगा, जब हर स्कूल में एक खिलाड़ी पैदा होगा, तभी तो इंडिया ट्रूली बनेगा फिट भी और हिट भी। चलिए, इसी के साथ ये तो बात रही हमारे आज के सेगमेंट में। देखिए, स्पोर्ट्स की हम बात करते हैं और ये दोनों ही चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना, इस मूवमेंट के बारे में पता होना स्पोर्ट्स के बारे में। और क्योंकि देखिए, यही जो स्पोर्ट्स है ना, पहले कहा जाता था खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन आजकल ये दोनों ही ज़रूरी है। यानी कि अगर आप खेल कूद करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपने फोकस उस पर भी रखते हैं, तो दोनों ही चीज़ें हमारे लिए अच्छे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जो अगर अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं तो यही एक करियर ऑप्शन है, बल्कि अब करियर ऑप्शन आपका स्पोर्ट्स में भी है। और इसीलिए सरकार जो है ऐसे कुछ मूवमेंट्स लेकर के आ रही है आपके पास, ताकि आप फिट भी रहें और हिट भी। चलिए, इसी के साथ लेती हूँ अब एक छोटा सा ब्रेक। आगे और भी होंगी बहुत सारी बातें, एक बहुत ही खास सेगमेंट जो कि आपके लिए लेकर के आ जाती हूँ और सेगमेंट का नाम है कौन बनेगा सेहतमंद। तो चलिए जल्दी से अपने मोबाइल फोन्स रखिए तैयार, क्योंकि मैं पूछने वाली हूँ आपसे सवाल। कुछ सवालों के जवाब आप देंगे और उसके बाद आपको बताने वाली हूँ कि क्या ट्रिक है इसमें, यानी कि कैसे सवाल होने वाले हैं और इससे क्या फायदा आपको मिलने वाला है। बात करेंगे इस पे। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं। जी हां, बातें हमारी चल रही हैं और अभी बात करें हमारे अगले सेगमेंट की जो कि है बहुत ही ज्यादा कमाल का। जी हां, बात कर रही हूं हमारे अगले सेगमेंट कौन बनेगा सेहतमंद की। और इस सेगमेंट में आपसे पूछती हूँ कुछ सवाल और आपको दे रही है कुछ जवाब। और जी हाँ, जिसके सवालों के जवाब सही रहे और पूरे महीने आप कंसिस्टेंट होके जवाब देते हैं और सही जवाब देते हैं, तो देखिए मैं आपको बुलाने वाली हूँ रेडियो मानव रचना और आपको मौका मिलेगा यहाँ रह के मेरे साथ लाइव बातचीत करने का और सभी आरजे से मिलने का भी। चलिए इसी के साथ साथ यहाँ पर आज का क्या है पहला सवाल ये आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले भाई रेडी होने का भी वक्त देना होगा, बिल्कुल देना होगा, क्योंकि आपके मैसेजेस आ जाते हैं कि साक्षी पहले बता तो दो। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अब शुरू होने वाला है हमारे सेगमेंट का पहला सवाल आने वाला है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। Feel good, feel live.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। और देखिए, अब मैं आपके साथ रहती हूँ 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना, और होती हैं हमारी बहुत सारी बातें। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि मैं ना अब ये सेगमेंट्स लेकर आती हूँ आपके लिए। जी हाँ, हमारे पहले सेगमेंट में हम बात करते हैं दिल धड़कने दो, ये हमारा पहला सेगमेंट है जिसमें हम बात करते हैं हेल्थ और फिटनेस की। और उसके बाद आता है स्ट्रेच प्लीज सेगमेंट, जिसमें हम बात करते हैं योगा की, मेडिटेशन की। और फिर आ जाता है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसमें हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की। और इसी के साथ साथ आ जाता है हमारा आखिरी, जो कि है कौन बनेगा सेहतमंद। और इसमें हम बात करते हैं इंटरेस्टिंग क्विज, आपसे सवाल जो है वो आपसे पूछती हूँ मैं, और जवाब आपको देने होते हैं फटाफट। और जो देगा सही जवाब, हर महीने कंसिस्टेंट रोके और बिल्कुल सही जवाब देगा, उसको मिलेगा मौका यहाँ मेरे साथ लाइव बातचीत करने का, रेडियो मानव रचना आने का, और साथ ही सभी आरजे से मिलने का भी। इसी के साथ साथ फिलहाल बातें हमारी चल रही हैं, पहला सवाल आपसे पूछती हूँ, और बड़ा ही वैसे तो आसान सा सवाल है, लेकिन जरा ध्यान से सुनिएगा आप और इसका जवाब जो है वो दीजिएगा, क्योंकि सवालों के जवाब ना बहुत ही आसान है और आप आसानी से दे भी देंगे। पहेली है बड़ी आसान सी, और पहेली है रंग नहीं स्वाद नहीं फिर भी सबसे जरूरी मैं, ना रहूं तो प्यास तड़पाती है, शरीर का 70% हिस्सा हूं मैं, बताओ कौन हूं मैं। चलिए, ये है आपकी पहेली और इसका देना है आपको जवाब, और जल्दी से झटपट से दीजिए जवाब, क्योंकि आपके जवाबों का इंतजार मुझे है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं, बड़ी आसान से आज मैंने पहेली पूछी है, आपको फटाफट से जवाब देना है। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। इसी के साथ एक बार फिर से पहेली में दोहरा देती हूँ, रंग नहीं स्वाद नहीं फिर भी सबसे जरूरी मैं, ना रहूं तो प्यास तड़पाती है, शरीर का 70% हिस्सा हूं मैं, बताओ कौन हूं मैं। तो जल्दी से झटपट से इसका जवाब देंगे आप, और उसके बाद आपको बताने वाली हूं क्यों है ये इतना जरूरी। चलिए बात करेंगे इस पे, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में करते हैं हम बहुत सारी बातें. फिलहाल बात करें हमारे सेगमेंट कौन बनेगा सेहतमंद में. एक बहुत ही खास पहेली मैंने आपसे पूछी है, बड़ी आसान सी पहेली, मतलब इस पहेली में ना जवाब है. अच्छा मैं आपको बता दूँ कि एक बार पहेली मैं दोहरा देती हूँ और उसके बाद आप देखिए जल्दी जल्दी जो जवाब आया ना, जिसका सबसे पहले जवाब आया वो भी आपको जरूर बताऊंगी. पहेली है, रंग नहीं स्वाद नहीं फिर भी सबसे जरूरी मैं, ना रहूं तो प्यास तड़पाती है, शरीर का 70% हिस्सा हूं मैं, बताओ कौन हूं मैं. तो देखिए इसका जो जवाब है ना इसी पहेली के अंदर है. वही देखिए प्यास जो है ये बहुत ज्यादा हमें लगती है गर्मी के इस मौसम में, और आपको भी ये पहेली सुन के तो लगी गई होगी. जी हाँ, बॉडी का यानी कि हमारे शरीर का 70% पानी जो है ना यही हमारी बॉडी में होता है. जवाब है पानी जो कि है इसका सही जवाब. और जिस जिसने मुझे जवाब दिए हैं, देखिए पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि आप मुझे फटाफट से जवाब भेजते हैं. अब देखिए किसी ने कुछ लिखा है तो किसी ने कुछ लिखा है. किसी ने लिख के दिया है कि हमारी बॉडी में 70% खून होता है, तो किसी ने लिख के दिया है कि पानी होता है. तो वही जिस जिसने पानी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है. और साथ ही साथ जो सबसे पहला जवाब जिसने मुझे दिया है वो और कोई नहीं हमारी लिसनर है. जी हाँ, जिनका नाम है मोनिका जी. मोनिका जी आपका जवाब बिल्कुल सही है, सटीक है और बहुत तेजी से आपने दिया है जवाब. देखिए बहुत जल्दी जल्दी आपको अपनी उंगलियां जो है ये चलानी होगी ताकि आप फटाफट से मेरा सवालों का जो है मेरे जवाब आप दे सके, पहेली का जवाब दे सके. तो चलिए कौन बनेगा सेहतमंद में, जो हमने पहला सवाल पूछा उसका जवाब दिया हमारी लिसनर मोनिका जी ने. चलिए एक और आपसे पहेली पूछने वाली हूँ और आपको बता

जब प्यास लगती है तो हमारी जो प्यास है सिर्फ और सिर्फ पानी ही बुझा सकते हैं। आप कितना भी कोई सॉफ्ट ड्रिंक ले लीजिए, आप कोई भी जूस ले लीजिए, लेकिन जो पानी से हमें सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। पानी की जरूरत सभी को होती है, पानी जरूरी भी है। चलिए इसी के साथ अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर रहती हूँ आपके पास 9 बजे तक रोजाना, यानी कि अब हफ्ते के 7 दिन आपके साथ रहती हूँ मैं 7 से 9 बजे तक। बहुत सारी हो रही हमारी बातें,

सेगमेंट कौन बनेगा सेहतमंद में मैं आपसे पूछ रही हूँ कुछ पहेलियों के जवाब। और देखिए आप सही सही जवाब तो दे रहे हैं। अब अगली पहेली का वक्त हो गया है और यहाँ पर अगली हमारी पहेली है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सुबह सुबह आ जाऊं तो दिन भर ऊर्जा लाऊं, फिटनेस से मेरा नाता, बताओ क्या हूँ मैं कहलाता। ये है ये पहेली और फटाफट से आपको इसका जवाब जो है वो देना है। और आपको बता दूं मैं एक बार फिर से पहेली दोहरा देती हूं ताकि आपको ये ना लगे कि साक्षी ने पहेली तो बताई लेकिन क्या बताई, हमें याद क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि एकदम से हम भूल जाते हैं ना, कभी एकदम से हम याद करते हैं अरे क्या था फिर एकदम से भूल जाते हैं। चलिए एक बार फिर से दोहरा देती हूं आपके लिए। सुबह सुबह आ जाऊं तो दिन भर ऊर्जा लाऊं, सुबह सुबह आ जाऊं तो दिन भर ऊर्जा लाऊं, फिटनेस से है मेरा नाता, बताओ क्या हूं मैं कहलाता। अब आपको इस पहेली का देना है जवाब। मैं कर रही हूँ आपके जवाबों का इंतजार, फटाफट से दीजिए जवाब और अभी फिलहाल कहीं मत जाइए। और नंबर एक बार बता देती हूँ आपको फिर से, 8010781078 इस नंबर पे आपको देने हैं जवाब। जो सबसे पहले सटीक जवाब देते हैं देखते हैं कौन है वो लोग। आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो मैनोरमा 107.8 FM, फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैनवरेश्रा 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना आपके साथ रहती हूं। और आपको बता दूं, आपके लिए कमाल के प्यारे प्यारे सेगमेंट्स भी लेकर के आती हूं और उसमें हम करते हैं बहुत सारी बातें। फिलहाल सेगमेंट चल रहा है हमारा कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें हम बात करें एक पहेली जो है मैंने आपसे पूछी है, इसका जवाब जिसने सही दिया, सटीक दिया और रोजाना जो जवाब देगा एक महीने तक रेगुलर रहकर कंसिस्टेंट रहकर, उसको मौका मिलेगा हमारे रेडियो स्टेशन यानी कि रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम आने का और लाइव बातचीत करने का और हमारे सभी आरजे से भी मिलने का। तो चलिए आप दीजिए पहेली का जवाब। एक बार फिर से पहेली जो है मैं दोहरा देती हूँ। सुबह सुबह आ जाऊं तो दिन भर ऊर्जा लाऊं, फिटनेस से है मेरा नाता, बताओ क्या हूं मैं कहलाता। जी हाँ, इसका जवाब आपको देना था और इसका सबसे पहले जो जवाब दिया है हमारे लिसनर बबलू जी ने जवाब दिया है। जी हाँ, बहुत सारे जवाब यहाँ पर मेरे पास आए हैं लेकिन जो सबसे पहले सटीक सही जवाब आया है वो आया है हमारे लिसनर बबलू जी का, जिन्होंने लिखा है कि ये जो है इसका नाम है व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज। बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है और ज़रूरी है एक्सरसाइज करना। ये हमेशा मैं आपसे कहती हूँ, एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। ये इनफैक्ट आपकी एक अच्छी हैबिट है, अगर आप इसे रोजाना करते हैं आपकी लाइफस्टाइल जो है ये बदल जाती है। चलिए इसी के साथ यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आपका ही मजा आइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मैनवरेश्रा 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। जी हाँ, रोजाना सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ, यानी कि हफ्ते के 7 दिन आपके साथ रहती हूँ और इसी के साथ बातें आपसे करती हूँ बहुत सारी। अच्छा, अभी ना मैंने आपको पहली पूछी और कई सारे जवाब भी आपके आए हैं और आपको इस तरह से पार्टिसिपेट करना, देखिए यही इम्पोर्टेंट है कि हम जहाँ भी हम कुछ कर रहे हैं ना, मतलब एक पार्टिसिपेशन तो होना ही चाहिए और साथ ही इससे हमें खुद भी कॉन्फिडेंस मिलता है। तो चलिए, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज बहुत सारी हमने बातें करी हैं, अलग अलग सेगमेंट्स में हमने बहुत सारी जानकारी जो है मैंने आपको दी है और आपने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है। चलिए, इसी के साथ वक्त हो जाता है आपसे इजाज़त लेने का, क्योंकि अब आने वाली है RJ दीक्षा जो करेंगी आपसे बहुत सारी बातें। तो चलिए, अब मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी आपसे कल। तब तक के लिए कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूँ दीक्षा आपके साथ, और टाइम हुआ है खास बातचीत करने का हमारे एक्सपर्ट के साथ। और प्रोग्राम का नाम है सुरक्षा संवाद, जो हम खास तौर पर से लेकर आते हैं आपके लिए फरीदाबाद पुलिस के साथ मिलकर। ये एक अहम सीरीज है जहां पर हम कभी बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की, तो कभी बात करते हैं ट्रैफिक से जुड़ी हुई सेफ्टी रूल्स की, और कभी बात करते हैं हम महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसमें परिवार सबसे ज्यादा या फिर परिवार के लोग सबसे ज्यादा घबराते हैं, मिसिंग। कोई बच्चा या बड़ा घर से कहीं चला जाए, लापता हो जाए, बहुत समय तक ढूंढने के बाद भी मन हमेशा व्याकुल रहता है कि वो इंसान इस दुनिया में है भी या नहीं है। क्योंकि अगर नहीं है और इस बात की पुष्टि हो जाती है तो मन को दुख तो लगता है, पर इस बात की संतुष्टि होती है कि अब इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। पर ये इंतज़ार अपने आप में बहुत कठिन होता है, और बहुत से ऐसे मिसिंग केसेस, गुमशुदा केसेस आप अखबार में अक्सर पढ़ते रहते हैं, अलग अलग कॉलम्स में तस्वीरें भी देखते हैं, और हर रोज़ कहीं ना कहीं इंटरनेट पर वीडियोज़ भी देखते हैं। बट एक्चुअली में आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो इस फील्ड में कार्य कर रहे हैं और बहुत लगन से कार्य कर रहे हैं। फरीदाबाद पुलिस के किडनैपिंग एंड एबडक्शन टीम के इंचार्ज हैं क्राइम ब्रांच के, और हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं सरजीत सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना में।
1: मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। सरजीत सिंह जी, हम मिसिंग केसेस के बारे में आज आपसे बात करने वाले हैं, और आप काफ़ी समय से इन केसेस के बारे में काम कर रहे हैं, आप टीम के इंचार्ज हैं, तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के केसेस होते रहते होंगे। और आजकल जैसे वेब सीरीज में दिखाया जाता है, जब मिसिंग केसेस होते हैं तो बहुत खतरनाक लेवल तक भी पहुंच जाते हैं आपसी रंजिश वगैरह की वजह से, लेकिन लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अगर कोई बच्चा या बड़ा या कोई भी व्यक्ति घर का कहीं चला जाता है तो क्या करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न है मेरे पास जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जैसे भारत में सबसे ज्यादा कौन से वर्ग के लोग लापता होते हैं, बच्चे, महिलाएं या बुजुर्ग?
1: भारत में सबसे ज़्यादा महिलाएं गायब होती हैं, उसके बाद बच्चे, फिर बुजुर्ग,
0: एंड में बुजुर्ग आते हैं। ज्यादातर महिलाएं जो
1: महिलाएं ज्यादा मिसिंग होती हैं।
0: और इनकी कोई एज कैटेगरी होगी कि क्या
1: 18 से 35 के ज्यादा चांस होते हैं,
0: यानी ये जो यंग एज होती है जिसमें ज्यादातर ट्रैफिकिंग के मामले आ जाते होंगे या फिर कोई और मामले आ जाते हैं, पर्सनल कारणों से घर से चले जाना, इस तरीके के मामले आते हैं जी। और बच्चे दूसरे नंबर पर आते हैं
1: जी।
0: तो फरीदाबाद की बात में अगर करूं तो फरीदाबाद में ऐसे केसेस महिलाओं के ही ज्यादा मिलते हैं
1: जी।
0: तो बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो हम अक्सर देखते हैं कि गायब हो गई, और हमने अक्सर देखा हुआ है ये टेलीविजन वगैरह में और फिल्मों में कि महिलाएं जो गायब होती हैं, घर परिवार वाले जब रिपोर्ट कराने जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि थोड़ा टाइम रुकिए, वेट कीजिए, अपनी मर्जी से गई होगी, अगर समझदार है, 18 साल से बड़ी है तो अपनी मर्जी से गई होगी। क्या वाकई ऐसा होता है?
1: ऐसा कुछ नहीं होता। क्या होता है, कई बार शिकायत करता ही अपने शर्म के मारे, कब बेइज्जती ना हो जाए, वो अपने स्तर पर ही प्रयास करते हैं ढूंढने के, अपने स्तर पर ही प्रयास करते हैं। पुलिस के पास जब भी इन्फॉर्मेशन आती है, पुलिस उस पर FIR लॉज करती है और उनको ट्रेस करने के पूरे प्रयास करती है, ढूंढती भी है
0: जी। तो किसी इंसान के लापता होने के शुरुआती 24 घंटे कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, और आम लोग इसमें क्या गलती कर जाते हैं? बहुत सारे लोग डर के मारे पुलिस को नहीं बताते, जैसे आपने कहा। तो पहले 24 घंटे में क्या करना चाहिए?
1: 24 घंटे बहुत अहम होते हैं, खासकर छोटे बच्चों के मामलों में, क्योंकि छोटे बच्चे किसी भी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं या किसी के भी लालच में आ सकते हैं। तो हर पेरेंट्स को सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, ताकि नाकाबंदी करके या अलग अलग टीमें बना के सर्च करके बच्चे को ढूंढा जा सके, क्योंकि बच्चा के साथ कुछ भी घटना हो सकती है
0: जी।
1: लेकिन माँ बाप अक्सर गलती ये करते हैं कि वो अपने स्तर पर प्रयास करते हैं ढूंढने का, जो कि एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है बाद में।
0: बिल्कुल, यानी शुरुआती टाइम में सोचते हैं कि हम खुद ढूंढ लेते हैं, आसपास देखते हैं, और पूरा एक आधा दिन निकल जाता है, तो तब तक बच्चा उनकी रीच से दूर होता जाता है और उसके साथ कुछ भी हो सकता है
1: जी।
0: जी, तो 24 घंटे में क्या करना चाहिए? सीधा पुलिस को इन्फॉर्म करें या फिर कुछ और करें, क्या करना चाहिए?
1: सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए।
0: कितने घंटे बाद देनी?
1: तुरंत ही, जब भी आपको ये लगता है कि मेरा बच्चा मिसिंग है तो आप कर दीजिए।
0: मतलब एक दो घंटे में आपको क्लेरिफाई हो जाता है कि आसपास नहीं है,
1: नहीं है, तो उसको पुलिस को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, मुकदमा दर्ज हो गया, ताकि पुलिस उस पर तुरंत कार्रवाई करे, नाकाबंदी करे, सर्च करे, और CCTV फुटेज के माध्यम से, ये जरूरी नहीं है बच्चे को किसी ने किडनैप किया है, बच्चा अपनी मर्जी से भी जाता है और वो मिल भी जाता है, हम स्टार्टिंग में यदि प्रयास कर लें तो बच्चा ज्यादा दूर नहीं गया होगा, और जल्दी मिलने की संभावना होती है, और बच्चे के साथ कोई अनहोन ही ना हो जाए।
0: जी, गलती से बच्चा कई बार रास्ता भूल जाता है, घर के बाहर खेलते खेलते निकल गया, दूर तक चला गया, ऐसे भी हादसे होते हैं कई।
1: जरूर
0: जी, 24 घंटे की बात हम कर रहे हैं, 24 घंटे में रिपोर्ट जो है वो दर्ज करानी चाहिए। आपने कहा कि 24 घंटे पहले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो फिल्मों में दिखाया जाता है और जो टीवी में दिखाया जाता है उसमें कहा जाता है कि अगर व्यक्ति कोई चला गया तो आप 24 घंटे वेट कीजिए, उसके बाद FIR दर्ज होगी, ये सच होता है या ऐसी बातें हैं?
1: नहीं, ये झूठ है। आजकल जो भी पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन आती है, आप पुलिस को संपूर्ण इन्फॉर्मेशन दे, पुलिस तुरंत मुकदमा दर्ज करेगी और उस पर कार्रवाई शुरू करेगी,
0: सीरियसनेस देख करके, जितना सीरियस मैटर है उस हिसाब से। जी जी बिल्कुल, यानी ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है कि 24 घंटे होंगे उसके बाद रिपोर्ट दर्ज की जाएगी, क्योंकि अक्सर हमने फिल्मों में और वेब सीरीज में और सीरियल्स में यही देखा है कि भाई अभी 24 घंटे नहीं हुए, 24 घंटे बाद रिपोर्ट दर्ज करें।
1: कई बार क्या होता है कि जो पीड़ित हैं वो खुद जानबूझ के मुकदमा दर्ज नहीं करवाते, समाज में बदनामी के डर से कब है मेरी लड़की मिसिंग होगी, समाज में क्या हो गया, उसकी लड़की भाग गई है, तो वो अपने स्तर पर खुद ही प्रयास करते हैं, एक दो दिन प्रयास करने के बाद में थक लेते हैं जब पुलिस के पास आते हैं,
0: और तब तक कहानी बहुत खराब हो चुकी होती है, तो मैटर बहुत सीरियस हो जाता है। इसलिए बहुत सिंपल से शब्दों में आप सभी से अपील करना चाहेंगे, अगर कहीं कोई मिसिंग का केस दिख रहा है और आपको ये कंफर्म हो जाता है कि कहानी अब जो है वो अब आपके बस में नहीं है और ये एक्चुअली में मिसिंग की प्रॉब्लम है जिस भी परिवार के व्यक्ति के साथ है, आपको तुरंत पुलिस के पास जाना चाहिए, और पुलिस के पास जब आप जाएंगे, आप सारी परेशानी बताएंगे, तो पुलिस आपका केस दर्ज करेगी। सर, अगर पुलिस स्टेशन ना जाकर फोन पे हम रिपोर्ट दर्ज कराना चाहें या अपनी कंप्लेंट देना चाहें, तो कौन सा नंबर है जिस पर कॉल किया जा सकता?
1: डायल 112 पर आप कॉल करें, पुलिस आएगी आपके पास, लेकिन संपूर्ण इन्फॉर्मेशन तो आपको देनी ही होगी उसकी, तभी जाके FIR लॉज होगी।
0: जी जी, यानी 112 पे कॉल करके पहले अपनी बात बताएं, फिर वो गाइड करेंगे कि आपको अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाना है। जी जी, जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर लेडीज जो हैं वो डर जाती हैं कुछ मैटर में, कहीं सपोज कोई लेडी ही लापता हो गई और वो लेडी कहीं घूमते घूमते कहीं पहुंच गई या किसी वजह से वो उनके चंगुल से निकल भी पड़ी या कहीं से वापस भी आ गई, तो क्या वो किसी भी स्टेट के पुलिस स्टेशन में जाए, कहीं भी जाए, उसके लिए सब कुछ सेफ रहेगा?
1: कोई भी आदमी मिसिंग होता है, किसी के साथ कोई भी घटना होती है, तो कहीं भी कंप्लेंट कर सकता है।
0: जी, क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं पुलिस के पास जाने में, और ये एक बहुत पुरानी बात है कि बहुत सारे लोग खासतौर पर से लेडीज बहुत डरती हैं पुलिस के पास जाने में, लड़कियों को डर लगता है, तो क्या पुलिस, सपोज कोई बच्चा या कोई महिला हरियाणा से गुम हुई लेकिन यूपी में किसी जगह पर पहुंच गई, क्या वहां पर वो महिला थाना ढूंढे या 112 नंबर ढूंढे या फिर आसपास के पुलिस स्टेशन में जाए?
1: डायल 112 पे कॉल कर सकती है और उसको जो भी दिक्कत है वो बताएं उनको, अगर मैं वहाँ से आई थी, मेरे साथ ये दिक्कत है, वहाँ की पुलिस भी 100% कोऑपरेट करेगी उसको।
0: जी, सो बहुत सी बातें कर रहे हैं हम, मिसिंग, लापता या गुमशुदा, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन वो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहीं चले जाते हैं, लेकिन उन्हें ढूंढना तब ही आसान होता है जब आप पुलिस का साथ पूरे तरीके से दें। कैसे ये केसेस रजिस्टर किए जाते हैं, किस तरीके से गुमशुदा लोगों को वापस लाया जा सकता है, ये कोशिश जारी है हमारी इस खास सीरीज के अंडर जिसका नाम है सुरक्षा संवाद, जो हम फरीदाबाद पुलिस के साथ मिलकर आपके लिए लाए हैं। वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, मैं हूं दीक्षा आपके साथ।

0: मैं जल हूं, मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं केवल पृथ्वी ग्रह पर ही हूं, तभी यहां जीवन संभव है। और अगर मैं नहीं रहा तो यहां पर भी जीवन असंभव हो जाएगा।
1: तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं ना, तो आज ही खुद से करें एक वादा, जल बचाएंगे और पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित बनाएंगे। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश।
0: समय की तुम सुनो आहट, पानी का ना छाए संकट।

0: वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 FM में उदीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम सुरक्षा संवाद फरीदाबाद पुलिस के साथ। इस खास सीरीज में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्राइम ब्रांच इंचार्ज किडनैपिंग एंड अबडक्शन टीम फरीदाबाद पुलिस श्री सरजीत सिंह जी, और बहुत सारी बातें हम इनसे जान रहे हैं। मिसिंग, गुमशुदा या लापता, ये कुछ भी कह लीजिए आप, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे, बड़े, बुजुर्ग या महिलाएं होती हैं जो इस कैटेगरी में आ जाती हैं। कैटेगरी, जी हाँ, मिसिंग कैटेगरी, और ये अपने आप में बहुत दर्दनाक होता है। आइए जानते हैं सरजीत सिंह जी से इससे जुड़ी कुछ खास बातें। सर, आप साइबर क्राइम में काफ़ी समय तक रहे हैं, और साइबर आज के समय में एक बहुत बड़ी कड़ी है पूरी दुनिया में। किसी भी चीज़ में अगर कुछ गलत होता है तो भी साइबर की वजह से कई बार हो जाता है, और किसी चीज़ में मदद मिलती है तो भी साइबर की वजह से मिलती है। तो यहाँ मैं जानना चाहूँगी, मोबाइल, सोशल मीडिया या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लापता लोगों को ढूंढने में कैसे मदद मिलती है? आप क्योंकि साइबर में रहे हैं और अब आप किडनैपिंग और एबडक्शन भी देख रहे हैं, तो ये थोड़ा विस्तार से हमें बताइएगा।
1: क्या होता है, आज का युग साइबर का युग है, हर आदमी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है
0: जी,
1: और जो भी मिसिंग पर्सन होता है तो वो कहीं ना कहीं तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, अपनी फुटप्रिंट छोड़ेगा, यदि वो छोड़ेगा तो पकड़ा भी जाएगा। सबसे आसान है उसको ट्रैक करना
0: जी। कैसे आप इसको सॉल्व करते हैं, मिस्ट्रीज को, जैसे कोई बच्चा खोया या कोई व्यक्ति खोया, अब साइबर की मदद से या टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे ढूंढा जाएगा?
1: कई चीज ऐसे हैं, मैं आपको ओपन नहीं कह सकता, यदि ओपन कहेंगे तो इसमें और क्रिमिनल लोग भी इसको टेक्नोलॉजी को समझेंगे
0: जी, जी।
1: और वो छुपने की कोशिश करेंगे, पुलिस कैसे कैसे ट्रैक करती है, यदि वो सारी चीजें मैं आपको बता दूं
0: जी
1: तो फायदा के बजाय नुकसान ज्यादा,
0: क्रिमिनल को ज्यादा फायदा,
1: क्रिमिनल को ज्यादा फायदा।
0: कोई ऐसा केस है जो आपने टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत अच्छे से सॉल्व किया हो और परिवार को वापस उसका बिछड़ा हुआ मिलवाया?
1: हमने 95% टेक्नोलॉजी के आधार पे ट्रैक करते हैं।
0: 95% केसेस आप सिर्फ
1: टेक्नोलॉजी से ही
0: जी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो टेक्नोलॉजी जितना फायदा पहुंचा रही है, अगर उसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो बिछड़े हुओं को बहुत आसानी से मिलाया जाता है।
1: 100%
0: जी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि पुलिस नहीं कर रही है कुछ काम आपके केस में या किसी के केस में, मदद नहीं कर रही, तो 95% केसेस सॉल्व टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी पुलिस ही कर रही है
1: जी।
0: ये एक बहुत बड़ा कदम होता है। सो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। अब सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा बहुत सारी महिलाएं गायब होती हैं और बहुत सारे बच्चे भी गायब होते हैं, महिलाओं के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो बच्चों का आता है, तो ये ट्रैफिकिंग में भी बदल जाते हैं मामले?
1: फरीदाबाद में ट्रैफिकिंग का कोई ऐसा मामला हमारे देखने में आया
0: नहीं आया है फरीदाबाद में, लेकिन एक जनरल बात करूं, अगर मैं ओवरऑल अपने देश की या बाहर की भी बात करूं, तो क्या ये जो बच्चे गायब होते हैं, लेडीज गायब होती हैं, ट्रैफिकिंग में कैसे चले जाते हैं? कोई ऐसे एक जनरल सा कोई बात आप अगर बताना चाहें ताकि लोग सतर्क हो सकें।
1: कई बार ये होता है जब आदमी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, जो गुप्त इन्फॉर्मेशन किसी अनजान व्यक्ति को शेयर कर दे या सोशल मीडिया पे जैसे कोई दे दे किसी को, तो उसका गलत यूज करके उसको कर
0: फंसाया
1: जा सकता है
0: जी। लड़कियों के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? बहुत सारी लड़कियां आजकल, यंगस्टर्स जो हैं 17-18 साल के 16 साल की यंग गर्ल्स, सोशल मीडिया पर 24 घंटे लगे रहते हैं, अपनी फोटोज डालते हैं, जहां गए वहां का चेक इन भी डाल दिया। अब ऐसे में इन बच्चों को फंसाने के लिए कैसे पैंतरे अपनाए जाते हैं और ये बच्चे कैसे बचे?
1: मैं उनको यही कहना चाहूंगा, जो ये टेक्नोलॉजी है साइबर की, इसका सही प्रयोग करें। इस पर जो ये फेसबुक पे, इंस्टा पे, जो भी है, इन पे दोस्ती के चक्कर में ना पड़े। आप फिजिकली किसी से मिलते जुलते या जानते हैं उसी के संपर्क में रहें, अन्यथा अनावश्यक रूप से ये दोस्त न बनाएं, ये आपको जाल में फंसाते हैं और आपका फिर शोषण होना शुरू हो जाता है उसमें।
0: और ये जो फंसने वाले बच्चे होते हैं, इनके माता पिता इन पर कैसे चेक रखें, क्योंकि आप साइबर से भी जुड़े हुए हैं, तो पेरेंट्स कैसे नजर रख सकते हैं, क्योंकि फोन हर बच्चे के पास है। 17-18 साल का बच्चा अगर कॉलेज जा रहा है तो फोन भी लेकर जा रहा है, उसके पास लैपटॉप भी है, उसके पास इंटरनेट भी है, अब पेरेंट्स क्या करें?
1: ये एक गंभीर चुनौती बनी हुई है आजकल माँ बाप के सामने। माँ बाप को इस टेक्नोलॉजी की इतनी जानकारी नहीं है, माँ बाप ये सोचता है कि बच्चा तो पढ़ रहा है, लेकिन वो बच्चा रात को 2-2, 3-3 बजे तक क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बच्चों के साथ एक फ्रेंडली रूप से रहें, बच्चों से माँ बाप दूरियां बढ़ा रहे हैं, क्यों ज्यादातर मियाँ बीबी काम करते हैं और बच्चों को समय नहीं दे पा रहे, ना उन साथ खेल पा रहे हैं, ना उनकी कोई समझ पूछ रहा है, शाम को जब घर आए तो ये उनसे पूछताछ भी नहीं करते, बच्चे आपने कोई पढ़ाई लिखाई करी क्या, कुछ दिन भर किया, उसकी एक्टिविटीज क्या रही, न उनको कोई फोन वगैरह, कम से कम पीछे से देखो उसका फोन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। تو نگرانی رکھنا بہت ضروری ہے
0: جی, بچوں پہ نظر رکھنی زیادہ ضروری جی. ہے. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کا بچہ انٹرنیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہے. اگر آپ نے انٹرنیٹ کا کنیکشن لیا ہوا ہے تو تھوڑا سا اس پہ چیک رکھنا بھی ضروری ہے کہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے, کہاں بات کر رہا ہے, کہاں جا رہا ہے. ان چیزوں کی صحیح جانکاری آپ کو ضرور ہونی چاہیے, اور وہ غصے میں ڈانٹ کے نہیں لے سکتے ہیں, وہ تھوڑا سا فرینڈلی نیچر کے ساتھ کر سکتے ہیں. سر, اب میں جاننا چاہوں گی کہ کوئی ویکتی لاپتہ ہوا ہے, اب اس سے جڑی ہوئی سب سے ضروری جانکاری کون سی ہے جو لوگ اکثر مس کر جاتے ہیں پولیس کو دینا؟ کوئی ایسی جانکاری ہے جو دینی سب سے زیادہ ضروری ہے؟
1: دیکھو, جو بھی مسنگ ہوتا ہے پولیس کو اس کی سمپورن جانکاری کی آوشکتا ہوتی ہے, جیسے اس کا نام کیا ہے, اس کی عمر کتنی ہے, اس کا رنگ کیسا ہے, اس کا قد کتنا ہے, اس کے پاس کون سا موبائل ہے, وہ کس سادن سے وہ گیا ہے, لاسٹ بار اس کو کہاں دیکھا ہے, اس کے شریر پہ کون سے ایسے نشان ہیں یا کہیں گدیا ہوا ہے, یا آپ کی کسی سے کوئی شنکا ہے, آپ کو پتا ہے کوئی رنجش ہے, تو اس کی سمپورن ڈیٹیل پولیس کو دینی چاہیے تاکہ پولیس ہر انگل پہ کام کرے اور اس کو جلد سے جلد ٹریس کرے.
0: بالکل, جو ایک دم ایکوریٹ انفارمیشن ہے لاسٹ کی جو ہوتی ہے وہ دینی زیادہ ضروری ہے, کہ کیا کپڑے پہنے تھے, کہاں لاسٹ بار دیکھا, یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. یا اگر کوئی شریر پہ نشان ہے یا کئی چیزیں ہیں, یہ لوگ بالکل بھی مس نہ کریں. تو باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا, وقت ہے ایک چھوٹے سے میوزیکل بریک کا. لیکن اگر آپ کو یہ بات چیت اچھی لگ رہی ہے تو آپ ہمارے انٹرنیٹ ریڈیو کے مادھیم سے ہماری اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے ریڈیو مانو رچنا پلے اسٹور یا آئی او ایس اسٹور سے پوڈ کاسٹ سیکشن میں جا کر آر جے دیکشا کے فولڈر میں جا کر یہ ساری جانکاری, یہ ساری انفارمیشن لے سکتے ہیں, اور اس پروگرام کو کسی کے ساتھ بھی کبھی بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ کسی کی زندگی کو بچایا جا سکے. وقت ہے ایک چھوٹے سے میوزیکل بریک کا.

0: वेलकम बैक। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। बातचीत चल रही है प्रोग्राम सुरक्षा संवाद में। हमारे खास मेहमान क्राइम ब्रांच इंचार्ज किडनैपिंग एंड अबडक्शन टीम फरीदाबाद पुलिस श्री सरजीत सिंह जी से। बहुत साल साइबर के क्षेत्र में कार्य करने के बाद आजकल ये इंचार्ज हैं किडनैपिंग और अबडक्शन टीम के, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है क्योंकि ये विभाग उन लोगों को वापस मिलाता है अपने परिवार के साथ, अपने अपनों के साथ, जो लापता हो जाते हैं, लापता जिनकी फोटोज बहुत सारे लोगों ने अखबारों में देखी होती है, जिनकी खबरें, जिनकी वीडियोज आ रही होती हैं इंटरनेट पर, लेकिन ये अपनों से बिछड़ जाते हैं। और अपनों से बिछड़ने के बाद एक आस जो नजर आती है वो है पुलिस, और फरीदाबाद पुलिस के अधिकारी आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। तो आइए बहुत सी और भी बातें जानते हैं। सर, क्या आम आदमी, जो आम हम नागरिक हैं, क्या किसी तरीके की मदद कर सकते हैं ऐसे किसी बिछड़े हुए के वापस मिलाने में पुलिस की?
1: जरूर कर सकते हैं। आप जिस एरिया में रह रहे हो और आपको वहाँ मान लो कोई बच्चा घूमता हुआ मिला, छोटा बच्चा है, तो आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं ये छोटा बच्चा है और इसके पास कोई नहीं है, तो पुलिस को इन्फॉर्म, पुलिस उससे पूछताछ करेगी। और ये अक्सर हफ्ते में या दो हफ्ते में एक आधी घटनाएं ऐसे आ जाती है, जी आज एक छोटा बच्चा घूमता हुआ मिला है। कुछ समय के बाद में, जैसे दो घंटे चार घंटे के बाद में किसी थाने में कंप्लेंट आती है कि मेरा बच्चा गुम हो गया, तो हम उसको लुटा देते हैं। खूब मदद करते हैं लोग इस चीज को।
0: जी जी, यानी ये सोशल मीडिया के जरिए ज्यादा मदद की जा सकती है। तो सोशल मीडिया का सबसे अच्छा फायदा ये है कि अगर आपको कहीं कोई बच्चा या कोई व्यक्ति ऐसा दिख रहा है, बुजुर्गों में बहुत होता है कि याददाश्त खो जाती है और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तो सर, ऐसे जो बुजुर्ग होते हैं, मैं बुजुर्गों के बारे में इसलिए जानना चाहूंगी क्योंकि घर वाले उनका इलाज करा करा के भी थक जाते हैं, पर ये बीमारी ऐसी होती है अल्जाइमर जैसी कि बंदा खो जाता है तो वो वापस मिलना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो अपने बारे में कुछ बता नहीं पाता। तो ऐसी परिस्थिति में लोग अपने माता पिता या जो बुजुर्ग हैं घर में, उनमें कोई निशानी या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे वो अगर खोए तो वापस घर आ जाए?
1: हाँ, उसके जैसे चाहे मंद बुद्धि का बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, उसके हाथ पे या इन पे जैसे मोबाइल नंबर या घर उसका नाम वगैरह एड्रेस वगैरह ये गुदवा दें,
0: टैटू करवा दें।
1: कोई नहीं, मोबाइल नंबर या उसका नाम वगैरह कहाँ का रहने वाला, जैसे एक कोई मंद बुद्धि का बच्चा है वो घर से निकल जाते हैं, अक्सर होता है मंद बुद्धि के बच्चे निकल जाए, न तो अपना एड्रेस बता सकते हैं न कुछ और, तो उसके एक हाथ पे अपना मोबाइल नंबर लिख दो और एक हाथ पे उसका नाम और उसका आपका एड्रेस हुआ है, ताकि वो किसी को मिले तो कम से कम उस मोबाइल पर संपर्क कर ले या वो नाम देख के वहाँ, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है यदि वो गुदवाए।
0: यानी अगर ऐसा टैटू गुदवाने वाला जो होता है, अगर डिटेल्स थोड़ी सी उस व्यक्ति के उस बच्चे के हाथ पे लिखवा दी जाए तो ये अच्छा रहेगा। सर, आधार कार्ड से भी क्या वापस मिल जाते हैं बच्चे और लोग? क्योंकि अक्सर हमने देखा है वीडियोस जो डलती हैं उसमें सबसे ज्यादा कमेंट ये आते हैं कि फटाफट से आधार सेंटर लेकर जाओ, वो स्कैन करेंगे और बच्चा मिल जाएगा वापस, ऐसा होता है?
1: अंगूठे के साथ साथ उसका आधार नंबर भी पता होना चाहिए, जब ही जानकारी निकलेगी।
0: खाली अंगूठा ऐसे
1: खाली अंगूठे से नहीं निकलेगी, कौन है क्या।
0: यानी अगर किसी व्यक्ति को उसका आधार नंबर पता है तो, और वो बड़ा मुश्किल होता है याद रखना, तो ऐसे केसेस में वो थोड़ा सा मुश्किल है। बहुत सारे लोग जब कहीं चले जाते हैं या छूट के कहीं से वापस आते हैं या मिलते हैं हमने, तो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्या हमारे विभागों के द्वारा उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुछ स्पेशली किया जाता है? क्योंकि बहुत सारे पीड़ित बच्चे आते हैं, महिलाएं आती हैं।
1: पीड़ित जो महिलाएं आती हैं उनके लिए देश के हर जिले में एक वन स्टॉप सेंटर खोला हुआ है, और बच्चों के लिए CWC के माध्यम से और DCPU यूनिट जो बनाई हुई हैं उनके माध्यम से CCE को बच्चे सौंपे जाते हैं, और उनके पुनर्वास के लिए 4,000 रुपये पर मंथ गवर्नमेंट की तरफ से उनको दिए जाते हैं।
0: जी जी, यानी बाल कल्याण विभाग द्वारा बच्चों के लिए काम किया जाता है और वन स्टॉप सेंटर जो है वो महिलाओं के लिए चला है, और ये हर शहर में है?
1: हर शहर में है।
0: जी, और इसमें पुलिस की मदद ली जा सकती है, ये जगहें ढूंढ कर वहाँ पर एडमिट कराना या जिस तरीके की हेल्प चाहिए उसके लिए पुलिस की मदद ली जाती है। जी, अब जानना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जो बहुत दिल को तकलीफ दे जाते हैं, कोई आप ऐसा वाक्या, कोई केस ऐसा शेयर करना चाहेंगे जो आपको अभी तक याद है या जो आप रोज़मर्रा में करते हैं?
1: आज से करीब 2-3 साल पहले एक वाक्या हुआ था, एक कंप्लेनेंट आया कि मेरे 5 साल का बच्चा किसी ने किडनैप कर लिया है, तो उसमें पुलिस ने जल्दी मुकदमा दर्ज किया और उसकी गंभीरता को देखते हुए अलग अलग टीमें मिला के बनाकर सर्च किया गया, तो काफ़ी सर्च करने के बाद CCTV फुटेज देखने के बाद में कोई सुराग नहीं चला, तो घर वालों से दोबारा काउंसलिंग की गई, तो लड़के के पिता ने बताया कि मेरा मेरे जीजे से अनबन है और काफ़ी दिनों से वो मेरे को बोलता नहीं है। हमने शक के बिना के उसके फूफा जीजा के पर निगरानी रखी
0: मतलब गई, मतलब बच्चे के फूफा,
1: हाँ बच्चे के फूफा पर निगरानी रखी गई और उसको पूछताछ की गई सख्ती से, तो उसने बतलाया हाँ जी ये बच्चा मैंने मारा है। तो हमने पूछा क्यों मारा है इस 5 साल का बच्चा, क्या वो जब कह रहा था मेरा और मेरी पत्नी का आपस में कोई झगड़ा हो गया था और इसने बीच में आके मेरा थप्पड़ मारा। मैंने उसी दिन से ये सोच लिया था कि मैं इस थप्पड़ का बदला लूँगा। तो हमने कहा थप्पड़ का बदला तो आप उससे लेते, उसके मारते आप थप्पड़, आप ये मासूम को 5 साल को वो क्यों गए। तो उसने फिर आगे बताया कि ये बच्चा तो मेरे पास ही खेलता था जब मैं घर आता था, क्यों इनका घर आमने सामने ही था,
0: तो बच्चा फैमिलियर था,
1: फैमिलियर था और वो जब भी घर पर आता था फूफा फूफा कहता उसी के पास खेलता था। वो एक दिन ऐसा मौका देख के वो ऊपर गया और बच्चे उसके कंधे पर बैठा था और उसको फर्श पर दे के मारा उसने बच्चे को, और उसको फिर छाती पर गले पर पैर रख के उसको मार दिया। उस टाइम उनके घर वाले नज़दीक थे नहीं और उस बच्चे को उठा के अपने ही बेड में डाल दिया,
0: बेड के अंदर डाल,
1: बेड के डाल। तो उस दिन से काफी मन विचलित हुआ, रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं रही, आदमी किस पर विश्वास करे।
0: बिल्कुल, मतलब वो जो बच्चा खेल रहा है उनके साथ, ऐसे झकझोरने वाले जो केसेस होते हैं, आप ऑफ कोर्स आप पुलिस विभाग में तो आपके लिए ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन इंसान तो इंसान होता है, दिल तो खराब हो ही जाता है। अब ऐसी परिस्थिति में माता पिता अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए क्या करें? बहुत मुश्किल होता है ये माता पिता के लिए भी कि किसी रिश्तेदार के पास जाने ही ना दें, ऐसा हो नहीं सकता। क्या करना चाहिए माता पिता को अपने बच्चों को सेफ रखने के लिए रोज़मर्रा के जीवन में?
1: रोज़मर्रा के जीवन में बच्चों को जैसे गुड बैड के बारे में तो ज़रूर बताएं
0: जी,
1: और बच्चों के जो फ्रेंड सर्कल हैं उसके बारे में भी माँ बाप को संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, और बच्चे को मोबाइल से दूर ही रखें।
0: ये थोड़ा

78 पर मैसेज करके या कॉल करके। अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। कार्यक्रम का नाम है सुरक्षा संवाद, जिसमें हम फरीदाबाद पुलिस के साथ कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसे मुद्दों को रेडियो तक लाने की जो आपकी जिंदगियों से जुड़े हुए हैं, हम सबकी लाइफ से जुड़े हुए हैं। इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं मिसिंग यानी लापता हो गए लोगों के बारे में कि कैसे इनको वापस ढूंढा जा सकता है। वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर लें ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे।

0: मिसिंग, गुमशुदा या लापता, ये शब्द सुनने में बहुत आम है, लेकिन जिसके साथ ये बीतती है केवल वो ही जानता है कि कितना मुश्किल हो जाता है वो सफर जब तक आपका अपना कोई बिछड़ा है वापस नहीं आ जाता। एक आस, एक उम्मीद हमेशा रहती है, लेकिन बरसों बरस कई बार बीत जाते हैं जब तक वो वापस नहीं आ पाते। बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कार्यक्रम सुरक्षा संवाद में, जिसमें फरीदाबाद पुलिस हमारे साथ नॉलेज पार्टनर के रूप में मौजूद है, और आज हमारे साथ क्राइम ब्रांच फरीदाबाद पुलिस के किडनैपिंग एंड अबडक्शन इंचार्ज हैं सरजीत सिंह जी। सर, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हैं वो मिसिंग हो जाते हैं, लालच दे दिया जाता है उन्हें टॉफी का, किस वर्ग में ये केसेस ज़्यादा होते हैं?
1: ये खासकर जो मजदूर लेबर टाइप के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनमें ज्यादा होता है।
0: तो फरीदाबाद में ऐसे केसेस आते हैं?
1: बहुत ज्यादा केसेस ही इन्हीं के होते हैं मैक्सिमम।
0: क्या केसेस होते हैं? क्या आम इंसान अगली बार से ध्यान रखे आपकी बात को सुन के?
1: मतलब जो छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, ये मैक्सिमम इन गरीब लोगों के ही ज्यादा हैं
0: जी।
1: मजदूर वर्ग के जो लोग हैं 90-95% इन्हीं के हैं। यहाँ के लोकल या समर्थ लोग बहुत नाम मात्र ही हैं
0: जी, यानी ठीक ठाक जो परिवार हैं, जो फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल है, उनके नहीं होते हैं केसेस।
1: क्योंकि फरीदाबाद एक पुराना औद्योगिक शहर है
0: जी,
1: और यहाँ पर बहुत ज्यादा उद्योग धंधे हैं और उनमें मजदूरों की आवश्यकता है, तो यहाँ इतनी कॉलोनियां, इतनी झुग्गियां हैं, बाहर के मजदूर लोग हैं
0: जी,
1: जिसके कारण यहाँ से बहुत ज्यादा बच्चे या महिलाएं मिसिंग होती हैं।
0: तो कैसे बच्चों को कैसे गायब किया जाता है?
1: बच्चे गायब नहीं किया जाते, बच्चे माँ बाप अपने काम पर चले जाते हैं, बच्चे घर पर अकेले रहते हैं
0: और गलियों में खेलते रहते
1: खेलते कूदते रहते हैं, वो अपने आप ही निकल जाते हैं।
0: अच्छा, अपने आप ही
1: निकल जाते हैं,
0: इधर उधर कहीं चले गए खेलते खेलते, और फिर ये बच्चे मिल जाते हैं,
1: रास्ता भटक जाते हैं, बाद में मान लो कहीं रेलवे स्टेशन पर चले गए, किसी और साधन में बैठ के चले गए, किसी ने बता दिया, घूमते हुए मिल गए। बाकी किडनैपिंग की घटनाएं इतनी नहीं होती
0: जी, मतलब बच्चे भटक जाते हैं। एक ऑपरेशन के बारे में आप थोड़ा समय पहले बता रहे थे, जो बच्चे सड़कों पे हमने देखा है अक्सर भीख मांगते हुए, उनको परिवार से वापस मिलाने की कोशिश की जाती है, वो क्या है वो हमें थोड़ा सा बताइए।
1: वो क्या है, समय समय पर ऑपरेशन स्माइल जैसे चलता है, ऑपरेशन स्माइल के दौरान हम जो सड़कों पर भीख मांगते बच्चे हैं या कारखानों में काम करने वाले बच्चे या फिर जो कबाड़ा बीनने वाले बच्चे हैं, उनको हम उठाते हैं, रेस्क्यू करते हैं, CWC को पेश करते हैं, उनके माँ बाप को मिलवाते हैं, उनको वार्निंग दे के समझा के छोड़ते हैं, भविष्य में भीख वगैरह न मंगवाएं इन बच्चों से, तो इस प्रकार का हम काम करते हैं
0: जी। तो ये बच्चे फिर वापस मिल जाते हैं अपने परिवार से, जैसे उनके माँ बाप मान जाते हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा तरीका है ना पैसे कमाने का।
1: सिंपल सा तरीका है, कुछ मान जाते हैं, कुछ उसी धुन में लगे रहते हैं फिर
0: जी, तो फिर उनको समझा के भी थक जाते होंगे, बट बहुत अच्छी कोशिश है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार से वापस मिल भी जाते हैं, बहुत सारे केसेस हमें सरजीत जी ने बताए भी हैं, जो बच्चे और महिलाएं जो है वो वापस अपने परिवार के पास आ भी जाते हैं। सर, मैं चलते चलते आपसे यही जानना चाहूँगी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं समझ पाते कि अब क्या करना चाहिए अगर कोई खो गया या खोने की, तो सबसे पहले ऑनलाइन ऑफलाइन पुलिस के पास जाने से नहीं घबराना चाहिए, ये आप हमारे सभी श्रोताओं को आश्वस्त करिए आज, क्योंकि लोग अक्सर घबराते हैं कि पुलिस वाले पता नहीं क्या क्या पूछेंगे, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा था, खासतौर पर से लड़कियों के केसेस में।
1: मैं सभी श्रोतागणों को यही कहना चाहता हूँ, आपका जो भी बच्चा या बुजुर्ग या महिला मिसिंग होती है, आप तुरंत पुलिस के पास जाएं, संपूर्ण जानकारी दें उनको और मुकदमा दर्ज करवाएं, ताकि पुलिस जल्द से जल्द उसको कार्रवाई करते उनको ट्रेस करवाएं
0: जी। और किस नंबर पे कॉल कर सकती हैं? ऑनलाइन भी कंप्लेंट की जा सकती है?
1: ऑनलाइन भी कंप्लेंट की जा सकती है, लेकिन थाने में जाएंगे तो कई इन्फॉर्मेशन और भी, जैसे फोटो वगैरह या कुछ और कुछ डीपली भी पूछना पड़ता है, किस पे शख्स हुआ है या कोई और ऐसी, तो थाने में जाएं तो बेहतर रहेगा, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन एक आयोग को मिल जाए
0: जी। अपने आसपास के किसी भी पुलिस चौकी या थाने में जा सकते हैं जी। तो पहले 24 घंटे बहुत स्पेशल होते हैं, अगर किसी केस में कहीं पर भी कोई बच्चा, बुजुर्ग या महिला या पुरुष कोई भी गायब हो, अगर ये 24 घंटे की डेडलाइन मिस हो गई तो फिर ढूंढने में बहुत दिक्कतें आती है, इसलिए शुरू के 24 घंटे बहुत अहम है। जब 1-2-3 घंटे बाद आपको ये आश्वासन मिल जाए कि ये व्यक्ति गायब हो चुका है, तो तुरंत पुलिस के पास जाएं और अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं और सारे सबूत, सारी परिस्थितियां, सारी सिचुएशंस बताएं, खुल के बताएं, ताकि आपका अपना वापस जल्द से जल्द लौट कराएं।
1: और छोटे बच्चों के मामले में तो आप बिल्कुल भी देरी ना करें
0: जी, मासूम बच्चे होते हैं, अपने आप ही कई बार बच्चे इधर उधर चले जाते हैं, सो ये बहुत ध्यान रखना है। जी सर जी, जी आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने किडनैपिंग हो या बच्चे मिसिंग हो या बड़े बुजुर्ग गायब हो गए, महिलाएं गायब हो गई, इसके बारे में आपने बहुत अच्छे से जानकारी दी। थैंक यू सो मच। और उम्मीद है कि आपकी जानकारी से लोग थोड़ा सतर्क होंगे, समझेंगे और अपने बच्चों को और किसी को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू मैम।
0: तो आज कार्यक्रम सुरक्षा संवाद में हमने जानकारी ली क्राइम ब्रांच इंचार्ज किडनैपिंग एंड एबडक्शन टीम फरीदाबाद पुलिस सरजीत सिंह जी से, जिन्होंने बताया विस्तार से कि कैसे लोग मिसिंग होते हैं, बच्चे गायब हो जाते हैं और ज़रूरी नहीं है ये किडनैपिंग हो या किसी तरीके का कोई और रंजिश हो। कई बार चीज़ें बच्चे जो है वो बहकावे में आ जाते हैं, रास्ता भी भूल जाते हैं, बड़े बुजुर्ग भी कई बार बीमारी के चलते इधर उधर चले जाते हैं, तो शुरुआत के जो कुछ घंटे होते हैं वो बहुत अहम होते हैं, इसलिए उन समय को बिल्कुल भी व्यर्थ में ना बिताएं और तुरंत पुलिस से संपर्क करें। पुलिस के पास जाने में बिल्कुल नहीं घबराएं, क्योंकि मिसिंग हो, किडनैपिंग हो या फिर कोई और प्रॉब्लम हो, पुलिस हमेशा आपके साथ, आपकी सेवा के लिए है। फरीदाबाद पुलिस के साथ हमारी ये सीरीज जारी रहेगी, लेकिन अभी वक्त है आपसे इजाजत लेने का। फिर होगी मुलाकात एक नए एक्सपर्ट के साथ, कुछ नई खास सुरक्षा संवाद के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर एक लंबे समय से मैं आपको लेकर जाती हूं और आप लोगों को ह्यूमैनिटी के बारे में याद दिलाती हूं, उन सभी अनसंग हीरोज से मिलवाती हूं जो आज भी मानवता के ढेर सारे काम कर रहे हैं, और उन सभी लोगों की मानवता की इन गाथाओं को और इन किस्सों को आप तक पहुंचाती हूं। दरअसल इस प्रोग्राम का जो ध्येय है या कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इतना सा है कि हम सब इंसान हैं और हम अपनी इंसानियत या ह्यूमैनिटी को ना भूलें, और इसीलिए मानवता की राह पर हर रोज हम चल सकते हैं कोई एक नेक कार्य के साथ। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस नेक कार्य को डेली कर रहे हैं और उन्होंने इसे अपना पैशन बना लिया है। आज की इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं वो एक एडवोकेट हैं, एडवोकेट रितु कपूर शर्मा, एक फाउंडर और डायरेक्टर हैं रीत फाउंडेशन की। रीत फाउंडेशन की शुरुआत कैसे हुई और रीत फाउंडेशन दरअसल क्या कर रही है, महिलाओं के सशक्तिकरण से लेके उनके अधिकारों तक की सारी कहानी आज हमें बताने वाली हैं एडवोकेट रितु कपूर, और उसके लिए करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी, पहले तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए आज, और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। जैसे कि आपने बताया कि हमें कुछ ना कुछ मानवता की तरफ कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, और ये बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई है आपने, जिसकी वजह से लोगों में भी एक जागरूकता आएगी और उन्हें लगेगा कि हाँ, हमें भी कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए करते रहना चाहिए।
0: देखिए, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, मानवता करने के लिए आपको कोई भी सोचे समझे प्लान की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपको लगे कि हाँ, आपके पास समय, अपने आसपास देखिए, और अगर आपको लगता है कोई भी इंसान, उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है और क्या आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं, और अगर आप उसकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। सो इसीलिए ये खास कार्यक्रम, क्योंकि मैं आपको ऐसे लोगों से रूबरू करवाती हूँ जो लोगों के लिए सही मदद पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। रितु जी, रीत फाउंडेशन, आप पेशे से एक एडवोकेट हैं, और दरअसल देखा जाए तो एडवोकेट्स इतने बिजी होते हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और अपने काम से उन्हें शायद किसी के भले करने का समय नहीं होता, बट आप एक बहुत ही खूबसूरत सी फाउंडेशन चलाती हैं। सो इसके पीछे की कहानी, इसे आपने स्टार्ट कैसे किया और आज रीत फाउंडेशन कहाँ है?
1: ज़रूर, मैं रीत फाउंडेशन के बारे में ये आपसे शेयर करना चाहूँगी कि किस तरह से हमने इसकी शुरुआत की। जैसे कि सब अपने अपने लिसनर्स को आपने बताया ही कि पेशे से मैं वकालत करती हूँ, एडवोकेट हूँ, और उसमें हम, जब मैं शुरुआती अपने काम में लोगों से मिलने लगी, जो महिलाएं बहुत ही वेल एजुकेटेड, यहाँ तक कि जब मैं आपको अगर बताऊँ तो मैंने केसेस देखे हैं आईएफएस ऑफिसर्स जो बहुत अच्छे इंटरनेशनली भी अपॉइंटेड रही हैं अपने उस ड्यूरिंग देयर टेन्योर, और आईबी स्कूल्स की सीनियर टीचर्स, इंटरनेशनल स्कूल की सीनियर टीचर्स, एंड एमएनसीज में डायरेक्टर लेवल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पे काम करने वाली जो महिलाएं हैं, जब मैं उन जैसी महिलाओं से मिली इस दौरान, इस पेशे के दौरान, और जब मुझे लगा, मुझे समझ में आया कि इतनी वेल एजुकेटेड लेडीज़ जो है और इतने अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं फाइनेंशियली, बट स्टिल उनके पास लीगल राइट्स की नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो इतने सालों से ये घरेलू हिंसा सहती रही। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिनके पास अगर घरेलू हिंसा नहीं तो बहुत अलग तरीके की इमोशनल और मेंटल हरासमेंट से वो गुजर रही थी, लेकिन क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं थी, उन्हें ये पता नहीं था उनके पास लीगल राइट्स कौन कौन से हैं, उनके कुछ एप्रीहेंशंस थी, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठते थे। सबसे पहला तो जो हमारे समाज में एक ये चीज़ चली आ रही है कि लोग क्या कहेंगे, सबसे पहला। दूसरा एप्रीहेंशन उनका ये होता था कि मैं घर में रहकर अपने ही लोगों से कैसे झगड़ा कर सकती हूँ, कैसे केस डाल सकती हूँ। तीसरा, मैं फाइनेंशियली क्या करूंगी। जो लेडीज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, उनको ये लगता है कि अगर मैंने आवाज़ उठाई तो ये सारे जो फाइनेंशियली मुझे हेल्प मिल रही है, आर्थिक सहायता जो कही जाती है हिंदी में, कि मेरे जो पति या मेरे जो घर के लोग हैं, ससुराल के लोग हैं, ये मुझे घर से निकाल देंगे और मेरे पति ये सारी चीज़ें रोक देंगे, जो मेरे बच्चों की फ़ीस है, तो उस इन सब वजहों की वजह से वो अपने ना तो आवाज़ उठाती हैं और ना ही उन्हें लीगल राइट्स ये पता है। तो जब मुझे ये उन सब लेडीज से मेरा मिलना हुआ और मैंने उन्हें सब राइट्स उनके बताए, तो बहुत सारी महिलाओं की हमेशा ही यही एक उन्होंने हम मुझसे शेयर किया कि हमें पता ही नहीं था कि हम घर में रहते हुए भी राइट टू रेजिडेंस क्लेम कर सकते हैं, हम मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं विदाउट टेकिंग डिवोर्स. क्योंकि क्या हो रहा है भावना जी, हमारे समाज में जैसे पिक्चरों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है लोगों के ऊपर, तो उसके वजह से लोगों को सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी पता है, डिवोर्स, तलाक. अगर मेरे पास कोई भी महिला आती थी तो वो यही बोलते थे, मैम मुझे अपने हस्बैंड से डिवोर्स चाहिए, मैम बहुत झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, और अदरवाइज नहीं तो ये हरासमेंट बहुत सालों से चल रहा है, तो मुझे आपसे मिलना है और मुझे डिवोर्स चाहिए. तो मैं हमेशा आज की डेट में भी मैं हमेशा हर महिला को ये बोलती हूँ कि ठीक है, क्योंकि आपको अभी तक एक ही टर्म पता है, आपको बाकी लीगल राइट्स अपने पता नहीं है, तो आप एक बार मेरे पास आए, कंसल्टेशन करें, और उसके दौरान मैं आपको आपके सारे लीगल राइट्स बताऊंगी. मैं बताऊंगी कि आप इस शादी में रहकर भी सेफ रह सकती हैं, जरूरी नहीं है कि आपको डिवोर्स ही डालना है, तलाक ही डालना है. तो जब उन लेडीज का रिस्पांस मुझे मिला और ये लगा कि हाँ ये बहुत एक मददगार एक चीज़ हो रही है लोगों के लिए, और उनको नहीं पता उनके लीगल राइट्स, इसलिए वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, तो उस समय मैंने 2021 में ये सरीद फाउंडेशन के बारे में सोचा और इससे हमने स्टार्ट किया. और रीत फाउंडेशन में हमने बहुत सारी महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार बताए, जिससे वो जितने भी हम मदद कर पाए और जितने भी हम उनको सशक्त कर पाए हैं. आज की डेट में 15,000 से 20,000 हमने गुरुग्राम में महिलाओं के साथ काम किया है और उन्हें उनके कानूनी अधिकार बताए हैं. इसमें जब मैंने ये रीत फाउंडेशन स्टार्ट की तो एक हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था, शक्ति प्रोजेक्ट
2: जी.
1: शक्ति प्रोजेक्ट का लॉन्च किया गया था, हमारे IPS ऑफिसर हैं मैम राजश्री मैम, ऑनरेबल राजश्री मैम जी ने हमारा जब गुरुग्राम में ही ये लॉन्च हुआ, और उस दौरान भी हमने ये सेशंस किए तो महिलाओं को उनके सारे कानूनी अधिकार बताए गए, और ऐसे ही हमने 5 से 10 सेशंस लगातार इसमें किए. और उसके बाद हमने लॉन्च किया दुर्गा प्रोजेक्ट. दुर्गा प्रोजेक्ट में भी हमने ऐसे सेशंस किए जहाँ जहाँ बहुत सारे, मैं DLSA के साथ भी जुड़ी हुई हूँ, DLSA होता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, वहाँ से भी हमें बोला जाता है, इधर कहीं गांव में कहीं कहीं हमें कहा जाता है कि मैम वहाँ पर भी एक सेशन ले लीजिए, एक महिलाओं को जाकर एक जागरूकता का एक वो चला सेशन आप ले आए तो अच्छा है, महिलाओं को थोड़ा पता चलेगा. तो हमें रीत फाउंडेशन के अंतर्गत हमने जितने हम कवर कर सकते थे हमने वो कवर किया है. और अभी रिसेंटली जो हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं गुरुग्राम के, श्री विकास अरोड़ा जी, उन्होंने गुरुग्राम पुलिस के साथ, हमने रीत फाउंडेशन के साथ मिलकर एक डिजिटल सहेली, ये गुरुग्राम पुलिस का ही इनिशिएटिव है, उन्होंने ही किया, रीत फाउंडेशन ने उनके साथ उनकी मदद की इसमें लॉन्च में. और ये डिजिटल सहेली बहुत ही अच्छा है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में ज़रूर बताऊंगी
2: जी,
1: और बताना चाहूंगी क्योंकि बहुत ही मददगार होगा ये सब महिलाओं के लिए, जितने भी लिसनर्स हैं आपके. और उसके बाद एक और हमारा प्रोग्राम हम इसी में ही शुरू कर रहे हैं रीत फाउंडेशन में, सामूहिक कन्यादान. तो उसमें जितने भी अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स हैं जिनके साथ उनकी पेरेंट्स को मुश्किल आ रही है उनकी शादी करने के लिए, तो वहाँ पर भी हमने ये एक अपना एक प्रोजेक्ट शुरू किया है. तो इस तरह से हमारी कोशिश पूरी है कि हम रीत फाउंडेशन के थ्रू और महिलाओं को, जितनी भी महिलाओं को हम मदद कर सकते हैं कानूनी तौर पे और वैसे भी, तो हम अपनी तरफ से एक कोशिश है.
0: देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमेशा कहता है टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, बट मैं रीत फाउंडेशन के लिए कह सकती हूँ महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा और शायद महिलाओं से. ये एक बहुत खूबसूरत सी फाउंडेशन है जो महिलाओं के लिए बहुत खूबसूरत काम कर रही है. अब ये किस तरीके के इनिशिएटिव्स हैं, आप इनका लाभ कैसे उठा सकते हैं, इसके बारे में और कैसे जान सकते हैं, बस एक प्यारे से गाने का इंतजार. छोटा सा गाना सुना रही हूँ, जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ. Feel good, feel love.

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। और ये जो कदम है आज बढ़ा रहे हैं हम रीथ फाउंडेशन के साथ, और मानवता की जो कदम है ना ये महिलाओं के लिए उठाए जा रहे हैं, क्योंकि रीथ फाउंडेशन स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए बहुत सारे काम कर रही है। ऋतु जी, आपने कहा कि हम महिलाओं के लिए ढेर सारे काम करते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स, चाहे दुर्गा प्रोजेक्ट है या फिर डिजिटल सहेली वाला प्रोजेक्ट है, या फिर कहना चाहिए कि उनके डोमेस्टिक वायलेंस के लिए वो किस तरीके से अपने अधिकारों के, अपने राइट्स को वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आप सिखाते हैं। सो किस तरीके से ये इनिशिएटिव्स लेते हैं आप?
1: इसकी शुरुआत, जो आपका ये क्वेश्चन है, इसके आंसर से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक केस के बारे में बताना चाहूंगी। एज अ एडवोकेट मैंने एक महीने की शादी से लेकर मैंने 36 साल की शादी तक के केसेस हैंडल किए
0: जी।
1: तो जहाँ एक महीने की शादी थी, उस जो बिटियाँ थी जब मेरे से मिली और पेरेंट्स के साथ आई वो, तो उनके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा, मैं आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड, मैं बहुत खुश हुई उनसे मिलकर कि एक महीने के बाद कोई पेरेंट्स अपनी बिटिया को ये स्टैंड ले रहे हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं कि हम, क्योंकि ये इस दौर से, इस डोमेस्टिक वायलेंस से, और बहुत सारी हरासमेंट्स थी उनकी उसमें मैरिटल स्टेटस में, तो जब उन्होंने उनका साथ दिया पेरेंट्स ने, तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी। कि नहीं तो हमारे समाज में ये होता है कि नहीं अभी तो ये शुरुआत है, अरे ऐसे तो हर लड़की के साथ होता है। बहुत सारी मेरी ही क्लाइंट्स आकर हमें ये बोलती हैं कि मैम मेरी तो मम्मी ही मेरा साथ नहीं देते हैं, या मेरी बड़ी बहन मेरा साथ नहीं देती है, मेरी मम्मी मुझे बोलती हैं कि अरे ये तो हर महिला के साथ होता है, हर औरत को इससे गुजरना पड़ता है, मुझे भी तुम्हारे पापा ने एक दो बार हाथ उठाया है तो क्या हो गया, और बड़ी बहन के ऊपर भी हाथ उठाया है। सब लड़कियों का ऐसे ही घर बनता है, देखना कुछ सालों के बाद सारी की सारी बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी। ऐसा बोलकर इन सारी महिलाओं को, उसके दौरान उनके बच्चे हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं डिपेंड हो जाती हैं, और वो जिंदगी इसी तरह से गुजरती जाती है। ऐसे ही जो मैं अपने केस के बारे में बता रही हूँ, जो एक महीने की शादी के बाद जो लड़की आ गई वापस, और उसने ये कहा कि नहीं मैं नहीं जा सकती बिकॉज ऑफ यू रीजंस, सर्टेन रीजंस, और पेरेंट्स ने जब साथ दिया, तो जो उनके परिवार के लोग थे, और जैसे कि मामा, चाचा, ताया, बहुत सारे और रिश्तेदार, वो खड़े हो जाते हैं ये कहकर कि आप ये बहुत गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, ये आज आपकी लड़की वापस आ गई है और आप ये कर रहे हो, हमारी भी बेटियां वापस आ जाएंगी, आप इसको वापस भेजो। तो बहुत ही मेरे लिए एक प्राउड की बात थी कि मदर ने आकर ये मुझे बताया कि मैम जब मेरे खुद के सगे भाइयों ने मुझे ऐसा कहा, जो कि मामा थे लड़की के, कि तुम इनको वापस भेजो हमें नहीं पता, तो मैंने उन्हें बोला कि आपने रिश्ता मुझसे तोड़ना है तो तोड़ सकते हो, आप मुझसे बात करनी बंद करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मैं अपनी बेटी को जीते जी वहाँ मरने के लिए नहीं भेजूँगी।
0: एग्जैक्टली,
1: मैं नहीं भेजूँगी, मैं इसके साथ खड़ी हूँ, आप लोगों को जो करना होगा करना। तो मेरे लिए एक बहुत, मैं हमेशा उस फैमिली को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया सोसाइटी में ये, और आज वो मेरी, वही मेरी क्लाइंट जो है वो सेकेंड टाइम शी इज मैरिड, एंड मैरिड टू अ नॉन मैरिड गाय। ही वॉज अनमैरिड एट दैट टाइम व्हेन ही गॉट मैरिड, तो इसकी सेकेंड मैरिज थी और उसकी फर्स्ट मैरिज थी, तो ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। और yes. मुझे बहुत अच्छा लगा ये भी सुनकर कि चलो सोसाइटी थोड़ी चेंज हो रही है, एक्सेप्टेंस आ रही है सोसाइटी में। तो यही इसी के साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि हमने जब ये सारे एग्जाम्पल्स, कुछ अच्छे कुछ बुरे, कुछ हम देखते थे बहुत अलग अलग तरीके के, कि कुछ में बहुत हिम्मत है और कुछ बिल्कुल ही हिम्मत नहीं कर रहे हैं, कुछ माँ बाप साथ छोड़ देते थे और उनकी बेटियों को बोलते थे कि नहीं अगर तुमने ये स्टेप उठाया या तुम एडवोकेट के पास गई तो हम तुमसे बात करनी छोड़ देंगे, वापस जाओ। और कई लड़कियां जो हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी, तो उनको ये था कि अगर पेरेंट्स आएंगे वो केस के लिए फीस देंगे तभी मैं फीस दे पाऊंगी और मैं केस कर पाऊंगी। तो वहां पर भी हमारी रीथ फाउंडेशन ने उनको बहुत साथ दिया। एक महिला थी जिनकी छोटी सी बिटिया, बहुत ही छोटी फीडिंग मदर थी वो, और बहुत ही छोटी छः सात महीने की बेटी को फादर जबरदस्ती छीन के ले गया था। वो फाइनेंशियली भी बहुत इंडिपेंडेंट नहीं थी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से थे वो कपल, और उन्होंने मेरे पास आए भेजा किसी की रेफरेंस से आए कि मैम ऐसे ऐसे इनके साथ हो गया है, प्लीज़ इनकी बिटिया को वापस दिलवाया जाए। तो हमने बहुत जल्दी 2-3 दिन में ही डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला। मैं उसके बारे में आप बहुत डिटेल में बताऊंगी डोमेस्टिक वायलेंस के अभी इस एग्जांपल के बाद। और उनका जब हमने केस डाला तो हमने जैसे आपके सामने ये बात रखी कि छोटी सी बच्ची है और ये फीडिंग मदर हैं, और तो अगले ही दिन बिटिया को मतलब नोटिस, उनको जो दूसरी पार्टी थी नोटिस करवाया गया, बिटिया को बुलवाया गया और माँ को बिटिया हैंड ओवर की गई। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे जहाँ पर भी हम किसी की मदद कर पाए और जहाँ पर भी हमें लगा कि हाँ रीत फाउंडेशन के थ्रू हम ये वाली मदद किसी की कर सकते हैं, जहाँ वो फाइनेंशियली अपनी आर्थिक स्थिति में इस तरह से नहीं है कि वो किसी लॉयर को अफोर्ड कर सके, हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत प्रावधान हैं, ऐसे पैनल एडवोकेट्स हैं हमारे DLSA में, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में, वो वहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन हमने अपनी तरफ से कोशिश की हुई है रीत फाउंडेशन के थ्रू, जहाँ पर हम इस तरह की महिलाओं को हम मदद दे सके।
0: तो दोस्तों एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, किस प्रकार के इनिशिएटिव्स और किस प्रकार की महिलाओं की मदद की जाती है रीत फाउंडेशन में, ये तो आपने जान लिया। अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जो चलाए जाते हैं, और अगर कोई भी ऐसी महिला है जो आती है और रीत फाउंडेशन को वो अगर कोशिश करती है एड्रेस करने की कि भाई मुझे मेरी मदद कर दीजिए, तो ऐसे में ये फाउंडेशन सबसे पहले आगे आती है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं एडवोकेट ऋतु कपूर शर्मा जी के साथ, जो कि फाउंडर और डायरेक्टर हैं रीथ फाउंडेशन की। वैसे तो अगर मैं इनके नाम के आगे जितनी भी उपलब्धियां इनके पास है वो गिनाने लगूंगी तो ये जो एक घंटा है यूं ही खत्म हो जाएगा। बट मैं ये कहना चाहूंगी, ये एक ऐसी महिला है जो सशक्तिकरण फैलाने की कोशिश कर रही है। ऋतु जी, अब बात करते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण की, और उसमें एक बहुत अभिन्न हिस्सा निभाता है ये डोमेस्टिक वायलेंस। हर महिला कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इस डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। जिन महिलाओं की शादी हो गई है उन्हें शायद ये पता भी नहीं है कि घर में जो डेली बेसिस पर उन्हें ताने दिए जा रहे हैं ये भी डोमेस्टिक वायलेंस का एक हिस्सा होते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शायद वी आर बॉर्न विद दिस। अच्छा, ताना वो इट्स ओके, ये तो हर महिला को शादी हुई है तो उसके साथ प्लस वन आपको दो चार ताने तो मिलेंगे ही। आज खाने में नमक अच्छा नहीं है, तुम अच्छी नहीं दिखती हो, इतने साल बाद तुम्हारी शक्ल ऐसी हो गई, ये सब ताने हैं। और बिसाइड्स दैट, शायद महिलाओं के परिवार को लेकर जो बातें कही जाती हैं या फिर वहां से आने वाले लोगों के बारे में जो कहा जाता है, ये सब बड़ी कॉमन चीजें हैं घरों में। बट शायद पुरुषों को ये नहीं पता है कि अब महिलाएं भी सशक्त हो रही हैं और उन्हें भी अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। सो रीथ फाउंडेशन इसमें कैसे मदद करती है?
1: सी, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू हिंसा, उसमें एक इतना अच्छा ये एक्ट आया था 2005 में, ये स्पेशल एक्ट आया था। और मैं हमेशा जितनी भी मेरी क्लाइंट्स, मेरे सेशंस, मैं हमेशा इसमें ये उनको जागरूक करना चाहती हूँ। और मैं आपके सब लिसनर्स को भी ये बात कहूँगी कि ज़रूर इस एक्ट के बारे में पढ़ें, क्योंकि इतना कॉम्पैक्ट और इतना स्ट्रॉन्ग एक्ट है ये महिलाओं के लिए। क्योंकि और चीज़ें हैं, पहले से आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि पहले प्रावधान नहीं थे, प्रावधान पहले भी थे, मेंटेनेंस के हैं, इंटरिम रिलीफ के हैं, कस्टडी के हैं। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा कॉम्पैक्ट एक्ट है और ऐसा वो है जहां आपको सबसे पहला सेक्शन 17 जो है, सेक्शन 17 को मैं थोड़ी देर के बाद बताती हूँ क्योंकि वो रेजिडेंस से करता है, मैं 18 के बारे में बताती हूँ। सेक्शन 18 जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, वो बात करता है प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन बहुत अलग अलग तरीके की होती है। प्रोटेक्शन ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई गनमैन घूमना शुरू हो जाएगा, कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं अच्छा एक प्रोटेक्शन कोर्ट से मिल रही है हमें, तो कोर्ट की प्रोटेक्शन तो यही होती है कि हाँ कोई पुलिसमैन हमारे साथ आ जाएगा और हमारे घर के बाहर बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। आजकल की डेट में बहुत अलग अलग तरीके की, जैसे वो मेरे वर्क प्लेस पे आ जाता है, मेरा हस्बैंड आकर वहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट करता है, सो आई वॉन्ट योर ऑनर टू प्लीज रिस्ट्रेन हिम टू डू दैट, उसे रोका जाए इस चीज से। और मुझे ये प्रोटेक्शन चाहिए कि वो घर में बहुत ज्यादा घरेलू हिंसा में मेरे साथ, यही जो आपने कहा तानेबाजी, गाली गलौज, इस तरह की जो चीजें हो रही हैं वो मेरे साथ ना की जाए। पहली ये प्रोटेक्शन, दूसरी मेरे वर्क प्लेस पे ना करें, तीसरा कि मेरे जो बहुत सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स उनमें आकर बहुत ज़्यादा ये मैसेजेस कन्वे किया जा रहा है कि मैं इस तरह की महिला हूँ, ये देखो ये ऐसे करती है, या किसी वजह से हम आज की डेट में सेपरेट रह रहे हैं, मैं अपने मायके में आके रह रही हूँ क्योंकि घर में बहुत घरेलू हिंसा थी, तो इसको ये रिस्ट्रेन किया जाए, इसे रोका जाए कि ये मेरे सारे फ्रेंड सर्कल, मेरे वर्क प्लेस, मेरे रिलेटिव्स, इनमें ऐसी कोई भी मेरे बारे में बात ना करें जहां पर मेरी इंसल्ट हो, जहां पर मेरा कहीं पर भी कुछ भी गलत हो मेरे साथ। अब ये हो गई प्रोटेक्शन की बात। उसके बाद आते हैं कि जो महिलाओं को रेजिडेंस का बहुत डर होता है, जितनी भी महिलाएं हैं उनको सबसे ज्यादा डर ये होता है कि मैम अगर हमने ये केस डाला तो मैं रहूंगी कहाँ, मुझे तो घर छोड़ना पड़ेगा। तो मैं उनको बोलती हूँ नहीं, आपको घर छोड़ना नहीं पड़ेगा। ऐसे कैसे मैम, मैं इसी घर में रह के, सास ससुर हैं मेरे और मेरे हस्बैंड हैं, यहाँ पर मेरे साथ ऐसे बदतमीजी हो रही है तो मैं कैसे इस घर में फिर रह सकती हूँ, और मैं उनके ही अंगेंस्ट केस भी डाल दूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। तो तब मैं उन्हें बताती हूँ कि सेक्शन 17 पढ़ो। तो जितने भी आपके लिसनर्स भी हैं उनको मैं प्लीज़ ये बोलूँगी, सेक्शन 17 डील्स विद शेयर हाउसहोल्ड। शेयर हाउसहोल्ड होता है जिसमें आप शादी करके आए हैं, उसी घर में आप रह रहे हैं, सालों से रह रहे हैं, आपके बच्चे उसी घर में हुए हैं, आप अपने ज़िंदगी बिता चुके हैं, तो आपको कोई भी उस घर से बाहर नहीं निकाल सकता। तो तो हम ये एक सबसे पहला जाकर एक इंटरिम रिलीफ लेते हैं कोर्ट से कि नॉट टू डिस्पोजेस हर फ्रॉम दिस हाउस. शी हैज फुल राइट टू स्टे इन दिस हाउस. वहाँ पर उसको पूरा हक है इस घर में रहने का, बिकॉज ये इसी घर में शादी करके आई है, इसके पास और कोई घर नहीं है, पति यहीं रहते हैं, तो इनको क्यों निकाला जाएगा जस्ट बिकॉज क्योंकि इन्होंने आवाज उठा ली. तो शेयर हाउस होल्ड के साथ साथ एक और प्रावधान इसमें दिया है, कई बार कई महिलाओं के पास शेयर हाउस होल्ड नहीं है, वो रेंटेड अकोमोडेशन में रह रही हैं, हस्बैंड नौकरी कर रहे हैं, वाइफ नौकरी कर रही हैं, या वाइफ नहीं भी कर रही हैं, तो वो एक रेंट दे रहे हैं. और अब कोई झगड़ा हो गया है, अब झगड़ा हो गया है तो हस्बैंड जो है घर छोड़ के चले गए हैं, और अब वो टेंशन में है कि अब बच्चों की फीस का क्या होगा, रेंट का क्या होगा, मैं कैसे गुजारा करूंगी अपना
0: जी.
1: तो सेक्शन 19 जो है वो डील करता है राइट टू रेजिडेंस से. राइट टू रेजिडेंस है कि जहां पर ये कहा जाता है कि अगर आप ने कुछ छोड़ के चले भी गए हो तो भी रेंट आप ही दोगे. आप इस महिला को ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते कि आप इनको घर से बाहर निकालने की सलाह कर लो, कॉन्स्पिरेसी कर लो या कुछ ऐसा कर लो. तो सेक्शन 17 और 19 रेजिडेंस से डील करता है, 18 प्रोटेक्शन से डील करता है, 20 जो है वो मॉनेटरी रिलीफ से डील करता है, जैसे कि हर रोज दिन डे टू डे के जो एक्सपेंसेस होते हैं तो वो वाले बच्चे उनको बहुत टेंशन होती है कि मैम ये ग्रॉसरी का खर्चा नहीं देगा, मैम जैसे ही मैंने केस डाला तो ये बच्चों की फीस रोक देगा, पेट्रोल का खर्चा नहीं देगा, मैं कहाँ से ये इलेक्ट्रिसिटी का नहीं देगा, तो मैं कैसे ये चीज़ें चलाऊंगी. तो वो हम सारा का सारा कोर्ट से सेक्शन 20 में मॉनिटरी रिलीफ ये लिख सकते हैं कि ही इज़ अर्निंग दिस मच और ये करता आ रहा है सारे ये खर्चे, पूरे परिवार का खर्चा ये चला रहे हैं. अगर महिला भी काम करती है तो डेफिनेटली कोर्ट वो भी कंसिडर करते हैं. ऐसा नहीं है कि महिला काम कर रही हैं और पुरुष जो है वो कमा कर उनको देना ही देना है, तो कोर्ट बहुत अच्छे से दोनों का इनकम एंड एसेट एफिडेविट मंगवा कर और जितना उन्हें समझ आता है कंसिडर करके एंड देन दे डिसाइड दी मॉनिटरी रिलीफ. सेक्शन 21 जो है वो कस्टडी से डील करता है
0: जी.
1: कोई भी माँ जो 5 साल से तो पहले उसे बच्चे से अलग किया ही नहीं जा सकता, और अगर वो अलग करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर भी ये प्रावधान दिया हुआ है कि वो कस्टडी अपनी वो क्लेम कर सकती हैं उसमें. 23 बहुत स्ट्रॉन्ग है
0: जी.
1: जो लास्ट में आप बताना चाहूँगी सेक्शन 23 घरेलू हिंसा का, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, हर महिला को ये बहुत ज़्यादा एक एप्रीहेंशन है केस डालने के टाइम पर कि मैम अगर मैंने ये केस डाला ये 2-3 साल चलेगा केस, ये लंबा चलता है, मैंने बहुत सुना हुआ है, मैं कोर्ट नहीं आना चाहती, लोग बोलते हैं कोर्ट में आप धक्के खाते रहोगे, ऐसा होता है कि इतनी देर देर तक ऑर्डर्स ही नहीं आते. तो मैं हमेशा उन्हें एक बात समझाती हूँ कि सेक्शन 23 जो है वो इंटरिम रिलीफ से डील करता है. तो इंटरिम रिलीफ होता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी, जितनी भी देर केस चलेगा. तो हम जब जज साहब के पास जाते हैं या कोर्ट में हम केस डालते हैं तो हम यही बोलते हैं कि केस तो चलता रहेगा, तो उसके दौरान अभी इस टाइम पे जो मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है प्रोटेक्शन की, वो है नॉट टू डिस्पोजेस की, मुझे घर से निकाला ना जाए, वो है मेरी मॉनेटरी रिलीफ की
0: जी.
1: मेरे बच्चों की फीस ना रोकी जाए, ये बच्चों ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल ना देना रोक दे, ये रेंट ना देना रोक दे, तो वो विद इन 6 मंथ्स कोर्ट आपको रिलीफ दे देती है. विद इन 6 मंथ्स होता है, नहीं तो मैक्सिमम ये 8-9 मंथ्स तक स्ट्रेच होगा
0: जी.
1: डिपेंड करता है बहुत सारे और सर्कमस्टांसेस पे भी. तो ये एक बहुत बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग प्रावधान है जो मैं जब भी अपने रीत फाउंडेशन के भी मैं सेशंस लेती हूँ तो मैं इसके बारे में ज़रूर बताती हूँ सब महिलाओं को कि प्लीज़ घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में ज़रूर पढ़ें. और जितनी भी महिलाएं जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रही हैं, इसकी जो डेफिनेशन है घरेलू हिंसा की, डोमेस्टिक वायलेंस की, वो यही है कि जो भी महिला, चाहे वो बहन हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर क्यों ना हो, तो वो इस केस को डाल सकते हैं और अपने राइट क्लेम कर सकते हैं.
0: बड़ा जरूरी है दोस्तों। महिलाओं के साथ अगर मैं बात करूँ ना, तो वो सैक्रिफाइस तो उन्हें पता है, उन्हें ये पता है हमारी ड्यूटीज क्या है, बट उनके राइट्स क्या है ये उन्हें नहीं पता है। और ये नेक काम रीत फाउंडेशन कर रही है, ना सिर्फ उनके साथ हैंड होल्डिंग करके उनकी मदद कर रही है, लेकिन उन तक ये सारी की सारी जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रही है, जिससे कि महिलाएं किसी भी प्रकार से किसी भी कंडीशन में वो ना तो किसी का शिकार हो और ना ही ऐसी हिंसा को बर्दाश्त करें। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। आज मानवता की राह पर हम चल रहे हैं रीत फाउंडेशन के साथ। एडवोकेट ऋतु कपूर शर्मा हमारे साथ बैठी हैं, जो कि फाउंडर डायरेक्टर हैं। ऋतु जी, अब मैं ये जानना चाहूंगी, ढेर सारे लोग आपको सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना के जरिए, बहुत सारी महिलाओं को अब लगने लगा है कि वो तो इतने सालों से डोमेस्टिक वायलेंस बर्दाश्त कर रही थी और उन्हें पता ही नहीं था उनके लिए इतनी सारी चीजें हैं, इतना प्रावधान भी है। अगर कोई रीत फाउंडेशन के साथ एसोसिएट होना चाहता है, वॉलंटियर करना चाहता है, या आपसे किसी भी प्रकार की कोई कानूनी सलाह चाहता है, या इस फाउंडेशन के जरिए किसी भी प्रकार की कोई रिलीफ चाहता है, तो वो आपके साथ कैसे एसोसिएट हो सकते हैं, किन नंबर्स पर वो जा सकते हैं, और अगर उन्हें अपनी ही राइट्स के बारे में जानना है तो वो आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं?
1: रीत फाउंडेशन इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है और फेसबुक पे भी अवेलेबल है, एंड नहीं तो डायरेक्ट वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना फ़ोन नंबर बता सकती हूँ, 7042615753, सो दे कैन डायरेक्टली गेट इन टच।

0: अलग किस्म के काम करती हैं। डिजिटल सहेली के बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगी। जिस प्रकार आपने कहा कि गुरुग्राम ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और पुलिस के साथ मिलकर अब वो डिजिटल सहेली लॉन्च किया गया है, जिससे कि अगर किसी भी प्रकार के साइबर फ्रॉड्स महिलाओं के खिलाफ किए जा रहे हैं तो उनको रिपोर्ट किया जा सकता, तो उसके लिए क्या नंबर है और क्या है ये डिजिटल सहेली?
1: जरूर उसके बारे में मैं भी जरूर बताना चाहूंगी। रिसेंटली हमारे कमिश्नर साहब श्री विकास अरोड़ा जी ने इसका लॉन्च किया है डिजिटल सहेली। सो वुमेन्स डे पे उन्होंने एक तरह से सब महिलाओं को, गुरुग्राम की महिलाओं को उन्होंने ये अपनी तरफ से गिफ्ट दिया है। लेकिन ये जानकर आपको खुशी होगी कि सिर्फ गुरुग्राम ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया से इसमें रिस्पांस आना शुरू हो गया है। ये डिजिटल सहेली एक ऐसी चैट बॉट है, ये चैट बॉट है व्हाट्सएप पे, एक नंबर है जिस नंबर को मैं बताना चाहूंगी, 5x9 81002। इस नंबर को कोई भी अगर महिला सेव करती हैं और उन्हें ऐसा लगता है किसी भी प्रकार के उनके साथ कोई भी साइबर हरासमेंट हो रही है, जैसे कि कोई मॉफ्ड पिक्चर्स हैं उनकी, कोई उन्हें गलत पिक्चर्स उनकी बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है, कुछ बच्चे हैं जो आजकल के यंग जनरेशन के बच्चे कई बार वो ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं कि मिसगाइड हो जाते हैं और अपनी ऐसी पर्सनल पिक्चर्स शेयर कर देते हैं अपने पार्टनर के साथ और बाद में जाकर वो ब्लैकमेल होते हैं, तो उनके लिए भी अगर उन्हें कहीं पर भी लगता है तो उन्हें समझ नहीं आता कि हम अपने पेरेंट्स के पास जाएं, हम पुलिस के पास जाएं, हम किसको बताएं, तो वो डायरेक्टली इस नंबर को अपने व्हाट्सएप पे सेव करके और वो रीच आउट कर सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं, उन्हें बताना होगा कि ये ऐसे में मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है और ये मेरी गलत पिक्चर्स वहाँ पर डाल दी गई हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी आई हैं जिन्होंने ये बोला है कि हमारी पिक्चर्स डालकर गलत साइट्स पे और हमारे नंबर्स डाल दिए जाते हैं, आउट ऑफ रिवेंज भी ऐसा लोग करते हैं। तो अगर ऐसा भी उनके साथ हो रहा है तो गुरुग्राम पुलिस ने ये फैसिलिटी उनको दी है और मल्टीपल अकाउंट्स खोल लेते हैं, गलत अकाउंट्स खोल के उनकी तरफ से चैट करते हैं और जानबूझ के उनके उनको डिमीन करने का एक तरीका है उनका साथ लिए। तो अगर ऐसा उनके साथ कुछ हो रहा है तो वो वहाँ पर इस चैटबॉट में जैसे ही इन्फॉर्म करेंगी तो विद इन 24 आवर्स वो मटीरियल डिलीट कर दिया जाएगा, विद इन 24 आवर्स। ये प्रॉमिस है गुरुग्राम पुलिस की तरफ से और उसका रिस्पांस इतना अच्छा आ रहा है कि सब तरफ से, ऑल ओवर इंडिया से कॉल्स भी आ रही हैं और बाहर से भी एक दो इंटरनेशनल लोगों ने भी कांटेक्ट करने की कोशिश की कि उनके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा होगा जिसके वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा। तो ये बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई है, तो आई रियली वॉन्ट कि सब लिसनर्स इसको ध्यान से सुने, ये नंबर सेव करें 5x9 81002। और अगर कुछ किसी भी महिला के साथ, उनके सर्कल में किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो जरूर उन्हें बताएं और ये मदद करें।
0: सो भाई देखिए, बहुत जरूरी है महिलाओं को, कि हम हमेशा ये कहते हैं अगर आप अपनी सोशल मीडिया पर कोई भी पिक्चर डालते हैं संभल कर डालिए, उसके प्राइवेसी सेटिंग्स पर जाइए, उसे लॉक करिए क्योंकि कहीं कोई इसका मिसयूज ना करे। सो अगर उसके मिसयूज से बचना चाहते हैं तो आपके पास डिजिटल सहेली है, खुदा ना खास्ता कोई कॉन्शियसली आपकी पिक्चर्स को चुरा लेता है, उन्हें मॉफ करता है, उन्हें किसी साइट पर डाल देता है या अदरवाइज कहीं इस्तेमाल करता है, तो ये सारी चीजें रिपोर्ट की जा सकती हैं और डिजिटल सहेली की सहायता से आप इसे पुलिस तक पहुंचा सकते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हमने एक लंबे सी डगर तक गए हैं रीत फाउंडेशन के साथ। रीत फाउंडेशन महिलाओं के लिए ढेर सारे काम कर रही है, ना सिर्फ उन्हें उनके राइट्स के बारे में बता रही है, लेकिन साथ के साथ देखा जाए तो रीत फाउंडेशन ढेर सारा काम कर रही है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। रितु जी आज हमारे साथ हैं, एडवोकेट रितु कपूर शर्मा, जो कि फाउंडर और डायरेक्टर हैं रीत फाउंडेशन की। चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ढेर सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष, बहुत सारे बच्चे आपको सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना के जरिए। मुझे बताइए, जाते जाते आप उन सभी को क्या खास मैसेज देना चाहेंगी?
1: मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि लव इज नथिंग व्हेन गिवन टू अ रॉन्ग पर्सन, एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्ट ऑफ लव इज समटाइम इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एक्ट to walk away.
0: Yes.
1: So if you feel that you are being harassed and you are not being respected over there, so then immediately leave that place. Or agar hame aisa lagta hai ki hum kisi ki asliyat samne aane ke bawajood bhi usko nahi chhod pa rahe hain aur hame aisa lagta hai ki hum use pyar karte hain, to aisa nahi hai, wo pyar nahi hai. Aur उस दौरान, इस पूरी जर्नी में हम उस इंसान को नहीं खो रहे, हम अपने आप को खो रहे हैं। तो प्लीज़ ये इस गलत फहमी में ना रहें, जो बच्चे या जो भी महिलाएं हैं, कि ये शायद प्यार है, मैं प्यार करती हूँ, ऐसा नहीं है। और इस उसमें से निकलें और अपनी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव उसमें रहें, एक पीसफुल लाइफ जिएं, आवाज़ उठाएँ और जिसकी भी मदद कर सकें मदद करें।
0: बिल्कुल, देखिए महिलाओं के लिए मैं हमेशा कहना चाहती हूँ, उन्होंने ना अपना सरनेम बना लिया है सैक्रिफाइस, और उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जीवन सिर्फ सैक्रिफाइस के लिए बना है, बट आइडली आपका जीवन जीने के लिए बना है। आपको भी जिंदगी के उतने ही साल मिले हैं जितने पुरुषों को मिले हैं, सो जरूरी नहीं है कि सारा सैक्रिफाइस आप ही करें। आप अपने जीवन को खुशी से जिए, हंसिए, मुस्कुराइए, और जो अधिकार आपके लिए न सिर्फ समाज ने, सरकार ने बनाए हैं, कानून ने बनाए हैं, उन्हें भी प्रैक्टिस करिए। अगर आपका जीवन खूबसूरती से गुजर रहा है, बहुत अच्छी बात, लेकिन कहीं कोई उतार चढ़ाव आ रहा है और लग रहा है कि कहीं कोई परेशानी है, तो आपके पास बहुत सारे हाथ ऐसे हैं जो आगे बढ़कर आपको थामने के लिए तैयार हैं। एक सॉलिड ऐसा हाथ है रीत फाउंडेशन, जिसके बारे में आज हमने ढेर सारी बातें सुनी, लेकिन समय की थोड़ी सी किल्लत है भाई। एक ही घंटे का समय होता है और उसमें आपको गाने सुनाते हुए ये पूरी रीत फाउंडेशन की कहानी सुनानी थी। सो अगर आप रीत फाउंडेशन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, सो जाइए सोशल मीडिया के, इतने सारे हैंडल्स हैं, कॉन्टैक्ट करिए, जाइए, जानिए वो किस प्रकार के काम करते हैं और जुड़ जाइए एडवोकेट रितु कपूर शर्मा के साथ। तहे दिल से धन्यवाद रितु जी, आज आप स्टूडियो में आए, कीमती समय निकाला, लेकिन इतनी बेहतरीन जानकारी आपने हमारे सभी लिसनर्स को दी है। आई एम श्योर जितनी भी महिलाएं, पुरुष, बच्चे आज भी को आपको सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना के जरिए, उन्हें समझ में आ रहा होगा कि उनका जीवन कितना वैल्यूएबल है।
1: थैंक यू सो मच भावना जी, यहाँ हमें बुलाने के लिए, और आई होप कि इस प्रोग्राम के जरिए हम और बहुत सारी महिलाओं को सशक्त कर पाएंगे आज। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सो दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, और आपसे इजाजत लेते हुए वादा कर देती हूँ अगले हफ्ते मैं होंगी आपके साथ, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे यानी आरजे भावना को दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजी भावना। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। सैटरडे को 5 बजते ही आरजे भावना आपके पास आ जाती है और आपके पास लेकर आती है सशक्तिकरण की एक खूबसूरत सी कहानी। और आज की कहानी है मोनिका मनचंदा जी की। देखिए भाई, आपको पता है एक लंबे समय से मैं इस कार्यक्रम को लेकर आ रही हूँ। सशक्तिकरण की मैं अगर बात करूँ और खास तौर पर महिलाओं की, तो वो मेरे दिल के बड़ी करीब है। और आज मोनिका मनचंदा जी से हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं उनके जीवन के बारे में। मोनिका मनचंदा जी जो कि एक हेल्थ और वेलनेस कोच हैं, एक रेकी हीलर हैं, एक बॉडी फैसिलिटेटर हैं, इसी के साथ साथ साउंड हीलर हैं, टेरो कार्ड रीडर हैं, बॉडी साइकोलॉजिस्ट भी हैं, इसके साथ साथ आइस बाथ गाइड भी हैं। आइस बाथ गाइड आजकल आपको पता है बहुत ही ज़्यादा नई चीज़ है, बट मैंने नोटिस किया है कि इससे भी आप अपने न्यूरो सिस्टम को रिचार्ज कर सकते हैं। सो आइस में जब आप अंदर जाते हैं और ठंडे ठंडे पानी से आपकी पूरी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है। कैसे एक्टिवेट होता है ये बताएंगे, लेकिन इसके लिए करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में।
1: थैंक यू भावना जी।
0: मोनिका जी, पहला सवाल, इस कार्यक्रम का पहला सवाल हमेशा एक स्टैंडर्ड सवाल रहा है, बिकॉज व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज कि वुमेन एम्पावरमेंट में जो एम्पावरमेंट की डेफिनेशन है ना, ये हर महिला के लिए अलग होती है। So, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, हाउ डू यू परसीव एम्पावरमेंट, आपको क्या लगता है व्हाट इज एम्पावरमेंट?
1: देखिए, मेरे लिए एम्पावरमेंट वो है जहाँ पर विमेन अपने बारे में ऐसी डिसीजंस ले सकती हैं जहाँ पे उन्हें खुद को सेटिस्फेक्शन मिलती है, अपने लिए कुछ करती हैं। अपने लिए थोड़ा सा ही, चाहे छोटी से छोटी डिसीजन हो, चाहे घर पे अपनी पसंद की चीज बनाना हो या अपने लिए कोई ऐसा डिसीजन लेना हो जो उन्हें लगता है कि यस, ये सिर्फ मेरा डिसीजन है और इसको कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, और ये मेरे लिए वुमेन एम्पावरमेंट।
0: वाकई, मतलब अगर हम देखें तो महिलाओं के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि वो अपने जीवन को एक बार अपने तरीके से जीने का मौका तो पाएं। क्योंकि होता क्या है कि आइडियली जब एक महिला पैदा होती है, महिला तो नहीं, एक बच्ची पैदा होती है, और उसके महिला बनने तक या फिर उसके मरने तक उसके पूरे जीवन के डिसीशंस हैं ना, वो कहीं कोई और ले रहा होता है। कभी उनके पापा ले रहे होते हैं, कभी उसके भाई ले रहा होता है, कभी उसके पति ले रहे होते हैं, कभी उसके ससुर ले रहे होते हैं। सो उन, और फिर एक जिंदगी का पड़ाव तब आता है जब शायद कोई उनका बेटा या बेटी उनके जिंदगी के डिसीजन ले रहे होते हैं। बट वेन इज द टाइम ऑफ वुमेन गेट्स एन अपॉर्चुनिटी कि वो अपने जिंदगी के डिसीजन ले। सो एम्पावरमेंट वहीं शुरू हो जाती है जहां महिला अपने डिसीजन खुद ले पाए। सो जरूरी ये है कि महिलाओं को मौका मिले कि वो अपने जीवन को अपने नजरिए से जी जरूर पाए। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है वी यानी विमेन एम्पावरमेंट। आज हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं मोनिका मनचंदा जी से। आज के एपिसोड में मोनिका जी हमारे साथ हैं, जो एक हेल्थ और वेलनेस कोच हैं, एक रेकी हीलर हैं, एक आइस बाथ गाइड हैं, एक साउंड हीलर हैं, एक टैरो कार्ड रीडर हैं, बॉडी साइकोलॉजिस्ट हैं, ब्रेथवर्क फैसिलिटेटर हैं। भाई इतनी सारी चीज़ें इन्होंने की हुई हैं, बट मुझे ये कहना चाहिए कि इन ऑल ये एक सशक्त महिला हैं। मोनिका जी, चैलेंजेस की बात करते हैं। महिला, और मैं हमेशा ये कहती हूँ, उनका सरनेम है चैलेंज। उसके बाद जो ओरिजिनल आपको सरनेम मिलता है ना, वो थर्ड लेवल पर आता है, बट पहले लेवल पर चैलेंज आते हैं। सो बचपन से पैदा होने से एक चैलेंज है। पहले तो कन्या भ्रूण हत्या इतनी होती थी कि पैदा होना चैलेंज था, फिर धीरे धीरे अलग अलग चैलेंजेस। सो सदी बदली, इरा बदले और चैलेंजेस भी बदले। अगर मैं आज के जमाने की बात करूँ, सो क्या लगता है किस प्रकार के चैलेंजेस महिलाएं फेस कर रही हैं?
1: देखिए, आज की बात करूँ ना, तो आज भी बहुत इम्प्रूवमेंट है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे पैटर्न्स चलते आ रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात अगर हम कर रहे हैं ना, तो आज भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि अपने बारे में सोच ही नहीं रही हैं।
0: एक्चुअली
1: आज भी उनके लिए उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनके आस पास के लोग ज़्यादा मैटर करते हैं। इम्प्रूवमेंट है, जैसे जैसे सदी बदल रही है महिलाएं भी और एम्पावर्ड हो रही हैं, बट अगर मैं बात करूं 80% अभी भी महिलाएं वही हैं जो कि अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देती हैं, चाहे वो अपनी हेल्थ को लेकर हो, चाहे अपनी इमोशनल हेल्थ को लेकर हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। बट अगर मैं अगर हम बात करते हैं ना कि आज ये डिसीजन मुझे अपने लिए लेना है, तो आपके माइंड में 10 चीज़ें और आ जाती है कि मेरा ये कौन सोचेगा, मेरे हस्बैंड कैसे सोचेंगे, या बच्चों के लिए क्या कैसे करेंगे, लेकिन मैं क्या सोचती हूँ वो सबसे एंड का क्वेश्चन आता हूँ।
0: यस,
1: सो इसके लिए आज भी महिलाएं अपने बारे में कम और आसपास अपने लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रही हैं।
0: वाकई सो अगर मैं बात करूँ चैलेंज की, तो ये एक बड़ा चैलेंज है। उसके पीछे देखिए बहुत सारी चीज़ें छुपी हैं। अगर आप देखें कि आज आपने एक डिसीजन लिया अपने लिए, अपने बारे में सोचते हुए कि मुझे एक्स वाई जेड करना है, बट आप वो एक्स वाई जेड करने के लिए सबसे पहले उसकी में ज़रूरत होगी पैसों की। वो पैसे कहाँ से आएंगे? सो आपने उन पैसों को कहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी इच्छा के लिए लगाया, और फिर आपने ये जो फीलिंग आपके साथ आ जाती है कि अगर मैं ये पैसा, ये समय या फिर ये फैसिलिटी अपने लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, और उसके एवेज में कोई और है जिसको ये फैसिलिटी नहीं मिल रही है, जो मेरे ही परिवार का सदस्य है, या मेरा ही बच्चा है, या मेरे ही पति हैं, या मेरे ही भाई बहन हैं, तो ये जो गिल्ट है ना, ये महिलाओं को बहुत ज़्यादा सताता है। मान लीजिए कि एक महिला है जो कि घर से कहीं जाना चाहती है, और अगर उसके पास एक्सेस टू कार है या एक्सेस टू व्हीकल है, तो कैन यू बिलीव कि सबसे पहले वो ये सोचेगी कि आज अगर मैं अपने लिए इसे इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ऐसा तो नहीं कि इसकी ज़रूरत पीछे घर वालों को होगी। सो शी वुड बी द लास्ट पर्सन टू थिंक कि कोई भी फैसिलिटी को मैं सबसे पहले अवेल करूँ देन माई फैमिली मेम्बर्स। ये भी एक चैलेंज है कि महिलाएं अपने आप को कब तक यूं ही प्रायोरिटी लिस्ट में कम रखती रहेंगी। सो कब आएगा वो समय जब महिलाएं अपने आप को प्रायोरिटाइज करेंगी? बताइएगा मुझे, जरूर बताइएगा मैसेज करके 8010781078 पर।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट। आज की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं खूबसूरत सी मोनिका मनचंदा जी से। मोनिका जी, अब एक सवाल आपके जीवन से। आप एक सशक्त महिला हैं, बट आप सशक्त तब हैं जब आपने कुछ सशक्तिकरण के डिसीजंस लिए थे। अगर मैं आपके जीवन के कुछ ऐसे डिसीजंस के बारे में जानना चाहूं जो आपने लिए और आज आप रिग्रेट नहीं करती हैं, एंड टुडे यू लुक बैक एंड यू सी एंड यू फील व्हाट एन एम्पावरिंग डिसीजन, अच्छा हुआ मैंने ये डिसीजन लिया, अदरवाइज आज मैं रिग्रेट कर रही होती।
1: तो भावना जी, आज अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में देखूं तो मुझे सबसे बढ़िया डिसीजन अपना लगता है कि मेरी शादी के बाद, डॉटर होने के बाद, मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे आगे पढ़ाई करनी है।
0: वाओ,
1: अपने लिए कुछ करना है, क्योंकि पढ़ाई का हमेशा से शौक था, लर्न करने का शौक था। बट शादी होने के बाद कई बार होता है ना कि अब क्या करना है। बट जब मेरी डॉटर पैदा हुई, उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं रुकना है, मुझे आगे और पढ़ना है। और मैंने अपना कॉलेज दोबारा किया, अपनी पढ़ाई दोबारा की, अपना प्रोफेशन को और बेटर बनाया। और जो आज मैं देखती हूँ, अपनी लाइफ को देखती हूँ और अपने बच्चे को देखती हूँ, जब मेरी डॉटर मुझे कहती है मम्मा आई एम प्राउड ऑफ यू, उस टाइम पे मुझे लगता है कि मेरा ये डिसीजन बिल्कुल ठीक था। एंड आई रियली फील प्राउड ऑफ मी, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे ये डिसीजन को लेके मेरी डॉटर में भी वही हिम्मत आएगी कि वो भी रुकेगी नहीं। वो किसी भी एज में, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं होती जब आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए सबसे एम्पावरिंग डिसीजन था, जहाँ पे मैंने अपने साथ साथ अपनी डॉटर को या मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं उनको भी एम्पावर किया है कि आप कभी भी किसी भी मोड़ पे, किसी भी पढ़ाव में अपनी लाइफ के स्टार्ट कर सकते हैं।
0: ओह स्वीट। मोनिका जी, पर एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी कि जब आपने ये डिसीजन लिया कि बेटी होने के बावजूद घर पर छोटा बच्चा है, आप अपनी एजुकेशन पूरी करेंगी, आप वापस कॉलेज ज्वाइन करेंगी, क्या इस डिसीजन में आपको किसी ने सपोर्ट किया?
1: देखिए, इस चीज़ में मैं ज़रूर ये चीज़ बोलूँगी कि कुछ चैलेंजेस थे, क्योंकि डॉटर बहुत छोटी थी और उस टाइम पे ऐसा था कि मैं, मेरे को ये देखना था कि मैं घर पे किस तरीके से ये बात भी लेकर आऊँ कि मेरी डॉटर हुई है और मुझे कॉलेज करना है।
0: yes.
1: तो बहुत पेशेंस के, बहुत सोचने के बाद मैंने जब ये एक यू नो ऑफर, एक प्रपोजल रखा अपनी फैमिली के आगे, तो मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। और अगर मैं बात करूँ, हम महिलाओं की बात करते हैं ना कि हम एक दूसरे को अगर सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है, तो यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, क्योंकि वो चाहती थी कि, उन्हें मालूम था कि मुझे पढ़ने का शौक है। एंड शी वॉज द वन जो उन्होंने बोला कि आप जाओ और पढ़ो, और डॉटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उनके सपोर्ट से ही मैं आगे कर पाई। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर महिलाएँ भी एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं तो भी आप में बहुत हिम्मत आ जाती है और आप लाइफ में कुछ कर पाते हैं।
0: देखिए, ये सवाल ना अक्सर मैं महिलाओं से पूछती हूँ, क्योंकि जब तक महिलाएं एक दूसरे के साथ नहीं खड़ी होंगी, बहुत सारी बची हुई महिलाएं अपने जीवन के सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगी। वी का मतलब ही यही है, जब महिलाएं एक साथ आए और एक दूसरे को सपोर्ट करें तो हम सही मायने में सशक्तिकरण को पाएंगे। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, feel like

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की खूबसूरत सी कड़ी। और आज हम बात कर रहे हैं मोनिका मनचंदा जी से। मोनिका मनचंदा जी जो कि एक हेल्थ और वेलनेस कोच हैं, एक रेकी हीलर हैं, एक आइस बाथ गाइड हैं, एक बॉडी साइकोलॉजिस्ट हैं, ब्रेथवर्क फैसिलिटेटर हैं, साउंड हीलर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और एक बहुत ही टैलेंटेड महिला हैं। चलिए अब हम बात करते हैं महिलाओं की और साथ के साथ उनकी एक आदत की, क्योंकि ये एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, एक वेलनेस कोच हैं। तो मोनिका जी से हम ये जानना चाहते हैं कि महिलाएं अक्सर इस सशक्तिकरण की जर्नी में अपनी अच्छी हेल्थ को नेग्लेक्ट करती हैं। सो उस अच्छी हेल्थ के लिए किस प्रकार से वो अपने आप को तैयार कर सकती हैं और कैसे इम्बाइब कर सकती हैं एक अच्छी सेहत को।
1: देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि हम हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ में सिर्फ हमारा खाना ही नहीं आता है, हेल्थ में हमारे इमोशंस भी आते हैं। अगर हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, आपको सबसे पहले महिलाओं को ये देखना चाहिए कि वो कुछ टाइम, चाहे आधा घंटा ही अपने लिए रोज की मरा में निकाल रहे हैं, जहाँ पे वो जो भी वो चाहती हैं, चाहे वो खाना हो, चाहे वो डांस हो, चाहे कुछ भी जो उनका खुद का मन करे, वो उन्हें जरूर अपनाना चाहिए ताकि उनकी इमोशनल हेल्थ जो रहती है, फिजिकल हेल्थ तो देखिए हमारी हम खाने के साथ ठीक कर सकते हैं, बट इमोशनल हेल्थ जो होती है उसको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को और बाकी लोगों को भी खुश नहीं कर पाते हैं।
0: वाकई ये वाकई अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी चीज है। महिलाओं को अच्छी सेहत के लिए हमेशा एडवाइस किया जाता है और उसका एकमात्र कारण है कि अगर महिला खुश होगी तो वो अपने पूरे परिवार को खुश रख सकती है। अब नॉट दैट कि एक पुरुष खुश नहीं होगा तो वो अपने पूरे परिवार को बिना खुश हुए भी खुश रख सकता है, बट परेशानी ये है कि महिला केयर ज्यादा करती है, महिला के पास जिम्मेदारियां ज्यादा है और इसीलिए एक महिला का गुड हेल्थ या फिर कहना चाहिए वेलबींग जो है वो शायद उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और जहां मैं बात कर रही हूँ प्रायोरिटी की, तो यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि महिलाओं की प्रायोरिटी उनकी अच्छी सेहत कभी भी नहीं होती है। सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी होती है कि घर का जो काम है ना वो सुचारू रूप से हो जाए, उसके बाद हम अपने बारे में सोच लेंगे। अगर आप भी ऐसा सोचती हैं तो एक यस लिखकर भेज दीजिए मुझे 8010781078 पर। और इसे आप कैसे बदल सकते हैं, इसके टिप्स बस कुछ ही पलों में लेकर आ रही हूँ। मोनिका जी बताने वाली है कि आप अपने आप को अपनी प्रायोरिटी कैसे बना सकती हैं। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम। और हम बात कर रहे हैं मोनिका मनचंदा जी से, जो एक हेल्थ और वेलनेस कोच हैं, एक साउंड हीलर हैं, एक टैरो कार्ड रीडर हैं, एक बॉडी साइकोलॉजिस्ट हैं, साथ के साथ ब्रेथ वर्क फैसिलिटेटर हैं, आइस बाथ गाइड भी हैं। सो आजकल अलग अलग पद्धतियों से आप अपने लिए एक अच्छी सेहत और वेलबींग क्रिएट कर सकते हैं। मोनिका जी, अगर मैं बात करूँ महिलाओं के लिए कुछ टिप्स की, सो क्या कहना चाहेंगी, व्हाट शुड दे डू इन देयर लाइफ? क्योंकि ना एक बड़ा मुझे लगता है एक सबसे अहम सवाल जो है, लोग आजकल न्यूट्रिशनिस्ट के पास नहीं जाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम उनके पास जाएंगे या किसी हीलर के पास जाएंगे तो पता नहीं वो हमें क्या एडवाइस करेंगे जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हम कर नहीं पाएंगे। सो क्या कुछ टिप्स हैं जो आप यहाँ आज इस प्रोग्राम में देना चाहेंगे?
1: देखिए भावना जी, सबसे पहले तो मैं ये टिप देना चाहूंगी कि आपको डरने की जरूरत नहीं होती है। न्यूट्रिशनिस्ट भी आपको घर का खाना, नॉर्मल खाना दे सकते हैं, आपके प्लान को, आपके खाने पीने को आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने लिए, जैसे महिलाओं के माइंड में होता है ना, जैसे आपने बोला कि सबसे पहले इम्पोर्टेंस अपने घर वालों को देती है, तो वहाँ पे ही जब आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, आप खाने की बात करते हैं, आप हेल्थ की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारा ये काम रहता है कि आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग ही आपका खाना पीना बने, जहाँ पे आप पे भी वो प्रेशर ना आए और वो आपके इमोशंस भी खराब ना कर दे कि आप खाना बना रहे हो और आपको ये हो रहा है ओहो मैं अपने लिए क्यों बना रही हूँ। तो ये जो गिल्ट आता है ना, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि न्यूट्रिशनिस्ट के पास जब आप जाते हैं, आप उनसे डिस्कस करते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग ही प्लान बनाते हैं। ऐसा नहीं रहता है कि आपको ऐसी कोई चीज़ दे दें जो कि आप कर ही ना पाए। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, आप अपने हीलर्स के पास जाएं। कई बार इमोशनली हम ईटिंग करना शुरू कर देते हैं, कई बार हमारे इमोशंस और हमारा खान पान बहुत कनेक्टेड होता है। कहते हैं ना कि हम लोग कभी खुश होते हैं तो हम खाना खाते हैं, हम उदास होते हैं तो भी हम खाना खाते हैं। तो जब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं तो हमारा खाना, हमारी बॉडी, हमारा माइंड सब कुछ ही अच्छा हो जाता है। तो अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, अपने लिए बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं पर जाएंगे, आप किसी हीलर पे जाएंगे या आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट पर जाएंगे तो आपको सब कुछ बंद कर दिया जाएगा और आपकी चीज़ें जो भी आप रेगुलर लाइफ में कर रहे हैं उस पर और एक एड ऑन हो जाएगा, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, बट आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा और वहाँ पे ही आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और आपकी फैमिली की हेल्थ भी और बेहतर होने लग जाएगी।
0: मैं पर्सनली सभी को एडवाइस करूँगी कि एक बार जिंदगी में अपनी डाइट बनवाने के लिए किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास ज़रूर जाइए। एक सबसे अच्छी चीज़ ज़रूर होगी और वो महिलाओं के लिए मैं कह रही हूँ कि आपके रोज़मर्रा का मेन्यू जो है ना काफ़ी आसान हो जाएगा। आपको एटलीस्ट ये तो रहेगा कि इतनी सारी चीज़ों में से आपको चूज़ क्या करना है, नहीं तो भाई अगर देखा जाए तो इतनी सब्जियां, इतनी दालें, इतने सारे तरीके के खाने, और आजकल के ज़माने में तो हम कॉस्मोपॉलिटन लाइफ जी रहे हैं जहां हमारे पास हर राज्य का खाना है, तो जब इतना इलेबोरेट कुकिंग होती है ना तो महिलाओं पर बड़ा प्रेशर होता है। आज इडली बना लीजिए तो कल आपने पोहा बनाना है, परसों आप सोच रहे हैं कि आप राजमा चावल बनाएं तो कल आप कढ़ी चावल बनाएंगे। सो एटलीस्ट न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाने से आपकी कुछ लिस्ट तो कम हो जाएगी और आपको ये पता लगेगा जो आप चूज कर रहे हैं वो कितना हेल्दी है, कितना न्यूट्रिशियस है, और फिर आप बड़े अच्छे से अपनी आने वाली जनरेशन को, अपने परिवार के सदस्यों को हेल्दी और न्यूट्रिशियस खाना खिला पाएंगे। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के इस खूबसूरत से कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातें की मोनिका जी से। इनफैक्ट बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट बहुत सारे चैलेंजेस ये खुद भी फेस करती हैं। मतलब अगर हमें ऐसा लगता है ना कि जो न्यूट्रिशनिस्ट होती हैं उनकी जिंदगी तो बहुत ही आसान हो जाती होगी, सो ऐसा नहीं है। पर लाइफ के इन उतार चढ़ाव से निकलकर इन्होंने जीवन में एम्पावरमेंट को हमेशा चुना। मोनिका जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे स्टूडियो में आई, लेकिन जाने से पहले हमारे सभी लिसनर्स को क्या मैसेज देकर जाना चाहेंगे आप?
1: थैंक यू सो मच भावना जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और शायद कुछ बातें ऐसी करें जिससे इंस्पायर होके बाकी महिलाएं भी थोड़ी एम्पावर्ड रहें। तो मेरी सिर्फ टिप यही है कि अपने लिए कुछ टाइम निकालें पूरे दिन में, चाहे आप 10 मिनट ही निकाल रहे हैं अपने लिए, बट अपने लिए ज़रूर निकालें और अपनी हेल्थ का, अपनी इमोशनल हेल्थ का भी ध्यान रखें, जिसकी वजह से आप खुश रहेंगे तो आप बाकी सबको भी खुश रख सकते हैं।
0: सो इमेजिन करिए कि पूरे दिन में amongst all the 24 hours that you get, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ना अपने लिए देने के लिए पर्सनल 10 मिनट भी नहीं होते हैं। अब ये मत कहिएगा कि आप खाना खा रहे हैं तो वो आपका पर्सनल टाइम है, बट ऑफकोर्स आप सो रहे हैं तो पर्सनल टाइम है, या आप अपने ऑफिस में हैं तो वो आपका पर्सनल टाइम है। ये सारा समय डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो समय जब आप कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, वो समय जब आपको पता है कि इस समय में मुझे कुछ नहीं करना है और वो आप अपने लिए फोकस करते हुए दे रहे हैं, उस समय को हम रियल मी टाइम कहते हैं। और उस मी टाइम में मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि महिलाओं को ना अपने इमोशंस को चूज करना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन में ना बहुत सारे इमोशनल उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। अ गुड डे, अ बैड डे, अ गुड हेयर डे, अ गुड बैड हेयर डे, प्रॉबेबली अ गुड ड्रेस डे और अ बैड ड्रेस डे, सो मेनी थिंग्स। और कई कई बार तो बहुत ही बुरा खाना बनता है, सो उसकी भी आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। सो आप देखिए, जब आप एक परफेक्ट जीवन जीना चाहती हैं औरों के लिए, अपने लिए, और वो पॉसिबल नहीं होता है, सो ऐसे में अगर आपके पास समय मिलता है अपने लिए, सो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। और उन 10-15-20 या आधे घंटे में असेस करिए कि आप अगले दिन को और भी खूबसूरत कैसे बना सकती हैं। वक्त है आपसे इजाजत लेने का, कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। एक गाना सुनाते हुए आपसे इजाजत ले रही हूँ, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते मैं आने वाली हूँ आपके पास लेकर एक और खूबसूरत सी सशक्तिकरण की कहानी। लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लव।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, इन दिनों बात हो रही है सरहपा के बारे में, जो कि एक प्रसिद्ध लेखक थे, लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार सरहपा ने संस्कृत और अपभ्रंश में कई रचनाएं की। राहुल सांकृत्यायन ने उनकी 7 संस्कृत रचनाओं की सूची दोहाकोश की भूमिका में दी है। इसके अलावा सरहपा की अनुवादित 16 अपभ्रंश की रचनाओं का उल्लेख भी राहुल जी ने किया है। तभी सरहपात की मूल रचना उपलब्ध नहीं है, उसके तिब्बती अनुवाद से ही राहुल जी ने उन पर विचार किया है। लेकिन दोस्तों, राहुल जी का एक मत भी है। अब वो उनका मत क्या है, उसके बारे में भी बात होगी, सरहपा के बारे में भी बात होगी, उनके जीवन के बारे में बात होगी, उनकी रचनाओं का जिक्र होगा। लेकिन फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है सरहापा की, लेकिन सरहापा के बारे में राहुल सान कृत्यायन का अपना एक मत है कि आज की भाषा में एबनॉर्मल प्रतिभा के धनी थे। मूड आने पर वो कुछ गुनगुनाने लगते थे। शायद उन्होंने स्वयं इन पदों को लेखबद्ध नहीं किया, ये काम उनके साथ रहने वाले सरह के भक्तों ने किया। यही कारण है जो दोहा कोश के छंदों के क्रम और संख्या में इतना अंतर मिलता है। सरह जैसे पुरुष से ये आशा नहीं रखनी चाहिए कि वो अपनी धर्म की दुकान चलाएगा, पर आगे वो चली और खूब चली, इसे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमारे देश भारत में 84 सिद्ध प्रसिद्ध हुए हैं, उन्हीं 84 सिद्धों में सरहापा का नाम भी शामिल है। तो करेंगे सरहापा के बारे में बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं आपके साथ साझा करूंगा। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: देखिए दोस्तों, भारत में 84 सिद्ध प्रसिद्ध हैं। सरहपा उन्हीं में से एक हैं। कुछ विद्वानों का विचार है कि सरहपा आदि सिद्ध थे। सिद्धों का समय 800 से 1100 ईस्वी के बीच माना जाता है। धर्मवीर भारती के अनुसार साधना में निष्णांत अलौकिक शक्तियों से संपन्न चमत्कार पूर्ण अति प्राकृतिक शक्तियों से युक्त व्यक्ति सिद्ध कहलाता था। ये अजर अमर माने जाते थे। जरा और मरण का इन्हें बिल्कुल भी भय नहीं था। ये देवों यक्षों डंकिनियों के स्वामी होते थे। अधिकांश सिद्ध पूर्वी भारत में हुए। विद्वानों ने इस पर भी विचार किया है कि सिद्ध 84 ही क्यों थे, 85 या 83 क्यों नहीं थे, या बाद में सिद्ध क्यों नहीं हुए। इस पर कोई तर्क संगत उत्तर नहीं मिलता। कुछ विद्वानों ने अनुमान लगाया कि 12 राशियों और 7 नक्षत्रों का गुणनफल 84 होता है। सिद्ध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा में हुए थे। हालांकि नाथ पंथ में भी 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है, परंतु सामान्य मान्यता है कि बौद्ध धर्म की सहज यानी शाखा के अनुयायी सिद्ध और शैव संप्रदाय अनुयायी के नाथ कहलाते हैं। इसलिए 9 नाथ और 84 सिद्ध प्रसिद्ध हुए। कौन कब पैदा हुआ, इनका कालक्रम क्या था, इसकी कोई भी प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन दोस्तों, सरहपा के बारे में और अधिक चर्चा करने से पहले बौद्ध धर्म और सिद्धों के बारे में कुछ प्रारंभिक तथ्य जान लेना बहुत जरूरी है, वो भी आपको बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, सराहपा के बारे में बात हो रही है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सराहपा के बारे में और अधिक चर्चा करने से पहले बौद्ध धर्म और सिद्धों के बारे में कुछ प्रारंभिक तथ्य जान लेना चाहिए। बुद्ध के निर्वाण के पश्चात बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको समझाते हुए कहा है, महायान अर्थात बड़ी गाड़ी के आरोहियों का दावा है कि वो ऊंचे नीचे छोटे बड़े सबको अपनी विशाल गाड़ी में बैठाकर निर्वाण तक पहुंचा सकते हैं। जहां हीनयान या संकरी गाड़ी भी कह सकते हैं, इसमें केवल सन्यासियों और विरक्तों को आश्रय दे सकते हैं। बाद में फिर महायान के भी कई टुकड़े हो गए। इनमें सबसे अंतिम टुकड़े हैं वज्रयान और सहजयान। लेकिन इसी तरह महायान की भी दो शाखाएं हैं, उन शाखाओं का भी जिक्र होगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था बौद्ध धर्म के बारे में कि बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको समझाते कहा है कि महायान अर्थात बड़ी गाड़ी के आरोहियों का दावा है कि वो ऊंचे नीचे छोटे बड़े सबको अपनी विशाल गाड़ी में बैठाकर निर्वाण तक पहुंचा सकते हैं, जहां हीनयान वाले केवल सन्यासियों और विरक्तों को आश्रय दे सकते हैं। बाद में फिर महायान के भी कई टुकड़े हो गए। इनमें सबसे अंतिम टुकड़े हैं वज्रयान और सहजयान। इसी तरह महायान की भी दो शाखाएं हैं। द्विवेदी जी के अनुसार एक मानती है कि संसार में सब कुछ शून्य है, किसी की भी सत्ता नहीं है, और दूसरी शाखा वाले मानते हैं कि जगत के सभी पदार्थ बाहरी तौर से असत हैं, पर चित्त के निकट सभी सत्य हैं। एक को शून्यवाद कहते हैं और दूसरी को विज्ञानवाद। इतने सारे मतभेदों के बीच ये हम कह सकते हैं कि सरहापा का संबंध इसी सहज ज्ञान से है और सिद्ध इसी परंपरा में आते हैं। नागरी प्रचारणी सभा के शब्दकोश के अनुसार सिद्ध वो होता है जिसने योग या तप द्वारा अलौकिक लाभ या सिद्धि प्राप्त की हो। सिद्धों का निवास स्थान भुवलोक कहा गया है। वायु पुराण के अनुसार उनकी संख्या 88,000 है और वो सूर्य के उत्तर और सप्तश्री के दक्षिण अंतरिक्ष में वास करते हैं। वो अमर कहे गए हैं, पर केवल एक कल्प भर तक के लिए। कहीं कहीं सिद्धों का निवास गंधर्व, किन्नर आदि के समान हिमालय पर्वत भी कहा गया है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ कहा गया है, वो सारी बातें आपको बताता रहूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फहीम के साथ यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। जैसा कि दोस्तों आपसे मैं बात कर रहा था सिद्धों के बारे में, देखिए अलौकिक शक्तियों से युक्त व्यक्ति को सिद्ध माना जाता है। इन सिद्धों को सिद्धियां प्राप्त थीं। विचारकों ने इस पर भी विचार किया है कि सिद्धियां क्या होती हैं और कितनी होती हैं। भारतीय चिंतकों ने अनेक सिद्धियों का वर्णन किया है। ब्रह्म वैवर्त में 34 सिद्धियां बताई गई हैं और कुछ विचारकों ने 18 और कुछ ने 24 सिद्धियों का जिक्र किया है। लेकिन हठ योग साधना में 8 प्रमुख सिद्धियां मानी जाती थीं, अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्या, ईशित्व, वशित्व और काम वशायित्व। शैव परंपरा में 8 दूसरी सिद्धियां गिनाई गई हैं। कालांतर में 8 सिद्धियां प्रसिद्ध हो गईं। जो सिद्ध पुरुष इन सिद्धियों को प्राप्त कर ले वो अजर अमर और अपराजय हो जाता है। 84 सिद्ध इन्हीं सिद्धियों के चमत्कार के लिए प्रसिद्ध थे। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।

0: एक अद्भुत शक्ति आ जाती है। उसी प्रकार सभी ओर से चित्त वृत्तियों का निरोध करने से साधक में अदम्य शक्ति आ जाती है। इन लौकिक सिद्धियों के अलावा कुछ लोकोत्तर सिद्धियां भी होती हैं, जिन्हें अनुत्तर सिद्धि, महामुद्रा सिद्धियां, महासुख सिद्धि कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो कि हमारे देश भारत की एक तरह से संस्कृति है, और बात बड़ी पुरानी है लेकिन सच्ची है। अब इसी सच्ची बात के साथ आपका दोस्त फहीम आपसे इजाज़त चाहता है। अगले एपिसोड में आपसे और भी बातें करूँगा सरहपा के बारे में। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ, फिर मुलाकात करूँगा। अपना ख्याल रखना, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।
1: तो है प्यार तू गोरे भैया, तो बेवार तू, इसलिए तू इतना उदास, सुखे सुखे हूँ।

0: जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, झांक खुद में वो न तुझसे दूर है। इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर, इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर, इस इबादत का यही दस्तूर है। इसमें उसमें और उसमें है वो ही, इसमें उसमें और उसमें है वो ही, यार मेरा हर तरफ भरपूर है।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 पर शुरू हो चुकी है प्यार मोहब्बत अमन की महफिल, सूफी महफिल। और इस महफिल में शामिल सभी दोस्तों की खिदमत में फहीम का नमस्ते सलाम।

बुद्धिमान वही है जो पूरे संकल्प से काम को निपटाना जानता है। दोस्तों, बुल्ले शाह अपने मुर्शिद को शौह, सजन, यार, हादी, साईं, आरिफ, राजा यानी कि इन तमाम नामों से पुकारते हैं और याद करते हैं। बुल्ले शाह कहते हैं, राजा जोगी ते मैं जुगियानी, उस दी खातर भरसा पानी। कहने का मतलब है उनका कि मैं उसकी जोगिन हूँ, वो जो कहेगा मैं वैसा ही करूँगी। अगर मुझे उसके लिए पानी भी भरना पड़े तो मैं पानी भरकर लाऊंगी, उसकी पीन हारन बन जाऊंगी।

परामर्श तो अनेक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उससे लाभ उठाना बुद्धिमानों को ही आता है। देखिए दोस्तों, सूफी मरने से कभी नहीं डरते, बल्कि मरना ही उन्हें भाता है। सूफी के लिए शरीर का मरना कोई मायने नहीं रखता, वो शरीर के अंदर रहने वाली खुदी यानी अहम के मरने को ज्यादा महत्व देते हैं। सूफी कहते हैं, शरीर से मरना तो बड़ा सरल है, आम जिंदगी में एक आम इंसान की एक बार में एक झटके में मौत हो जाती है, लेकिन खुदा की चाहत में खुद को तिल तिल करके मारना सूफी को कई मौत देता है। शरीर की मौत होने से पहले एक सूफी कई बार मरता है, इसलिए उसे उस मौत का ना दुख होता है ना कोई खौफ। सूफी तो बस फना होना जानता है, मिटना जानता है, और इस तरह फना होने में वो आनंद पाता है। सूफी खोकर भी पाता है, सूफी मरकर भी जीता है।

हमेशा सतर्क रहो, प्रकाश की कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि तुम्हारे जीवन में अंधेरा आने ही ना पाए। दोस्तों, सूफी मौत को भी सकारात्मक ढंग से लेता है, उसे मरना भी उद्देश्य पूर्ण लगता है। मृत्यु उसके लिए माध्यम है अपने परमात्मा में समा जाने का। हजरत जलालुद्दीन रूमी ने अपनी मौत को अपना और खुदा का मिलाप कहा है। वो कहते हैं, इस जिस्म की कैद से आजाद, अब मेरी रूह जो करेगी प्रवास और होगी एक अपने खाविंद के साथ।

संसार में सबसे बड़ा अधिकार सेवा और त्याग से प्राप्त होता है। दोस्तों, कहते हैं किसी सूफी को रोता देखकर किसी ने सूफी से पूछा कि तू रोता क्यों है, तो सूफी ने जवाब दिया, मैं रोता हूं इसलिए क्योंकि रोने में सुख है, रोता हूं इसलिए क्योंकि रोने से मेरे इस मन के मैल को धोने के उपाय हो जाते हैं, आंखों से आंसू झरते हैं, गाल पर ढलकते हैं, गाल से वो मेरे सीने पर गिरते हैं, तो हर वो आंसू जो मेरी आंखों से बह के गाल से लुढ़क के सीने पर गिरता है, वो मेरे दिल के मैल को दूर कर देता है। रोने से हम और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हम ऐसे कि बस पाक हो गए।

0: शिक्षा का उद्देश्य है मन को संयम में लाना, सजाना नहीं, उसको अपनी शक्तियों का योग करना सिखाना, दूसरे के विचारों को इकट्ठा करना नहीं।
1: दोस्तों, कबीर दास जी ने कहा था, मरिए तो मर जाइए, छूटी परे जंजार, ऐसा मरना को मरे दिन सौ सौ बार। दोस्तों, कबीर दास जी अपने इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि असली मरना यानी सूफी का मरना क्या है। इस बारे में बाबा फरीद कहते हैं कि जिस्म का मरना मरना नहीं होता, जिंदा रहते खुदी का, अहम का, मैं का मरना ही असली मरना होता है। ऐसी अवस्था को उपलब्ध हो जाना जब प्रेमी के पास उसका अपना कुछ भी ना बचे, यहां तक कि उसके शरीर को काटने पर भी लहू ना निकले, यानी जिसने अपने शरीर के खून की एक एक बूंद को साधना में लगा दिया हो। इसीलिए तो फरीद कहते हैं कि अगर खुदा के आशिक का शरीर भी चीरा जाए तो उसमें खून की एक बूंद तक नहीं मिलेगी। जो खुदा से प्रेम करते हैं उनके शरीर में लहू नहीं होता, वो सब खुदा की साधना में समर्पित हो चुका होता है। इश्क एक ऐसा रोग है जिसे लग जाए फिर वो चाह कर भी बच नहीं सकता। यही सच्चे इश्क की निशानी है कि प्रेमी को भी प्रेम में पड़ने के बाद अपने बचने की उम्मीद नहीं रहती, और जब उसे अपने बचने की उम्मीद नहीं रहती तो कह उठता है, मैनु इश्क दा लगियां रोग, मेरे बचने दी नैया उम्मीद।
2: प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी,

पुस्तक आज के लिए और हमेशा के लिए सबसे अच्छा और बड़ा मित्र है। दोस्तों, सूफी संत रूमी कहते हैं कि मैं खुदा से सीधा संबंध स्थापित करना चाहता हूं। मैं बीच में कोई बाधा, कोई रुकावट नहीं चाहता, इसलिए मैं कलमे के जरिए पैदा हुए शब्द, आवाज और बोली तीनों रुकावटों को मिटा देना चाहता हूं। और इसी बात को समझाते हुए रूमी के मुर्शिद यानी शम्स तबरेज रूमी से कहते हैं, अक्षर और बोली की हद से बाहर निकला और उस शब्द को जान ले जो बोला नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे थे प्यार मोहब्बत अमन की महफिल, सूफी महफिल। लेकिन अब आपकी रात का हम सफर फहीम चाहता है आपसे इजाजत। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ आरजे सागर, आ चुका हूँ लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग इस टाइम सुन रहे हैं रेडियो 107.8 एफएम, फील गुड फील लाइव। आज हम वापस से लेकर आए हैं एक और केस स्टडी आपके लिए, बताएंगे आपको कौन सी वो कंपनी है, कौन सी वो इंडस्ट्री है, क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगेन एक केस स्टडी है, आपको एजुकेट करेगा, आपको अवेयर करेगा, बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला है। लेकिन फिलहाल मैं आ चुका हूं, इतना आपसे कहना है, मेरा सलाम कबूल कर लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील लाइफ।

देवी के आपके गाने पसंद आए ना, विद दिस नोट शो को आगे लेकर चलेंगे। दोस्तों मैं हूं आरजे सागर, शो का नाम है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और इस टाइम आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम के साथ। तो आज जो कंपनी हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसके पहले हम उस कंपनी जिस इंडस्ट्री में डील करती है उस इंडस्ट्री को अच्छे से समझेंगे यहाँ पर। सो इंडस्ट्री है मेडटेक, मेडिकल टेक्नोलॉजी। जरूरत बहुत है इस इंडस्ट्री को समझने की, और अपने आप में बहुत क्रूशियल है ये इंडस्ट्री, क्योंकि जितनी अनसर्टेनिटीज हमारे आसपास आज की डेट में है, चाहे वो हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हो, या फिर वो नेचुरल डिजास्टर से जुड़ी हुई हो, या फिर कोई भी किसी तरह की महामारी अगर दुनिया में आती है, तो ये इंडस्ट्री हमारी हेल्प करती है उससे कोप अप करने में। सो दैट्स हाउ ये बहुत क्रूशियल है, क्योंकि हमारे जीवन से जुड़ी हुई है सीधे तौर पर। अब इसको थोड़ा सा हम डिकोड करके टेक्निकल टर्म्स में समझेंगे। मेडिकल टेक्नोलॉजी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको हम रेफर करेंगे जो डेवलप करती है, मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है तमाम तरह की चीजें, जैसे डिवाइसेज हो गए, टूल्स हो गए, सॉफ्टवेयर्स हो गए, टेक्नोलॉजीज हो गई। कुल मिलाकर मोटिव ये होता है कि डायग्नोस कर पाए, डायग्नोस करना, ट्रीट करना, मॉनिटर करना मेडिकल कंडीशंस को, ताकि लोग ठीक रहे, ओवरऑल वेलबींग हमारी काफी अच्छी रहे। यहाँ पर आपको बहुत बड़ी एक रेंज मिल जाती है, लिटरली वाइड रेंज मिल जाती है, चाहे आप बात करें किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट की, चाहे आप बात करें किसी सॉफ्टवेयर की, या फिर जो आज की डेट में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं टेलीमेडिसिन के, कि अपने घर पर बैठकर हम डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। चाहे हम अपने घर बैठ के दवाइयां ऑर्डर कर रहे हैं, तो दवाइयां हमारे डोर स्टेप तक जो पहुंच रही हैं, वो भी आप मेडटेक में ही कंसीडर करेंगे। इसके अलावा जो भी चीज टेक्नोलॉजी की रिगार्डिंग है इस इंडस्ट्री में, वो हम सब कुछ मेडटेक में कंसीडर करेंगे। अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए, तो वैसे तो टेक्निकली बहुत सारी चीजें हैं, लाइक कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजों को एक सरल वे में लेकर आना। अगर किसी इंसानों की प्रॉब्लम है तो अच्छे से उसको डायग्नोस करना, अगर किसी चीज की स्टार्टिंग बॉडी में हो गई है, जो आमतौर पर होता है कि पहले ऐसा हुआ करता था, इनिशियल स्टेजेस में हम आइडेंटिफाई कर नहीं पाते थे प्रॉब्लम्स क्या हैं, लेकिन अभी क्योंकि इतनी ज्यादा एडवांसमेंट हमारे पास आ गई है कि हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं पूरी बॉडी का चेकअप करके कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या प्रॉब्लम है। और इसके अलावा कुछ और मेजर चीजें हैं, जैसे कि सर्जिकल रोबोट्स आ गए हैं, सर्जिकल रोबोट्स जो काफी एक्यूरेसी के साथ, काफी प्रिसीजन के साथ जो है सर्जरी करते हैं, जिससे रिकवरी भी जल्दी हो जाती है, डैमेज भी कम से कम होता है, और जो सक्सेसफुल ऑपरेशन होने के चांसेस हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना एंड एमआरआई मशीन्स, जो अपने आप में बहुत ही बड़ा एक आप कह सकते हो अचीवमेंट या फिर माइलस्टोन है हमारे लिए, कि बॉडी में अंदर क्या चल रहा है उसके एक एक सेल को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाना, अच्छे से रीड कर पाना। तो इस तरह की जो ये चीजें हैं, ये हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती हैं, और ये सब कुछ हमें दिया है मेडटेक इंडस्ट्री ने, यानी कि मेडिकल टेक्नोलॉजी। आज की जो हमारी कंपनी है वो इसी इंडस्ट्री में डील करती है। कंपनी के बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल इंडस्ट्री को अच्छे से समझेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का। अब इसी के साथ आप मजा लीजिए इन गानों का। स्टे ट्यून, फील गुड, फील

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ आपको गाने पसंद आए। अब इसी के साथ अपने शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और आपका होस्ट आरजे सागर। शो का नाम है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। दोस्तों, इंडस्ट्री के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजी, शॉर्ट टर्म में बोले तो मेडटेक। अब समझते हैं मेडटेक इंडिया में क्या है एग्जैक्टली। देखिए, मेडटेक इंडस्ट्री इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। उसके पीछे बहुत सारी चीजों का हाथ है, मतलब लिटरली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। अब इसमें एक तो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उतनी ही ज्यादा जो है वो डिमांड बढ़ेगी और उसके हिसाब से इंडस्ट्री आगे बढ़ती रहेगी। देन इसके बाद क्रोनिक डिजीज या फिर कहीं हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। ये हमने आम तौर पे बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि 12 साल के बच्चे को कार्डियक अरेस्ट हुआ, या 14 साल की उम्र में एक बच्चे को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई, या 16 साल की उम्र में एक बच्चे को थायराइड हो गया। मल्टीपल चीज़ें, स्ट्रेस बहुत बड़ा एक एलिमेंट हो गया है हमारी लाइफ में जिससे कोप अप करने के लिए हमें ज़रूरत होती है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इस एक इंडस्ट्री को इतना तेज़ी से ग्रो करा रही हैं, और ये बहुत इनडायरेक्ट वे में हो रहा है। अगर दूसरे वे में इसको देखा जाए तो हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री जितनी ज्यादा एडवांसमेंट यहाँ पर होती जा रही है हमारी प्रॉब्लम्स को ठीक करती आ रही है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत काम किया जा रहा है, प्लस सरकार की तरफ से भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जो काफी सपोर्ट करती हैं इस इंडस्ट्री को। आप ये कह सकते हो कि इंडिया एक ऐसा इमर्जिंग मार्केट है जो मेडटेक हब बनाता जा रहा है इस इंडस्ट्री को पूरे एशिया में। मतलब पूरे एशिया में अगर आप उसको फिगर आउट करेंगे तो इंडिया में सबसे ज्यादा तेजी से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। एशिया क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा एक मार्केट है हेल्थ केयर का, लेकिन इंडिया उसमें बहुत स्किल्ड कंसीडर किया जाता है। मतलब हमारे यहाँ पर लिटरली एक स्ट्रांग बेस है स्किल्ड प्रोफेशनल्स का, साथ साथ स्टार्टअप्स बहुत सारे हैं इंडिया में। अभी लिटरली बहुत अच्छा लगता है देख के कि अलग अलग प्रॉब्लम्स को एक स्टार्टअप लेकर चल रहा है और वो उसको फिक्स कर रहा है, और ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने मल्टीपल प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया है, उनके सॉल्यूशंस ढूंढ के निकाले हैं। ऐसी मल्टीपल इनोवेशंस हमने देखी हैं इस हेल्थ केयर सेगमेंट में जिन्होंने लिटरली लोगों की हेल्प करी और हमारी ओवरऑल वेलबींग काफी अच्छी की है। सो दिस इज मेडटेक इंडस्ट्री इन इंडिया जो बहुत तेजी से आप कह सकते हो बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। आज हम इस इंडस्ट्री को डिकोड करेंगे यहाँ पर। अभी एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद की सेगमेंट्स की हम लोग बात करेंगे। बट इन द मीन टाइम स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

मैं आरजे सागर, शोकनाम आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानवरचना 107.8 FM। दोस्तों, आज हम अपने शो में जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, वो कंपनी डील करती है मेडटेक इंडस्ट्री में। और अभी तक हमने मेडटेक इंडस्ट्री को समझ लिया है, अब थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स की तरफ आएंगे, जो आप कह सकते हो कि सब पॉइंटर्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं और अच्छे से इंडस्ट्री का एक इनसाइट लेने में। अब हम बात करेंगे की सेगमेंट्स की। मेडटेक इंडस्ट्री के की सेगमेंट्स कौन कौन से हैं, मतलब उन वर्टिकल्स को मोटे मोटे तौर पे हम देखेंगे कि जहां पर कोई स्कोप है या जहां पर ऑलरेडी काम किया जा रहा है, या फिर कह सकते हैं कि जिन सेगमेंट्स में हम इस इंडस्ट्री को बाइफर्केट कर सकते हैं। पहला आता है डायग्नोस्टिक्स एंड इमेजिंग। इसमें हम कंसिडर करेंगे MRI, CT स्कैन्स, एक्सरेज और जितने भी डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं जो अर्ली डिटेक्शन में हेल्प करते हैं और एक ट्रीटमेंट को प्लान करने में हमारी काफी मदद करते हैं। जो मैंने कहा कि इनिशियल स्टेज में अब पॉसिबल है कि हम उसको एनालाइज कर पाएं और फिगर आउट कर पाएं कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम होने वाली है या स्टार्ट हो चुकी है बॉडी में, उसके लिए बहुत सारी एडवांसमेंट हमने कर ली। देन सेकंड वर्टिकल जो है वो है मेडिकल डिवाइसेस। इस सेगमेंट में आपको तमाम रेंज देखने को मिलेगी उन डिवाइसेस की जो हमारी हेल्प करते हैं, लाइक जो हमारे क्रूशियल मूवमेंट्स होते हैं, बहुत क्रिटिकल जो मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि वेंटिलेटर्स की जब जरूरत होती है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, या स्टैंड्स जो आमतौर पे देखा जाता है जब बाईपास सर्जरी की जाती है, जब किसी के हार्ट में ब्लॉकेज आती है तो स्टैंड डाले जाते हैं, सो दैट कि ब्लड जो है वो बहुत गाढ़ा ना हो और जो ब्लॉकेज है वो भी ना हो और इजीली जो है लोग वहां से कोप अप कर पाए उस एक पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ जो उनके सामने आई है। देन पेसमेकर्स जो इसी एक वर्टिकल में फॉल करते हैं। उसके बाद थर्ड जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है अपने आप में, वो वर्टिकल है वियरेबल टेक्नोलॉजी। अब ये बहुत आम हो चुका है, फिटनेस ट्रैकर, स्मार्ट वॉचेस, इसके अलावा भी ऐसे हमारे पास वियरेबल हेल्थ मॉनिटरिंग टूल्स हैं जिनसे हम बहुत सारी चीजों को खुद से एनालाइज कर सकते हैं। और ये लिटरली बहुत प्राउड वाली बात है और बहुत अमेजिंग बात है कि यार अभी बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में आ गई है। जैसे मल्टीपल टाइम्स हमने आपको अपने शोज में ये बात बताई है कि कोई इंसान गया माउंटेन ट्रैकिंग पे या माउंटेन क्लाइंबिंग पे और वहां पर जाकर उसको अचानक से कुछ फील हुआ, कोई पैनिक वाली सिचुएशन, या अचानक से उसके या जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत शूट अप कर गया, या ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो गया बहुत ज्यादा। तो ऐसा बहुत जगह से मल्टीपल टाइम्स अपडेट आए हैं कि स्मार्ट वॉच जो उसने पहनी हुई थी, उसने नियर बाय रेस्क्यू टीम को एक मैसेज भेजा, एक SOS का मैसेज गया और इंस्टेंटली रेस्क्यू टीम वहां पर आई, उसकी लोकेशन को डिटेक्ट कर लिया और उस बंदे ने मतलब अपनी कॉन्शियसनेस वो खो चुका था। उस बंदे ने कोई मैसेज इंटेंशनली नहीं भेजा था, जस्ट बिकॉज कि वो जो स्मार्ट वॉच पहनी हुई थी उसने वो सब कुछ आइडेंटिफाई किया, सिग्नल गया, रेस्क्यू टीम आई, उनको वहां से रेस्क्यू कर लिया गया और समय रहते उन्हें बचा लिया गया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, यकीन मानिएगा। सो वियरेबल टेक्नोलॉजी हमारी बहुत सारी चीजों में हेल्प करती है, लाइक ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर करने में एंड ब्लड ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करने में, इसी के साथ हार्ट रेट हमारा अगर इरेगुलर हो रहा है तो उसको मॉनिटर करने में। देन इसके बाद फोर्थ वर्टिकल आता है टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन यानी कि आप समझ सकते हो कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो रिमोट डायग्नोसिस को इनेबल करती है। जैसे COVID-19 के बाद से स्पेशली हमने देखा है कि वर्चुअल कॉल्स या थ्रू जो है वर्चुअल डिवाइसेस हम डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, मतलब रिमोटली कंसल्टेशन हो सकता है और ट्रीटमेंट भी हो सकता है, जिससे बहुत सारे लोग जिनके पास टाइम नहीं हुआ करता था वीकेंड का वेट किया करते थे और इतने में बीमारी बढ़ती रहती थी, या किसी पर्टिकुलर डे का वेट किया करते थे तब तक बीमारी को वो झेला करते थे, तो उनके लिए काफी सुविधा हो गई है। आधा घंटा एक घंटा निकाल के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और दवाइयां ऑर्डर कर सकते हैं, घर पे दवाइयां भी आ जाएंगी, बहुत सिंपल है। तो इस एक चीज ने लिटरली बहुत अपलिफ्ट किया है इस एक मार्केट को। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है हेल्थ IT एंड AI। इसी एक पर्टिकुलर वर्टिकल में हम इस चीज को देख सकते हैं कि पेशेंट्स को मैनेज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं एंड इसी के साथ प्रिडिक्ट किया जा सकता है पास्ट हिस्ट्री के बेसिस पर कि क्या क्या प्रॉब्लम्स रही थी पास्ट में और अभी जो बॉडी साइन दे रही है वो क्या साइन दे रही है या किस एक दिशा की तरफ जो है हमें वो लेकर जा रही है। इससे पेशेंट को टाइमली ट्रीट किया जा सकता है और बीमारी के रूट कॉज तक पहुंचा जा सकता है। सो ऑल दीज आर दी की सेगमेंट्स जो मेडटेक इंडस्ट्री में फॉल करते हैं। फर्स्ट हमने आपको बताया डायग्नोस्टिक्स एंड इमेजिंग, सेकंड हमने आपको बताया मेडिकल डिवाइसेस, थर्ड बताया वियरेबल टेक्नोलॉजी, फोर्थ बताया टेलीमेडिसिन एंड फिफ्थ बताया हेल्थ IT एंड AI। अब देखिए, इनमें से किसी को भी आप ये नहीं कह सकते हो कि ये कम महत्वपूर्ण है और ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक वर्टिकल, हर एक सेगमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है, बशर्ते हम उन चीजों की जो वैल्यू है उसको अच्छे से समझ पाए।
तो फिलहाल लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आगे बात करेंगे। अभी मेडटेक इंडस्ट्री को और अच्छे से एक्सप्लोर करना है हमें, पर फिलहाल आप मजा लीजिए इन गानों का। एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील।

का पूरा सार चंदन का। दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है, हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको एक गाना ही पसंद आए ना। वो दिस नोट शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ आपका दोस्त आरजे सागर। शो का नाम है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आज जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो कंपनी डील करती है मेडटेक इंडस्ट्री में। अभी तक हमने इंडस्ट्री को समझा ओवरऑल, हमने फिर इंडस्ट्री को समझा कि इंडिया में इसका स्टैंड क्या है अभी, फिर हमने समझा की सेगमेंट्स को, उन वर्टिकल्स को जिनमें ये इंडस्ट्री डील करती है या फिर जिनमें आप इसको बाइफर्केट कर सकते हो। अब बात करेंगे हम की ड्राइवर्स की। की ड्राइवर्स यानी कि जो इस इंडस्ट्री को ड्राइव करते हैं, जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री इतना तेजी से ग्रो कर पा रही है। तो पहला की ड्राइवर आता है राइजिंग हेल्थ केयर नीड्स। अब देखिए, जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, जैसे जो आबादी है वो बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, या फिर आप कह सकते हो नीड्स हमारी बढ़ती जा रही है, उसके हिसाब से सप्लाई प्रोवाइड करना। मोरओवर जिस तरीके से हमारे सामने नए नए चैलेंजेस हर रोज आते हैं, नई प्रॉब्लम्स हमारे सामने आए दिन खड़ी होती हैं, कुछ ना कुछ नया डिटेक्ट किया जाता है, तो उस एक पर्टिकुलर चीज के साथ या उस एक पर्टिकुलर बीमारी के साथ कोप अप करना, इसके लिए हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की सच में जरूरत होती है। और ये बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ऐसे में जो राइजिंग हेल्थ केयर नीड्स हैं वो लिटरली हमारी काफी हेल्प कर रही हैं इस एक इंडस्ट्री को आगे भी ले जाने में, और साथ साथ नई चीजों की तरफ हमें पुश करने में, मतलब नई टेक्नोलॉजीज, नई एडवांसमेंट या नई इंप्रूवमेंट या कुछ नया इनोवेटिव हम लेकर आए। जैसे आमतौर पर भी देखने को मिलता है कि डायबिटीज, हार्ट डिजीज, रेस्पिरेटरी कंडीशंस, ये बहुत ही आम चीजें हो गई है, आमतौर पर देखने को मिल जाती है, पहले रेयरली हुआ करता था और एक सर्टेन एज ग्रुप को टारगेट किया जाता था कि इस एज में हो सकता है। लेकिन आज ये बोल पाना बहुत गलत होगा कि इस एज ग्रुप में हो सकता है, क्योंकि हमने 10 साल के बच्चे को भी देखा है जिसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, हमने 14 साल के बच्चे को भी देखा है जिसको ब्लड प्रेशर बहुत इरेगुलर है, हमने 16 साल के बच्चे को देखा है जिसको थायराइड है। ऐसे आप किसी एज ग्रुप में डाल सकते हैं, बिकॉज ओवरऑल लाइफस्टाइल प्लस पॉल्यूशन प्लस स्ट्रेस प्लस ये कॉम्पिटिटिव मार्केट जो हमारी होती जा रही है, इन सब की वजह से ये मल्टीपल कंडीशंस अर्ली स्टेजेस में बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। लकीली हम उनको डिटेक्ट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सेकेंड आता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो आप कह सकते हो कि एक स्ट्रांग पिलर है एज अ की ड्राइवर जो इस इंडस्ट्री को रन करता है। पहला तो मेक इन इंडिया एक मूवमेंट है जो हम अपने ही देश में अपनी चीजें बना पा रहे हैं, अपने ही देश की चीजों को हम प्रमोट कर रहे हैं। सेकेंड आता है डिजिटल इंडिया, जिसने बहुत हेल्प करी है, मतलब जो हम स्पेशली बात करेंगे टेलीमेडिसिन की, कि लोग अपने घर पे बैठ के कंसल्ट कर पा रहे हैं, तो वो हो पाया है डिजिटल इंडिया मूवमेंट की वजह से। देन उसके बाद आता है आयुष्मान भारत, जिसमें एक सिग्निफिकेंट बूस्ट मिलता है मेडटेक इंडस्ट्री को, जिसमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को भी काफी मदद मिलती है, नई इनोवेटिव चीजें मिल रही हैं और लोगों के पास एक्सेस है हेल्थ केयर का। पहले हुआ करता था कि बहुत लिमिटेड लोगों के पास लिमिटेड रिसोर्सेज का एक्सेस था, लेकिन जब से हम लोग डिजिटल हो गए हैं, जब से हम लोग टेलीमेडिसिन जैसी चीजों का इस्तेमाल करने लगे हैं, तब से रिमोट एरियाज में भी बैठकर लोग दिल्ली या मुंबई या कहीं पर भी किसी भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट की ड्राइवर आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। एआई बहुत ही अब कॉमन चीज हो गई है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नई है हमारे लिए, हालांकि इतनी पुरानी नहीं हुई है, बट स्टिल हमने बहुत तरक्की कर ली है इस एक फील्ड में। मशीन लर्निंग, आईओटी, इन्होंने मेडटेक इंडस्ट्री को लिटरली बहुत एक नया आप कह सकते हो मुकाम दिया है, क्योंकि नई एडवांसमेंट, नई चीजें लेकर आना, अर्ली स्टेज में चीजों को डिटेक्ट कर पाना, प्लस उसको काफी पर्सनलाइज्ड वे में देखना कि किसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जेनेटिक्स क्या बोलते हैं, ये सब कुछ हो पाया है टेक्नोलॉजी की वजह से। देन उसके बाद इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, ये तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों की तरफ से इंडिया में मेडटेक जो स्टार्टअप्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट मिल रही है, इन्वेस्टर्स को काफी लुभा रही है ये एक इंडस्ट्री, जिसकी वजह से ये इतना आगे बढ़ पा रही है। देन उसके बाद लास्ट जो आप की ड्राइवर कहेंगे इस एक इंडस्ट्री में, दैट इज ग्रोइंग अवेयरनेस। लोग भी अब जागरूक होते जा रहे हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ लोग जो है अब जाने लगे हैं, साथ साथ लोग अब समझ पा रहे हैं कि यार अर्ली स्टेज में अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज को हमने डिटेक्ट कर लिया, सो इट्स गुड फॉर अस। शायद इसी वजह से लोग स्मार्ट वॉचेस या फिटनेस ट्रैकर या जो भी वेरिएबल टेक्नोलॉजीज होती हैं उनको वियर करना पसंद करते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम अगर बॉडी में है तो अर्ली स्टेज पे उन्हें वो साइन मिल जाए और आगे चलकर वो परेशान ना हो जब वो बीमारी बहुत बढ़ चुकी हो। तो ये सब वो चीजें हैं जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री इंडिया में इतना तेजी से ग्रो कर पा रही है, फिर आप कह सकते हो वो स्ट्रांग पिलर्स। अब इसी के साथ हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद हम करंट ट्रेंड्स को या फिर कहें करंट टेक्नोलॉजी को समझेंगे जो मेडटेक इंडस्ट्री में है हमारे पास। बट फिलहाल वक्त है इन गानों का। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील।

वेलिज्यूम मीर के साथ कि आपको गाने पसंद आए, अपने शो को आगे लेकर चल रहे हैं। दोस्तों मैं हूं आरजे सागर, शो का नाम है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। उम्मीद कर रहा हूं ये शो आपको अच्छा लग रहा है और गानों को भी आप पसंद कर रहे हैं। नाउ विद दिस नोट हम अपने शो को आगे लेकर चलेंगे। आज की इंडस्ट्री है मेडटेक इंडस्ट्री, यानी कि मेडिकल टेक्नोलॉजी, और इसमें अब हम बात करेंगे करंट टेक्नोलॉजीज की। ये आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है अगर आप करंट ट्रेंड्स को समझना चाहते हैं इस एक इंडस्ट्री की, जस्ट इन केस अगर आप अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। पहला है AI एंड मशीन लर्निंग, जो आमतौर पे हर एक इंडस्ट्री के साथ अब हम एसोसिएट कर रहे हैं और हर जगह पर हमें इसमें डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। इसमें प्रिडिक्ट कर पाएंगे, उसके हिसाब से हम एनालाइज कर पाएंगे, जिससे डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लस एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान जो है वो पेशेंट के हिसाब से बनाया जा सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है 3D प्रिंटिंग। जितने भी मेडिकल डिवाइसेज हैं, इम्प्लांट्स हैं, इवन ह्यूमन टिश्यूज हैं, उनके ऊपर भी काम किया जा रहा है, जिससे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस बढ़ जाते हैं और कॉस्ट को भी रिड्यूस करने का पूरा एफर्ट वहां पे जो है वो किया जा रहा है, ताकि लोग उसको एक्सेस कर पाए। मतलब लिटरली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बॉडी का कोई ना कोई ऐसा पार्ट खो देते हैं किसी ऐसी अनफॉर्चुनेट चीज में, एक्सीडेंट में, तो उसके बाद वो लाइफ टाइम उसी चीज के साथ नहीं रहना चाहते हैं। उन्हें चाहिए कि यार कोई रिप्लेसमेंट दे दो, लेकिन एक्यूरेसी की कमी हुआ करती थी। बट लकीली अभी हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं 3D प्रिंटिंग की वजह से कि काफी एक्यूरेट, मतलब आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल होगा कि यार ये सच में रियल है या फेक है, मतलब कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करोगे। इम्प्लांट्स ऐसे ऐसे आ गए हैं, सर्जिकल जो चीजें आ गई हैं उन्होंने काफी हेल्प करी है लोगों को। कुल मिलाकर लोग जो फ्रीली कॉन्फिडेंटली जीना चाहते हैं वो करने में काफी हेल्प करती है 3D प्रिंटिंग। उसके बाद थर्ड वियरेबल डिवाइस, जिसकी हमने बात करी थी, जो हमारे वाइटल साइंस को मॉनिटर करता है, हमारी फिटनेस को ट्रैक करता है और ओवरऑल जो हमारी हेल्थ है उसका डाटा हमें प्रोवाइड करता है। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको काफी मदद मिलती है ये आइडेंटिफाई करने।

0: नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी है दैट इज रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्जिकल रोबोट्स, क्योंकि एक नया ट्रेंड बन चुका है और इससे काफी मदद मिलती है एक्यूरेटली ऑपरेट करने में, साथ साथ रिकवरी काफी जल्दी हो जाती है। एंड इसी के साथ ऑटोमेटेड सिस्टम जो है वो काफी हेल्प करते हैं प्रिसाइज ऑपरेशन करने में या मेडिकल प्रोसीजर्स जो है उनको काफी सेफ और एक्यूरेट बनाने में। देन उसके बाद लास्ट टेक्नोलॉजी है बिग डेटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। अब इसमें देखिए मैनेज किया जाता है और एनालाइज किया जाता है हेल्थ डेटा को, जिससे एक डिसीजन मेकिंग में मदद मिलती है, सरकार को भी काफी मदद मिलती है, साथ साथ मेडिकल एक्सपर्ट्स को भी काफी मदद मिलती है, और अगर किसी को भी इस एक पर्टिकुलर फील्ड में कुछ डेवलप करना है, कुछ नया स्टार्ट करना है, तो उनको काफी मदद मिलती है, एक डेटाबेस उनके हाथ में है। सो ये हैं वो तमाम टेक्नोलॉजीज जो अभी ट्रेंडिंग है और जिनके ऊपर अभी काम किया जा रहा है। तो अगर आपको अपना कुछ स्टार्ट करना है तो आप इन फील्ड्स में, इन टेक्नोलॉजीज में देख सकते हो। आई होप इट वर्क्स। नाउ विद दिस नोट लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, अब उसके बाद उस शो में आगे बात करेंगे, बताएंगे आपको कौन सी कंपनी है और क्या उसकी जर्नी रही है, पर फिलहाल आप मजा लीजिए इन गानों का। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइक।
1: ना इज्जत की चिंता ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन।
2: गुरुदेव यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए।
1: हाँ, ना इज्जत की चिंता।

के बिना मात्रे होते अक्षरकार, बापतकारी ही ईर्षा माथे बने मकार, नाते नमक हरामी समझो होते पूरे चार।

मुद्रा बन के हम सन्यासी ब्राह्मण चलते रहना, मौका है वीर बना लो हाथ नमनते रहना, हाथ की चूड़ी पांच की पायल लिया हो गले का कहना, मार के मंत्र ढूंढना कर देव कर कहना।

चिंता दीप संग है महाराज पधारे, चिंता चरस चिदम और चेले साथ साथ है सारे। इतने लेकर भी गाड़ी में खड़े शरीफ बेचारे, और ये देखो भगवान के चमके पड़े हैं।

उम्मीद यही कि आपको ये गाने पसंद आए। नाउ विद दिस नोट अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। दोस्तों मैं हूं आरजे सागर, शो का नाम है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आज जो कंपनी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो कंपनी डील करती है मेडटेक इंडस्ट्री में। अब मेडटेक इंडस्ट्री को हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं यहाँ पर। अभी तक मल्टीपल चीजें हमने आपको बता दी एंड आई होप उससे आपको एक सच में रियल इंसाइट मिला है। अब इसके बाद आगे अगर बात करें तो नीड क्या है इसकी इंडिया में। देखिए सबसे पहली चीज एक्सेसिबिलिटी। बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है हमारे देश की आज भी जो रूरल एरियाज में रहती है। रूरल एरियाज मतलब लिमिटेड एक्सेस, चाहे वो किसी अच्छे टाउन के या अच्छे शहर के कितने ही करीब क्यों ना हो या कितना ही दूर क्यों ना हो, स्टिल देर आर लिमिटेशंस, देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके लिए इन चीजों को एक्सेसिबल बनाना बहुत जरूरी है ताकि हर एक इंसान तक इनका फायदा पहुंच सके। अगर किसी को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो अपनी चीजों को फिक्स कर सके बाय यूजिंग ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज टेक्नोलॉजीज। देन टेलीमेडिसिन उसमें एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है एंड मेडटेक के जो बाकी सॉल्यूशंस हैं लाइक पोर्टेबल डिवाइस हो गए, ये सब उस गैप को फिल करते हैं। इसलिए जरूरी है इंडिया में मेडटेक के ऊपर काम करना। सेकेंड अफोर्डेबिलिटी। देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी चीजें एक्सेसिबल हो गई हैं, मल्टीपल ऑप्शंस आ गए हैं जिससे वो ज्यादा अफोर्डेबल हो गई है। अगर मैं बात करूं एक ब्रॉडर व्यू में तो अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज को ट्रीट करना है या डायग्नोस करना है तो कम टाइम में अच्छे से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ, ज्यादा प्रिसीजन के साथ हम वो कर सकते हैं बिकॉज हमने टेक्नोलॉजी में इतना काम किया है, इतना इन्वेस्ट हमने ऑलरेडी किया है उस एक फील्ड में, जिसकी वजह से काफी लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों की ओवरऑल हेल्थ अच्छी होगी, जिसको जहां पर नीड है वो उसको ठीक कर सकता है, फिक्स कर सकते हैं। देन उसके बाद थर्ड क्वालिटी ऑफ केयर। अब एडवांस डायग्नोस्टिक टूल्स आ गए हैं, वेयरेबल डिवाइस आ गए हैं, एआई ड्रिवन सॉल्यूशंस आ गए हैं, इससे ओवरऑल हेल्थ केयर की जो क्वालिटी है वो काफी इंप्रूव हुई है। जैसे कि अर्ली स्टेज डिटेक्शन, बेटर मॉनिटरिंग, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट, मतलब अब अच्छे से हम उसको देख सकते हैं, अच्छे से उसका हम एनालिसिस कर सकते हैं और उसके बिहाफ पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हाउ टू प्रोसीड, आगे चलना कैसे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको कंसिडर करना चाहिए कि ये हमारी नीड है, हमारे देश की नीड है। देन इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है पैंडेमिक रिस्पॉन्स। COVID-19 के बाद से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हुई, उस टाइम पर भी, उसके बाद भी हुई, जहां पर मेडटेक ने एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया उस क्राइसिस के टाइम पे भी, जहां पर डॉक्टर्स के साथ वर्चुअली अपॉइंटमेंट लेकर डिस्कस करते थे एंड उसके बाद भी, क्योंकि वो एक चीज हमारी लाइफ का पार्ट बन गई, स्पेशली वर्क फ्रॉम होम बहुत ट्रेंडिंग एक चीज बनी, बहुत बड़ी एक चीज निकल के सामने आई। देन उसके बाद सब कुछ हमने देखा कि डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम दिस रिमोट मॉनिटरिंग टूल्स हमें मिल गए एंड टेलीमेडिसिन का आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल गया, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स मिल गए, कुल मिलाकर पेशेंट्स को ट्रीट करने में काफी सहूलियत हो गई। पेशेंट्स के पास भी ज्यादा ऑप्शंस हैं, डॉक्टर्स के पास भी ज्यादा ऑप्शंस हैं, इट्स अ विन विन सिचुएशन। हुआ क्या, सिंपली टेक्नोलॉजी को वहां पर अलाइन किया गया और उससे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को नई शेप मिली। सो दैट्स हाउ हम कह सकते हैं कि इसकी नीड है ये हमारे पास। इम्पैक्ट भी इसका देखने को मिला, मतलब काफी हमने एक्सेस को इम्प्रूव होते हुए देखा कि इम्प्रूव्ड एक्सेस है अब हेल्थ केयर का, हमने देखा कि बेटर हेल्थ आउटकम्स हैं, हमने देखा कि पेशेंट्स जो हैं वो ज्यादा एम्पावर हो गए हैं पहले से, उनके पास ऑप्शंस ज्यादा आ गए हैं, हमने देखा कि एफिशिएंसी काफी इंप्रूव हो गई है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की, हमने बहुत सारी चीजें देखी है। तो ऐसे मेडटेक जो एक पूरी इंडस्ट्री है उसने हमारी लाइव्स की जो ओवरऑल वेलबींग है उसको काफी इंप्रूव किया। अब लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद फाइनली बात करेंगे कंपनी की, क्या नाम है कंपनी का, फाउंडर कौन है, फाउंडर का बैकग्राउंड क्या है, सब कुछ आपको बताएंगे।

0: वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ आपको म्यूजिकल वाइब पसंद आई। फिलहाल इसी नोट पर अपने शो को आगे बढ़ाएंगे। सो फाइनली हमने इंडस्ट्री की बात कर ली, आपको तमाम चीजें बता दी इंडस्ट्री के बारे में। अब बात करते हैं आज की कंपनी की। आज की हमारी कंपनी है इकिन केयर। इकिन केयर एक हैदराबाद बेस्ड हेल्थ टेक स्टार्टअप है। मेडटेक यू की बात हो रही है। ये फोकस करता है ऑन कॉर्पोरेट हेल्थ केयर एंड एम्प्लॉय वेलनेस। अब बहुत नीश बेस्ड एक पर्टिकुलर चीज है ये, लेकिन समझना होगा इट्स नॉट अ हॉस्पिटल, इट्स नॉट अ क्लिनिक। ये एक फुल स्टैक डिजिटल हेल्थ बेनिफिट्स प्लेटफॉर्म है कंपनीज के लिए। B2B में डील करता है, हालांकि फायदा एम्प्लॉयज को होता है, फायदा एक आम नागरिक को ही हो रहा है। ठीक है, व्हाट दे डू इन सिंपल वर्ड्स इज हेल्थ चेकअप, डॉक्टर कंसल्टेशंस, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से होता है। आप मेडिसिन की डिलीवरी करते हैं, मेंटल हेल्थ सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एनालिटिक्स, ठीक है, ये यहाँ पर किया जाता है। ये सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट किया गया। दे सर्व 1000+ ऑर्गेनाइजेशंस, मिलियंस ऑफ एम्प्लॉयज विद अ नेटवर्क ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। कंपनी स्टार्ट कैसे हुई? ये स्टार्ट हुई एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में, नॉट जस्ट फ्रॉम अ रैंडम आइडिया, इट केम फ्रॉम अ पर्सनल फ्रस्ट्रेशन। तो इस कंपनी के जो फाउंडर हैं किरण कलाकुंतला, वो US में थे, ठीक है, उनके जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया में थे। प्रॉब्लम वहां पर वो थी कि वो अपने पेरेंट्स की हेल्थ को ट्रैक नहीं कर पा रहे थे प्रॉपरली। कोई सेंट्रलाइज्ड मेडिकल रिकॉर्ड का सिस्टम नहीं था वहां पर, ठीक है, कोई क्लैरिफाई नहीं दी जा रही थी। इवन ड्यूरिंग सीरियस हेल्थ सिचुएशंस कोई क्लैरिफिकेशन उनको नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि अब दूर है भाई, बाहर है, अब्रॉड में है, पेरेंट्स अगर यहाँ पर ठीक नहीं है, सो इट फ्रस्ट्रेट्स यू, राइट? ये फ्रस्ट्रेशन एक सवाल में तब्दील हुई, व्हाई इज हेल्थ केयर सो डिसकनेक्टेड स्पेशली इन आवर कंट्री इन इंडिया। यहां से ये कंपनी स्टार्ट हुई इकिन केयर। तो ये सिंपल सा एक कोर आइडिया था कि हेल्थ केयर को प्रिवेंटिव बनाना चाहिए, नॉट रिएक्टिव। क्योंकि इंडिया में अमूमन एक धारणा होती है कि लोग डॉक्टर्स के पास तभी जाते हैं जब कोई चीज खराब होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तभी हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं। एक नॉर्मल चेकअप के लिए हम लोग नहीं जाते हैं, एक रेगुलर चेकअप के लिए, प्रिवेंशन के लिए। कोई ट्रैकिंग नहीं होती, कोई अर्ली डिटेक्शन नहीं होता, क्योंकि जागरूकता की भी कमी है, प्लस उस तरीके से यहां पर कोई सिस्टम बनाया ही नहीं गया। तो यहां पर इकिन केयर जो कंपनी हमारी, इसने हेल्थ डेटा को डिजिटाइज किया, एनालाइज करना शुरू किया और पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस देने शुरू किए। तो ये शिफ्ट हुआ फ्रॉम ट्रीटमेंट टू प्रिवेंशन। ये इंपॉर्टेंट है समझना हमारे लिए कि भाई ट्रीटमेंट तो ठीक है सब लोग करा ही रहे हैं, लेकिन ट्रीटमेंट तक बहुत सारा डैमेज हमें पहुंच चुका होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में पनप चुकी होती है और वो अलग स्टेज होती है। तो यहां पर सिंपल फोकस किया गया कि क्यों ना इसको प्रिवेंट किया जाए, वो एक चीज है। अगेन मैं बोलूंगा B2B में डील कर रहा है, कॉर्पोरेटली काम कर रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट से फायदा एक आम इंसान का हो रहा है, अपनी सेहत को लेकर के लोग जागरूक हो रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक समझ पाए। अब फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।
1: ये हुई ना बात।

0: ఆ ఠండి హవా
1: ఆహా ఠండా ఏ కాలి గడా
2: उम्मीद कर रहा हूँ आपको म्यूजिकल वाइब पसंद आई। फिलहाल इसी नोट पर अपने शो को आगे बढ़ाएंगे और बिना किसी देरी के अपने शो में बात करते हैं हमारे फाउंडर्स के नाम की, उनके बैकग्राउंड की, क्योंकि कंपनी का नाम है एकिन केयर। थॉट प्रोसेस आपको समझ आया, आइडिया आपको समझ में आया, क्या करते हैं आपको समझ में आया, इंडस्ट्री को आपको समझाया हमने, तो ये तमाम चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर बात की जाएगी फाउंडर्स की। कोर फाउंडिंग टीम में तीन लोग हैं। फर्स्ट किरण कालाकुंतला, जिनको ये थॉट प्रोसेस था, जिनको ये आइडिया आया कि उनके पेरेंट्स ठीक नहीं है और उसको उन्हें सिंक करना है एक सिस्टमैटिक वे। सो ही इज अ फाउंडर एंड सीईओ। दूसरा है श्रीकांत समुद्राला, को फाउंडर एंड सीटीओ। एंड थर्ड इज डॉक्टर नोएल कोटिन्हो, को फाउंडर बिजनेस एंड हेल्थ केयर एक्सपर्टीज ये लेकर के आते हैं। ठीक है, यहाँ पर एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूटर्स भी हैं लाइक सोमक रे, जो बाद में को फाउंडर बने कंपनी की ग्रोथ फेज में, तो वो हैं। इन चार लोगों ने इस कंपनी के जो कोर आइडिया है उसको बरकरार रखा, उसको आगे पहुंचाया। बैकग्राउंड की बात करेंगे, किरण कालाकुंतला जो हैं उनकी एजुकेशन की थोड़ी सी बात की जाएगी यहाँ पर। ड्यूक यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी पढ़ाई की। वर्क एक्सपीरियंस की बात करेंगे, AT&T में काम किया हुआ है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी एमएनसी है, उसमें अच्छा खासा इन्होंने टेक्नोलॉजी को समझा है। वहां पर उन्होंने 30 से ज्यादा टेक प्रोडक्ट्स बनाए ग्लोबली जिन्होंने लोगों की मदद करी। ओके, 100 million+ US के बिजनेस जो है वो इन्होंने मैनेज किया है प्रोडक्ट्स में। इनसाइट्स की अगर बात करेंगे, ही इज नॉट अ हेल्थ केयर गाय, टू बी ऑनेस्ट, दिस इज प्रोडक्ट प्लस टेक माइंडसेट, जिसकी वजह से ये प्लेटफॉर्म बन पाया। तो देख रहे हैं, आपकी हेल्थ केयर होना भी जरूरी नहीं था, वहां पर टेक जील और वहां पर एक गैप नजर आया और एक प्रोडक्ट को कैसे वहां पर लोगों के लिए हेल्पफुल बनाया जाए वो उनको समझ में आया। दैट्स हाउ ही स्टार्टेड दिस थिंग। ठीक है, नॉट सर्विस फर्स्ट, दिस कंपनी इज डेटा फर्स्ट हेल्थ केयर। दूसरा नाम की यहाँ पर बात करना चाहेंगे, श्रीकांत समुद्राला, IIT मद्रास से उन्होंने अपनी पढ़ाई की है, बार्कलेज, HSBC, इन बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्होंने काम किया है, लार्ज स्केल टेक सिस्टम्स इन्होंने बिल्ड किए हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी की जो बैकबोन है उसको ये समझते हैं, उसको आप कह सकते हैं कि पूरा आप मैनेज करते हैं, बिकॉज दिस कंपनी इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। एंड आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली कंपनीज जो हैं वो टेक के ऊपर ही रिलाई करती है, और अगर टेक ही वीक है, आपका टेक ही एक्सेसिबल नहीं है, तो इट डजंट मेक सेंस एट ऑल, राइट? तो यहां पर श्रीकांत जो है उनका यही काम है कि वो टेक को मैनेज करते हैं, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। थर्ड इज डॉक्टर नोएल कोटिन्हो, हेल्थ केयर का अनुभव है इनका, ठीक है, प्लस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अच्छा खासा काम किया है, 15 साल से ज्यादा का इनका अनुभव रह चुका है। ठीक है, दिस कंप्लीट्स द ट्रायंगल टेक प्रोडक्ट हेल्थ केयर। तो टेक के बारे में हमने बताया श्रीकांत काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट के ऊपर हमने आपको बताया किरण जो है वो अपना एक्सपीरियंस लेकर के आ रहे हैं, हेल्थ केयर में यहाँ पर डॉक्टर नोएल जो है वो आते हैं। ऐसे करके कंपनी जो है पूरी करती है, क्योंकि ये ही तीन चीजें हैं जो इस कंपनी को ड्राइव करती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक अभी तक आपको समझ आया। फिलहाल लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो जहां पर चल रहा है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इकिन केयर, हमारी कंपनी की जो मेडटेक में डील करती है। अभी तक हमने कंपनी के बारे में आपको बताया, ओवरव्यू आपको दिया, थॉट प्रोसेस क्या रहा कंपनी के पीछे वो आपको बताया, फाउंडर्स, उनके बैकग्राउंड, कैसे ये तीनों जो हैं मिलकर के इस कंपनी को यहां तक लेकर के आए हैं, क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, वो हमने यहां पर बात करी। लेट्स टॉक अबाउट द यूएसपीज, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। लेट्स कट द नॉइज। ठीक है, पहला यहां पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि ये ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है। दूसरा यहां पर आता है AI प्लस एनालिटिक्स। यहां पर डाटा को स्टोर नहीं किया जाता है, एक्चुअली वहां पर रिस्क को प्रिडिक्ट किया जाता है, वहां पर चीजों को देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है, एक ही प्लेटफॉर्म पर तमाम चीजें आपको मिलती है। थर्ड इज कॉर्पोरेट फर्स्ट अप्रोच, स्टेबल रेवेन्यू मॉडल है। जाहिर सी बात है, जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई कंपनी आप ओपन कर रहे हैं, उसको चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो उसके लिए इनके पास एक स्टेबल ये इनकम है, एक स्टेबल सोर्स है रेवेन्यू का, जहां पर कॉर्पोरेट्स उनके जो हैं क्लाइंट्स हैं और कॉर्पोरेट से उनको बिजनेस मिलता है, जो कि लार्ज अमाउंट में ऑपरेट करती हैं चीजें, है ना। इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिवेंटिव फोकस। ये एक रियल डिफरेंशिएटर है इस कंपनी की, सबसे बड़ी USP है। आपको समझना होगा कि कंपनी जो है ये कह ही नहीं रही है कि आप बीमारी होगी चलो हम आपको कवरेज देते हैं, हम आपका ठीक करते हैं। कंपनी कह रही है कि आपको बीमारी होने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि बीमारी हो सकती है, थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत है आपके लाइफस्टाइल को लेकर, आपके ब्लड टेस्ट या जो भी आपकी रिपोर्ट्स आएंगी उनको लेकर के। दैट्स हाउ दिस कंपनी इज ग्रोइंग। ओके, मोस्ट प्लेयर्स जो इस इंडस्ट्री में डील करते हैं वो इलनेस को ट्रीट करते हैं, इकिन केयर जो है उसको प्रिवेंट करने के ऊपर काम करती है, जागरूकता फैलाती है। और वाजिब भी है कि एक पर्सनल एक्सपीरियंस से आता है, माता पिता ठीक नहीं थे, उसके बाद जाकर के ये चीजें इन्हें हिट करी, जब तो उन्हें लगा कि लेट्स फिक्स दिस प्रॉब्लम ऑन अ बिगर स्केल, एंड दैट्स हाउ ये कंपनी जो है अपनी एक जगह बना पा रही है। तो ये है जी इस कंपनी की USP, जो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड प्लस प्रिवेंटिव प्लस डेटा ड्रिवन हेल्थ केयर। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बावजूद, इतने सारे प्लेयर्स होने के बावजूद भी एक गैप देखा गया और उसको फिक्स किया गया, एंड ये हमेशा होता है, गैप हमेशा रहेगा, याद रखिएगा। कुछ भी ऐसे अलग से नहीं आता चांद पे से, हमें यहीं पर देख के ये देखना होता है कि क्या नया दिया जा सकता है। दैट्स हाउ सब लोग ग्रो कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ी स्पेशलिटी होती है फाउंडर की या एक एंटरप्रेन्योर की, कि वो इस तरह की चीजें देख पाते हैं। अब लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक जितनी भी बातें आपको बताइए पसंद आई है। सो स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

फील गुड फील लाइव, मैं हूं आरजे सागर। शो यहां पर चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो कंपनी है इकिन केयर, मेडटेक में डील करती है। अब बात करेंगे कंपनी के की ड्राइवर्स की। इस कंपनी के ग्रोथ के लिए जो की ड्राइवर्स काम कर रहे हैं, पहला उसमें है राइजिंग लाइफस्टाइल डिजीज, डायबिटीज, बीपी, स्ट्रेस भारत में बढ़ रहे हैं और ये बात हम सब लोग जानते हैं बखूबी। सेकंड है कॉर्पोरेट अवेयरनेस। कंपनीज अब ज्यादा जागरूक हो गई हैं कि उन्हें अपने एम्प्लॉयज की हेल्थ का ध्यान रखना होगा, और इनफैक्ट लोग भी अब उन कंपनीज को प्रेफर करने लगे हैं जॉब के लिए, कि जहां पर हमारी हेल्थ को प्रायोरिटाइज किया जाता है उसमें कंपनी का भी फायदा है, एम्प्लॉय का भी फायदा है। कंपनी का भी फायदा है कि प्रोडक्टिविटी अच्छी आएगी, एम्प्लॉयज का भी फायदा है कि हम ठीक रहेंगे।

जब तक वासना है, कामना है, क्या तभी तक साधना है? स्वभावतः रोग है तो औषधि है, स्वास्थ्य आया औषधि व्यर्थ हुई, स्वास्थ्य में भी कोई औषधि लिए चले जाए तो घातक है। जो रोग को मिटाती है वही रोग को फिर पैदा करेगी। मार्ग की जरूरत है, मंजिल दूर है, तब तक मंजिल आ जाए फिर भी तो जो चलता चला जाए, तो जो चलना मंजिल के पास लाता था वही फिर दूर ले जाएगा। और प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है, बीमारी तो छूट जाती है, औषधि पकड़ जाती है, क्योंकि मन का तर्क कहता है जिसने यहां तक पहुंचाया उसे कैसे छोड़ दें, जो इतने दूर ले आया उसे कैसे छोड़ दें, जिसके सहारे इतना कुछ पाया कहीं उसके छोड़ने से वो खो न जाए। तो अनेक यात्री मंजिल के पास पहुंचकर भी भटक जाते और बहुत सी नावें किनारे के पास आकर टकराती हैं और डूब जाती। मझधार में बहुत कम लोग डूबते, किनारे पे बहुत लोग डूबते। यात्रा पूरी उतनी दुर्गम नहीं है जितनी पहुंच जाने के बाद चलने की जो लंबी आदत है उसको छोड़ना दुर्गम हो जाता है। चित्त में अशांति है तो तुम ध्यान करते हो, धीरे धीरे अशांति विदा होगी, शांति निर्मित हो जाएगी। फिर ध्यान को मत पकड़ के बैठ जाना, नहीं तो ध्यान ही अशांति पैदा करने का कारण बनेगा। फिर ध्यान भी जाना चाहिए। अंधेरे में भटकते हो, किसी कल्याण मित्र का हाथ पकड़ा, फिर रोशनी आ जाए, सुबह हो जाए, तो अब हाथ को पकड़े ही मत रह जाना। हाथ का पकड़ना भी आना चाहिए, छोड़ना भी आना चाहिए। साधन का उपयोग करना है, साधन की गुलामी नहीं अख्तियार कर लेनी। राह पे चलना जरूर है पर राह सिर्फ राह है इसे जानते रहना है। बहुत विधियां हैं, जो काम आ जाए उसका उपयोग कर लो, लेकिन काम पूरा होते ही छोड़ देना, क्षण भर की देरी भी खतरनाक हो सकती है। क्योंकि जो खाली जगह छूट जाती है तुम्हारे भीतर, कहीं ऐसा न हो कि विधि व्यवस्था साधना उस खाली जगह में अड्डा जमा ले। तो ये तो ऐसे हुआ कि तुम्हारे सिंहासन पर दुश्मन ने कब्जा किया था, तुमने मित्रों का सांस लिया, उन्होंने दुश्मन को तो हटा दिया लेकिन खुद सिंहासन पर विराजमान हो गए। तुम जहां थे वहीं रहे, शायद पहले से भी बुरी हालत में हो गए। दुश्मन हो तो सिंहासन छीन लेना आसान भी, मित्रों से कैसे छीनोगे? अपने हैं, मित्र हैं, इनके द्वारा ही तो सिंहासन मिला है, इनसे कैसे छीनोगे? इसलिए सद्गुरु की परिभाषा समझो। सद्गुरु की परिभाषा यह है कि जो एक क्षण भी जरूरत से ज्यादा तुम्हारे हाथ को न पकड़े रहे। तुम तो पकड़ना चाहोगे, तुम तो बड़े उलझाव में हो, जब पकड़ने की जरूरत होती तब तुम पकड़ने से डरते हो, जब जरूरत है कि तुम हाथ पकड़ लो तब तुम हजार उपाय करते हो न पकड़ने के, तुम्हारा अहंकार बाधा बनता है, तुम भागते हो, तुम बचते हो, तुम छिपाव करते हो। जब जरूरत थी पकड़ लेने की, झुक जाने की, समर्पित हो जाने की, तब तुम अकड़े खड़े रहते हो, बामुश्किल तुम झुकते हो, बड़ी कठिनाई से तुम हाथ पकड़ते हो। जब जरूरत थी तब पकड़ते में तुम बाधा डालते हो, फिर जब घड़ी आएगी छोड़ने की तब तुम छोड़ने में बाधा डालोगे, तब तुम छोड़ोगे नहीं, तब तुम जिद बांध के बैठ जाओगे, तब तुम कहोगे ये छोड़ने वाला हाथ नहीं है, इसी ने पहुंचाया, ये चरण हम कभी ना छोड़ेंगे। सदगुरु वही है
जब तुम पकड़ना नहीं चाहते पकड़ा दे, और जब तुम छोड़ना नहीं चाहते जब छोड़ा दे। साधना का कोई अर्थ नहीं है फिर। कांटे की तरह है साधना, एक कांटे को निकाल लिया, दूसरे को भी साथ ही फेंक दिया। तुम कोई सदा सदा के लिए साधक मत बन जाना, मार्ग की बात है, उपाय है, साधन है, साध्य नहीं है। साध जैसे ही करीब आने लगे वैसे ही साधन से अपने हाथ छोड़ाना शुरू कर देना। वाहन पर सवार होते हो, मंजिल करीब आ जाती है, उतर जाते हो। प्रकृति का नियम यही है एक, कि अति का होगा ही विध्वंस। एक अति है वासना कि खो गए, भटक गए संसार में, व्यर्थ में, बाजार में। फिर एक दूसरी अति है कि बचाने में लग गए अपने को संसार से, व्यर्थ से, बाजार से। ये दोनों अतियां हैं, इन दोनों में कहीं भी समत्व नहीं है। जरूरी है साधना, क्योंकि एक अति पर चले गए तो दूसरी अति पर जाना जरूरी हो गया है। लेकिन जैसे ही एक अति कट जाए दूसरी अति भी तत्क्षण छोड़ देना, अन्यथा घड़ी के पेंडुलम की तरह घूमते रहोगे, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं जाते रहोगे। रुक जाना है कहीं बीच में। देखा, जब घड़ी का पेंडुलम बीच में रुक जाता है घड़ी रुक जाती। घड़ी यानी समय, जहां तुम संतुलित हुए अति गई वही समय के बाहर हुए। जब तक तुम डोलते रहते हो एक कोने से दूसरे कोने, तब तक घड़ी भी टिक टिक चलती रहती, तब तक समय चलता रहता, तब तक संसार चलता रहता। तुम्हारा मन का पेंडुलम ही सारे संसार को चलाया जाता है। तुमने कभी किसी नट को देखा रस्सी पर चलते? पूरे समय बाएं से दाएं, दाएं से बाएं होता रहता है। जब बाएं झुकता है

नीचे उतर आया, फिर थोड़ी दाएं बाएं झुकता रहेगा, फिर तो बैठ जाएगा, फिर तो झुकेगा ही क्यों, फिर तो खड़ा हो जाएगा। भूमि मिल गई, अब कोई रस्सी पर थोड़ी चल रहा है। संसार में चलना तनी हुई रस्सी पर चलने जैसा है। प्रतिक्षण तुम्हें झुकना ही पड़ेगा, अभी प्रेम अभी घृणा, अभी सहानुभूति अभी क्रोध, ये दाएं बाएं। मेरे पास प्रेमी आते हैं, वो पूछते हैं कैसे ये घटना घटे कि हम जिससे प्रेम करते हैं उस पर क्रोध ना करें। मैं कहता हूं ये ना हो सकेगा, इसके लिए तो संसार की रस्सी से उतरना पड़ेगा। ये तो संसार की रस्सी पर तुम प्रेम करोगे तो क्रोध करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रेम में ज्यादा झुके गिरने का डर हो जाता, क्रोध की तरफ मुड़े संभल गए। क्रोध में भी ज्यादा झुकोगे तो डर हो जाएगा, तो फिर पत्नी के लिए फूल खरीद लाए, आइसक्रीम ले आए, फिर थोड़ा प्रेम किया, फिर खतरा पैदा हो जाता है। तो जिससे तुम प्रेम करोगे उससे ही घृणा भी करते रहोगे, और जिससे तुम्हारे मन का लगाव है उससे ही तुम लाग भी रखोगे, उससे ही दुश्मनी भी चलती रहेगी। पश्चिम में एक बहुत अनूठी किताब कुछ वर्षों पहले प्रकाशित हुई, उस किताब का नाम है द इंटीमेट इनिमी। वो पति पत्नी के संबंधों के संबंध में किताब है, इंटीमेट इनिमी। लेकिन ये तो सूझ इसको अभी अभी आई। उर्दू में शब्द है, हिंदी में भी उपयोग होता है, खसम। खसम का मतलब होता है पति, और खसम का मतलब शत्रु भी होता है। मूल अरबी में तो शत्रु होता है, कैसे शत्रु से पति हो गया, बड़े आश्चर्य की बात है, कोई जोड़ नहीं दिखाई पड़ता। मूल शत्रु है फिर पति कैसे हो गया, जरूर लोग पकड़ गए होंगे बात, सूत्र समझ में आ गया होगा, ख्याल में आ गया होगा कि जिससे प्रेम है उससे दुश्मनी भी है। जहां प्रेम है वहां घृणा है, जहां लगाव है वहां विराग भी, जहां जहां राग है वहां वहां वैराग्य आता ही रहेगा। तुमने कभी ख्याल किया कितनी बार में घर से भागने का मन हो जाता, छोड़ो पत्नी बच्चे, मगर स्टेशन भी न पहुंच पाओगे कि लौट आओगे। इसको कोई स्थायी बात मत समझ लेना, ये कोई स्थायी भाव नहीं है, ये तो कई बार आता है। कितनी बार आदमी मरना नहीं चाहता, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा आदमी खोजना कठिन है जिसने जिंदगी में कम से कम 10 बार आत्मघात का विचार न किया हो। ये जरूरी है, जिंदगी अति हो जाती है, मरने का भाव करके संभाल लेते, जीवन बोझिल हो जाता, भारी हो जाता। मरने की कल्पना से ही राहत मिल जाती, मरता कौन, राहत मिल गई फिर जिंदगी में लग जाते। ये तो जिंदा रहने का ही ढंग है। तो कोई अगर मरने वगैरह की बातें करे तो बहुत चिंतित मत होना, कहना ठीक है मरो। मैं एक घर में रहता था कुछ दिनों तक, नया नया मेहमान था उस परिवार में, कुछ उस परिवार का रीति रिवाज मुझे पता ना था। एक दिन मैंने रात को कोई 11:30 बजे पति पत्नी ने झगड़ा सुना, मैं चुप ही रहा, मेरे बोलने का कोई कारण नहीं बीच में। लेकिन बात यहां तक बढ़ गई कि पति ने कहा कि मैं अभी जाके मर जाऊंगा, तो थोड़ा मैं चिंतित हुआ कि अब मेहमान भी हूं तो भी क्या हुआ। फिर भी मैंने कहा कि अभी जाने दो तब देखूंगा। वो गए भी, जब उनको मैंने घर के बाहर भी निकलते देख लिया तो मैं भागा। मैंने उनकी पत्नी से कहा कुछ करना पड़ेगा, उसने कहा फिक्र न करो, अभी 5-7 मिनट में वापस आते। वो 5-7 मिनट में वापस भी आ गए। सुबह मैंने उनसे पूछा कि कहां तक गए थे, उन्होंने कहा पता नहीं क्या मामला, कई दफा ऐसा हो जाता है, गुस्से में चला जाता हूं, रेल की पटरी पास ही है, बस वहां तक पहुंचा कि सब ठीक हो जाता है, फिर वापस लौट आता हूं। जीने का हिस्सा है। ऐसे हम अपने को धोखा दे लेते कि चलो मरे जाते, अब तो बात खत्म हुई। मरने के ख्याल से ही जीवन का बोझ क्षण भर को नीचे उतर गया, फिर उठा के रख लेंगे सिर पर, कहीं कोई इतने जल्दी मरा जाता है। तुमसे मैं कहता हूं जो मर भी जाते हैं, कुछ लोग जल्दबाजी कर लेते हैं मर जाते हैं, अगर वो तुम्हें मिल जाए तो वो पछताते मिलेंगे, वो कहेंगे जरा जल्दी कर दी, क्षण भर और ठहर जाते। कुछ लोग तेजी में गुजर जाते, जल्दी कर लेते,

क्षण भर में घट जाए तो घट जाए, जरा विलंब हो जाए तो तुम वापस लौट आओगे। ये मन का ढंग है कि जीवन आशा का उल्लास, कि जीवन आशा का उपहास, कि जीवन आशा में उद्गार, कि जीवन आशाहीन पुकार। दिशा दिवा निसी की सीमा पर बैठ, निकालूं भी तो क्या परिणाम। व्यस्तता आता है हर प्रात, बिलखती जाती है हर शाम। सुबह हंसती हुई मालूम होती है, सांझ रोती हुई मालूम होती है। द्वंद नहीं है, लेकिन सुबह हंसती हुई मालूम हुई इसलिए सांझ रोती हुई मालूम होती है। सुबह मुस्कुराती आती है, वही मुस्कुराहट सांझ आंसू बन जाती है। ये जीवन की सहज व्यवस्था है। आशा निराशा, उजाला अंधेरा, मित्रता शत्रुता, ऐसे हम नट की तरह रस्सी पर सधे रहते। वासना साधना भोग योग, ऐसे हम रस्सी पर सधे रहते। जानना तो तुम उस दिन भूमि मिली जिस दिन न भोग रह जाए न योग रह जाए, न वासना रह जाए न साधना रह जाए, न प्रेम रह जाए न घृणा रह जाए, न क्रोध रह जाए न अक्रोध रह जाए, सारे द्वंद खो जाए तो तुम उतर आए। वही है मुक्ति की भूमि, वही है मुक्ति का आकाश। अब तुम रस्सी पर नहीं हो, अब संभालने की कोई जरूरत ही नहीं, अब गिरने का कोई खतरा ही नहीं है। संभालेगा कोई क्यों? संभालते तो हम तब हैं जब गिरने का खतरा होता है। स्वर्ग और नर्क जब तुम दोनों से नीचे उतर आए तब है मोक्ष की भूमि। स्वर्ग और नर्क के बीच खिंची है रस्सी, उसी रस्सी पे चल रहा संसार। साधना निश्चित ही समाप्त हो जाती है वासना के साथ। साधना और वासना जुड़वा बहने, सुनकर तुम्हें हैरानी होगी, कोई साधु ये बात तुमसे ना कहेगा, इसलिए साधु मुझसे नाराज। साधना वासना जुड़वा बहने, उनकी शक्लें बिल्कुल एक जैसी है, वे साथ ही साथ पैदा हुई हैं और साथ ही साथ मर जाती है। साधना की जरूरत को कोई बड़ा सौभाग्य मत समझ लेना, कोई दवाई की बोतल को सिर पर लेके शोभा यात्रा मत निकाल देना, वो केवल रोग की खबर है। तुम्हारे घर में चिकित्सक रोज रोज आता है, इससे तुम ऐसा मत समझ लेना कि तुम बड़े महिमाशाली और सौभाग्यशाली हो। एक अत्यंत हिंदू बुद्धि के व्यक्ति मुझे मिलने आए थे, कहने लगे भारत भूमि बड़ी सौभाग्यशाली है। मैंने कहा कारण? कहने लगे देखो, हिंदुओं के 24 अवतार, जैनों के 24 तीर्थंकर, बुद्धों के 24 बुद्ध सभी यहाँ हुए। मैंने कहा ये तो दुर्भाग्य मालूम होता है, इतने तीर्थंकर इतने अवतार इतने बुद्ध पैदा होते हैं, इतने चिकित्सक आते हैं, बीमार की हालत बड़ी बुरी, साफ है कि बड़ा दुर्भाग्य होगा। इतने बार चिकित्सक आते हैं और चिकित्सकों की जरूरत बनी ही रहती, इसे तुम सौभाग्य का मुकुट मत समझो। वो थोड़े चौंके, उन्हें कभी इसका विचार भी ना आया होगा। वो कहने लगे कि बात में तो थोड़ा अर्थ मालूम होता है, अगर देश सच में ही धार्मिक हो तो अवतारों की क्या जरूरत है। मैंने उनसे कहा अपनी गीता ही उलट कर देखो, कृष्ण कहते हैं जब अंधेरा होगा और धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और साधु पीड़ित किए जाएंगे तब मैं आऊंगा। साफ है कि कृष्ण वहीं आएंगे जहां अधर्म होगा, और अगर यहां आए तो अधर्म होना चाहिए। इसको तुम धार्मिक देश मत कहना, और मुल्कों में नहीं आए जरूर हमसे बेहतर हालत में होंगे। चिकित्सक की जरूरत रोगी को है, अवतार की जरूरत अधार्मिक को है। दिए की जरूरत अंधेरे में, सुबह होते ही हम दिया बुझा देते हैं, क्या जरूरत। इसलिए तो दिवाली हम अमावस की रात में मनाते हैं, जब गहन अंधकार होता है तो दियों के अवतार पंक्तिबद्ध फैला देते। सबसे अंधेरी रात वर्ष की जो है, उस वक्त हम सबसे ज्यादा दिए जलाते। दिन में कोई दिवाली मनाएगा उसे हम पागल कहेंगे। अगर मैं ध्यान करूं तो मैं पागल हूं,
अगर तुम ध्यान ना करो तो पागल हो। मुझसे लोग आ जाते हैं पूछने का आप ध्यान कब करते हैं। मैंने कहा मैं कोई पागल हूं, मेरा दिमाग खराब हुआ है। वो कहते थे फिर हमें क्यों समझाते हो। तुम्हें समझाता हूं कि अगर तुम ना करोगे तो तुम पागल हो। बात सीधी है उल्टी लगती है, जरा भी उल्टी नहीं। पहुंच गए, मंजिल समाप्त हुई, चलना क्या है, पा लिया। खोज बंद हुई, खोजना क्या है, साधना का उपयोग करना। यही उस शब्द का मतलब है, साधना का अर्थ साधन, साध्य नहीं। जब तुम सिद्ध हो जाओगे साध्य मिल जाएगा, साधना भी छूट जाएगी। इसे याद रखना, मूढ़ मत बनना साधना से। रामकृष्ण ने बहुत दिनों तक भक्ति की साधना की, भक्ति की साधना तो की, लेकिन मन में कहीं एक पीड़ा खलती रही। और वो पीड़ा ये थी कि अभी अद्वैत का अनुभव नहीं हुआ। आंख बंद करते हैं महिमामयी मां की मूर्ति खड़ी हो जाती, लेकिन एकांत, परम एकांत जिसको महावीर ने कैवल्य कहा, उसका कोई अनुभव नहीं हुआ। दूसरा तो मौजूद रहता ही, परमात्मा सही, लेकिन दूसरा तो दूसरा ही। और जहां तक दो है वहां तक संसार है, जहां तक द्वंद्व है, मैं हूं तू है, वहां तक संसार है। तो रामकृष्ण बड़े पीड़ित थे। फिर उन्हें एक सन्यासी मिल गया, अद्वैत का साधक सिद्ध, तोतापुरी उस सन्यासी का नाम था। रामकृष्ण ने पूछा मैं क्या करूं, अब कैसे मैं इस द्वंद्व के पार जाऊं। तोतापुरी ने कहा बहुत कठिन नहीं, एक तलवार उठा के मां के दो टुकड़े कर दो। रामकृष्ण तो कब गए, रोने लगे, मां के और टुकड़े और ये आदमी कैसी बात कर रहा है। धार्मिक होके परम धर्म इसी भाषा में बोलता है, परम धर्म तलवार की भाषा में बोलता है। जीसस ने कहा है मैं तलवार लाया हूं, मैं शांति लेकर नहीं आया हूं, तलवार लेकर आया हूं, तोड़ दूंगा सब, टूटने पर ही तो शांति होगी। तोतापुरी ने कहा इसमें आसन क्या है। रामकृष्ण ने कहा तलवार कहां से लाऊं वहां। तोतापुरी हंसने लगा, उसने कहा जब मां को ले आए कहां से लाए, कल्पना का ही जाल है। बड़ी मधुर है कल्पना, बड़ी प्रीतिकर, पर तुमने ही सोचा, माना, रिझाया, बुलाया, आह्वान किया, कल्पना को सजाया हजार हजार रंगों में, वही कल्पना आज साकार हो गई। तुमने ही उसमें प्राण डाले, तुमने ही अपनी ज्योति उसमें डाली, तुमने ही उसे ईंधन दिया। अब ऐसे ही एक तलवार भी बना लो, काट दो। रामकृष्ण आंख बंद करते कब जाते, जैसे ही मां सामने खड़ी होती हिम्मत ही न उठती तलवार, और मां परमात्मा को कोई काटता तलवार से, आंख खोल देते घबरा के कि नहीं ये ना हो सकेगा। तो तोतापुरी ने कहा ना हो सकेगा तो बात ही छोड़ दो, फिर कैबल लिखी मैं चला, मेरे पास समय खराब करने को नहीं, करना हो तो ये आखिरी मौका है, और ये बचकानी आदत छोड़ो। ये क्या मचा रखा है रोना आंसू बहाना, उठा के एक तलवार हिम्मत से दो टुकड़े तो कर। रामकृष्ण ने कहा मेरी कुछ सहायता करो, लगती है बात तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन बड़े भाव से सजाया, बड़े भाव से ये मंदिर बनाया है, जीवन भर इसी में गंवाया है, कि मुझसे होता नहीं। तोतापुरी ने कहा तो फिर मैं तेरी सहायता करूंगा। कोई कांच का टुकड़ा उठा लाया और उसने कहा कि जब तेरे भीतर मां की प्रतिमा बनेगी तो मैं तेरे माथे पर कांच से काट दूंगा, जब मैं काटूंगा तुझे पीड़ा हो, खून की धार बहने लगे, तब तू भी एक हिम्मत करके भीतर भी मां को उठा के तलवार काट देना, बस फिर मैं ना रुकूंगा, करना हो कर ले। अब ये जाने लगा तो बेचारे रामकृष्ण को करना पड़ा। इस आदमी ने उठा के उनके माथे पर कांच के टुकड़े से लकीर काट दी, खून बहने लगा। जैसे उसने लकीर काटी, रामकृष्ण ने भी हिम्मत की और तलवार उठा के भीतर कल्पना को खंडित कर दिया। कल्पना के खंडित होते कैवल्य उपलब्ध हो गया, लेकिन बड़ी अड़चन हुई, बड़े दिन लगे। साधन से भी आदमी की आसक्ति बन जाती, तुम अगर प्रतिमा बना लेते हो मन में तो उससे छोड़ना मुश्किल हो जाए। तुमने अगर ध्यान किया, ध्यान छोड़ना मुश्किल हो जाएगा, प्रार्थना की, प्रार्थना छोड़नी मुश्किल हो जाएगी।
और ध्यान रखना छोड़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये उपचार थे, इन्हें किसी कारण से पकड़ा था, इनके पकड़ने की शर्त ही खो गई। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई नया मकान बनाता है तो एक ढांचा खड़ा करता है, ढांचे के सहारे मकान बना लेता है, फिर मकान बन जाता है तो ढांचे को गिरा देता है। अब तुम्हारा कहीं ढांचे से मोह हो जाए और तुम ढांचे को न गिराओ तो तुम्हारा भवन रहने योग्य न हो पाएगा, ढांचा रहने न देगा। जब भवन बन गया तो ढांचा गिरा देना, जब सीढ़ी चढ़ गए तो सीढ़ी छोड़ देनी। इसलिए पहले से ही अगर ध्यान रहे इस बात का कि साधना को उपयोग तो कर लेना है लेकिन साधना के हाथ में मालिकियत नहीं दे देनी, तो शुभ होता है। दूसरा प्रश्न, संसार को बाजार को छोड़कर अपने को पालो, यह आपने कहा, कृपया बताएं कि प्रेम संसार के बाजार में है या अपने भीतर, और क्या प्रेम का क्षेत्र भीतर और बाहर दोनों तरफ नहीं, समझना पड़े। काम तो बिल्कुल बाहर है, कामना बाहर की तरफ भागती हुई ऊर्जा का नाम है, जिसे भीतर की याद भी नहीं रही, जिसे याद भी नहीं रही कि भीतर जैसा भी कुछ है। कामना बाहर जाती हुई बहिर्मुखी ऊर्जा है, साधना प्रार्थना भक्ति कोई नाम दो, भीतर जाती ऊर्जा है जिसे याद भी न रहा कि बाहर है, जिसे ख्याल भी न रहा कि बाहर जैसी भी कोई चीज है। कामना बाहर प्रार्थना भीतर दोनों अतीय, प्रेम दोनों के मध्य में, दोनों के बीच में, जैसे कोई अपनी दहली पे खड़ा हो, न बाहर जा रहा है न भीतर जा रहा है, छिटक गया हो, जैसे कोई दोनों तरफ देख रहा हो, बीच में खड़ा हो। प्रेम मध्य बिंदु है प्रार्थना और कामना के बीच में, काम हार गया है, प्रार्थना अभी पैदा नहीं हुई, कामना व्यर्थ दिखाई पड़ने लगी, सार्थक का अभी उदय नहीं हुआ, यात्रा जैसे थम गई। प्रेम एक ठिठकी अवस्था है, बाहर जाने जैसा नहीं लगता, हार गए वहां, राख ही राख पाई, मुंह का स्वाद सिर्फ बिगड़ा और कुछ भी ना हुआ, और भीतर का अभी कुछ पता नहीं। एक बात पक्की हो गई, बाहर व्यर्थ हो गया और भीतर के द्वार अभी खुले नहीं, बीच में ठिटक के खड़ा हो गई जो ऊर्जा है वही प्रेम है। अगर तुमने जल्दी ना की प्रेम को प्रार्थना बनाने की तो फिर कामना बन जाएगा। प्रेम के क्षण जब भी आए तो दो ही संभावनाएं, ऊर्जा ज्यादा देर तक ठिटकी ना रहेगी, क्योंकि ठिटका होना इस जगत की व्यवस्था नहीं, कोई ऊर्जा ठहरी नहीं रह सकती, या तो जाएगी बाहर या जाएगी भीतर, जाना पड़ेगा। ऊर्जा यानी गति, गत्यात्मकता, तो एक क्षण को ठहर सकती है, उस ठहरे क्षण का उपयोग कर लो तो प्रेम भक्ति बन जाती है, प्रार्थना बन जाता है, अगर उपयोग न करो तो प्रेम प्रेम फिर कामना बन जाता है, फिर वासना बन जाता है। इसलिए प्रेमी की बड़ी पीड़ा है, और पीड़ा यही है कि बहुत बार ठिटक आ जाती है और फिर ऊर्जा बाहर चली जाती है। प्रेम के बहुमूल्य क्षण का उपयोग करना बहुत थोड़े लोग जानते हैं। जो प्रेम के बहुमूल्य क्षण का उपयोग कर लेते हैं उनके भीतर प्रार्थना का उदय हो जाता है। अब इसे ख्याल लेना, काम अर्थात बाहर, प्रार्थना अर्थात भीतर, प्रेम यानी दोनों के मध्य में, और चौथी अवस्था है दोनों के पार, चौथी अवस्था यानी परमात्मा। इसलिए जीसस ने कहा है कि प्रेम जैसा है परमात्मा, ऐसा नहीं कहा कि ठीक प्रेम ही बस परमात्मा है,
नहीं तो परमात्मा की बात की भी उठाने की जरूरत न रहे। प्रेम जैसा है एक स्वभाव, एक समानता प्रेम और परमात्मा में है। प्रेम दोनों के मध्य में है, परमात्मा दोनों के पार है। प्रेम बाहर और भीतर के बीच में है, परमात्मा बाहर और भीतर के ऊपर है। इस जीवन के हमारे जितने अनुभव हैं, उनमें प्रेम सर्वाधिक सूचक है परमात्मा दशा का। प्रेम ठिठकता है, परमात्मा ठहरा हुआ है। प्रेम क्षण भर को परमात्मा बनता है, परमात्मा सदा को प्रेम है। प्रेम दो दौड़ों के बीच में एक छोटा थोड़ा सा पड़ाव है, थोड़ी सी राहत, थोड़ा सा विश्राम, विराम चिन्ह। परमात्मा पूर्ण विराम है दोनों के पार। परमात्मा की अवस्था में ना तो कुछ बाहर है फिर ना कुछ भीतर है, बाहर और भीतर दोनों परमात्मा में। परमात्मा के बाहर कुछ भी नहीं है, इसलिए परमात्मा के भीतर कुछ है कहने का कोई अर्थ नहीं। परमात्मा ही है, बस परमात्मा है, बाहर भीतर का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उसके बाहर कुछ नहीं है तो भीतर कैसे कुछ होगा, ये द्वंद्व गिर जाता है। प्रेम में भी ये द्वंद्व क्षण भर को ठहरता है, इसलिए प्रेम में थोड़ी सी झलक परमात्मा की है। बस इस जगत में परमात्मा की झलक देने वाली घड़ी प्रेम की घड़ी है। इसलिए तुम चकित होगे अगर मैं ये कहूं कि प्रार्थना भी परमात्मा के उतने निकट नहीं है जितना प्रेम, क्योंकि प्रार्थना फिर एक अति हो गई। बाहर से छूटे तो भीतर को पकड़ लिया, बाहर से भागे तो भीतर को पकड़ लिया। जरूरी है, भीतर को पकड़ना पड़ेगा बाहर से भागने के लिए, एक अति से बचने के लिए दूसरी अति पकड़नी पड़ेगी। और अभी दोनों के बीच में तुम ठहर ना सकोगे, दोनों के बीच में ठहरने का तो उपाय दोनों के पार हो जाना है। लेकिन जब तुम पार हो जाओगे तब तुम पाओगे, अरे प्रेम का जो क्षण भर के लिए विराम आया था, परमात्मा वैसा ही है, शाश्वत होकर, सनातन होकर। प्रेम में जिसकी बूंद मिली थी, परमात्मा उसी का सागर है। वासना में भी तुम हो, प्रार्थना में भी तुम हो। वासना में दृष्टि बाहर की तरफ जा रही है, प्रार्थना में दृष्टि भीतर की तरफ जा रही। प्रेम के क्षण में तुम नहीं होते, पर क्षण बड़ा छोटा है, शायद तुम पकड़ भी ना पाओ, इतना छोटा है, आणविक है, तुम्हारी पकड़ से भी चूक जा सकता है। तो या तो तुम वासना को प्रेम कहते रहते हो, कामना को प्रेम कहते रहते हो जो प्रेम नहीं, या फिर अगर बदले तो प्रार्थना को भक्ति को प्रेम कहने लगते हो। लेकिन प्रेम दोनों के बीच का बड़ा छोटा सा विराम है, ऐसा ही समझो एक श्वास भीतर जाती फिर श्वास बाहर आती। तुमने ख्याल किया, भीतर जाने और बाहर आने के बीच में क्षण भर को श्वास कहीं भी नहीं जाती, पर क्षण बड़ा छोटा है। ख्याल करना उस पर, श्वास भीतर गई, छोटा सा विराम है, तब ना तो भीतर जा रही न बाहर जा रही, फिर बाहर गई, फिर छोटा सा विराम है, न तो अब बाहर जा रही न भीतर जा रही। इस छोटे से विराम को जिसने पकड़ लिया, वही प्रेम के विराम को भी पकड़ने में सफल हो पाएगा। विज्ञान भैरव तंत्र में इस विधि को बड़ा मूल्य दिया गया है। जब श्वास न बाहर जाती न भीतर, जब सब ठहर गया होता है, उसमें ही डूब जाओ, वहीं से तुम द्वार पालोगे परमात्मा का। प्रेम भी ऐसी ही घड़ी है, कामना बाहर जाती है, प्रार्थना भीतर जाती है। प्रेम ऐसी घड़ी है जब तुम न बाहर जाते न भीतर जाते। और मजा यही है कि जब तुम न बाहर जाते न भीतर जाते तो तुम हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम केवल जाने में हो सकते हो, ठहरने में नहीं हो सकते। जब तुम्हारी श्वास ठहर जाती है तब तुम नहीं होते, तुम मिट गए होते। अहंकार रह ही नहीं सकता वहां,
अहंकार के लिए गति चाहिए, अहंकार के लिए सक्रियता चाहिए, अहंकार के लिए कर्म चाहिए। कुछ हो तो अहंकार बच सकता है, कुछ भी ना हो रहा हो तो अहंकार कैसे बचेगा। अहंकार उपद्रव है, इसलिए अहंकारी शांत नहीं बैठ सकता। मेरे पास अहंकारी आ जाते, वो कहते हैं ध्यान करना है, शांत बैठना है, लेकिन बैठ नहीं सकते शांत। अहंकारी शांत नहीं बैठ सकता क्योंकि उसे लगता है ये तो समय व्यर्थ गया, इतनी देर में तो कुछ अहंकार की पूंजी कमा लेते, कोई पद पा लेते, कहीं आगे बढ़ जाते, किसी को धोखा दे लेते, कुछ कर लेते, कुछ होता, ये तो बेकार गया। अहंकार के लिए ध्यान से ज्यादा व्यर्थ कोई चीज मालूम नहीं होती। कुछ व्यर्थ भी कर लेते तो भी कुछ किया तो, जुआ खेल लेते, ताश खेल लेते, किसी से बकवास कराते, कुछ किया तो, थोड़ा साम्राज्य किसी तरह फैलाया तो, लेकिन ध्यान कुछ भी ना किया, खाली बैठ गए। अहंकार के लिए ध्यान एकदम व्यर्थ बात मालूम होती, इससे ज्यादा व्यर्थ कोई बात नहीं। पश्चिम में उन्होंने मजाक बना रखा है कि पूरब के लोग आंखें बंद करके अपनी नाभि को देखते रहते हैं, पता नहीं पागल क्या कर रहे हैं। कुछ करो, ध्यान है होने की अवस्था, अहंकार है करने की अवस्था। दो श्वासों के बीच में जब कुछ भी नहीं होता तब तुम भी नहीं होते। काम और भक्ति के बीच में जब विराम पड़ता है तब भी तुम नहीं होते। ये काल संध्या काल है, रात जब तुम सोने जाते हो, जागरण जा चुका, नींद आई नहीं, क्षण भर को फिर विराम आता है। जब तक तुम न तो कह सकते कि जागे हो, न कह सकते हो सोए हो, आधे आधे मध्य में खड़े, दहरी पर खड़े, बाहर जाना बंद है, बाजार नहीं है, भीतर अभी गए नहीं, बीच में खड़े। फिर संध्या काल आया, उसी संध्या काल में अगर डूब जाओ तो जो पाने योग्य है वो पा लिया जाता, जो होने योग्य है वो आदमी हो जाता है। जीवन में इन संध्या कालों को ही वास्तविक द्वार कहा, इसलिए हमने प्रार्थना को भी संध्या नाम दिया है। लोग कहते हैं संध्या कर रहे हैं, संध्या करने का अर्थ भी नहीं समझते। संध्या करने का अर्थ है किन्हीं दो अतियों के बीच में मध्य को खोज रहे, किन्हीं दो गतियों के बीच में विराम को खोज रहे। सूरज ढल गया, रात नहीं हुई, प्रकाश जा चुका, अंधकार उतरने उतरने को है, बस जरा सी देर है, क्षण भर में चूक जाओगे। प्रेम का क्षण बहुत बारीक क्षण है, तुम श्वास से शुरू करो अगर प्रेम को पकड़ना हो। श्वास का अभ्यास करो, जहां श्वास ठहर जाती है वहीं अपनी आंखों को गड़ाओ और तुम बहुत चकित होगे। अगर तुम उस विराम को पकड़ने में सफल हो गए, श्वास ज्यादा देर तक ठहरी रहेगी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कई क्षण निकल जाएंगे, श्वास ठहरी रहेगी, कई मिनट भी निकल सकते हैं, कई घंटे भी निकल सकते हैं और श्वास ठहरी रहे। अगर तुम्हारा ठीक ठीक हाथ पड़ जाए विराम पर, अगर तुम्हारा संयोग सध जाए विराम से, तो तुम एक ऐसे पारलौकिक दशा में लीन हो जाओगे कि खबर ही न रहेगी कि श्वास लेनी, सब ठहर जाएगा। उस ठहरी दशा को ही हम समाधि सतोरी का क्षण कहते। जब ऐसी दशा तुम्हें स्वाभाविक हो जाए कि जब तुम्हारी मर्जी हो आंख बंद की और उतर गए, सीढ़ियां साफ हो जाएं, द्वार खुला रह जाए, तुम सिद्ध हो गए। फिर तुम बाहर जाओ तो भी तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम भीतर जाओ तो भी भीतर नहीं जा सकते, क्योंकि तुम खो गए। तुम ही ना बचे तो बाहर भीतर भी गया। अब तो जो बचा वही परमात्मा है। कुछ ये जाना कि मिलती थी ना राह, उस प्यारे का मार्ग ना मिलता था। कुछ ये जाना कि मिलती थी ना राह, बंद की आंखें
तो रास्ता खुल गया। आंख का बंद हो जाना अर्थ क्या है? आंख तो तुम बहुत बार बंद करते हो, रास्ता कहां मिलता है? आंख तो तुम अभी बंद कर सकते हो, रास्ता कहां मिलता है? तो जरूर इस आंख से कुछ मतलब ना होगा। आंख तभी बंद होती है तुम्हारी जब कोई कामना नहीं रहती। प्रार्थना भी एक तरह की कामना है, वहां भी मांग जारी है। परमात्मा के मंदिरों में बैठे लोगों के प्रार्थना के बाद फैले हुए हाथ भी वासना के ही हाथ हैं। परमात्मा के सामने झुके हुए सिर भी वासना के ही झुके हुए सिर। कुछ मांग जारी है। अब बाहर का धन नहीं मांगते, भीतर का धन मांगते। मांग जारी है। जहां तक मांग जारी है वहां तक आंख खुली है। जहां तक तुम कुछ सोच रहे हो मिल जाए वहां तक आंख खुली है। जहां तुमने सोचना छोड़ा कुछ मिलने को है, कुछ मिलने का सवाल ना रहा। तुम हो गए जैसे हो, बस उसमें डूब रहे। आंख बंद हो गई, फिर आंख खुली भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंख बंद हो गई। तुमने बुद्ध पुरुषों की मूर्तियां देखी, आंख न तो खुली है और न बंद है, अध खुली। अध खुली प्रतीकात्मक है, उसका अर्थ है न बाहर न भीतर। जरा सी खुली है, नीचे की सफेद पुतली दिखाई पड़ती। इसलिए योग में व्यवस्था है कि ध्यानी जब ध्यान करने बैठे तो इस तरह बैठे कि सिर्फ नाक का अग्रभाग दिखाई पड़ता रहे, बस। इसका मतलब हुआ आंख बस आधी खुली हो, आधी बंद हो। प्रतीकात्मक है, प्रयोजन केवल इतना है कि न तुम भीतर जाओ न तुम बाहर जाओ, बीच में संध्या काल में ठहर जाओ। प्रेम संध्या काल है। तुम कहते हो तुमने प्रेम जाना, प्रेम बहुत कम लोग जान पाते, क्योंकि जिन्होंने प्रेम को जान लिया उन्हें फिर परमात्मा को जानने में बाधा क्या रही? जिन्होंने प्रेम को जान लिया फिर कोई कारण समझ में नहीं आता कि वो परमात्मा को जानने से क्यों वंचित रह गए। ये हो नहीं सकता। जिनके हाथ में कुछ हीरे आ गए उनके हाथ में पूरी खदान ही आ गई। हीरे ही ना आए होंगे, कंकड़ पत्थरों को समझ लिया होगा हीरे, इसलिए खदान नहीं मिली। रामानुज के पास एक आदमी आया और उसने कहा कि मुझे परमात्मा से मिलना है। रामानुज ने उसे गौर से देखा और कहा कि तूने कभी किसी को प्रेम किया? उस आदमी ने कहा इन झंझटों में मैं कभी पड़ा ही नहीं। छोड़ें ये बातें, मुझे तो प्रेम से क्या लेना देना, परमात्मा की खोज। लेकिन रामानुज ने कहा तू थोड़ा सोच, कभी किसी से किया हो प्रेम? किसी से भी किया हो? कोई याददाश्त तुझे आती हो? उसने कहा आप भी कहां की बात कर रहे हैं, मैं परमात्मा की बात करता हूं, आप दूसरा ही विषय छेड़ रहे हैं। मैं साधक पुरुष हूं, विरागी हूं, प्रेम वगैरह की झंझट में मैं कभी नहीं पड़ा। मगर रामानुज भी अजीब, वो फिर पूछे कि फिर भी तू सोच, क्योंकि सारी बात इसी पे निर्भर है। अगर तूने प्रेम का क्षण जाना हो तो फिर परमात्मा की शाश्वतता को भी जान सकेगा। अगर प्रेम की बूंद ही नहीं चखी तूने तो सागर को तू कैसे चखेगा, सागर में तू कैसे उतरेगा? लहर को तो पहचान, फिर सागर को पहचान लेंगे। उस आदमी की समझ में ना आया, वो शायद नाराज ही होकर चला गया। जिनको तुम विरागी कहते हो उनको समझ में कैसे आएगा? जिनको तुम महात्मा कहते हो वो तो प्रेम के दुश्मन बन के बैठे, उनका परमात्मा प्रेम के विपरीत है। मैं जिस परमात्मा की बात कर रहा हूं प्रेम उसका द्वार है। तुम्हारे महात्मा जिस परमात्मा की बात कर रहे हैं वो परमात्मा है ही नहीं, वो सिर्फ प्रेम की शत्रुता है। वो केवल संसार के विपरीत दूसरी अति है। मैं जिस परमात्मा की बात कर रहा हूं वो अति नहीं है, वो बाहर और भीतर दोनों का अतिक्रमण है। वो परम संतुलन की अवस्था है, पूर्ण विराम है। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं कि आप भी परमात्मा की बात करते हैं?
हमारे गुरु हैं वो भी परमात्मा की बात करते हैं, सब एक ही है। मैं उनको कहता हूं इतना आसान नहीं, सब एक ही है कहना इतना आसान नहीं, थोड़ा गौर से समझने की कोशिश करना। शब्द तो वही, मैं भी परमात्मा शब्द का उपयोग करता हूं, तुम्हारे गुरु भी करते होंगे, लेकिन तुम्हें देख के मैं कह सकता हूं कि तुम्हारे गुरु का परमात्मा और ही होगा। प्रेम से भयभीत, प्रेम के विपरीत, प्रेम का दुश्मन। तो तुम्हारे महात्माओं का परमात्मा उनकी इजाद है, असली नहीं। असली परमात्मा तो प्रेम के खेल को खेले चला जाता है, असली परमात्मा तो प्रेम के नए नए रूप रचे जाता है, असली परमात्मा तो कितने रंग लेता है, कितने रूप लेता है, कितने रंगों कितने रूपों में प्रेम का रास रचता है। संसार के विपरीत नहीं हो सकता परमात्मा, संसार के पार हो सकता है, विपरीत नहीं। जो विपरीत है वो तो जब संसार खत्म हो जाएगा वो भी खत्म हो जाएगा, जो पार है वही अतियों के पार बचेगा। परमात्मा साधना नहीं है, सिद्धावस्था है। परमात्मा कोई विधि नहीं है, जैसा कि पतंजलि ने माना है कि परमात्मा विधि है, कि उसके आलंबन को लेकर उसके प्रति समर्पण करके आदमी परम अवस्था को पहुंच जाता है। पतंजलि का परमात्मा विधि है, साधना का हिस्सा है। उसका उपयोग केवल इतना है कि तुम उसके सहारे समर्पण कर दो, मगर ऐसा परमात्मा तो जब तुम सिद्ध हो जाओगे छूट जाएगा। जब तुम सिद्ध अवस्था को उपलब्ध होगे तो ऐसे परमात्मा की क्या जरूरत रह जाएगी, ये तो मार्ग का ही हिस्सा था, ये खो जाएगा। परमात्मा मार्ग नहीं, मंजिल है। परमात्मा दाएं बाएं नहीं। परमात्मा की अगर थोड़ी बहुत झलक तुम्हें मिल सकती है तो मार्ग के ठीक मध्य में मिल सकती है। इसलिए बुद्ध ने अपने मार्ग को मध्यम निकाय कहा है, मध्य में, ठीक बीच में। मगर बीच से भी सिर्फ झलक मिलती है, लेकिन बीच से अतिक्रमण जुड़ा है। उस बीच के बिंदु को तुम खोज लो तो पार जाने की सीढ़ी मिल सकती है। ध्यान रखना, प्रेम से लोग इसलिए वंचित रह जाते हैं कि प्रेम की शर्त ही पूरी करनी कठिन पड़ती। प्रेम की शर्त है क्षण भर को मिटना, क्षण भर को ही सही तिरोहित हो जाना। बेदार राहे इश्क किसी से न तय हुई, सहरा में कैस कोह में फरियाद रह गया। कोई प्रेमी कभी प्रेम का मार्ग पूरा नहीं कर पाया। मजनू जंगल में खो गया, फरियाद पहाड़ों में। प्रेमी कभी पहुंच नहीं पाता, खो जाता है। पहुंचने योग्य कोई बचता ही नहीं, प्रेमी मार्ग में ही गल जाता है और खो जाता है। लेकिन इसी खो जाने में पहुंचना है, जहां तुम खो जाते हो वहीं परमात्मा हो जाता है, जहां तुम मिटते हो वहीं वो घनीभूत होता है। तुम सिंहासन खाली करो तो ही उसकी संभावना है कि वो तुम्हारे सिंहासन पर विराज सके। तुम अगर बैठे रहे सिंहासन पर, अवकाश कहां, स्थान कहां? परमात्मा को बुलाते हो, तैयारी कहां है तुम्हारी? कहां बिठाओगे, कहां उसे विराजमान करोगे? अहंकार तो रोए रोए में भरा है, मैं का भाव तो श्वास श्वास में समाया है। जगह कहां बची है तुम्हारे भीतर? जगह खाली करो। प्रेम का अनुभव उन्हीं को हो पाता है जो अपने को डुबाने मिटाने को राजी है। जो डूबते हैं, ये नदी कुछ ऐसी है कि वे ही केवल पहुंचते। जो डूबे वे बचे, जो बचे वे डूबे। अगर किनारे पर पहुंचना हो तो मझधार में डूब जाना ही उपाय है। ठीक है ये पंक्तियां, बेदार राहे इस किसी से न तय हुई, ये प्रेम का रास्ता कौन कब पूरा कर पाया? इसका ये कारण नहीं कि रास्ता लंबा है, इसका ये कारण नहीं कि रास्ता बहुत बड़ा है इसलिए लोग पूरा नहीं कर पाए।
इसका कारण कुल इतना ही है कि ये रास्ता ऐसा है कि इसे पूरा करने वाला बीच में खो ही जाए तो ही पूरा होता है। पूरा होने का एक ही अर्थ है कि बीच में ही खो जाए, अगर पहुंच जाए दूसरे किनारे तो रास्ता खो ही गया, पूरा हुआ ही नहीं। जो पूरा नहीं कर पाते, जो स्वयं इसको पूरा करने में पूरे हो जाते, वे ही केवल पहुंचते। सहरा में कैश, कोह में फरियाद रह गया, सभी प्रेमी कहीं न कहीं खो गए, कोई रेगिस्तान में, कोई पहाड़ों में, कोई प्रार्थनाओं में, कोई साधनाओं में, कोई मंदिरों में, कोई मस्जिदों में, सभी प्रेमी कहीं न कहीं खो गए। जहां खोए वहीं घड़ी उस परम सौभाग्य की, परम आशीष की, परम प्रसाद की। तीसरा प्रश्न एक उलझन है, यदि ठीक समझें तो उसे स्पष्ट करने की कृपा करें। भगवान बुद्ध और आप दोनों कहते हैं ध्यान से उपलब्ध आनंद को बांटो, ध्यान को बांटो, और दूसरी ओर ध्यान के अर्जन को गुप्त रखने कर छिपाकर रखने की बात भी कही जाती है। निश्चित ही दोनों बातें कही जाती हैं, क्योंकि दोनों बातें सही है, उनमें विरोध नहीं। विरोध दिखता हो तो केवल आभास है। ध्यान मिले तो बांटो, लेकिन ध्यान जब तक न मिला हो तब तक संभालो और छिपाओ। होगा तब तो बांटोगे, जल्दी बांटने की मत करना। अक्सर नहीं होता तो भी बांटने की आकांक्षा पैदा हो जाती। उपदेश देने का बड़ा रस है, किसी को समझाने में ज्ञानी होने का मजा आ जाता है, किसी को बताने में, चाहे तुम्हें पता हो या ना हो, थोड़े क्षण को आभास होता है कि तुम्हें पता है। इसलिए तो दुनिया में सलाह है इतनी दी जाती है, लेता कोई नहीं। कितने उपदेश दिए जाते हैं, कौन लेता है? उपदेशक पीछे घूमते हैं तुम्हारे, पकड़ पकड़ के समझाते हैं। उपदेशकों से बच के निकलना मुश्किल है, उन्होंने सब राह रास्ते रोक रखे, जहां से जाओ वहीं वो मौजूद है। मुक्त हस्त ज्ञान बांटते, मुफ्त देने को तैयार है, मुफ्ती देने को तैयार नहीं, साथ में कुछ प्रसाद भी देने को तैयार है। लो भर, फिर भी कोई लेने वाला दिखाई नहीं पड़ता। ध्यान रखना, बांटना कहीं अहंकार से ना निकलता हो, करुणा से निकले तब बात और, पर करुणा तो तब होगी जब ध्यान सघनीभूत होगा, जब ध्यान एक मेघ बन जाएगा। बुद्ध ने इसलिए उसे मेघ समाधि कहा है। जब एक घने मेघ की तरह, सघन मेघ की तरह वर्षा से भरे हुए तुम हो जाओगे, उसके पहले तो बूंद बूंद मेघ इकट्ठी करता है, इकट्ठा हो जाए तो ही बरस सकता है। मां गर्भवती हो, 9 महीने तक गर्भ को संभाले तो ही जन्मदात्री हो सकती है। बिना गर्भवती हुए, बिना 9 महीने संभाले बच्चों को जन्म देने की कल्पना करने मत उलझ जाना, इससे धोखा पैदा होगा। इससे कोई और धोखे में ना पड़ेगा, तुम ही धोखे में पड़ोगे, और खतरा है कि कहीं तुम दूसरों के जीवन को कोई नुकसान न पहुंचा दो, क्योंकि बड़ी बारीक बड़ी नाजुक बात है। इससे तो जब तुम ठीक से जान ही लो तभी किसी को जनाना, जब तुम्हारे पैर इस भूमि पर मजबूत जम जाए, जब तुम्हारी जड़ें इस भूमि में पूरी फैल जाए, तभी तुम किसी को समझाना। तो बुद्ध ठीक कहते हैं, बांटो, पर हो तब बांटोगे ना। सूफी फकीर भी ठीक कहते हैं कि संभालो, क्योंकि संभालोगे तभी तो होगा ना। संभालना पड़ेगा बहुत दिन, वर्ष वर्ष, जन्म जन्म, जब तुम्हारे भीतर घना हो जाएगा तो बरसेगा। जरूरत है पहले संभालने की, पहले तुम्हारे पास हो, तुम्हारा दिया जलता हो तो तुम किसी और का दिया जलाने जाना, अपना दिया जलता ही नहीं, वहां बाती बुझी पड़ी है, और तुम दूसरों के दिए जलाने निकल पड़ते हो। इस भ्रांति में मत पड़ना,
बड़े छिपा के रखना जो भीतर आ रहा है। जिस दिन होगा उस दिन तो खबर मिलनी शुरू हो जाएगी। जब फूल खिलता है तो हवाओं में गंध उठ जाती। जब तुम्हारे पास होगा तो तुम छिपा के भी छिपा ना पाओगे। जिनको भी तलाश है, जिनको भी प्यास है, जिनको भी जुस्तजू है, खोज है, वे दूर से खींचे चले आएंगे। पहाड़ और समुन्दर भी उनके लिए बाधा ना बनेंगे। जिन्हें प्यास नहीं, जिन्हें खोज नहीं, वे पास बैठे भी वंचित रह जाएंगे। तुम चिंता मत करना, पहले तो तुम अपने को भर लो ऐसा लबालब कि तुम्हारे ऊपर से बहने लगे। फिर जिनको प्यास है वो खोजते चले आएंगे, वे सदा ही खोज रहे हैं। और तब तुम मुक्त हस्त बांटना, बांटोगे ही, बांटना ही पड़ेगा।

0: नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। ओम शांति। याद होगा कि ओम शांति का ये एस्पेक्ट क्या है। कहीं ना कहीं हर बार हम ये अपने आप को याद दिलाते हैं कि मैं वो शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आगे बढ़ते हैं, रिश्तों को खंगाल रहे हैं। हमने पेरेंट चाइल्ड जो एस्पेक्ट है उसके कई आयाम देखे इस पूरी श्रृंखला में। हम पहुंचे थे इन लॉस तक। इन लॉस एक ऐसा नाम जो शिवानी जी ने कहा था कि बहुत ऑफिशियल लगता है, लेकिन उसे भी एक सुंदर स्वरूप दिया जा सकता है। आगे बात को बढ़ाते हैं और हर बार की तरह हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अगर हम पिछली कड़ी की बात करें तो इन लॉज और डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ का जो एस्पेक्ट था उस पर हम बात कर रहे थे कि किस तरह से कितने सारे रॉन्ग बिलीफ लेकर हम इस प्यारे से खूबसूरत से रिश्ते को हमेशा एक नेगेटिविटी के साथ जोड़ते हैं और अल्टीमेटली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमने सफ़र ही करना है। एंड देन यू हैव गिवन अस द मंत्रा कि सफ़र नहीं को एक्सेप्ट नहीं करना, लोगों को एक्सेप्ट करना है। इसको थोड़ा और डीप में जाते हैं कि व्हेन वी आर इन द सिचुएशन, एक तरफ मेरी ज़िंदगी है, मैं हूँ, काम पे जाना है, सब कुछ है, दूसरी तरफ मुझसे उम्मीदें हैं इन लॉस की, तो वो मैं एक्सेप्ट कैसे करूँ, कैसे मैं उनको अपनी बात समझा पाऊँ और कैसे मैं उनको एक्सेप्ट कर पाऊँ, ना कि सिचुएशंस को और सफरिंग्स को।
1: एक्सेप्टेंस संकल्पों में है, यू नो वी नीड टू जस्ट ट्राई दिस आउट वंस। हमें कई बार लोगों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेट्स से इन लॉज से है या उन्हें डॉटर इन लॉ से है, कि कोई आदत नहीं पसंद है, या वो ऐसे ही बोलते हैं, या वो ऐसे ही ताने देते हैं, या वो हमारे से बात ही नहीं करती है। ईदर वेज 1, 2, 3 वी हैव अ लिस्ट कि मुझे ये बातें इनके बारे में पसंद नहीं है। अब हमारे पास दो चॉइस है, सोचते रहे, सोचते जाए ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे क्यों हैं, ये चेंज क्यों नहीं हो सकते, ये कब चेंज होंगे, नेगेटिव।
0: और सोचते भी नहीं है, हम बोल रहे होते हैं सारे लोगों से, फोन पे बात यही कर रहे होते हैं, जो लोग मिलते हैं अपने दोस्तों से, अपनी माँ बाप से, बहन से, सबसे यही बात है।
1: एंड इट्स वेरी आयरोनिकल कि हम एक तरफ से बोल रहे होते हैं लेकिन मैं तो उसको बहुत प्यार देती हूँ, लेकिन वो ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, यू नो उसकी सारी अवगुण की पूरी लिस्ट रेडी हो जाती है। तो हम जितना ये डिस्कशन मोड में भी आते हैं, जितने लोगों से हम बात करते हैं इसके बारे में और डिस्कस करते हैं नेगेटिविटी को, तो हम एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। तो सफरिंग दूसरा हमें नहीं दे रहा, हम खुद ही इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, और जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो सबसे पहले हमें मिलती है, दूसरा हमें नहीं देता है। जितना उसके बारे में हम इस तरह से बोलते हैं, सोचते हैं, आई एम क्रिएटिंग ऑल दैट, एंड वो अक्यूमुलेट हो रही है मेरे अंदर। और जब दूसरा कोई छोटी सी भी गलती करता है, दैट्स अ ट्रिगर, यू नो बस छोटी सी की,
0: हम ज्वालामुखी के दहाने पे बैठे होते हैं, वो पट पर,
1: क्योंकि वो ज्वालामुखी लेकिन हमने खुद क्रिएट किया था, और फिर शायद हमें बुरा लगेगा बाद में कि हमने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, हम इतना एफर्ट तो करते हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर, फिर मैंने आज कैसे टोक दिया, या मैंने क्यों ऐसे बोल दिया। उसका रूट ये है कि हमने इतना सारा क्यों सोचा उनके बारे में, ये सारा जो बिल्डअप कर दिया था वो कहीं ना कहीं तो बर्स्ट होकर बाहर निकल आता है। तो जैसे ही कोई उसको ट्रिगर मिलता है, या वो खुद बहू है या इन-लॉज है, या किसी और ने कुछ बोल दिया, तो वो सारा बर्स्ट होके बाहर आ जाता है। एक दिन के लिए सिर्फ, लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं, एक दिन के लिए सिर्फ ट्राई करके देखें कि यस, इनके अंदर ये संस्कार है। लेट इट बी द टफेस्ट संस्कार, लेट इट बी द संस्कार यू डोंट लाइक एट ऑल, आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं है उसके अंदर, लेकिन इनके अंदर ये संस्कार है। दो चॉइस, सोचते रहे, बोलते रहे, वर्णन करते रहे, परेशान होते रहे। सेकेंड चॉइस, इनके अंदर ये संस्कार है, फुल स्टॉप, एंड आई हैव टू एक्सेप्ट इट।
0: आई हैव टू,
1: दैट्स ओके, यू नो इनिशियली बिकॉज मे बी इट्स टू चैलेंजिंग फॉर अस के आई लाइक द संस्कार, यू नो दैट इज सेइंग के नहीं, प्रैक्टिकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है शायद, बट इनिशियली मे बी इट विल हैव टू बी, I have to accept it. What do I choose for myself? Pain and turmoil या comfort? हम accept करके, ज़्यादातर हम सोचते हैं कि अगर हमने उनको accept कर लिया तो जैसे कि हम उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं
0: और वो मुझ पर हावी हो जाएंगे, एक संस्कार नहीं, उसके बाद और कितनी सारी और बातें मुझ पे थोपने लग जाएंगे। अभी से ही मैं मना कर दूं, शुरू में ही नहीं लूं, नहीं तो देवल
1: देखो। लेकिन एक्सेप्ट करना मतलब अपने ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान करना। जैसे हम ट्राई करके देखें, बिकॉज वी ऑल एक्सपेरिमेंट दिस, कई बार हम किसी की कोई बात को लेकर कई दिनों तक परेशान रह सकते हैं, क्यों ऐसा बोला, क्यों ऐसा बोला, बार बार ऐसा बोलते हैं, बार बार ताने देते हैं, एंड देन वन डे यू रियलाइज के सो मच ऑफ एनर्जी वेस्टेज, सो मच ऑफ टाइम वेस्टेज। ओके, दे आर लाइक दैट, बट उनके अंदर बहुत सारी और भी क्वालिटीज है, बट दिस पार्ट आई डोंट लाइक, बट देन इट्स देयर, फुल स्टॉप। द मिनट यू विल से फुल स्टॉप इंटरनली, जस्ट ट्राई इट आउट, इट रियली पुट्स अ फुल स्टॉप। यू नो, इसकी माइंड की जो पावर है ना, हम बहुत ज़्यादा उसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। उसके अंदर इतना पोटेंशियल है, हम जैसे चाहे मोल्ड कर सकते हैं अपने आप को, अपनी स्थिति को, एंड दैट्स वाई रिलेशनशिप्स में अगर हम 20 साल से भी किसी के लिए बिटर सोच रहे हैं, आज एक थॉट लगेगी सिर्फ उसको ख़त्म करने में, हमें लगता है पता नहीं पूरी उम्र ना लग जाए उसको ठीक करने में। इट्स जस्ट वन थॉट, इट्स जस्ट वन थॉट।
0: एंड आई थिंक सिस्टर शिवानी, उससे पहले ये एक्सेप्ट करना भी बहुत जरूरी है कि दिस इज अ रिलेशनशिप विच विल बी विद मी लाइफ लॉन्ग, यू नो, इवन इफ आई एम विद देम और नॉट। हम ये भी नहीं एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हम उसको बोझ मान के हम ये सोचते हैं कि अगर हम अलग हो जाएंगे तब तो हम दूर हो जाएंगे उनसे, तब हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट देन वो नेगेटिविटी तो कंटिन्यूड रहती ही है। एंड आई हैवन सीन एनी डॉटर इन लॉ मूविंग अवे फ्रॉम द इन लॉज एंड नॉट थिंकिंग अबाउट,
1: राइट, बिकॉज वो एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है ना, एंड वो सिर्फ इन लॉज से ही नहीं, फिर हमें हस्बैंड से भी मिलेगी, तो वो सारी एनर्जी हमारी तरफ ट्रैवल होगी, तो फिर माइंड कंफर्टेबल कैसे रहेगा? अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो हमारे तरफ से उनके लिए कोई एनर्जी ट्रैवल नहीं करेगी, तो ऑटोमेटिकली अगर वहाँ से कुछ आ भी रहा है, धीरे धीरे फिनिश हो जाएगा, क्योंकि हो जो हम भेज रहे थे उसी का रिफ्लेक्शन वापस आ रहा था। इट विल स्टॉप, दिस इज अ कार्मिक कनेक्शन लाइक एवरी रिलेशनशिप। अब उसको एक डेट बनाना या उसको एक ब्यूटिफुल कनेक्शन बनाना, ये मेरी चॉइस है। तो अगर कोई बातें हैं भी घर में, हमें एक दूसरे की बिल्कुल पसंद नहीं है, सबसे पहली चीज़ तो एक्सेप्ट के यूनिक इंडिविजुअल है, यूनिक इंडिविजुअल है, एक अलग आत्मा है, अलग फैमिली से आए हैं, अलग सेटअप से है। आज हमारी अपनी बेटी के साथ कितने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जबकि वो बचपन से हमारे फैमिली के सेटअप में है, फिर भी आज एक बेटी कहती है कि मुझे आपकी ये वे ऑफ थिंकिंग पसंद नहीं। वो तो एक नया अलग सेटअप से आए हैं, so why can't I understand कि you know she is going to come with her different set of thoughts, different set of beliefs, तो वो acceptance तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितना हम internally accept कर लेंगे, आप पाएंगे कि वो बहुत easily set हो जाएंगे, लेकिन जितना negative energy travel करेगी वो हमारे,
0: और ऊपर से चाहे जितने भी अच्छे बने रहे, चाहे जितना भी सर ढक के रहे या जितने भी हम पैर छूले, these are the aspects which actually all of us do, लेकिन अंदर से वो continuous, again I can understand कि अंदर का conflict जो है, अंदर की नेगेटिविटी।
1: बाहर आपको बहुत ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा प्लीज करने के लिए, अंदर से अगर एक्सेप्टेंस हो कि जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, एंड फिर अगर आप वो एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी क्रिएट कर देंगे, और फिर अगर आप कुछ शेयर भी करेंगे ना कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, आपने उसको शेयर करने से पहले आपने बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी ऑलरेडी ट्रांसमिट कर दी है, द अदर पर्सन इज विलिंग टू लिसन। अभी क्या होता है, अभी भी हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करें, लेकिन हमने ऑलरेडी इतनी नेगेटिव एनर्जी ट्रांसमिट करती है कि वो व्यक्ति ऑलरेडी थोड़ा सा विथड्रॉन है एंड डजंट वांट टू लिसन टू मी।
0: एंड इन फैक्ट उनके अपने संस्कार भी तो है, अपना पूरा रॉन्ग बिलीफ के साथ जो चल रहा है। दिस इज अ ग्रेट एक्सपेरिमेंट, यू नो, एक दिन के लिए,
1: एक दिन के लिए करना है, एक दिन के लिए भी नहीं तो एक घंटे के लिए करके देखें। अगर किसी को एक दिन भी बहुत भारी लग रहा है, सिर्फ एक घंटा ट्राई करें कि मुझे उस बारे में नहीं सोच के, आई विल जस्ट से फुल स्टॉप, आई एक्सेप्ट।
0: आई थिंक इसमें सिचुएशन चेंज हो या ना हो, आई थिंक यू
1: सिचुएशन, बट देन दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट। सी, रिलेशनशिप इज नॉट विद द अदर पर्सन, रिलेशनशिप इज फर्स्ट विद योरसेल्फ। हर्ट दूसरे से नहीं मिल रहा है, सफरिंग दूसरे से नहीं मिल रही है, इसी तरह फीलिंग गुड भी दूसरे से नहीं मिलने वाला है। आई हैव टू क्रिएट इट, बट देन व्हेन आई एम फीलिंग गुड, it automatically travels, and the whole environment of the house will change.
0: I can really feel it, you know, that it can happen.
1: And ye bhi nahi soche ki wo kare pehle.
0: See, whoever is awakened,
1: जो पहले एक थॉट सिर्फ क्रिएट कर ले कि हाँ ठीक है, पहले अगर हो सकता है पास्ट में कोई आर्ग्यूमेंट्स भी हुई हो, कोई ऊपर नीचे बात भी एक दूसरे से कही हो, द माइंड हैज द पावर टू फॉरगेट. हम कहते नहीं, हम कभी नहीं भूल पाएंगे कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया. माइंड हैज द पावर, जस्ट से इट.
0: हम भूलना नहीं चाहते,
1: हम भूलना
0: बार,
1: नहीं चाहते
0: बार याद दिलाते,
1: हर चीज तो वो एक थॉट की है. हम भूलना नहीं चाहते, हम फॉरगिव करना नहीं चाहते. जिस दिन हमारे अंदर वो डिजायर आ जाएगी कि आई वांट टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, वन थॉट एनीवन कैन ट्राई दिस राइट नाउ, कि वन थॉट कि अभी तक जो हुआ फुल स्टॉप, एंड दिस यू आर नॉट डूइंग फॉर द अदर पर्सन. दैट्स द टॉप मोस्ट थिंग. क्योंकि हम सोचते हैं हम औरों के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसका बेनिफिट तो मुझे होने वाला है और मेरे इमीडिएट फैमिली को होने वाला है. तो व्हाई नॉट डू इट फॉर एवरीबॉडी? व्हाई डू आई वांट टू क्रिएट अ लाइफ ऑफ पेन व्हेन आई कैन क्रिएट अ लाइफ ऑफ हैप्पीनेस?
0: चॉइस एक्चुअली, यू नो, लेट्स ट्राई इट आउट. कि एक घंटा या एक दिन कोशिश ये करें कि अपने लिए एक एफर्ट करके देखें कि जो जैसा है उसे एक्सेप्ट करें. फॉरगिव करने से पहले फॉरगेट करना जरूरी है. माफ तो बाद में करेंगे, पहले भूलना बहुत जरूरी है. सिस्टर शिवानी, यहाँ से एक और मोड़ की तरफ बढ़ते हैं कि वर्किंग वुमेन है, वर्किंग बहू है, बच्चा अब आपके पास, इन लॉज के पास छोड़ रहे हैं. फेट है भी नहीं भी, थोड़ा सा कुछ हो जाए, इट्स अ मेजर मेजर प्रॉब्लम. आपके पास छोड़ के जा रहे हैं, आपको ध्यान रखना ही है. दोनों तरफ की प्रॉब्लम्स है. मेरे पास छोड़ जाती है, मैं मुझसे संभलती नहीं है, बच्चा मेरी अब उम्र हो गई है, लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, यू नो. तो मैं नौकरी करूं या बच्चे संभालूं? तो नौकरी भी तो आपके लिए कर रही हूं, यू नो. लॉट ऑफ दीज थॉट्स, दीज कमेंट्स कीप ऑन कमिंग. व्हाट हैज टू बी डन, यू नो, जब बच्चा छोड़ा जा रहा है, अपने आप जो औलाद को उनके पास छोड़ के जा रहे हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, क्या पूरा थॉट रखें?
1: आई थिंक जब आप छोड़ कर जाते हैं, वन क्रिएट द थॉट, एक्चुअली रियलिटी, यू शुड नॉट हैव टू क्रिएट इट, कि यू आर लीविंग योर चाइल्ड इन द सेफेस्ट हैंड्स इन द वर्ल्ड. इससे ज़्यादा सुरक्षित वो बच्चा कहीं और नहीं हो सकता था. इससे ज़्यादा बेस्ट उसका ध्यान कहीं और नहीं रखा जाएगा. बिकॉज ग्रैंड पेरेंट्स आर पेरेंट्स, यू नो, देर इज़ नो डिफरेंस. हाँ, अगेन वो चीज़ है कि मेरा वे ऑफ ब्रिंगिंग अप डिफरेंट है, इनका वे ऑफ ब्रिंगिंग अप डिफरेंट है, बट देन अगेन एक्सेप्ट कि इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी डिफरेंट. कोई दो लोग का तरीका हमेशा डिफरेंट होगा. लेकिन हम छोड़ भी देते हैं, लेकिन साथ साथ ग्रम्बल भी करते हैं कि ये तो इस तरह से करते हैं, या ये मेरे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, या ये खिलाते हैं जबकि बच्चों को ये खिलाना चाहिए, ये इस तरह के कपड़े पहन. मतलब हर छोटी छोटी बात में कितना ज़्यादा नोक छोक चलती रहती है. एंड एक्चुअली अगर देखा जाए तो द डॉटर इन लॉ शुड बी सो ग्रेटफुल, यू नो, यू शुड रियली बी सो ग्रेटफुल टू योर इन लॉज के दे आर लुकिंग आफ्टर योर चिल्ड्रन. बिकॉज इट्स एज गुड एज यू आर नॉट देयर बट यू आर देयर. क्योंकि एक माँ का जो प्यार बच्चे को मिलना चाहिए वो उसे ग्रैंड पेरेंट्स से मिल सकता है और मिलता ही है. तो इस

0: परिवर्तन लाना चाहें, दे विल बी
1: In
0: मोर
1: fact,
0: देन
1: I think it
0: रेडी.
1: has to be with a positivity.
0: यू नो, सारी मूल बात उस इंटेंशन पर आ जाती है कि अंदर की भाव और भावना कैसी है. जहां वहां नेगेटिविटी है, बाहर आप कितना भी एफर्ट कर लो, रिजल्ट नहीं मिलेगा.
1: Thought has to be actually positive. उस व्यक्ति के पास आते हैं जो कहा जाता है कि सबसे ज्यादा परेशानी में भी आता है पूरे रिश्ते में, और उसको ही बैलेंस क्रिएट करना चाहिए, एंड दैट इज द हस्बैंड. एक तरफ वाइफ है, एक तरफ मदर है. मतलब बेचारे फादर इन लॉ तो बाद में आते हैं, जैसे मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, उनके बीच के दो पलड़ों में वो कई बार पिस जाता है कहा जाता है, कई बार उसको बैलेंस क्रिएट कर पाता है. व्हाट हैज टू बी हिज थॉट प्रोसेस, यू नो,
0: अगेन
1: व्हाट हैपेंस विद हिम आल्सो.
0: आई थिंक अगेन बिलीफ है, लेकिन एक हो जाता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर उस आत्मा पर पड़ता है जो ये दो तरफ से, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और एनर्जी जो ट्रैवल कर रही है उन दोनों के बीच, वो कहीं ना कहीं शायद उसके थ्रू होते हुए गुजरती है, क्योंकि टारगेट वो है. यू नो, एक तो दोनों तरफ से खिंचाव है,
1: दोनों तरफ से रिलेशनशिप बिकॉज उसके कारण है,
0: क्योंकि एक रिलेशनशिप है जो हमारा फाउंडेशन था अब तक के जीवन का, और एक रिलेशनशिप है जो हमारे आगे का जो जीवन है उसका फाउंडेशन है. तो कहीं ना कहीं दोनों रिलेशनशिप्स इतने इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन दोनों के बीच में कहीं हम पहले पुल्ड हो जाते हैं, हम में एक बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते. इसमें भी प्रिटेंशन बहुत ज़्यादा आ जाती है, इस रिलेशनशिप में भी, कि यहाँ पे भी टाइम देना है, यहाँ पे भी टाइम देना है. बट इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स मोर अबाउट इंटरनली हाउ आई एम फीलिंग. इफ आई रियलाइज दैट, यू नो, आई डोंट नीड टू डिसाइड कि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देर इज़ नेवर अ कॉम्पिटिशन. यू नो, हमेशा हम रिलेशनशिप्स में कंपटीशन क्यों क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए.
1: एक और लड़के के साथ प्रॉब्लम जो आती है कि दोनों ही अपनी अपनी कंप्लेंट्स लेकर उसके पास पहुँचते हैं.
0: हाँ, दैट्स व्हाट, सो वो सारा प्रेशर अक्यूमुलेट होता है ना. तो वन इज, आई थिंक व्हाट द बॉय कैन डू इज लेट देम सॉर्ट इट आउट अमंगस्ट देमसेल्व्स, उन दोनों को करने दें. एंड दूसरा व्हाट ही कैन डू इज, क्योंकि वो एक कॉमन लिंक है दोनों के बीच में, और वो शायद अपनी पत्नी को और माँ को, दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानता है और दोनों की विशेषताओं को बहुत अच्छी तरह से जानता है. तो वो हमेशा, अगर द मदर कम्स टू हिम विद कंप्लेंट, लिसन टू द कंप्लेंट बट शेयर ऑल द गुड क्वालिटीज अबाउट योर वाइफ, एंड टू द वाइफ शेयर ऑल योर गुड क्वालिटीज अबाउट द मदर, बिकॉज इट्स एक्चुअली जैसे कि आपने उन दोनों का संबंध जोड़ना है. You know, you are the bridge, तो दोनों को जानते हैं, तो आप दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाइए बार बार. और हर रोज जब भी वो उनकी कोई कमी बताते हैं तो आप कमी को समझ लीजिए, लेकिन उनका पर्सपेक्टिव बताने की कोशिश कीजिए. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, विद दैट पॉजिटिव एनर्जी, नॉट विद नहीं आप तो रॉन्ग हो, या आप हमेशा क्रिटिसाइज कर रहे हो. द मोड विल नॉट बी ऑफ क्रिटिसाइजिंग, बट इट विल बी ऑफ एक्सेप्टेंस एंड शेयरिंग. एंड फिर move out of the space, let them create the relationship together. हम कई बार ये, the boy tries कि दोनों को थोड़ा सा,
1: हाँ, सामने ही आने दो, क्योंकि क्यों?
0: You know, I don't know whether that's a very healthy sign. कि दोनों को दूर रखते हैं, ठीक है, इनसे जाके अलग बात कर ली, इनसे जाके अलग बात कर ली. ये नहीं कोशिश करते कि वो दोनों जुड़ जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है अगर नजदीक आते हैं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट है. No, it will not be a conflict. It could be a very beautiful relationship. So make that effort of them coming closer. And again, agar aap bahut zyada pressure feel kar rahe hain, then you meditate first. See, meditation is something that's going to help everyone.
1: In fact, it's not just a relationship which happens, you know. It has to be...
0: ये एक relationship है जो develop होता है.
1: Develop किया जाएगा.
0: ये एक develop होता है over a period of time. और इसको जितना right foundation पर हम develop करेंगे, with the thought के हाँ कि ये एक बहुत अच्छा relationship हो सकता है, it will develop. और for the boy, the only care that he needs to take is कि दोनों में से किसी एक side की तरफ ज़्यादा नहीं sway हो जाना. You know, it generally happens, वो वाला aspect सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है of creating the balance. हम definitely दोनों में से एक की तरफ ज़्यादा झुकाव हो जाता है या ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं. तो मेडिटेशन हमारी ये परखने की शक्ति को बढ़ाता है,
1: इंटेलेक्ट को बढ़ाता है,
0: राइट और रॉन्ग डिसीशन लेना, क्योंकि ये इतना क्रिटिकल एस्पेक्ट है कि जब आप एक की बात सुनते हैं तो आप उसी की बात बिलीव करने शुरू कर देते।

0: जाते हैं क्योंकि परखने की शक्ति नहीं है। फिर आप दूसरी तरफ जाते हैं तो उनकी बात सुन लेते हैं, वहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जितना हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी ये परखने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी और निर्णय लेने की शक्ति एंड बैलेंस। यू नो द सबसे बड़ा बेनिफिट राजयोग मेडिटेशन से मिलता है ऑफ बीइंग एबल टू क्रिएट दिस बैलेंस इन लाइफ। तो वो बैलेंस एक बहुत नेचुरल होता जाएगा, आपको एफर्ट नहीं लगेगा।
1: एक और एस्पेक्ट जो जब लड़की एक वो घर छोड़ कर आई है जैसे वो इतने साल अपना मान के ही चल रही थी और यहाँ आते ही एक नया परिवार एक नया रिश्ता वो लोग नहीं छूटते जितना भी हम कहें
0: लेकिन
1: जितने
0: उनको
1: भी
0: छोड़ना ही नहीं है।
1: अच्छा वो नहीं भी छूटते लेकिन उनका भी उतना ही टेंशन मेंटेन्ड रहती है कि वहाँ मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा होगा। द प्रेशर ऑफ द पेरेंट्स द गर्ल्स पेरेंट्स यू नो ऑन द गर्ल ऑन द बॉय एंड ऑन इवन द इन लॉज इज लाइक बिकॉज दे आर अफ्रेड। ये सारा जो है ये कहीं ना कहीं बहुत टेंशन और एक प्रेशर क्रिएट किए रखता है माँ बाप पे भी कि पता नहीं क्या किया है हमने, क्या होगा उसके साथ। वहाँ पे हम ज़्यादा इंटरफियर भी नहीं कर सकते और मुझे लगता है उसकी आड़ में बहुत ज़्यादा इंटरफियरेंस हो भी जाता है
0: एक्चुअली।
1: कहीं ना कहीं वो एक बहुत प्रेशर में रहते,
0: जैसे हमने देखा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में भी वो एक आत्मा है जिसकी अपनी जर्नी है। हम गाइड कर सकते हैं लेकिन जर्नी उनको अपनी लेनी है इवन व्हेन द चाइल्ड वाज विद यू। और अब तो एक डिफरेंट एस्पेक्ट ही हो गया है। कई बार हम बेटी की बात सारी सुनकर उसको एडवाइस देना शुरू कर देते हैं विच इज़ ओके, लेकिन कई बार ऐसे देखा जाता कि वो राइट नहीं होती है एडवाइस क्योंकि हम दूसरे एस्पेक्ट को नहीं देख रहे हैं बिल्कुल। हम उसके साथ सिंपथाइज इतना ज़्यादा कर देते कि कहीं उसको राइट रास्ते पर लेके जाने के बजाय और ही कहीं उनसे विड्रॉ कर देते हैं। तो समहाउ आई पर्सनली वुड फील कि वी शुड नॉट डिस्कस द प्रॉब्लम्स बिकॉज प्रॉब्लम्स तो हैं डेफिनेटली।
1: तो माँ के साथ नहीं करूँगी तो किसके साथ करूँगी? यू नो दिस इज अ क्वेश्चन, इट्स अ बिलीफ विद व्हिच द गर्ल लिव्स।
0: ये भी क्योंकि जितना हम डिस्कस करते हैं एक्चुअली सोल्यूशन सिर्फ हमारे पास है। Nobody else can give me the solution, क्योंकि वो उस परिस्थिति में नहीं है और हर एक का कार्मिक कनेक्शन अपना अपना है। तो यो मेरा कार्मिक कनेक्शन है और मुझे उसको जिस तरह से स्मूथ बनाना है वो पावर मेरे पास है। बहुत ज़्यादा कोई उसमें बहुत हमें गाइड नहीं कर सकते हैं, कोई हमें एडवाइस भी दे दे फिर भी करना तो हमें ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम खुद से उसको करें। जितना हम कम डिस्कस करते हैं उतना हम इजीली सॉर्ट आउट कर पाते हैं। कई बार जो भी हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है नए घर में आके, हम जब उसको डिस्कस करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ तो वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है और उसमें फिर हमें सबकी एडवाइस इतनी सारी मिलती है कि अब और कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि इसको अब कैसे हैंडल करना है। एज फार एज पॉसिबल इफ़ यू कैन डू इट ट्राई एंड हैंडल इट ऑन योर ओन। आप उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें एंड यू पुट इन योर बेस्ट एफर्ट। कोई एक आधी बात पर आपको एडवाइस चाहिए हो वो लेना अलग है, लेकिन हर बात आज ऐसा हो गया, आज ये कर दिया, आज आपको पता है मुझे ये बोल दिया, आप एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। आप वो कर रहे हैं, वो इन लॉज भी कल अपने बच्चों के साथ आपको डिस्कस करेंगे एंड यू आर जस्ट मूविंग अवे। जो हमें लगता है कि हम पेरेंट्स से डिस्कस करके वी आर एक्चुअली मूविंग अवे, अगर हम क्रिटिसाइजिंग मोड में कर रहे हैं। देखो एडवाइस लेना और किसी को क्रिटिसाइज करना, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। इफ वी रियली लुक बैक एट आर लाइफ एंड वी इवैल्यूएट एवरी रिलेशनशिप, हम देखेंगे कि जहाँ भी दूरी आई है उसको हमने खुद से क्रिएट किया हुआ है। हम डेफिनेटली ब्लेम दूसरे पर डाल देते हैं लेकिन उस दूरी को हमने ही क्रिएट किया है बाई डूइंग ऑल दीज स्मॉल थिंग्स, डिस्कसिंग, रिपीटिंग, बार बार उसके बारे में सोचना, औरों के साथ वर्णन करना। फिर बाह्य रीति से हम एफर्ट करते हैं कि इस रिलेशनशिप को ठीक करना एंड देन वी रियलाइज इट डजंट वर्क एंड अंदर इतनी बिटरनेस है, थोड़ा सा बाहर ट्राई करते हैं वर्क नहीं होता तो बहुत जल्दी से गिव अप कर देते हैं कि ये नहीं हो सकता, इससे अच्छा तो बात नहीं करो, अलग अलग रहो। एंड दिस इज वन रिलेशनशिप जहां हम बहुत जल्दी अपने आप को ये ऑप्शन दे देते हैं
1: अलग हो जाओ फटाफट, यू नो दैट्स अगेन यस। बिकॉज वी डोंट वांट टू वर्क ऑन इट, वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि इट विल नॉट वर्क.
0: तो वो बहुत जल्दी, क्योंकि वो एक ऑप्शन है हमारे पास, तो हम बहुत जल्दी उसको अलग कर देते हैं. अगर हमें ये ध्यान रहे कि इस रिलेशनशिप में अगर अच्छी बॉन्डिंग होगी, उसका डायरेक्ट रिजल्ट उस गर्ल की अपने हस्बैंड के साथ के रिलेशनशिप पे होगी. दैट रिलेशनशिप विल ऑटोमेटिकली बी स्ट्रॉन्गर. इट्स अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ दैट. That is also possible. They have to take care of that.
1: In fact, yes, we've actually touched all the aspects of with in-laws and you know daughter-in-law, son-in-law. A small aspect still remains is jab bachcha, jab jaise ab ek mother-in-law hai, daughter-in-law hai, aur unka bachcha, daughter-in-law ka bachcha, grandparents banke. Yahan agar wo working woman hai, bahut baar dekha gaya hai. इन-लॉज का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है, दादा दादी की इतनी बात मानता है, मेरे पास नहीं आता. ये जो अगेन ओनरशिप की बात है, एक पहले लड़के तक ओनरशिप थी कि मेरा हस्बैंड है, मेरा बेटा है, अब ग्रैंड पेरेंट पे भी आ गए. अगेन दिस ओनरशिप प्रॉब्लम इज एक्चुअली अ मेजर प्रॉब्लम इन टुडेज.
0: और कई बार ऐसा हो जाता है जो हम देखते हैं कि द मदर ऑफ दैट लिटिल चाइल्ड वो अपने इन-लॉज के बारे में अपने बच्चों को यू नो नेगेटिव बातें, विच इट्स ट्रू, शी फील्स इट्स ट्रू कि हाँ वो ये इस तरह से गलत है, लेकिन वो एक बच्चे के जीवन की एक बहुत रॉन्ग फाउंडेशन हम खड़े कर रहे हैं. हम बच्चे को अपनी तरफ खींचने के प्रोसेस में उनसे दूर करने की कोशिश करते हैं, और उनसे दूर करने का तरीका है उनकी बुराई करना या उनकी यू नो क्रिटिसाइज करना उनको. लेकिन ये हम बच्चे के लिए एक रॉन्ग अनहेल्दी फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं. एंटिटी है, एक इंडिविजुअल है, एक अलग आत्मा है, जिसका हम सब आत्माओं के साथ एक कार्मिक कनेक्शन है. वो एक प्रॉपर्टी नहीं है जो या तो मेरी हो सकती है या आपकी हो सकती है. दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग थॉट व्हेन वी फील कि या तो आप मेरे ज्यादा क्लोज हो सकते हैं या आप उनके ज्यादा क्लोज हो सकते हैं. नहीं, आई कैन शेयर एन इक्वली ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विद एवरीबडी. आई डोंट हैव टू ऑलवेज बी, यू नो दिस ऑल्सो हैपन्स विद द हस्बैंड, कि या तो आप पेरेंट्स की साइड पे ज़्यादा है या वाइफ की साइड पे ज़्यादा है. नॉट नेसेसरी. वाई कांट इट बी इक्वली नाइस विद एवरीबडी. हमारे 10 फ्रेंड्स होते हैं, समटाइम्स आंट वी जस्ट इक्वली क्लोज टू ऑल ऑफ देम. दिस इज जस्ट लाइक दैट.
1: इन फैक्ट अगेन वी हैव टू रिमेंबर, मदर हैज टू रिमेंबर दैट ग्रैंड पेरेंट के साथ भी तो एक कार्मिक कनेक्शन है ही, उसको कैसे खराब कर सकते हैं.
0: खराब है, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप. इन फैक्ट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करती है बच्चे के रूट्स को. तो इट इज़ अ रिलेशनशिप जिसको इनकरेज करना चाहिए कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बने, क्योंकि बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस ग्रैंड पेरेंट्स का बच्चों पर पड़ता है.
1: सो सिस्टर शिवानी, आज हम इन दो कड़ियों में हमने उस रिश्ते को समेटा है जो, और एक नए रूप से देखने की कोशिश की है, जिसके लिए अभी तक एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये था कि एक्सेप्ट करके बैठे थे कि ये रिश्ता ऐसा ही है. लेकिन अगर हम सचमुच जो बात हमने की है, जो आज एक और एस्पेक्ट आया है कि सफरिंग को एक्सेप्ट ना करके लोगों को एक्सेप्ट कर ले, और जिस तरह के एक्सपेरिमेंटल मोड में आप हमें लेके गई हैं कि एक एक दिन का एक्सपेरिमेंट करा जाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: ओम शांति.
1: ओम शांति.

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूं आपकी कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला। कहते हैं कि शिव में विश्व है और विश्व में शिव है, और हट जाए तो शिव बनेगा, ढल जाए तो इंसान शिव बनेगा, और शिव में लग जाए तो शिव विश्व बनेगा। विश्व के कण कण में शिव का वास है, इसलिए शिव में हर जीव का वास है। तो जब दोस्तों हर जीव में ही शिव का वास है और शिव में ही हर जीव का वास है, तो हमें हर जीव में ही शिव के दर्शन करने चाहिए। इसका अर्थ है कि आप हरेक इंसान में सामने, आपके सामने जो भी है उसमें ईश्वर का दर्शन करें, उसमें आप अपने इष्ट का दर्शन, आप विश्वास रखें कि इसमें भी वही ईश्वर है जो मेरे अंदर है, जिसकी मैं आराधना करता हूँ। मेरे सामने जो कुत्ता खड़ा है उसमें भी वही ईश्वर है, वही आत्मा है जो मेरे अंदर है। ऐसा सोचकर सभी जीवों के प्रति दया भाव रखिए। दुत्कारिए मत, कुछ नहीं दीजिए पर दुत्कारिए मत, ना किसी जीव को ना किसी गरीब इंसान को। अगर कुछ देना चाहते हैं, समर्थ हैं, तो दीजिए, मदद कीजिए, वरना आप ना उपहास उड़ाएं और ना ही उसका अपमान करें। ऐसा करने से आप पाप के भागी होंगे, आपके खाते में पापों की श्रृंखला बढ़ जाएगी, तो आप अपने खाते को बिगाड़िए मत। तो दोस्तों, इस सब का ज्ञान कैसे होगा, ये सिखाता है हमको शिव पुराण। शिव पुराण के सुनने मात्र से ही ये सब ज्ञान हो जाएगा, पढ़ने मात्र से ही ये सब ज्ञान हो जाएगा, आपके अंदर ज्ञान का पौधा अंकुरित हो जाएगा। अब ये शिव पुराण सुनवाने के लिए, आपके इसी ज्ञान वर्धन के लिए, हम अपने स्टूडियो में डॉक्टर लीना सिन्हा जी को हमेशा ही आमंत्रित करते हैं, और आज भी डॉक्टर लीना सिन्हा जी हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: लीना जी, पिछले एपिसोड में आपने हमारे श्रोताओं को बताया कि जब शिव ने विष्णु भगवान के पास देवताओं को भेज दिया कि वही निराकरण करेंगे, आप उनके पास जाओ, तो विष्णु भगवान ने गणों को बुला, रुद्र गणों को, यज्ञों को, देवताओं को बुलाकर उसमें से जो रुद्र थे वो योद्धा, उनको आदेश दिया कि जाकर त्रिपुर नगरों का विनाश कर दो। लेकिन उन्होंने साथ साथ देवताओं को ये भी समझाया कि हम उनको नहीं मार सकते, क्योंकि वो सारे के सारे जो असुर हैं वो शिव भक्त हैं, और जो शिव भक्त हैं, जो शिव का स्मरण कर रहे हैं, उनको तो कोई मार ही नहीं सकता। इसलिए कुछ ऐसा करना होगा कि उनको शिव भक्ति से हटाना होगा, तभी उनका विनाश संभव है, वरना उनका विनाश नहीं हो पाएगा। अब लीना जी, आगे क्या होता है, क्या उनको भक्ति के पथ से हटाया जाता है ताकि उनका विनाश हो सके, या उनको पाप के रास्ते पर अग्रसर किया जाता है, उनमें काम क्रोध मोह लोभ इस प्रकार और भी जो अन्य पाप हैं उनकी ओर अग्रसर किया जाता है, छल कपट साम दाम दंड भेद जो भी देवता अपनाते हैं उनके द्वारा, क्योंकि उनका विनाश तो सम करना ही है, और विनाश संभव तब तक नहीं है जब तक वो शिव भक्त हैं। तो अब इसके बाद क्या होता है, क्या करते हैं देवता, क्या प्रयास करते हैं, वो हम सुनना चाहते हैं
1: मंजू जी। ये रुद्र संहिता के युद्ध खंड का तीसरा अध्याय है, और इस तीसरे अध्याय में देवगणों को विष्णु भगवान समझाना चाहते हैं, वो कार्य करना चाहते हैं देवताओं का, लेकिन समस्या यही है कि त्रिपुरासुर जो है वो शिव भक्त हैं, त्रिपुर नगरी शिव भक्ति से परिपूर्ण है, ओतप्रोत है, तो कैसे वो वध करें त्रिपुरासुर का। तो जब देवगण बड़े दुखी हो जाते हैं, कष्ट में पड़ जाते हैं, तो विष्णु भगवान कहते हैं कि हे देवा, सकला यूयम गच्छत स्वगृहान ध्रुवम, देव कार्यम करिष्यामि यथाम अति न संशय, तान रुद्राद विमुखान नूनम करिष्यामि सुयत्नतः स्वभक्ति रहिता ज्ञात्वा तान करिष्यामि भस्मसात। वो कहते हैं कि
2: हे देवताओं, आप सब अपने घरों को जाइए, मैं निसंदेह अपनी बुद्धि से देव कार्य करूंगा, मैं प्रयत्न से उन्हें रुद्र की भक्ति से विमुख करूंगा, अपनी भक्ति से विमुख जानकर शिव जी उन्हें भस्म कर देंगे। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनि, उनकी आज्ञा को स्वीकार कर कुछ आश्वस्त होकर वे देवता ब्रह्मा द्वारा अनुमोदन पाकर अपने अपने घर चले गए। उसके बाद विष्णु जी ने देवताओं के हित के लिए जो उत्तम उपाय किया और जो सब पापों का नाश करने वाला है उसे आप सुनिए। तो चतुर्थ अध्याय प्रारंभ होता है, रुद्र संहिता के युद्ध खंड का चतुर्थ अध्याय। सनत कुमार उवाच, असृजत् च महातेजा पुरुषम स्वात्म संभवम एकम माया मयम तेषाम धर्म विघ्नार्थ मच्युत मुंडिनम म्लान वस्त्रम च गुम्फि पात्र समन्वितम दधानम पुंजिका हस्ते चालयंतम पदे पदे वस्त्रयुक्तम तथा हस्तम शीयमानम मुखे सदा धर्मेति व्याहरंतम ही वाचा विक्लव या मुनिम। कहते हैं कि उसके बाद महातेजस्वी विष्णु भगवान ने अपने शरीर से उत्पन्न एक माया युक्त पुरुष को उनके धर्म कार्यों में विघ्न करने के लिए उत्पन्न किया। मुंडित सिर वाला, मैले वस्त्र धारण किया हुआ, कंधे में बिना बिने हुए झोले को तथा हाथ में झाड़ू लिया हुआ, पद पद पर उसे हिलाता हुआ, हाथ में वस्त्र लिया हुआ, जिसका मुख सूख रहा है, उस मुनि से व्याकुल वाणी से धर्म ऐसा कहता हुआ वह उस विष्णु को नमस्कार करके उनके सामने खड़ा हो गया। मुंडित सिर वाला था और मैले वस्त्र वाला था और उसके हाथ में जो झोला था वो बिना हुआ झोला था और हाथ में झाड़ू भी था, तो हाथ जोड़कर हरि से वह कहने लगा, शत्रुओं के नाशक पूज्य अच्युत, मैं क्या करूं, आज्ञा दीजिए। हे देव, मेरे क्या क्या नाम होंगे, हे प्रभु, मेरा स्थान कहाँ होगा, उसे भी बतलाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु उसके शुभ वचनों को सुनकर प्रसन्न चित्त होकर इस प्रकार कहने लगे। वो भी भगवान विष्णु के ही अंश थे, तो भगवान विष्णु ने तो माया रची थी कि उन लोगों को, त्रिपुरासुर को कैसे भक्ति रहित किया जाए, तो उस माया के कारण उन्हें उन्होंने मुंडित सन्यासी को प्रकट किया। अब विष्णु भगवान जी कहते हैं, वो क्या कहते हैं, विष्णु भगवान कहते हैं, यदर्थम निर्मितो असि त्वम निबोध कथयामि ते मदंगज महाप्राज्ञ मदरूपस्त्वम न संशय ममांगाश्च समुत्पन्नो मत कार्यम कर्तुम अर्हसि मदीयस्त्वम सदा पूज्यो भविष्यसि न संशय अरिहन्नाम ते स्यात्तु हियान्यानि च शुभानि च स्थानम वक्ष्यामि ते पश्चात् श्रुणु प्रस्तुतम आदरात्। भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम मेरे अंग से उत्पन्न हो, मेरे अंग से उत्पन्न महाप्राज्ञ, तुम निसंदेह मेरे रूप हो, जिसलिए मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है उसे तुम समझो। मैं कह रहा हूँ, मेरे अंग से उत्पन्न तुम मेरा कार्य कर सकते हो, तुम मेरे भी पूज्य होगे, इसमें संदेह नहीं है। भगवान इस रूप में है, जैसे माता धूमावती के रूप में है, माता बगलामुखी के रूप में है, और धूमावती माता ने क्या किया है, भगवान शिव को का ही भक्षण कर लिया। कब किया, जब क्रोध में थी तो उन्होंने भगवान से कहा कि मुझे भूख लगी है, और भगवान तब समाधि में लीन थे, दो बार तीन बार कहीं जब नहीं माने तो उन्होंने शिव को उठाया, शिव को ही खा लिया। तो माता के बहुत सारे रूप है, तो विष्णु भगवान के भी बहुत सारे रूप है। तो विष्णु भगवान ने मुंडित सन्यासी के रूप में उत्पन्न किया, मैले कुचैले वस्त्र वाला भी था वो सन्यासी, लेकिन वो बोल रहे हैं कि तुम महाप्राज्ञ हो, बहुत बुद्धिमान हो, प्रज्ञा है तुम्हारे अंदर, और तुम मेरे लिए भी पूज्य होगे अगर तुम मेरे अनुसार काम करोगे, तो तुम्हारा अरिहन तथा और भी अनेक अच्छे नाम होंगे। अरिहंत बुद्ध,
3: हाँ
2: अरी मतलब शत्रु
3: शत्रु मतलब को मारने वाले,
2: तुम शत्रु को मारने वाले होगे, तथा और भी अनेक अच्छे नाम होंगे, स्थान बाद में बतलाऊंगी, इस समय जो मैं कह रहा हूँ उसे आदर से सुनो। हे मायावी, तुम 16,000 श्लोकों का एक शास्त्र बनाओ जो श्रुति स्मृति और वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध हो, वह शास्त्र अपभ्रंश भाषा में लिखा गया हो, उसका विषय कर्मवाद हो, उसे प्रयत्न से लिखो, उसका प्रचार आगे चलकर होगा। मैं तुम्हें उस शास्त्र निर्माण की शक्ति देता हूँ। अनेक प्रकार की माया भी तुम्हारे अधीन हो जाएगी। परमात्मा हरि के वचनों को सुनकर उस मायावी ने जनार्दन से कहा, मुंडी ने कहा, हे देव, हे प्रभु, मुझे जो करना है उसका शीघ्र आदेश दीजिए। आपकी आज्ञा से संपूर्ण कर्म सफल होगा। उन्होंने कर्म परक शास्त्र लिखने की आज्ञा दी भगवान विष्णु ने, क्योंकि वेद क्या है, ज्ञान के स्रोत हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम शास्त्र विरुद्ध मत वाला शास्त्र लिखो, और जिसमें कर्म की प्रधानता हो, भक्ति की प्रधानता नहीं हो, कर्म की प्रधानता हो, ऐसा शास्त्र तुम लिखो 16,000 श्लोकों से युक्त जो हो, और अपभ्रंश भाषा में हो, संस्कृत में नहीं हो। अपभ्रंश माने संस्कृत से थोड़ा सा हट करके हो, उससे गिरा हुआ। संस्कृत को तो सुसंस्कृत कहा गया, परिष्कृत भाषा कहा गया, विद्वानों की भाषा कहा गया है, तो वो विद्वानों की भाषा नहीं हो, अपभ्रंश भाषा हो, ऐसा तुम करो। अब देखिए, कहते हैं कि सनत कुमार जी ने कहा, ऐसा कहकर विष्णु जी उसे माया शास्त्र पढ़ाने लगे।
4: अच्छा,
2: कहते हैं विष्णु भगवान तो माया भी तो है ही, परम माया भी है और देवताओं का कार्य भी करते हैं। तो विष्णु भगवान ने कहा, इत्युक्त्वा पाठयामा शास्त्रम मायामयम तथा इहैव स्वर्ग नरक प्रत्ययो नान्यथा पुनः। तमुवाच पुनर्विष्णु स्मृत्वा शिव पदाम्बुजम मोहनीया इमे दैत्या सर्वे त्रिपुरवासिना कार्यास्ते दीक्षिता नूनम पाठनीया प्रयत्नतः मदाज्ञया न दोष भविष्यति महामते। वो कहते हैं कि मेरी आज्ञा से तुमको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि तुम गलत काम तो करोगे। गलत काम क्या, भक्ति से दूर करोगे सबको, तो
4: आज्ञा मेरी होगी, क्यों,
2: लेकिन आज्ञा मेरी है। ऐसा कहकर विष्णु जी उसे माया शास्त्र पढ़ाने लगे। स्वर्ग नरक सब यही है और कहीं उसकी प्रतीति नहीं होती। शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके विष्णु ने फिर उनसे कहा कि त्रिपुरवासी इन दैत्यों को तुम मोहित कर दो, प्रयत्न पूर्वक पढ़ाकर तुम इन्हें दीक्षित करो। हे महामती, मेरी आज्ञा से तुम्हें दोष नहीं लगेगा। श्रौत स्मार्त धर्मों का प्रकाश तो निसंदेह होगा ही। हे मुनि, तुम अपनी इस विद्या से उन्हें प्रभावित करो। हे मुंडी, तुम त्रिपुरवासियों का नाश करने के लिए जाओ, तामस धर्म का प्रचार कर उन तीनों पुरों का नाश करो। हे विभु, उसके बाद तुम अपने धर्म के साथ तब तक मरुस्थली में रहना जब तक कलयुग ना आ जाए। अब देखिए, कलयुग लाने के लिए भगवान विष्णु ने बहुत सारे उपाय किए, क्योंकि कलयुग तो आएगा ही तभी जब धर्म का नाश होगा।
4: हाँ।
2: तो वो कहते हैं कि प्रवृत्ते तो युगे तस्मिन वियो धर्म प्रकाश्यताम शिष्यश्च प्रतिशिष्यश्च वर्तनीय त्वया पुनः मदाज्ञया भवद् धर्मो विस्तारम यास्यति ध्रुवम मद अनुज्ञा पुरो नित्यम गतिम प्राप्यसि माम किम एवम आज्ञा तदा दत्ता विष्णुना प्रभु विष्णुना शासना देव देवस्य हृदा त्वान्तर्दधे हरे। कहते हैं कि तुम जब ऐसा करोगे तो क्या होगा, श्रौत स्मार्त धर्मों का प्रकाश तो निसंदेह होगा, लेकिन तुम अपने इस विद्या से उन्हें प्रभावित करो। हे मुंडी, तुम त्रिपुर वासियों का नाश करने के लिए जाओ, तामस धर्म का प्रचार करके तीनों पुरों का नाश करो। हे विभु, तुम उसके बाद मरुस्थली में रहना, कलयुग ना आ जाए जब तब तक, कलयुग के आने पर फिर शिष्य प्रशिष्यों द्वारा अपने धर्म का प्रचार करना। जब कलयुग आ जाएगा तो शिष्य प्रशिष्य आदि करके तुम अपने धर्मों का प्रचार करना, अपने धर्म का। मेरी आज्ञा से तुम्हारा धर्म निश्चित रूप से फैलेगा। मेरी आज्ञा का पालन करने पर तुम मेरी गति को प्राप्त करोगे। सर्व समस्त विष्णु महादेव जी की इच्छा से इस प्रकार हृदय से आज्ञा देकर अंतर्धान हो गए। उसके बाद उस मुंडी ने विष्णु की आज्ञा अनुसार तदनुरूप चतुर शिष्यों को तैयार करके उस मायामय शास्त्र को उन्हें स्वयं पढ़ाया। जैसा यह था वैसे ही वे चार शिष्य भी थे। वे परमात्मा हरि को प्रणाम करके वहां बैठ गए। हरि ने भी हे मुनि, शिव जी की आज्ञा का पालन करने के लिए उन चार शिष्यों से प्रेम से कहा, मेरी आज्ञा से जैसे तुम्हारे गुरु हैं वैसे ही तुम भी हो जाओगे। तुम धन्य हो, तुम्हें निसंदेह सदगति मिलेगी। वे चार मुंडी पाखंड धर्म का आश्रय लेकर हाथ में भिक्षा पात्र और मुख के ऊपर पट्टी बांधे हुए
1: मलिन वस्त्र को धारण करते हुए मौन व्रत धारी प्रसन्न होकर धर्म ही परम लाभ है ऐसा कहते हुए वस्त्र निर्मित झाड़ू को हाथ में लिए जीव हिंसा के भय से धीरे धीरे चलते हुए वे सब भगवान को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करते हुए हे मुनि अपने गुरु के सामने बैठ गए। भगवान ने उन शिष्यों का हाथ पकड़कर उन्हें गुरु को सौंप दिया और प्रेम से उनके नामों का उच्चारण किया। जैसे तुम हो वैसे ही ये भी निसंदेह मेरे ही हैं। तुम सब में प्रथम हो इसलिए तुम्हारा नाम पूज्य है। अब भगवान विष्णु की लीला है ये सब कि क्या क्या वो कर रहे हैं देखते हैं। कहते हैं ऋषिर यति ही तथा कीर्य उपाध्याय इति स्वयं इमान्यपि तु नामानि प्रसिद्धानि भवन्तु वः ममापि च भवद्भिश्च नाम ग्राह्यं शुभं पुनः अरिहन्निति तन्नाम ध्येयं पाप प्रणाशनम् भवद्भिश्चैव कर्तव्यं कार्यं लोकसुखावहं लोकानुकूलं चरतां भविष्यति उत्तमा गति। तो कहते हैं कि आप लोग मेरे भी शुभ नाम को ग्रहण कर सकोगे। सब भगवान विष्णु के ही तो है। तो अरिहन मेरा यह नाम पाप नाशक है अरिहन। तो आप लोग भी संसार को दुख सुख देने वाला कार्य कीजिए लोक के अनुकूल चलने पर आप भी उत्तम गति को प्राप्त करेंगे ऐसा विष्णु भगवान ने उन लोगों को कहा। अब सनत कुमार जी ने कहा। अब सनत कुमार जी क्या कहते हैं कहते हैं तथा प्रणम्य तम माई शिष्य युक्त स्वयं तदा जगाम त्रिपुरम सद्य शिवेच्छा कारिणम मुदा प्रविश्य तत्पुरम तूर्णम विष्णुना नोदितो वशी महामाया विना तेन ऋषिर मायाम तदा करोत नगरोपवने कृत्वा शिष्यैर्युक्त स्थितिम तदा मायाम प्रवर्त्यामास माइनाम अपि मोहिनीम। अब कहते हैं कि तब वह माया भी शिष्यों को साथ लेकर प्रसन्न होकर शिव जी की इच्छा अनुसार कार्य करने वाले त्रिपुर के पास शीघ्र गया। विष्णु द्वारा प्रेरित उस जितेंद्रिय महामायावी ने ऋषि रूप धारण कर माया फैलाई। शिष्यों सहित नगर के उपवन में जाकर वहां टिक कर उसने मायावी पुरुषों को भी मोहित करने वाली अपनी माया फैलाई। हे मुनि शिवार्चन होने के कारण उस नगर में सहसा उनकी माया नहीं चली जिससे यति कुछ उदासीन से हो गए। फिर उसने विष्णु का स्मरण किया और हृदय से उनकी स्तुति की। हृदय से दुखी होकर वह उत्साहहीन होने लगा। उसके स्मरण करते ही विष्णु जी ने शिव जी का स्मरण किया। उनकी आज्ञा पाकर उन्होंने नारद को याद किया। विष्णु जी के याद करते ही नारद जी वहां पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम कर स्तुति की और उनके सामने बैठ गए। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विष्णु ने नारद जी से कहा आप तो सदा लोकोपकार तथा देव कार्य करने में तत्पर रहते हैं। हे तात शिव जी की आज्ञा से मैं कह रहा हूँ तुम शीघ्र त्रिपुर चले जाओ। वहाँ शिष्यों के साथ एक ऋषि वहाँ के निवासियों को मोहित करने के लिए गया है। अब नारद जी क्या है नारद जी की तो यहाँ की बात उधर उधर की बात इधर करना उनका स्वभाव है और चारों लोकों में भ्रमण सभी लोकों में ये भ्रमण करते हैं। तो नारद जी को भगवान विष्णु ने याद किया और नारद जी वहाँ पहुँच गए। अब सनत कुमार जी कहते हैं अब सनत कुमार जी क्या कह रहे हैं वो कहते हैं कि इत्याकर्ण्य वचस्तस्य नारदो मुनिसत्तम गतस्तत्र द्रुतम यत्र स ऋषिर माईनाम वरः नारदो अपि तथा माई नियोगान माईनः प्रभो प्रविश्य तत्पुरम तेन माईनः सह दीक्षितः। कहते हैं कि उनकी इस बात को सुनकर मुनिवर नारद वहां गए जहां वह मायावी ऋषि गया था। मायावी विष्णु भगवान की आज्ञा से नारद जी भी उस नगर में जाकर उस मायावी ऋषि से दीक्षित हुए। तब नारद जी त्रिपुर नगर के स्वामी के पास जाकर कुशल प्रश्न पूछने के बाद उन्होंने राजा से सब कहा। क्या कहा नारद जी ने कहते हैं नारद जी कि कश्चित समागतः चात्र यतिर धर्म परायण सर्व विद्या प्रकृष्टो ही वेद विद्या परान्वितः दृष्ट्वा च बहवो धर्मा नैतेन सदृशा पुनः वयम सुदीक्षिताश्चात्र दृष्ट्वा धर्म सनातनम्।
2: तब इच्छा यदि वर्ते तद धर्मे दैत्य सत्तम तद धर्मस्य महाराज ग्राह्या दीक्षा
0: त्वया।
2: पुनः कहते हैं नारद जी कि आपके नगर में कोई धर्म परायण सभी विद्याओं का ज्ञाता तथा परावेद विद्या में निपुण आया है। हमने बहुत से धर्म देखे परंतु ऐसे नहीं। इसके सनातन धर्म को देखकर हम भी दीक्षित हो गए हैं। हे दैत्यराज उस धर्म में तुम्हारी भी इच्छा हो तो तुम भी दीक्षा ले लो।
1: ये नारद जी किससे कह रहे हैं? त्रिपुरासुर से।
2: सनत कुमार जी ने कहा, महत्वपूर्ण उसकी बात को सुनकर हृदय में आश्चर्यचकित होकर वह दैत्यराज वहां मोहित होकर गया। जब नारद ने दीक्षा ले ली है हम भी दीक्षा ले लें, ऐसा सोचकर वह स्वयं वहां गया। उस ऋषि के रूप को देखकर उसकी माया से वह मोहित हो गया। उस महात्मा को नमस्कार करके उसने कहा, क्या कहा त्रिपुराधीश ने? अब देखिए यहाँ से उसका पतन शुरू हो गया। त्रिपुराधीप उवाच, दीक्षां देया त्वया मह्यं निर्मलाशय भो ऋषे अहम शिष्यो भविष्यामि सत्यम सत्यम न संशय। इत्येव तु वचः श्रुत्वा दैत्यराजस् निर्मलं प्रत्युवाच सुयत्नेन ऋषि स च सनातन मदीया करणीया स्याद् अद्य आज्ञा दैत्य सत्तम तदा देया मया दीक्षा नान्य था कोटि यत्न था। वो कहते हैं कि हे शुद्ध हृदय वाले ऋषि, त्रिपुराधीश ने कहा कि हे शुद्ध हृदय वाले ऋषि आप हमको दीक्षा दीजिए, मैं सचमुच आपका शिष्य होना चाहता हूँ। इस प्रकार दैत्यराज के निर्मल वचनों को सुनकर सनातन ऋषि ने कहा, हे दैत्यराज यदि मेरी आज्ञा का पालन करना है तभी मैं दीक्षा दूंगा, अन्यथा करोड़ प्रयत्न करने पर भी मैं दीक्षा नहीं दूंगा। ऐसी बात सुनकर राजा माया से घिर गया और उसने शीघ्र हाथ जोड़कर यति से कहा। अब दैत्य ने कहा क्या कहा? यथाज्ञां दास्यसि त्वं हि तथैव च न चान्यथा त्वद् आज्ञां नो लंघ्य से सत्यम सत्यम न संशय। कि जैसी आप आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूंगा, मैं सचमुच आपकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करूंगा। अब सनत कुमार जी ने कहा, त्रिपुराधीश के इन वचनों को सुनकर मुख पर से वस्त्र हटाकर ऋषिवर ने कहा, हे दैत्यराज सभी धर्मों में उत्तम दीक्षा को ग्रहण करो, दीक्षा की विधि से इसे ग्रहण कर कृतार्थ हो जाओगे। सनत कुमार जी ने कहा, इतना कहकर उस मायावी ने शीघ्र ही उस दैत्यराज को अपने धर्म से युक्त दीक्षा विधि विधान के साथ दी। उस दैत्यराज के दीक्षित होने पर हे मुनि स्वाभाविक रूप से सभी त्रिपुरवासी दीक्षित हो गए। हे मुनि उसके बाद महामायावी मुनि के शिष्य उपशिष्यों से वह संपूर्ण नगर व्याप्त हो गया। तो यहाँ त्रिपुर दीक्षा विधान नामक चौथा अध्याय समाप्त होता है।
0: तो सबको दीक्षा दे दी वहाँ पर।
1: हाँ जब राजा ही दीक्षित हो गया तो प्रजा तो दीक्षित होगी।
0: हाँ हाँ बहुत सुंदर प्रसंग रहा और बहुत ही ये प्रभु की माया थी।
1: हाँ
0: भगवान नारायण की माया जब काम करती है तो तब ऐसे ही फिर बुद्धि भ्रष्ट तो वो कर ही देते हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही होता है। तो लीना जी एपिसोड समाप्त करने का तो समय हो चला है, तो इसके साथ साथ श्रोतागण भी बैठे होंगे प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो आप जो ये कविता एक छोटी सी सुनाकर सबको भक्ति में कर दीजिए।
1: कहते हैं सूरज की ज्योति में, चंद्रमा की शीतलता में, सागर की गहराई में, पर्वत की ऊंचाई में, कौन है समाये हृदयाधिपति शिव समाधिस्थ शिव, हृदयाधिपति शिव समाधिस्थ शिव।
0: आप हर पंक्तियों में जब भी आप कविता करती हैं उसमें सार कह देती हैं, सार गर्भित जो है कविता होती है वो, और हमारे श्रोता सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अरे एक एक पंक्ति एक एक शब्द का अर्थ जो है बहुत बड़ा है व्यापक है, उसके बारे में उसको सोचना पड़ता है। तो और बहुत ही आनंद आता है जब चिंतन करते हैं उन पंक्तियों का उन अर्थों का, तो चिंतन करने में भी बहुत आनंद आता है। और जैसे आप ज्ञानवर्धन करनी है हमारे श्रोताओं का, तो हमारे श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद है।
1: धन्यवाद मन।
0: तो श्रोतागणों दोस्तों, क्योंकि आप
3: इतने ज्ञानवर्धक प्रसंग लीना जी से सुन रहे हैं, शिव पुराण में से सुन रहे हैं, आप खुद भी लाभ उठाइए और अपने मित्रों को, परिवारजनों को, आप जहाँ भी बैठते हैं, आपके संपर्क में जो भी आते हैं, सबको इस ज्ञान से लाभान्वित कीजिए। आपको उतना ही पुण्य मिलेगा और जितना कि स्वयं तो ले ही रहे हैं, आप सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सबके हिस्से का भी जो पुण्य है वो आपको ही मिलेगा और सबको लाभ तो मिलेगा ही, सबको सब आनंद में होंगे। ये सबके दुख दूर करने का जो पुण्य मिलता है वो भी आपको ही मिलेगा। तो दोस्तों, क्योंकि यह एपिसोड समाप्त करने का समय हो चला है, अब मैं आगे इसको नहीं बढ़ा सकूंगी। अगले एपिसोड में हम पुनः यहीं पर मिलेंगे मानव रचना रेडियो स्टेशन 107.8 FM पर। फील गुड फील लाइव।
5: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
6: ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
7: ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है।

0: और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
1: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें, नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं, उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा हैं। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
0: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है, तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहा है कि हम कौन हैं और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूये अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हरन्ते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। माना शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अजर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अर्थात इसमें यह बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकती है, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे, या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है, तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते हैं
1: बिन बुलाए मेहमान
0: जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों, तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है, और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म, कौन कौन से गुण हैं उसके, मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा

0: को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया? क्योंकि आत्मा के सात गुण है। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में ले तो कहा जाता है के पी स्क्वायर एल एच बी पी अर्थात के फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, पी फॉर प्योरिटी जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर पी फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, पी फॉर पीस, एल फॉर लव, एच फॉर हैप्पीनेस, बी फॉर ब्लिस और लास्ट पी पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या? कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना माना वही संपूर्ण ज्ञान है। खुद के बारे में जानना, आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
1: खुद के मन में क्या है
0: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की, अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है? शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना, है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में? अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
1: मैं अगर बोलू तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, यही होता है।
0: जी बिल्कुल, उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति, नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो फिर से कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं? क्या वो नेचर वाला, या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा भवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
1: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला रही
0: है। तो यही चीज जो है वहाँ पे, उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही, तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियां आती है तब भी हम स्टेबल रहे, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है, जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की, तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है, और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है, आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया, और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का अशांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती हैं। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
1: बिल्कुल। और ये जितनी भी सात चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इनबिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते। और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं, बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
2: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मरकर के स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद है, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहाँ मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
1: जी।
2: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग, अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा, डेफिनेशन, वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूँ तो भी मैं इनकम्प्लीट हूँ। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना। ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है, उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है, और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है, जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा, तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है। और जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकंड बाय सेकंड रिकॉर्ड हो रही है
1: जी।
2: और जब एंड ऑफ द डे यानी जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहां अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
1: बिल्कुल।
2: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इस क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वही कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माते संगोऽस्त्व अकर्मणे, अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों, तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो, तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता है, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
1: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई।

0: या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास, और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं, वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
1: कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, माना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके, निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ यह है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है, तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एकरस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से, माना आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहां कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं, तो वहां ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रग होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाए आइस फैक्ट्री, मुख में लगाए शुगर फैक्ट्री अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो, और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका, किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति, देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आप ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कम्फर्ट नहीं हो रही है, तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देह को देख रही है चीजें उसमें आकर्षित है, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है, तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो वो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है, और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों।

0: प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे। हम फटाफट कि अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया, कहाँ खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को, कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थिर प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं, वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं। वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है। तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है, जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे। उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी। और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं, तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया? तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं, उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया, उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे। इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं, उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं। अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
1: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
0: जी,
1: आपको बदलना पड़ेगा
0: जी,
1: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली है, और अध्याय दूसरा है ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
0: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवाम्भस्सी। माना अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील मन व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो वो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा, अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में, हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के, जो तन का भान है उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
1: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है, और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ, जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी, और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए रेडियो मानव वृक्ष 107.8 FM पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ, और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं बहुत सारे आध्यात्मिक प्रसंगों की, कथाओं की। बहुत सारा ज्ञान हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागिनी खदासी जी, चरणाशित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागिनी खदासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: हरे कृष्ण
0: जी। श्रोताओं, बहुत सारे प्रसंगों के बारे में, कथाओं के बारे में रागिनी खदासी जी हमें बता रही हैं। महाभारत में जो समाहित है, महाभारत ये बहुत ही महान ग्रंथ के बारे में हम आजकल इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं, और पिछले एपिसोड में हमने कर्ण की जन्म कथा को जाना था रागिनी खदासी जी से। तो आज के कार्यक्रम में रागिनी खदासी जी, आप कौन सी कथा हमारे श्रोताओं को सुनाने वाली हैं?
1: जी, ब्राह्मण की अरनी लाने के लिए पांडवों का मृग के पीछे जाना और भीमसेन आदि चारों भाइयों का एक सरोवर में निर्जीव होकर गिरना।
0: जी,
1: तो द्रौपदी के हरे जाने पर अत्यंत दुखी होकर राजा युधिष्ठिर कामक वन को छोड़कर भाइयों से ही द्वैत वन में ही आ गए। वहाँ सुस्वादु फल मूल आदि की प्रचुरता थी। वहाँ वे मिताहारी होकर फलाहार करते हुए द्रौपदी के सहित रहने लगे। उस वन में एक ब्राह्मण के अरणी सहित मंथन काष्ठ से एक हिरण सिंह खुजलाने लगा। देवयोग से वे काष्ठ उसके सिंह में फंस गया। मृग कुछ बड़े डील डॉल का था, वह उसे लिए उछलता कूदता दूसरे आश्रम में पहुंच गया। उसे देखकर वह ब्राह्मण अग्निहोत्र रक्षा के लिए घबराकर जल्दी से पांडवों के पास आया। उसने भाइयों के साथ बैठे हुए महाराज युधिष्ठिर के पास आके कहा, राजन, मेरे अरणी के सहित अपना मंथन काष्ठ पेड़ पर टांग दिया था। उसमें एक मृग, मतलब जो यज्ञ के लिए जो लकड़ी चाहिए होता है, वही उन्होंने टांग दिया था पेड़ पे। उसमें एक मृग अपने सिंह खुजलाने लगा और वह उसके सिंह में फंस गया। उस विशाल मृग चौकड़ी भरता हुआ लेकर भाग गया। तो आप उसके खुरों पे चिन्ह देखते हुए उसे पकड़िए और वह मंथन काष्ठ ले आइए, जिससे मेरे अग्निहोत्र का लोप ना हो। महाराज युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ। वे भाइयों सहित धनुष लेकर मृग के पीछे चले। सब भाइयों ने उसे बीधने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वे सफल ना हुए। उसे ना देखकर वे हतोत्साह हो गए और बहुत दुख हुआ। घूमते घूमते वे गहन वन में एक वट वृक्ष के पास पहुंचे। भूख प्यास से शीतल होकर उसकी शीतल छाया में बैठ गए। धर्मराज ने नकुल से कहा, भैया, तुम्हारे ये सब भाई प्यासे और थके हुए हैं। यहाँ पास ही कहीं जल या जलाशय के पास उत्पन्न होने वाले वृक्षों हो तो देखो। नकुल ने जो आज्ञा कहकर वृक्ष पर चढ़ गया और इधर उधर देख कर कहने लगे, राजन, मुझे जल के पास लगने वाले बहुत से वृक्ष दिखाई दे रहे हैं और सारसों का शब्द भी सुनाई देता है कि वहाँ अवश्य ही पानी होगा। तो सौम्य, तुम शीघ्र ही जाओ और तरकसों में पानी भर लाओ। नकुल ने बहुत अच्छा कहा। वहाँ सारसों से घिरा हुआ एक बड़ा निर्मल जल देखकर वे जो ही पानी पीने के लिए झुके, उन्हें ये आकाशवाणी सुनाई दी, तात नकुल, साहस न करो। पहले ही से मेरा एक नियम है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद जल पीना और ले जाना। किंतु नकुल को बहुत प्यास लगी हुई थी, उन्होंने उसकी वाणी की कोई परवाह नहीं की। किंतु जो ही वे शीतल जल पिया, उसके पीते हुए भूमि पर गिर गए। नकुल को देर हुई देख कुंती नंदन युधिष्ठिर ने वीर सहदेव से कहा, सहदेव, तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता भाई को बहुत देर हो गई, अब तुम जाकर उन्हें लिवा लाओ और जल भी लेते आओ। उन्होंने भाई नकुल को मृत अवस्था में पृथ्वी पर पड़े देखा। उन्हें भाई के लिए बड़ा शोक हुआ, किंतु इधर प्यास भी पीड़ित कर रही थी। वे पानी की ओर चले। आकाशवाणी ने फिर कहा, मेरे पहले प्रश्नों का उत्तर दो ना, फिर जल पीना और ले जाना। किंतु जैसे ही उन्होंने शीतल जल पिया, उसके पीते हुए भी भूमि पर गिर गए। धर्मराज ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ने जाके देखा कि वहाँ उन्होंने देखा कि दोनों भाई मरे पड़े हैं। अर्जुन ने कहा, जरा प्रकट होके रोको। फिर से वापस वही आकाशवाणी आई कि तुम नहीं जल ले जा सकते। तो अर्जुन ने कहा, प्रकट होके रोको, मेरे बाणों से बेध होकर ऐसा कहने का साहस नहीं कर सकोगे। कौशल दिखाते हुए सारी दिशाओं को अभिमंत्रित बाणों से व्याप्त कर दिया। तब यक्ष ने कहा, वह एक यक्ष था जिसकी आकाशवाणी हो रही थी, अर्जुन, इस तथा उद्योगी से क्या होना है, तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर जल पी सकते हो, यदि बिना उत्तर दिए पियोगे तो पीते ही मर जाओगे। युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, भीम ने उसके प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पिया और पीते हुए भूमि पर गिर गए। महाराज युधिष्ठिर जाने को खड़े हो गए। जलाशय के तट पे पहुंचकर उन्होंने देखा उनके चारों भाई मरे हुए पड़े हैं। इन वीरों को किसने मारा है? उनके अंगों में कोई शस्त्र प्रहार का तो चिन्ह नहीं है। यहाँ किसी के चरण चिन्ह भी नहीं दिखाई देते। जिसने मेरे भाइयों को मारा है, मैं समझता हूँ वह कोई महान प्राणी होगा, क्योंकि मर जाने पर भी मेरे इन भाइयों के शरीर में कोई विकार नहीं जान पड़ता और इनके चेहरे का रंग भी खिला हुआ है। अब ये सोचकर वे जल में उतरने को तैयार हुए। उसी समय आकाशवाणी सुनाई दी, मैं बगुला हूँ, मैंने ही तुम्हारे भाइयों को मारा है। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हें भी इन्हीं के साथ तुम सोओगे। युधिष्ठिर ने कहा, ये काम पक्षी का तो हो नहीं सकता, अतः मैं आपसे पूछता हूँ कि आप रुद्र, वसु या मरुत आदि प्रधान देवताओं से कौन हैं? यक्ष ने कहा, मैं थोड़ा जलचल पक्षी ही नहीं हूँ, मैं यक्ष हूँ। तुम्हारे ये महान तेजस्वी भाई मैंने ही मारे हैं। यक्ष की अमंगलमय कठोर वाणी सुनकर राजा युधिष्ठिर उसके पास खड़े हो गए। उन्होंने देखा एक विकट नेत्रों वाला विशालकाय यक्ष वृक्ष के ऊपर बैठा है। राजन, तुम्हारे इन भाइयों को मैंने बार बार रोका था, फिर भी इन्होंने मूर्खता से जल ले जाना चाहा, इसीलिए मैंने इन्हें मार डाला। अब आप प्रश्न कीजिए, युधिष्ठिर जी ने कहा। यक्ष ने पूछा, सूर्य को कौन उदित करता, उसके चारों ओर कौन चलते हैं, उसे अस्त कौन करता है और वह किसमें प्रतिष्ठित है? युधिष्ठिर जी ने कहा, भ्रम सूर्य को उदित करता है, देवता उसके चारों ओर चलते हैं, धर्म उससे अस्त करता है और वे सत्य में प्रतिष्ठित है। ब्राह्मणों में देवत्व क्या है? प्रश्न यक्ष ने पूछा। उनमें सत पुरुषों का सब धर्म क्या है, मनुष्यता क्या है और असत पुरुषों का सा आचरण क्या है? वेदों का स्वाध्याय ही ब्राह्मणों में देवत्व है, तो वेद सारे चारों वेदों का स्वाध्याय करते रहते हैं, वही ब्राह्मण है। सब सत पुरुषों का सा धर्म है, मरना मानुषी भाव है और निंदा करना असत पुरुषों का सा आचरण है। यक्ष ने पूछा, क्षत्रियो में देवत्व क्या है, उनमें सत पुरुषों का सा धर्म क्या है, मनुष्यता क्या है और उनके असत पुरुषों का सा आचरण क्या है? विश्व जी बोले, बाण विद्या क्षत्रियो का देवत्व है, यज्ञ उनका सत पुरुषों का सा धर्म है, भय मानवीय भाव है, अधीनों की रक्षा न करना सत पुरुषों का आचरण है। पृथ्वी से भी भारी क्या है? यक्ष ने पूछा। आकाश से भी ऊंचा क्या है, वायु से भी तेज चलने वाला क्या है और तिनकों से भी अधिक संख्या में क्या है? युधिष्ठिर जी बोले, माता पृथ्वी से भी भारी है, पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी तेज चलने वाला है और चिंता तिनकों से भी बढ़कर है। यक्ष ने पूछा, सो जाने पर पलक कौन नहीं मूंदता, उत्पन्न होने पर चेष्टा कौन नहीं करता, हृदय किसमें नहीं है और वेग से कौन बढ़ता है? मछली सोने पर भी पलक नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होने पर चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं है और नदी वेग से भरती है। यक्ष ने पूछा, विदेश में जाने वाले का मित्र कौन है, घर में रहने वाले का मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है और मृत्यु के समीप पहुंचे हुए पुरुष का मित्र कौन है? पूरा साथ विश्व जी बोले, साथ के यात्री विदेश में जाने वाले के मित्र हैं, स्त्री घर में रहने वाले की मित्र है, वैद्य रोगी का मित्र है और दान मरने वाले पुरुष का मित्र है। यक्ष ने पूछा, अकेला कौन विचरता है, एक बार उत्पन्न होके पुनः कौन उत्पन्न होता है, शीत की औषधि क्या है और महान क्षेत्र क्या है? सूर्य अकेला ही विचरता है, चंद्रमा एक बार जन्म लेके पुनः जन्म लेता है, अग्नि शीत की औषधि है और पृथ्वी बड़ा भारी आवपन है। यक्ष ने पूछा, धर्म का मुख्य स्थान क्या है, यश का मुख्य स्थान क्या है, स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है और सुख का मुख्य स्थान क्या है? धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है, यश का मुख्य स्थान दान है, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है और सुख का मुख्य स्थान शील है।
0: जी श्रोताओं, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है और सभी प्रश्नों का बहुत ही उचित जो है उत्तर दे रहे हैं युधिष्ठिर यक्ष को। तो अब इन प्रश्नों का उत्तर जो है युधिष्ठिर दे रहे हैं। तो जी रागलेखा दासी जी, आगे आप अपनी कथा सुनाएं।
1: यक्ष ने पूछा, मनुष्य का आत्मा क्या है, उसका देवकृत सखा कौन है जी? और जीवन का सहारा क्या है और उसका परम आश्रय क्या है? पुत्र मनुष्य का आत्मा है और स्त्री उसकी देवकृत सखा है, मेघ उपजीवन है, अदान परमाश्रय है, यक्ष ने पूछा, किस वस्तु के त्यागने से मनुष्य प्रिय होता है, किसके त्यागने पर शोक नहीं करता, किसे त्यागने पर वह अर्थवान होता है और किसे त्याग कर सुखी होता है। मान को त्यागने से मनुष्य प्रिय होता है, क्रोध को त्यागने पर शोक नहीं करता, काम को त्यागने पर वह अर्थवान होता है और लोभ को त्याग कर सुखी होता है। यक्ष ने कहा, ब्राह्मण को किस लिए दान दिया जाता है, नट और नर्तकों को क्यों दान देते हैं, सेवकों का दान देने का क्या प्रयोजन है और राजा को क्यों दान दिया जाता है। ब्राह्मण को धर्म के लिए ध्यान दान दिया जाता है, नट नर्तकों को यश के लिए दान दिया जाता है, नाम देते हैं, सेवकों को उनके भरण पोषण के लिए दान दिया जाता है, राजा को भय के कारण दान देते हैं, भय भी होते हैं तो राजा को कर दे देते हैं। यक्ष ने पूछा, पुरुष किस प्रकार मरा हुआ कहा जाता है, राष्ट्र किस प्रकार मरा हुआ कहलाता है, श्राद्ध किस प्रकार मृत हो सकता है और यज्ञ कैसे मृत हो जाता है। युधिष्ठिर जी बोले, दरिद्र पुरुष मरा हुआ है, बिना राजा के राज्य मरा हुआ है, श्रुतीय ब्राह्मणों के बिना श्राद्ध मृत हो जाते हैं, बिना दक्षिणा के यज्ञ मरा हुआ है। यक्ष ने पूछा, मनुष्य का दुर्जय शत्रु कौन है, अनंत व्याधि क्या है, साधु कौन माना जाता है और असाधु किसे कहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, क्रोध दुर्जय शत्रु है, लोभ अनंत व्याधि है और जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला हो वह साधु है और निर्दय पुरुष असाधु है। यक्ष ने पूछा, स्नान किसे कहते हैं और दान किसका नाम है। मानसिक मलों को छोड़ना ही स्नान है और प्राणियों की रक्षा करना ही दान है। यक्ष ने कहा, भरत श्रेष्ठ, अक्षय नरक किस पुरुष को प्राप्त होता है। जो पुरुष भिक्षा मांगने वाले किसी अकिंचन ब्राह्मण को स्वयं बुलाकर फिर उसे नहीं देता वह अक्षय नरक प्राप्त करता है। जो पुरुष वेद धर्म शास्त्र ब्राह्मण प्राकृतिक धर्मों की मिथ्या बुद्धि रखता है वह अक्षय नरक को प्राप्त करता है। जो लोगवश दान और भोग से सहित जो लोग बस दान और भोग से रहित है और पीछे से कह रहे थे मेरे पास है ही नहीं वे अक्षय नरक को प्राप्त होते हैं। यक्ष ने पूछा, सुखी कौन है, आश्चर्य क्या है, मार्ग क्या है, वार्ता क्या है, मेरे इन चार प्रश्नों का उत्तर दो। ऋषि जी ने कहा, जो पुरुष इस पुरुष पे ऋण नहीं है और जो परदेश में नहीं है वह दिन के पांचवें या छठे भाग में भी अपने घर के भीतर चाहे साग पत्ता ही खा ले वो सुखी है। पानी अंदाज के घर जा रहे हैं क्योंकि जो बचे हुए हैं वे सर्वदा जीते रहने की इच्छा करते हैं। इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा। मैंने पूछा था ना सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तर्क की कोई स्थिति नहीं है। यक्ष ने कहा, तुमने मेरे सब प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक दे दिए, तुम पुरुष की व्याख्या कर दो और ये बताओ कि सबसे बड़ा धनी कौन है। विष्णु जी बोले, जिसकी दृष्टि में प्रिय अप्रिय सुख दुख भूत भविष्य ये जोड़े के समान है वही सबसे बड़ा धनी पुरुष है। विष्णु का राजन, जो सबसे धनी पुरुष है उसके तुमने ठीक ठीक व्याख्या कर दी, इसलिए अपने भाइयों में से किसी एक को तुम चाहो उसे जीवित कर सकते हैं।
0: अच्छा।
1: विष्णु बोले, चौड़ी छाती वाला महाबाहु नकुल है वही जीवित हो जाए। यक्ष ने कहा, जिसमें 10,000 हाथियों का समान बल है उस भीम को छोड़ के तुम नकुल को क्यों दिलाना चाहते हो, अर्जुन को भी छोड़कर तुम नकुल को दिला देने की इच्छा क्यों है।
0: अच्छा।
1: यह राजा युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पिता की कुंती और माधवी दो भार्याएं थी, पत्नियां थी, वे दोनों पुत्रवती बनी रहे ऐसा मेरा विचार है। मेरे लिए जैसी कुंती है वैसे ही माधवी माता है, उन दोनों में से कोई अंतर नहीं है, मैं दोनों माताओं को समान भाव से रखना चाहता हूँ, इसके नकुल को जीवित हूँ। तुमने अर्थ और काम की क्षमता का विशेष आदर किया है इसलिए तुम्हारे सब भाई जीवित हो जाएं। यक्ष ने कहा, प्रसन्न हो गए यक्ष, सारे भाई जीवित हो। तब यक्ष के कहते ही सब पांडव खड़े हो गए और एक क्षण में उनकी सब प्यास जाती रही। यक्ष ने कहा, भरत श्रेष्ठ, मैं तुम्हारा पिता धर्मराज हूँ, तुम्हें देखने के लिए यहाँ आया हूँ, तुम मुझे सदा ही प्रिय हो, तुमने भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु इन 6 दोषों को जीत लिया है, तुम्हारा मंगल हो, मैं धर्म हूँ और तुम्हारा व्यवहार जानने की इच्छा से जाना था, तो काम्य वन्य स्थान है धर्म कुंड वार्तालाप किया था, तुम्हारी संतुष्टि के कारण मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अविष्ट वर मांग लो, जो मेरे भक्त हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, पहला वर तो मैं ये मांगता हूँ कि जिस ब्राह्मण के अग्नि सहित मंथन काष्ठ को मृग लेकर भागा उसका अग्निहोत्र का लोप न हो, यक्ष ने कहा, राजन उस ब्राह्मण के अर्णी सहित मंथन काष्ठ को तुम्हारे परीक्षा के लिए मैं ही मृग रूप में लेकर भागा था, ये मैं तुम्हें देता हूँ, तुम कोई दूसरा वर मांग लो। युधिष्ठिर बोले, हम 12 वर्ष के वन में रहे, अब 13 वर्ष आ लगा है, तो ऐसा वरदान दीजिए कि हमें कोई पहचान ना सके। ये सुनकर धर्म ने कहा, मैंने तुम्हें ये वर दिया, यद्यपि तुम पृथ्वी पर अपने इसी रूप में विचरोगे तो भी तुम्हें कोई पहचान नहीं सकेगा, और तुमसे जो जो जैसा जैसा चाहेगा वैसा वैसा ही रूप धारण कर सकेगा। इसके सिवाय तुम एक तीसरा वर मांग लो, अजन तुम मेरे पुत्र हो और विदुर ने भी मेरे ही अंश से जन्म लिया है, अतः मेरी दृष्टि में तुम दोनों ही समान हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा, मेरे लिए क्या दुर्लभ है, तो भी आप मुझे जो वर देंगे उसे मैं फिर आंखों पर लूंगी। मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं लोभ मोह और क्रोध को जीत सकूं और सत्य में सर्वदा मेरे मन में की प्रवृत्ति रहे। धर्मराज ने कहा, पांडुपुत्र इन गुणों से तो तुम स्वभाव से ही संपन्न हो, आगे भी तुम्हारे कथन अनुसार तुमसे ये सब धर्म बने रहेंगे। ऐसा कहकर भगवान धर्म अंतर ध्यान हो गए और सब पांडव साथ साथ आश्रम में लौट आए। वहाँ आकर उन्होंने उस तपस्वी ब्राह्मण को उसकी अरनी दे दी।
0: जी, बहुत ही खूबसूरत प्रसंग हमने जाना आज रागलेखा दासी जी से। और युधिष्ठिर के सभी भाई जो हैं वो मर गए थे, और उसके बाद युधिष्ठिर जब अंत में वहाँ पहुँचे तो यक्ष ने बहुत सारे उनसे प्रश्न पूछे और उन्होंने सभी का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और ये आज बहुत ही प्यारा प्रसंग हमने जाना महाभारत के अंतर्गत। तो इसी तरह और भी प्रसंग हैं जो हम रागलेखा दासी जी से जानते रहेंगे। नहीं, रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
1: हरे कृष्ण।
0: तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।
2: गुड मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों, बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ अपने साथ और आपके पास। जी हाँ, देखिए सुबह सुबह का टाइम है, शो की करते हैं शुरुआत। और आपको बता दूँ, आज देखिए ये जो प्रोग्राम है ये 2 घंटे का है, क्योंकि अब से ना मैं आपके पास 2 घंटे के लिए आती हूँ और बहुत सारी करती हूँ बातें, यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे। जी हाँ, हर दिन आपके साथ रहती हूँ और इसी के साथ साथ और बहुत सारी होती हैं बातें, चाहे बात करें हेल्थ की, चाहे बात करें फिटनेस की, योगा की, मेडिटेशन की। इसी के साथ साथ आपको बता दूँ कि देखिए हम बात तो ज़रूर करते हैं यहाँ पर क्विज की भी, और बात होती है स्पोर्ट्स की भी। तो जी हाँ, बहुत सारी बातें लेकर के आपके पास आ जाती हूँ। मॉर्निंग की करते हैं खूबसूरत सी शुरुआत, और आज क्या है कुछ खास वो बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानवरचना 107.8 FM सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों, बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ आपके पास। और बातें हमारी चल रही हैं तो अभी फिलहाल सेगमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का, वो है दिल धड़कने दो। और इस सेगमेंट में बात होती है आपकी हेल्थ और फिटनेस की। जी हाँ, तो हेल्थ और फिटनेस की होंगी बहुत सारी बातें, आपको बस इसी तरह से जुड़े रहना है और ढेर सारे मैसेज करते रहने हैं। जी हाँ, कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखिए यहाँ पर गुड मॉर्निंग भी लिख रहे हैं और प्रोग्राम की देखिए जो अच्छा आपको लगता है ये भी मुझे बता रहे हैं, तो दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। और इसी के साथ साथ देखिए मैं आपको बताती हूँ हेल्थ से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, क्योंकि हमारा सेगमेंट है दिल धड़कने दो। और दिल धड़कने दो में अभी फिलहाल बात हो रही है इस गर्मी के मौसम की। जी हाँ, देखिए गर्मी का ये जो मौसम है ना, ये अपने साथ कई सारी बीमारियां लेकर के आता है, ऐसे में अपने आप को खुद को ठीक रखना जरूरी है। अब देखिए इन दिनों क्या होता है ना, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, एनर्जी कम रहती है और पेट की गड़बड़ी आम हो जाती है। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं पूरे सीज़न बिना डॉक्टर के आप इसे बिता दें पूरा सीज़न और आपकी इम्यूनिटी भी दमदार बनी रहे, तो सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना होगा। हर सुबह खाली पेट आपको जो है कुछ फ्रूट्स का या कुछ फल का जो सेवन जो है वो करना है। अब देखिए क्या होता है ना कि जब आप कुछ अच्छा खाते हैं तो आपकी सेहत बनी रहती है, इम्यूनिटी बनी रहती है, और इम्यूनिटी बनी रहनी ज़रूरी है। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आपको खानी चाहिए जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छी है, और आपको बता दूँ कि वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली आप मार्केट में जाएंगे तो लोकल फ्रूट है, आपको आसानी से सीजनल फ्रूट आपको मिल जाएंगे। और ऐसा भी नहीं कि आप बाद में कहें कि साक्षी ये तो फ्रूट है ही नहीं, ये तो इतने महंगे हैं। महंगे भी नहीं है और सेहत के लिए भी अच्छे हैं, इसीलिए आप तक ये सारी जानकारी लेकर के आती हूँ। चलिए बताऊँगी इसके बारे में कौन से ये फ्रूट्स हैं, लेकिन फिलहाल ले दी हुई छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। फिलहाल सेगमेंट दिल धड़कने दो में हम कर रहे हैं ढेर सारी बातें। जी हाँ, सेगमेंट दिल धड़कने दो जो कि आपके लिए लेकर के आती हूँ, जिसमें हम करते हैं आपकी सेहत से जुड़ी बातें, हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी बातें। जी हाँ, अब बात मैं कर रही हूँ कुछ ऐसे सीजनल फूड्स की, जिससे आप खाली पेट लेते हैं तो आप जो है भाई इस गर्मी के मौसम में आपकी सेहत बनी रहेगी। तो अगर आप सुबह सुबह सुबह खाली पेट अगर लेते हैं पपीता, तो भाई सुबह की शुरुआत आपकी काफ़ी अच्छी होगी। समझ लीजिए कि आपका पाचन जो तंत्र है, यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा और इस गर्मी के मौसम के लिए बिल्कुल सही रहेगा। जी हाँ, देखिए पपीते में पाया जाने वाला जो पेपेन एंजाइम होता है, ये ना सिर्फ खाना पचाने में मदद करता है, बल्कि अगर आपको एसिडिटी है या फिर कॉन्स्टिपेशन है या फिर कोई भी अगर देखिए आपको रिलेटेड कोई ब्लोटिंग इश्यूज हो रहे हैं, तो ये सब में राहत दिलाता है। अब बस इसे खाना कैसे है, आपको सुबह एक कटोरी ताज़ा पपीता जो है खाली पेट खा लेना है और बस देखिए कमाल का जादू जो है ये फिर होने लगेगा। इसी के साथ साथ अगर आप गर्मियों में ये जो गर्मियों का राजा फल है ये खाते हैं, तब भी आपको बहुत फायदा होने वाला है। अच्छा, यहाँ मैं बात आम की नहीं कर रही हूँ, राजा फल इसलिए इसको कह रही हूँ क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि फलों का राजा तो वैसे आम है, नो डाउट आम है, लेकिन भाई जिसमें सबसे ज़्यादा पानी आपको मिलता है वो है वाटरमेलन। जी हाँ, यानी कि तरबूज, जिसमें करीबन कुछ 92% तक पानी मिलता है हमारी बॉडी को, और जो शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और गर्मियों में उसे बचाता है, इसके खतरे से हमें बचाता है। लेकिन अगर आप रोज़ तरबूज खाएंगे तो आपकी बॉडी का जो बैलेंस है, जो टेम्परेचर है, वो बैलेंस में बिल्कुल रहेगा। और इसे बस क्या करना है, सुबह खाली पेट एक कटोरी आपको तरबूज जो है वो खाना है। लेकिन याद रखें, खाली पेट दूध या पानी आप तुरंत बिल्कुल भी ना लें जब आप तरबूज खाते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, क्योंकि पानी की तो देखिए ज़रूरत भी नहीं होती, तो दूध भी मत लीजिएगा। आपको क्या करना है, बस तरबूज खाना है और बस हो गया। अब इसमें आपको 92% तक पानी जो है ये मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ साथ बात करें अब देखिए फलों के राजा की, जो मैं कह रही थी, और वो है आम। आम जो है इसे फलों का राजा तो कहा ही जाता है, जो गर्मियों में इसका स्वाद जो है देखिए हर एक को पसंद आता है, हर कोई आम खाना पसंद करता है और ये कई सारे गुणों से भरपूर भी है। विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर प्रचुर मात्रा में इसमें पाए जाते हैं, जो ना सिर्फ इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं बल्कि हमारी बॉडी को एनर्जी देने का भी काम करते हैं। जी हाँ, तो देखिए अगर आपको भी चाहिए ना एनर्जी, आम खाना शुरू कर दीजिए। बस आपको क्या करना है, पका हुआ आम जो है वो लेना है। बस आपको क्या करना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसे सीमित मात्रा में खाना है, क्योंकि ये शुगर जो है इसमें थोड़ी हाई होती है, इसलिए आपको कम ही खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और देखिए आम में थोड़ी सी गर्मी भी होती है, तो आपकी बॉडी पे जो है देखिए आपको हो सकता है कि कई लोगों को ये समस्या रहती है कि अगर आम ज़्यादा खा लेते हैं तो उनको जो है थोड़े दाने हो जाते हैं या फिर उनको जो है पेट खराब होने की समस्या रहती है। तो बहुत ज़्यादा मत खाइए, कम इसकी जो क्वांटिटी है ना उसमें खाइए, तो आपको नुकसान नहीं होगा, नहीं पहुंचेगा, आपकी बॉडी बिल्कुल दुरुस्त रहेगी। चलिए कुछ और फ्रूट्स के बारे में भी आपको बताऊंगी जो कि खाली पेट आपको ले लेने चाहिए। कौन से हैं फिलहाल बताती हूँ कुछ ही देर में, आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए। ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों, बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ. फिलहाल चल रहा है हमारा सेगमेंट दिल धड़कने दो. जी हाँ, दिल धड़कने दो मैं आपसे बातें करती हूँ आपकी हेल्थ और फिटनेस की. जी हाँ, और यहाँ पर आपको बता दूँ कुछ फ्रूट्स के बारे में आपको बता रही हूँ. ये जो लोकल सीजनल फ्रूट्स मिलते हैं ना, कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए. और गर्मी में तो ज़रूरी भी है कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो मज़बूत बनी रहे, क्योंकि तो ये बहुत सारी बीमारियाँ ना अपने चपेट में ले लेती है. और अगर आप भी चाहते हैं ना कि ये जो बीमारी है आपको अपने पेट में बिल्कुल भी ना ले, तो उसके लिए आपको अपना ख्याल तो रखना पड़ेगा. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि खाली पेट अगर आप कुछ फ्रूट्स लेते हैं तो आपकी सेहत बनी रहेगी, जैसे कि पपीता, तरबूज, साथ ही साथ बात करें यहाँ पर आम की तो ये भी अच्छा है. लेकिन अब बात आती है दूसरे फ्रूट की. जो हमारा जो है अगला फ्रूट है वो है मेलन. जी हाँ, खरबूजा. खरबूजा भी तरबूज की तरह ही शरीर को ठंडक रखता है, ठंडे में रखता है आपके शरीर को, साथ ही पानी की कमी से बचाने में भी काफ़ी मदद करता है. इसमें पोटाशियम है, फाइबर है, विटामिन सी है, और इसमें जो है आपकी बॉडी को देखिए जो एनर्जी देने वाले कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी ना सिर्फ बॉडी के लिए हेल्पफुल है बल्कि आपकी त्वचा को भी चमकदार बनाते हैं. कुछ ऐसे पोषक तत्व भी हैं. अब इसे खाना कैसे? सुबह नाश्ते से पहले आप एक कटोरी खरबूजा ज़रूर खाएं. अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप सारे फ्रूट्स को एक साथ ना खाएं, एक दिन आपने जो है खरबूजा खाया, एक दिन तरबूज खाया, एक दिन आम खाया सुबह ब्रेकफास्ट में, एक दिन आपने जो है पपीता खाया, तो इस तरीके से आप इंक्लूड कर सकते हैं. अब अगले फ्रूट की बात आती है और वो है हम सभी का फेवरेट सेब. जी हाँ, देखिए सेब जो है इसको अक्सर सर्दियों का फल माना जाता है, लेकिन गर्मियों में भी इसका असर जो है वो शानदार है. इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो गर्मी के मौसम में होने वाली थकान और कमजोरी से बचाता है. और वैसे भी कहते हैं ना, an apple a day keeps doctor away. इसीलिए अगर आपको डॉक्टर से रहना है दूर, अपनी रखनी है इम्यूनिटी मजबूत, तो खाइए ढेर सारा सेब, ढेर सारा एप्पल, ताकि आपकी सेहत बनी रहे. सुबह खाली पेट आप एक ताज़ा सेब ज़रूर खाइए, छिलके समेत खाइए ताकि फाइबर मिले. जो बहुत सारे लोग हैं जो छिलका पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए छिलके के साथ खाने के लिए, तो उससे फाइबर आपको मिलेगा. नहीं तो मर्जी वैसे आपकी है, खा रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसी के साथ साथ बच कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है, जैसे कि फलों को आपको खाली पेट खाने से देखिए उनके पोषक तत्व जो है वो जल्दी और बेहतर तरीके से हमारी बॉडी में एब्जॉर्व होते हैं. तो इसी के साथ आपको पहले कुछ नहीं खाना है, आपको खाली पेट खाना है. इसी के साथ साथ एक ही फल रोज़ आपको खाना है. आपको जो है बारी बारी हर दिन आप जो है अपना फल जो है वो बदलते रहिए, सारे मिक्स मत कीजिए, एक एक करके खाइए. फलों को आप काट कर देर तक बिल्कुल भी ना रखें, ये बहुत ज़रूरी है. ताज़े फल ही डाइट में आप शामिल कीजिए, जो आप हाथ के हाथ उसको काट के खाएं. फल खाने से तुरंत बाद आपको पानी भी नहीं पीना है, कम से कम 30 मिनट के गैप के बाद ही आपको पीना है पानी, इससे पहले आपको पानी नहीं पीना है. चलिए, ये तो रही हमारी हेल्थ और फिटनेस की बहुत सारी बातें. और इसी के साथ देखिए आप होंगे और भी बहुत सारी बातें, अपने प्रोग्राम तो लेकर आ ही जाती हूँ, लेकिन अब करते हैं आगे बातें. स्ट्रेच प्लीज हमारा सेगमेंट है और इस सेगमेंट में मैं करती हूँ आपके साथ मेडिटेशन, योगा की बातें. जी हाँ, अब देखिए हमने अपनी सेहत का ख्याल तो रख लिया, हमने ये तो पता कर लिया ना कि किस तरह से आप अपनी फिटनेस को बनाए रखेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपकी फिजिकल बॉडी जो है अच्छी है, बनी हुई है और आप अच्छे से अपनी फिजिकल बॉडी पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी ये भी है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ पर भी काम करें. तो उसके लिए ज़रूरी है कुछ बातों का ख्याल रखना और

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। जी हाँ, बातें हमारी चल रही हैं बहुत सारी। अब देखिए, बात करते हैं हमारे अगले सेगमेंट की जो है स्ट्रेच प्लीज। चलिए, इस सेगमेंट में बातें हमारी चलती हैं, आपको योगा के बारे में आपको बताती हूँ। देखिए, योगा जो है ये एक शब्द नहीं है, एक जिंदगी का तरीका है। ये सिर्फ बॉडी को ट्विस्ट या स्ट्रेच करना इसमें नहीं होता है, ये अपने मन को, अपनी सांसों को और अपनी सोल को एक रिदम में लाना होता है। जब हम योगा करते हैं, हम सिर्फ हेल्दी नहीं बनते हैं, बल्कि हम खुद को और ज़्यादा अपने करीब लाते हैं, स्ट्रेस से दूर जाते हैं और सुकून के पास चले जाते हैं। योगा का मतलब है जुड़ना, जी हाँ, अपने आप से, अपनी एनर्जी से और इस पूरे यूनिवर्स से, चाहे वो सूर्य नमस्कार हो या फिर अनुलोम विलोम। हर पोस्चर के पीछे एक पर्पस होता है, फिट बॉडी, काम माइंड और पीसफुल सोल। तो बस रोज आप कुछ मिनट अपने निकालिए अपनी जिंदगी के, आप कुछ पूरे दिन के एक आपको कुछ मिनट निकालने हैं और आपका जो है, देखिए ये ध्यान जो है आपको केंद्रित करना है और उसके बाद आपको शुरू करना है अपना योग, क्योंकि योग से अगर आप जुड़ जाते हैं तो बस आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं और आप देखेंगे, देखिए आपकी ज़िंदगी जो है ना बिल्कुल एक नया मोड़ ले लेगी, एक बैलेंस जो है आ जाएगा, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ इससे बन जाएगी। तो चलिए, योग जो है ये इम्पॉर्टेंट है, योगा इम्पॉर्टेंट है, पोस्चर कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, योगा आसन कितना ज़रूरी है, कौन कौन से योगा आसन करने चाहिए, ये सारी बातें आपके साथ ज़रूर करूँगी। लेकिन फिलहाल अभी लेती हुए छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैनोवरेश्वर 7.8 एफएम सुन रहे हैं। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों, बहुत सारी बातों के साथ मैं आ जाती हूं यहां पर आपके पास। और प्रोग्राम रिचार्ज मॉर्निंग में टाइम चल रहा है हमारे खूबसूरत से सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज का, जिसमें बात करती हूँ योगा के बारे में। जी हाँ, देखिए योगा जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और योगा जो है एक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। अब बात करते हैं हम एक ऐसे योगिक प्रैक्टिस की जिसने ना सिर्फ इंडिया को बल्कि वर्ल्ड हेल्थ मैप पर अपने आप को प्लेस किया है। एक ऐसी योगिक ये प्रैक्टिस है। जी हाँ, ये देखिए ऐसा ज़रूरी है कि आप इसे ज़रूर करें, इससे जो है आपकी एनर्जी जो है ये बरकरार रहती है। और आज मैं बात कर रही हूँ सूर्य नमस्कार यानी कि सन सैल्यूटेशन की। सूर्य नमस्कार एक पूरा बॉडी वर्कआउट है, बिना किसी मशीन के इसे किया जाता है। जी हाँ, किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। 12 स्टेप्स में ये जो योगिक प्रैक्टिस है यानी कि सूर्य नमस्कार जो है ये डिवाइडेड है, और साथ ही ये आसन जो है ये ना सिर्फ आपकी बॉडी को स्ट्रेच करता है बल्कि आपके माइंड ब्रेन साथ ही आपके ब्रेथ को और सोल को भी एक बैलेंस में लाता है। जी हाँ, तो चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे अब किस तरह से इसे किया जाता है, यानी कि इसके कौन कौन से जो है, देखिए इसमें अलग अलग क्योंकि ये डिवाइडेड है, 12 अलग अलग पोजेस में ये डिवाइडेड है। तो अब बात करते हैं क्योंकि स्टेप्स जो है इसके 12 स्टेप है। पहला स्टेप है प्राणायाम यानी कि प्रेयर पोज। सीधे खड़े हो जाएं आप पहले और दोनों हाथों को जोड़ लें, अपने दोनों हाथ जो आपके चेस्ट के बिल्कुल सामने होने चाहिए। ये आता है पहला स्टेप जो है प्राणायाम आसन। और इसके बाद आता है अगला यानी कि स्टेप जो है वो है हस्ताउत्सानासन, यानी कि सांस लेते हुए दोनों हाथ जो है ऊपर आपको उठाने हैं और पीछे थोड़ा सा आपको बेंड करना है। आपकी जो कमर है वो हल्की सी बेंड होगी। अब आपको अपने हाथों को रेज करना है और पीछे की तरफ आपको बेंड करना है। ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप आता है देखिए आपका जो है पादहस्तासन। अब इसमें होता है हैंड टू फुट पोज यानी कि सांस आपको छोड़नी है, आगे झुकना है और हाथ पैरों के पास लेके जानी है। इससे आपकी बॉडी जो है एक अच्छे पोस्चर मेंटेन करती है और धीरे धीरे, मैं ये मानती हूँ कि एकदम से आप जो है बहुत ज़्यादा बेंड नहीं कर पाएंगे, तो धीरे धीरे जिनकी कमर में दर्द रहता है या जिनको कोई भी ऐसी दिक्कत है कमर से जुड़ी हुई या फिर आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी में अभी दिक्कत आ रही है, तो शुरुआत में ये दिक्कत रहती है लेकिन जब आप धीरे धीरे इसे करने लगेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। अब इसके बाद आता है अगला स्टेप जो कि है चौथा स्टेप, और वो है अश्वसंचालनासन। जी हाँ, इसको करने के लिए आपको अपने राइट लेग आपको पीछे लेके जाना है, लेफ्ट लेग आपको फोल्ड करना है और चेस्ट जो है आपको ऊपर रखनी है। और ये है हमारा चौथा पोज। और पांचवा पोज आ जाता है प्लैंक पोज यानी कि दंडासन। दोनों पैर पीछे आपको ले जाने हैं, सीधा बॉडी प्लैंक जो है ये बन जाए, इस तरीके से आपको ये पोज करना है। जिसके बाद सीधा सीधा आते हैं हम अगले हमारे स्टेप पे जो है आपका अष्टांग नमस्कार। जी हाँ, इसमें क्या करना है आपको चेस्ट चिन और दोनों घुटने जमीन पर आपके 8 पॉइंट टच करते हैं। ये है हमारा अगला आसन। इसके बाद आ जाता है कोबरा पोज यानी कि भुजंगासन। इसके बारे में चलिए आपको बताऊंगी लेकिन फिलहाल अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइव। अकेली है,

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ रोजाना। और साथ ही अभी फिलहाल हमारी बात चल रही है सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज में योगासन की, और आपको बता रही हूँ 12 स्टेप जो कि आते हैं सूर्य नमस्कार में। बात कर रहे हैं 7वें स्टेप की, जो है भुजंगासन यानी कि कोबरा पोज। सांस लेते हुए आपको चेस्ट ऊपर उठानी है, और पहले आपको लेट जाना है, उसके बाद जमीन पे, उसके बाद आपको जो है आपको चेस्ट ऊपर लेके जानी है, और हाथ के सपोर्ट से आपको इस तरह से करना है। तो कोबरा पोज जो है ये मेंटेन होता है। इसके बाद आता है माउंटेन पोज, यानी कि आपका जो है वो आता है पर्वतासन, यानी कि हिप्स ऊपर हील नीचे, इन्वर्टेड वी शेप आपको इससे बनानी होती है। जिसके बाद अश्वासन, जालासन एक बार फिर से हम करते हैं 9वें स्टेप में। लेग आपको लेफ्ट लेग, पहले जो है आपने देखा होगा कि हमने राइट लेग से किया था, अब लेफ्ट लेग की बारी, आगे लेके जाना है, और उसके बाद आपका जो राइट लेग है वो पीछे होगा, लेफ्ट आगे होगा। और सेम जैसे कि हमने 4th स्टेप में किया था कि आपको ये फोल्ड करना है, चेस्ट ऊपर की तरफ आपको रखनी है, और ये हमारा हो गया जो नेक्स्ट स्टेप है, यानी कि जो अश्वासन जालासन है इसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद एक बार फिर से आ जाता है यहाँ पर, देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक आसन, और वो है पादहस्तासन। दोनों पैर साथ आपको लेके आने हैं, और उसके बाद झुक जाना है। ये आपके पेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ये आपकी फुल बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। 11वें स्टेप में हम आते हैं हस्तोत्तानासन पे, और सांस लेते हुए आपको फिर से दोबारा से खड़े होना है, और हाथ को ऊपर लेके जाने हैं। जिसके बाद आपके जो 1st स्टेप है वो एक बार फिर से आता है, यानी कि जो प्राणायाम आसन है वो फिर से आता है, फिर से आपको हाथ जोड़ने हैं, और यहाँ पर आप बिल्कुल शांत रहेंगे, और साथ ही ग्रेटफुल भाव के साथ आपको जो है ये जो पूरा सूर्य नमस्कार है इसे ख़त्म करना है। ये सिर्फ एक, देखिए एक पूरा एक पूरा जो स्टेप से बनता है ना, ये पूरा ये 12 स्टेप के साथ एक सूर्य नमस्कार बनता है, और इसी में अगर आप सिर्फ ये एक आसन कर लेते हैं ना, मानो जैसे आपने पूरे योगासन जो है अपने कर लिए हैं, और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा जो है वो ज़रूर मिलेगा। इसके कुछ बहुत ही बेहतरीन अगर मैं आपको बेनिफिट्स बताऊँ तो ये बॉडी का एक कम्प्लीट वर्कआउट है। लेग्स, आर्म्स, बैक, चेस्ट सब जो है इंगेज होता है। इससे आपकी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है, पॉस्चर, और साथ ही कोर स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होती है। सांस के फ्लो के साथ मूवमेंट होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है हमारे लंग्स के लिए, और हमारे ब्रीदिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और ये आपके वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। और जिनको बॉडी टोन करनी है ना अपनी, यानी कि टोनिंग आपको करनी है, आपकी स्किन टोन अच्छी होनी चाहिए, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। माइंड को ये शांति और क्लैरिटी देता है, स्ट्रेस से दूर करता है, और एनर्जी देता है भरपूर मात्रा में। आपके डाइजेशन को बूस्ट करता है, स्ट्रेंथ को आपको बढ़ाता है, और इम्यूनिटी देता है। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात यह है कि रोज़ाना अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपका दिन पॉजिटिव रहता है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब इसी के साथ यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद हम करेंगे और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि अब टाइम जो है ये हो चला है अगले सेगमेंट का। कौन सा है अगला सेगमेंट बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कमाल के गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।
1: Shimaru Vintage से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। रहती हूँ आपके साथ हर दिन, यानी कि डेली आपके साथ 2 घंटे यहाँ रहती हूँ, बहुत सारी करती हूँ बातें। फिलहाल बातें हमारी चल रही हैं क्योंकि अब हमारे अगले सेगमेंट का टाइम है। सेगमेंट का नाम है पावर प्ले विद साक्षी। जी हाँ, पावर प्ले विद आरजे साक्षी में हम करते हैं बहुत सारी बातें स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई, बहुत सारी स्पोर्ट्स अपडेट आपके पास लेकर के जरूर आती हूँ। अच्छा, अब एक आपको बताने वाली हूँ, बहुत ही खास जानकारी आप तक पहुँचाने वाली हूँ। जी हाँ, बात मैं कर रही हूँ एक बहुत ही कमाल के मूवमेंट के बारे में, और ये एक नहीं बल्कि 2 है। सबसे पहले आता है खेलो इंडिया, और इसी के साथ साथ दूसरा है फिट इंडिया मूवमेंट। देखिए, नए भारत का ये स्पोर्टी अंदाज है, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं बल्कि एक विजन है जिससे हमारा देश एक फिट, एक्टिव और स्पोर्ट्स ओरिएंटेड सोसाइटी की तरफ बढ़ रहा है। बात करें खेलो इंडिया प्रोग्राम की, ये लॉन्च हुआ था योर 2018 में। इनिशिएट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। आजकल सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, स्पोर्ट्स भी एक प्रॉमिसिंग करियर बन चुका है, पर कई टैलेंटेड बच्चे सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज, कोचिंग या अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है। इसी गैप को ब्रिज करने के लिए सरकार ने खेलो इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया। जी हाँ, खेलो इंडिया का मेन गोल है ग्रास रूट्स लेवल पर स्पोर्ट्स टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, ट्रेन करना और स्पोर्ट उनको जो है खेलने के लिए सपोर्ट करना। अब होता यह है कि स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक ये स्कीम इंश्योर करती है कि हर एक यंग एथलीट को एक प्लेटफॉर्म मिले जहां वो अपना टैलेंट दिखा सके। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि एनुअल स्पोर्ट्स डे भी किए जाते हैं, तो एनुअल खेलो इंडिया गेम्स स्कूल और यूनिवर्सिटी लेवल का नेशनल गेम्स इनको कहा गया है। इनका ये गेम्स होते हैं जहां देश भर के टैलेंटेड प्लेयर्स कम्पीट करने आते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की जाए तो सिलेक्टेड एथलीट्स को कुछ 5 लाख रुपए पर ईयर तक दिए जाते हैं एज अ स्कॉलरशिप उनको मिलते हैं, और या फिर हो सकता है कि 8 साल तक उनको ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन और इक्विपमेंट्स के लिए भी दिया जाता है। जिन बच्चों में टैलेंट है वो देखिए, टैलेंट जो है कभी छुपता नहीं है, और सरकार इसीलिए ये मूवमेंट को लेके आई है ताकि जो बच्चे टैलेंटेड है वो पीछे ना रहे, हमारा देश आगे बढ़ता रहे। बात करें देखिए यहाँ पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो छोटी सिटीज और टाउन में मॉडर्न स्टेडियम और ट्रेनिंग सेंटर डेवलप किए जा रहे हैं और ज्यादा। इनफैक्ट सर्टिफाइड कोचेस, टैलेंटेड जो स्काउटिंग है और साथ ही परफॉर्मेंस एनालिसिस जैसे फीचर्स से एथलीट्स का होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाता है। ये मूवमेंट सिर्फ मेडल जीतने तक लिमिटेड नहीं है, ये एक माइंडसेट क्रिएट करता है जिसमें हर बच्चा स्पोर्ट्स को सीरियसली जरूर लेता है। तो अगर आप में भी है ये बात तो आप भी जुड़ जाइए इस मूवमेंट के साथ। चलिए, फिलहाल आज हमने जाना है कि ये जो खेलो इंडिया मूवमेंट है ये क्या है, लेकिन इसके साथ साथ एक और मूवमेंट जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो है फिट इंडिया मूवमेंट। इसमें क्या है, ये कब लॉन्च हुआ और इसे किस तरह से जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, और क्यों देना चाहिए और क्यों जरूरी है इसके साथ जुड़ना, चलिए बात करेंगे इस पे। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बातें हमारी चल रही हैं और आपको बता रही हूँ एक बहुत ही खास जानकारी आप तक पहुँचा रही हूँ। अच्छा, हम बात करें हमारे सेगमेंट पावर प्ले विद आरजे साक्षी के, इस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में। अब जी हाँ, खेलो इंडिया मूवमेंट के बारे में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से सरकार जो है, यानी कि हमारी गवर्नमेंट जो है, वो हेल्प कर रही है स्टूडेंट्स की, ना सिर्फ स्कूल लेवल के बल्कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल तक के, कि उनका जो हिडन टैलेंट है वो हिडन ना रहे बल्कि देश के लिए वो देखिए आगे बढ़ते रहे, कोई भी चीज़ की कमी ना हो इस गैप को पूरा करने के लिए, कि उनको सही कोचिंग मिले, सही इक्विपमेंट मिले, सही जगह खेलने के लिए, ताकि वो जो है अपने टैलेंट को और ज़्यादा उभार सके और ज़्यादा जो है वो अच्छे से सीख सके। इसीलिए खेलो जो है मूवमेंट जो है वो लेकर आई। इसी के साथ साथ एक और मूवमेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, और वो है फिट इंडिया मूवमेंट। जी हाँ, फिट इंडिया मूवमेंट जो है ये 29 अगस्त 2019 यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन इसे लॉन्च किया गया, और ये इनिशिएट किया था हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज के देखिए जो फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल है, इसमें फिटनेस एक लग्जरी नहीं, नेसेसिटी बन चुकी है, और इसी थॉट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया फिट इंडिया मूवमेंट। इनफैक्ट देखिए, इस मूवमेंट के लिए पीएम मोदी ने खुद कहा था कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। फिट इंडिया का मकसद है हर भारतीय को हेल्थ और वेलनेस के प्रति अवेयर बनाना, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर कोई ऑफिस गोइंग या कोई रिटायर अगर हो चुके हैं। क्योंकि अक्सर होता है ना कि भाई हम ये सोचते हैं कि खेल कूद वाली बात है तो सिर्फ बच्चों को ही करना चाहिए, हम बच्चों को आगे कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। चाहे आप ऑफिस जाते हैं, चाहे आप घर में हैं, चाहे जो आप हाउस वाइफ हैं, होम मेकर हैं, या फिर आप रिटायर हो चुके हैं, हर किसी को फिटनेस जो है ये ज़रूरी है उन्हीं के लिए, और ये नेसेसिटी हमारी, कोई ये जो है लग्जरी नहीं है, ये हमारी ज़रूरत जो है अब बन चुकी है। अब बात करें इस मूवमेंट के गोल की, तो देखिए फिजिकल फिटनेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, रोज़ाना एक्सरसाइज, योगा, साइकिलिंग और वॉकिंग जैसी डेली हैबिट्स को इंकरेज करना, मेंटल वेलनेस के प्रति थोड़ा सा और सजग होना यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन और हेल्दी रूटीन प्रमोट किए जाते हैं इसी मूवमेंट के अंदर। इनफैक्ट स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिस और मिनिस्ट्रीज सभी को फिट इंडिया सर्टिफाइड जो है बनाया जा रहा है, जहां रेगुलर फिटनेस एक्टिविटीज कंपलसरी कर दी गई हैं। फिट इंडिया मोबाइल ऐप और फिटनेस स्कोर ट्रैकर जैसे टूल्स भी जो है वो लोगों को डिजिटली एक्टिव बनाए रखते हैं। आज हर स्कूल में फिटनेस वीक्स और हर ऑफिस में वेलनेस ब्रेक और साथ ही हर मोहल्ले में मॉर्निंग वॉक क्लब शुरू हो गए हैं। फिट इंडिया अब एक मूवमेंट से ज्यादा एक लाइफस्टाइल जो है ये बन चुका है। जब हर गली में फुटबॉल घूमेगा, जब हर बच्चा योगा करेगा, जब हर स्कूल में एक खिलाड़ी पैदा होगा, तभी तो इंडिया ट्रूली बनेगा फिट भी और हिट भी। चलिए, इसी के साथ ये तो बात रही हमारे आज के सेगमेंट में। देखिए स्पोर्ट्स की हम बात करते हैं, और ये दोनों ही चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना, इस मूवमेंट के बारे में पता होना, स्पोर्ट्स के बारे में। और क्योंकि देखिए यही जो स्पोर्ट्स है ना, पहले कहा जाता था खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन आजकल ये दोनों ही ज़रूरी है। यानी कि अगर आप खेल कूद करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, अपने फोकस उस पर भी रखते हैं, तो दोनों ही चीज़ें हमारे लिए अच्छे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जो अगर अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं तो यही एक करियर ऑप्शन है, बल्कि अब करियर ऑप्शन आपका स्पोर्ट्स में भी है। और इसीलिए सरकार जो है ऐसे कुछ मूवमेंट्स लेकर के आ रही है आपके पास, ताकि आप फिट भी रहे और हिट भी। चलिए इसी के साथ लेती हूँ अब एक छोटा सा ब्रेक, आगे और भी होंगी बहुत सारी बातें, एक बहुत ही खास सेगमेंट जो कि आपके लिए लेकर के आ जाती हूँ, और सेगमेंट का नाम है कौन बनेगा सेहतमंद। तो चलिए जल्दी से अपने मोबाइल फोन्स रखिए तैयार, क्योंकि मैं पूछने वाली हूँ आपसे सवाल, कुछ सवालों के जवाब आप देंगे, और उसके बाद आपको बताने वाली हूँ कि क्या ट्रिक है इसमें, यानी कि कैसे सवाल होने वाले हैं और इससे क्या फायदा आपको मिलने वाला है। बात करेंगे इस पे, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। जी हाँ, बातें हमारी चल रही हैं और अभी बात करें हमारे अगले सेगमेंट की, जो कि है बहुत ही ज्यादा कमाल का। जी हाँ, बात कर रही हूँ हमारे अगले सेगमेंट कौन बनेगा सेहतमंद की। और इस सेगमेंट में आपसे पूछती हूँ कुछ सवाल और आपको दे रही है कुछ जवाब। और जी हाँ, जिसके सवालों के जवाब सही रहे और पूरे महीने आप कंसिस्टेंट होके जवाब देते हैं और सही जवाब देते हैं, तो देखिए मैं आपको बुलाने वाली हूँ रेडियो मानव रचना और आपको मौका मिलेगा यहाँ रह के मेरे साथ लाइव बातचीत करने का और सभी आरजे से मिलने का भी। चलिए इसी के साथ साथ यहाँ पर आज का क्या है पहला सवाल ये आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले भाई रेडी होने का भी वक्त देना होगा, बिल्कुल देना होगा, क्योंकि आपके मैसेजेस आ जाते हैं कि साक्षी पहले बता दो। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अब शुरू होने वाला है हमारे सेगमेंट का पहला सवाल आने वाला है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। Feel good, feel live.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर

आ जाता है हमारा आखिरी, जो कि है कौन बनेगा सेहतमंद। और इसमें हम बात करते हैं इंटरेस्टिंग क्विज आपसे, सवाल जो है वो आपसे पूछती हूँ मैं और जवाब आपको देने होते हैं फटाफट, और जो देगा सही जवाब हर महीने कंसिस्टेंट होके और बिल्कुल सही जवाब देगा उसको मिलेगा मौका यहाँ मेरे साथ लाइव बातचीत करने का, रेडियो मानव रचना आने का और साथ ही सभी आरजे से मिलने का भी। इसी के साथ साथ फिलहाल बातें हमारी चल रही हैं, पहला सवाल आपसे पूछती हूँ और बड़ा ही वैसे तो आसान सा सवाल है लेकिन जरा ध्यान से सुनिएगा आप और इसका जवाब जो है वो दीजिएगा, क्योंकि सवालों के जवाब ना बहुत ही आसान है और आप आसानी से दे भी देंगे। पहेली है बड़ी आसान सी और पहेली है रंग नहीं स्वाद नहीं फिर भी सबसे जरूरी मैं, ना रहूं तो प्यास तड़पाती है शरीर का 70% हिस्सा हूं मैं, बताओ कौन हूं मैं। चलिए ये है आपकी पहेली और इसका देना है आपको जवाब, और जल्दी से झटपट से दीजिए जवाब क्योंकि आपके जवाबों का इंतजार मुझे है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं बड़ी आसान सी आज मैंने पहेली पूछी है, आपको फटाफट से जवाब देना है। नंबर बहुत ही आसान है 8010781078। इसी के साथ एक बार फिर से पहेली मैं दोहरा देती हूँ, रंग नहीं स्वाद नहीं फिर भी सबसे जरूरी मैं, ना रहूं तो प्यास तड़पाती है शरीर का 70% हिस्सा हूं मैं, बताओ कौन हूं मैं। तो जल्दी से झटपट से इसका जवाब देंगे आप और उसके बाद आपको बताने वाली हूं क्यों है ये इतना जरूरी। चलिए बात करेंगे इस पे, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में करते हैं हम बहुत सारी बातें. फिलहाल बात करें हमारे सेगमेंट कौन बनेगा सेहतमंद में. एक बहुत ही खास पहेली मैंने आपसे पूछी है, बड़ी आसान सी पहेली. मतलब इस पहेली में ना जवाब है. अच्छा मैं आपको बता दूँ कि एक बार पहेली मैं दोहरा देती हूँ और उसके बाद आप देखिए जल्दी जल्दी जो जवाब आया ना, जिसका सबसे पहले जवाब आया वो भी आपको जरूर बताऊंगी. पहेली है, रंग नहीं स्वाद नहीं फिर भी सबसे जरूरी मैं. ना रहूं तो प्यास तड़पाती है, शरीर का 70% हिस्सा हूं मैं. बताओ कौन हूं मैं. तो देखिए इसका जो जवाब है ना इसी पहेली के अंदर है. भाई देखिए प्यास जो है ये बहुत ज्यादा हमें लगती है गर्मी के इस मौसम में, और आपको भी ये पहेली सुन के तो लगी गई होगी. जी हाँ, बॉडी का यानी कि हमारे शरीर का 70% पानी जो है ना यही हमारी बॉडी में होता है. जवाब है पानी जो कि है इसका सही जवाब. और जिस जिसने मुझे जवाब दिए हैं, देखिए पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि आप मुझे फटाफट से जवाब भेजते हैं. अब देखिए किसी ने कुछ लिखा है तो किसी ने कुछ लिखा है. किसी ने लिख के दिया है कि हमारी बॉडी में 70% खून होता है, तो किसी ने लिख के दिया है कि पानी होता है. तो भाई जिस जिसने पानी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है. और साथ ही साथ जो सबसे पहला जवाब जिसने मुझे दिया है वो और कोई नहीं, हमारी लिसनर है. जी हाँ, जिनका नाम है मोनिका जी. मोनिका जी आपका जवाब बिल्कुल सही है, सटीक है और बहुत तेजी से आपने दिया है जवाब. देखिए बहुत जल्दी जल्दी आपको अपनी उंगलियां जो है ये चलानी होगी ताकि आप फटाफट से मेरा सवालों का जो है मेरे जवाब आप दे सके, पहेली का जवाब दे सके. तो चलिए कौन बनेगा सेहतमंद में, जो हमने पहला सवाल पूछा उसका जवाब दिया हमारी लिसनर मोनिका जी ने. चलिए एक और आपसे पहेली पूछने वाली हूँ और आपको बता दूँ, देखिए पानी की हम बात करें, पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी सेहत के लिए. और आपको बता दूँ हाइड्रेटेड रहना ज़रूरी है इस गर्मी के मौसम में, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है. और ऐसे में अगर आप सेहतमंद रहेंगे ना तो देखिए आप ही को फ़ायदा है इससे. और पानी पीते रहना है, और ज़रूरी नहीं है कि देखिए आप ना सिर्फ लिक्विड डाइट जो है ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पानी पीते रहे, सिर्फ पानी ही पानी आपको पीना है. आप नारियल पानी भी पी सकते हैं, आप जूस कोई पी सकते हैं. लिक्विड डाइट इंपॉर्टेंट होती है अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए, लेकिन जो पानी काम करता है ना वो और कोई नहीं करता. ऐसा होता है ना कि हमें जब प्यास लगती है तो हमारी जो प्यास है सिर्फ और सिर्फ पानी ही बुझा सकते हैं. आप कितना भी कोई सॉफ्ट ड्रिंक ले लीजिए, आप कोई भी जूस ले लीजिए, लेकिन जो पानी से हमें सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है. पानी की ज़रूरत सभी को होती है, पानी ज़रूरी भी है. चलिए इसी के साथ अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर रहती हूँ आपके पास 9 बजे तक रोजाना, यानी कि अब हफ्ते के 7 दिन आपके साथ रहती हूँ मैं 7 से 9 बजे तक। बहुत सारी हो रही हमारी बातें। सेगमेंट कौन बनेगा सेहतमंद में, मैं आपसे पूछ रही हूँ कुछ पहेलियों के जवाब। और देखिए आप सही सही जवाब तो दे रहे हैं। अब अगली पहेली का वक्त हो गया है और यहाँ पर अगली हमारी पहेली है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सुबह सुबह आ जाऊं तो दिन भर ऊर्जा लाऊं, फिटनेस से मेरा नाता, बताओ क्या हूं मैं कहलाता। ये है ये पहेली और फटाफट से आपको इसका जवाब जो है वो देना है। और आपको बता दूं, मैं एक बार फिर से पहेली दोहरा देती हूं ताकि आपको ये ना लगे कि साक्षी ने पहेली तो बताई लेकिन क्या बताई, हमें याद क्यों नहीं आ रही है। क्योंकि एकदम से हम भूल जाते हैं ना, कभी एकदम से हम याद करते हैं अरे क्या था, फिर एकदम से भूल जाते हैं। चलिए एक बार फिर से दोहरा देती हूँ आपके लिए। सुबह सुबह आ जाऊं तो दिन भर ऊर्जा लाऊं, सुबह सुबह आ जाऊं तो दिन भर ऊर्जा लाऊं, फिटनेस से है मेरा नाता, बताओ क्या हूं मैं कहलाता। अब आपको इस पहेली का देना है जवाब। मैं कर रही हूँ आपके जवाबों का इंतजार, फटाफट से दीजिए जवाब और अभी फिलहाल कहीं मत जाइए। और नंबर एक बार बता देती हूँ आपको फिर से, 8010781078। इस नंबर पे आपको देने हैं जवाब, जो सबसे पहले सटीक जवाब देते हैं देखते कौन है वो लोग। आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैनवरेश्रा 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना आपके साथ रहती हूँ. और आपको बता दूँ, आपके लिए कमाल के प्यारे प्यारे सेगमेंट्स भी लेकर के आती हूँ और उसमें हम करते हैं बहुत सारी बातें. फिलहाल सेगमेंट चल रहा है हमारा कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें हम बात कर रहे हैं एक पहेली जो है मैंने आपसे पूछी है, इसका जवाब जिसने सही दिया, सटीक दिया और रोजाना जो जवाब देगा एक महीने तक रेगुलर रहकर, कंसिस्टेंट रहकर, उसको मौका मिलेगा हमारे रेडियो स्टेशन यानी कि रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम आने का और लाइव बातचीत करने का और हमारे सभी आरजे से भी मिलने का. तो चलिए आप दीजिए पहेली का जवाब. एक बार फिर से पहेली जो है मैं दोहरा देती हूँ. सुबह सुबह आ जाऊं तो दिन भर ऊर्जा लाऊं, फिटनेस से है मेरा नाता, बताओ क्या हूं मैं कहलाता. जी हाँ, इसका जवाब आपको देना था और इसका सबसे पहले जो जवाब दिया है हमारे लिसनर बबलू जी ने जवाब दिया है. जी हाँ, बहुत सारे जवाब यहाँ पर मेरे पास आए हैं लेकिन जो सबसे पहले सटीक सही जवाब आया है वो आया है हमारे लिसनर बबलू जी का, जिन्होंने लिखा है कि ये जो है इसका नाम है व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज. बिल्कुल सही जवाब है आपका. ठीक है, हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है और ज़रूरी है एक्सरसाइज करना. ये हमेशा मैं आपसे कहती हूँ, एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए. ये इनफैक्ट आपकी एक अच्छी हैबिट है. अगर ये इनफैक्ट एक अच्छी हैबिट है अगर आप इसे रोजाना करते हैं, आपकी लाइफस्टाइल जो है ये बदल जाती है. चलिए इसी के साथ यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक. आपका ही मजा आइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम. फील गुड, फील लाइफ.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। जी हाँ, रोजाना सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ, यानी कि हफ्ते के 7 दिन आपके साथ रहती हूँ और इसी के साथ बातें आपसे करती हूँ बहुत सारी। अच्छा, अभी ना मैंने आपको पहली पूछी और कई सारे जवाब भी आपके आए हैं और आपका इस तरह से पार्टिसिपेट करना, देखिए यही इम्पोर्टेंट है कि हम जहाँ भी हम कुछ कर रहे हैं ना, मतलब एक पार्टिसिपेशन तो होना ही चाहिए और साथ ही इससे हमें खुद भी कॉन्फिडेंस मिलता है। तो चलिए, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज बहुत सारी हमने बातें करी हैं, अलग अलग सेगमेंट्स में हमने बहुत सारी जानकारी जो है मैंने आपको दी है और आपने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है। चलिए, इसी के साथ वक्त हो जाता है आपसे इजाज़त लेने का, क्योंकि अब आने वाली है RJ दीक्षा जो करेंगी आपसे बहुत सारी बातें। तो चलिए, अब मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी आपसे कल। तब तक के लिए कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM आपके अपने शहर फरीदाबाद का पहला रेडियो स्टेशन। मैं हूँ दीक्षा आपके साथ, और प्रोग्राम जो हम आपके लिए लेकर आते हैं हर हफ्ते, उसका नाम है सुरक्षा संवाद। एक ऐसा प्रोग्राम जो फरीदाबाद पुलिस के साथ अधिकारियों के साथ बातचीत के द्वारा आप तक लाया जाता है, ताकि आपको मिल सके सटीक जानकारी और आप रह सकें अपने शहर में सुरक्षित। सुरक्षा संवाद में आज हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं, या फिर कुछ ऐसे सुरक्षा संवाद करने वाले हैं जो महिलाओं से जुड़े हैं। वैसे तो महिला दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 8 मार्च को, और बातें होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, बड़े बड़े अवार्ड फंक्शंस होते हैं, और बहुत सारी महिलाओं की जो योग्यता है या उनकी काबिलियत है उसको सराहा जाता है। ये अपने आप में बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन आधी आबादी यानी महिलाएं इस देश में नहीं, इस दुनिया में कहीं ना कहीं विक्टिम्स ऑफ वॉर भी कहलाई गई हैं। दुनिया में कहीं पर भी इतिहास गवाह है युद्ध हुआ है तो महिलाओं पर सबसे पहले अपराध हुए हैं। आज जमाना बदल गया है, युद्ध आज भी है, चाहे न्यूक्लियर की धमकी दी जाती हो या फिर आर्म्स एंड एम्युनिशंस के साथ ज्यादा एडवांस तरीके से युद्ध किए जाते हो, लेकिन फिर भी महिलाओं की कुछ स्थिति ऐसी है जिस पर चर्चा करना, जिस पर बात करना बेहद जरूरी है। हम युद्ध की बात नहीं करें, हम बात करें हैं उन शहरों की जो दुनिया में आगे बढ़ते हुए शहर हैं, जहां पर टेक्नोलॉजी भरपूर है, जहां पर यातायात बहुत अच्छा है और जहां पर सारी सुविधाएं हैं। बस एक चीज की प्रॉब्लम है, खास तौर पर से अगर मैं भारत में दिल्ली एनसीआर की बात करूं, महिला सुरक्षा को लेकर अभी भी कुछ सवालिया निशान लगे होते हैं। अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी 2022 की रिपोर्ट की तरफ गौर करा जाए तो 4,45,256 केसेस आए हैं, और अगर एवरेज देखा जाए तो 51 कंप्लेंट्स पर आवर के हिसाब से निकलती हैं। समझ रहे हैं, हर घंटे हमारे देश में 51 कंप्लेंट्स जो होती हैं वो सिर्फ महिलाओं के अपराध के लिए होती हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं तो रेप, किडनैपिंग या फिर डोमेस्टिक वायलेंस और असॉल्ट के केसेस मुख्यतः शामिल होते हैं। अब ये जो आंकड़ा है ये दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसी जगहों को हाईलाइट करता है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं से जुड़े हुए अपराध ज्यादा नोट किए गए हैं या फिर ज्यादा रिपोर्ट किए गए हैं। आज महिला सुरक्षा को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं हमारी खास मेहमान से, इंस्पेक्टर माया, जो कि वुमेन सेल NIT की SHO हैं, और सुरक्षा संवाद में आज हमारी खास मेहमान है, जिनसे हम बहुत सारे सवाल जानने वाले हैं और बहुत सारे जवाब इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर ही लेकर आई हैं, क्योंकि ये वो शख्स हैं जो दिन भर या फिर मैं कहूँ दिन रात 24 घंटे महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य कर रही हैं, और अनगिनत केसेस ये अपनी आंखों से देखती हैं रिपोर्ट होते हुए और उनको सॉल्व भी करती हैं। तो माया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो माया जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम बातचीत को आगे बढ़ाएं, आप एक SHO हैं NIT फरीदाबाद के महिला थाना में, और ये एक ऐसा थाना है जहां पर मैंने देखा अक्सर भीड़ लगी रहती है, क्योंकि मैं भी जानती हूं इस जगह के बारे में, तो वहां पर हमेशा गाड़ियां खड़ी रहती हैं, वहां पर हमेशा लोग आते रहते हैं, एक रश वाला महिला थाना माना जाता है। तो एक SHO की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या ड्यूटी होती है, क्या रोल होता है, पहले तो वो बताएं।
1: जी, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि महिला थाना NIT जो है वो हर वक्त भीड़ से मतलब भरा ही रहता है, क्योंकि महिला थाना NIT पूरे NIT जोन का एक ही महिला थाना है, और इसमें काफ़ी गांव मतलब यहां से लेकर धोस तक के एरिया के गांव इसमें आते हैं। तो जो भी महिलाएं आती है वो सबसे पहले अपनी रिपोर्टिंग जो करती है वो महिला थाना में ही करना चाहती हैं।

0: जी देखिए, इसमें प्रबंधक अफसर मतलब मेरा इसमें सबसे बड़ी ड्यूटी ये रहती है कि मैं जो मेरे सबॉर्डिनेट हैं उनके लिए भी एक ही एडवाइस है कि कोई भी महिला किसी भी टाइम आती है तो उसकी बात को अच्छे से सुना जाए, उसको न्याय दिया जाए, उसके साथ चाहे कैसी भी घटना है, चाहे मारपीट की है, चाहे बलात्कार की है, और चाहे किसी फोन के द्वारा कोई मैसेज या धमकी भरे इस तरह ब्लैकमेलिंग की है, तो मेरा सबसे पहला तो यही वो रहता है कि कोई भी महिला यहाँ से बिना न्याय मिले जाए ना, और उसको यहाँ से जिस आशा को लेकर वो आई है वो उस पर हम पूरी तरह खड़े उतरे, और क्योंकि अगर हमारा इस तरह से भूमिका नहीं रहेगी तो महिलाओं में जो डर है वो बना ही रहेगा, जिसको खत्म करने के लिए ये महिला थाने जो है खोले गए थे।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि महिला थाना खोलने का भी एक
1: मतलब
0: पर्पज रहा है कि पहले महिलाएं जो पीड़ित महिलाएं होती थी वो जेंट्स को जो क्योंकि अधिकतर जो थानों में है वो जेंट्स ही होते हैं, आईओ जो होते हैं, तो जो भी विक्टिम जाती थी वो खुल के अपनी बात नहीं बता पाती थी। अब महिला थाने खुलने के बाद महिलाएं अपनी बात को अच्छी प्रकार से वहाँ रख सकती हैं, और मैं बिल्कुल अपने जो मेरे आयु हैं वो बिल्कुल उनकी बातों को सुनते हैं, मैं भी उनकी जो पीड़ित है उनकी बातों को सुनती हूँ, और फिर उनको जो भी नियमानुसार जो कार्रवाई अमल में लाई जाती है वो हम तुरंत तरीके से लाते हैं।
1: जी जी माया जी, बहुत सारी बातें हम आपसे जानना चाहते हैं, लेकिन फरीदाबाद का जब नाम आता है तो महिला सुरक्षा को लेकर प्रश्न तो उठता ही है, क्योंकि दिल्ली NCR ऐसी जगह है जहां पर दिल्ली में निर्भया कांड हुआ, जिसके बाद हर इंसान की जो कहते हैं रूह तक कांप गई कि ऐसा अपराध भी हो सकता है। 2012 के बाद, ये 2012 की बात है, जिसके बाद बहुत सारी वेब सीरीज भी बनी इस तरीके की वुमेन सेफ्टी को लेकर, लोगों में जागरूकता भी आई, बट हाल ही में कुछ ऐसे केसेस हुए हैं दिल्ली NCR में ही, जहां पर नोएडा में एक बहू को जला दिया जाता है और उसकी वीडियो तक वायरल हो जाती है, और फिर उसके बाद केस जो है वो आगे चलता है। इसके अलावा फरीदाबाद की अगर मैं बात करूं तो एक केस अभी थोड़े टाइम पहले आया था, जहां पर बहू को घर के सामने ही गड्ढा खोद के उसकी डेड बॉडी को गाड़ दिया और उसकी मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज करा दी, ये केस भी फरीदाबाद का है। दूसरा एक हाईलाइट हुआ केस जहां पर लड़की को किडनैप कर लिया गया, चलती गाड़ी में उठा के ले गए। अब इनकी सच्चाई क्या है, किस तरीके के केसेस होते हैं, तो वुमेन सेफ्टी को लेकर फरीदाबाद में अभी परिस्थिति क्या है?
0: देखिए, फरीदाबाद में वुमेन सेफ्टी को लेकर हमें समय समय पर हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वो दिशा निर्देश भी देते रहते हैं
1: जी।
0: और वो दिशा निर्देश यही है कि जो भी विक्टिम है सबसे पहले उसको सुना जाए, उसकी सच्चाई को सामने लाया जाए, और फिर जो आरोपी है उसको बिल्कुल भी बख्शा ना जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देखिए, जैसे आपने अभी बताया कि फरीदाबाद का एक केस था कि जिसमें एक महिला मतलब रात में घर से निकली और उसको फिर दो व्यक्तियों के द्वारा मतलब लिफ्ट दी गई, तो मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि वो केस बिल्कुल सच्चा था, और लेकिन उसमें अपराधियों को तुरंत पकड़ा भी गया, तो ये पुलिस की ही एक बड़ा प्रयास और पुलिस की कड़ी मेहनत से ये सारी सफलताएं मिलती हैं। तो फरीदाबाद पुलिस जब भी इस तरह का कोई क्राइम होता है तो ऐसा नहीं है कि वही थाना सिर्फ उस पर कार्रवाई करता है, बल्कि पूरी पुलिस उस पर, जैसे CIA है तो वो सारी टीम लगकर, हमारा एक ही मतलब उद्देश्य होता है कि जो आरोपी है वो मतलब छूट ना जाए या कहीं भाग ना जाए।
1: जी जी, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जैसे हम बाहर के देशों में जाते हैं तो वहां पर सड़क पर निकलते हुए घबराहट नहीं होती, रात को भी आप निकल रहे हैं, ऑल्दो क्राइम वहां भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि वहां नहीं होते, लेकिन फिर भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है कि यहाँ पर जिंदगी जो है इतनी ज्यादा सस्ती नहीं है। लेकिन अपने देश में राजधानी के साथ सटे हुए वो शहर जो देश की इकोनॉमी में बड़ा योगदान देते हैं, वहां पर लेडीज को आज भी या तो गर्मियों की दोपहर हो तो निकलते हुए, क्योंकि सुनसान रोड होती है तो डर लगता है, हालांकि आबादी बहुत है फिर भी कहीं ना कहीं डर लगता है, सो ऐसा क्यों होता है?
0: देखिए, इस बात का जवाब मैं इस तरह देना चाहूंगी कि एक तो फरीदाबाद में जो पॉपुलेशन है वो मतलब सिर्फ एक फरीदाबाद लोकेलिटी की ही नहीं है, मतलब बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, मतलब हर जिले से, हर स्टेट से लोग यहाँ आकर बसे हुए हैं, और जबकि पुलिस के द्वारा ये बार बार अभियान चलाया भी गया है कि जो भी अपने किराएदारों को रखे हुए हैं तो उसकी वेरिफिकेशन करवाएं, लेकिन ये कुछ एक जो इस तरह की घटनाएं होती हैं इसमें सबसे बड़ा मतलब कमी हम पब्लिक की मानते हैं कि वो अपने घर में रखे हुए किसी भी मतलब किसी को भी रखते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को नहीं देते,
1: किराए पर
0: रखते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी पुलिस को नहीं देते, और एक ऐसा ही व्यक्ति मतलब क्राइम करके फिर भाग जाता है, और ये फिर जब खबर आती है या पुलिस तक खबर पहुंचती है फिर हम उसमें लगते हैं, लेकिन फिर वो एक डर का माहौल तो बिल्कुल बनेगा, क्योंकि आए दिन जैसे ऐसी घटनाओं को प्रकाशित किया जाता है न्यूज़पेपर के द्वारा, लेकिन पुलिस अपना पूरा प्रयास करती है इसको कि इस तरह

0: कोई भी घटना घटित ना हो। और फरीदाबाद पुलिस के द्वारा मतलब कॉलोनियों में भी और स्कूल कॉलेजेस में भी इस तरह के आयोजन किए जाते हैं, जिसमें बताया जाता है कि आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 112 नंबर सभी को बताया जा रहा है, उसकी जानकारी दी जा रही है। लेकिन थोड़ा सा मतलब पब्लिक की स्ट्रेंथ को लेकर और एक पुलिस की जो संख्या है उसको लेकर थोड़ा सा ये एक गैप है कि क्योंकि पुलिस हर जगह हर समय मौजूद नहीं हो सकती।
1: तो अवेयरनेस अपने आप में आम जनता को
0: बिल्कुल वो पुलिस के द्वारा चलाया जाता है समय समय पर।
1: बहुत सारी हमारे यहाँ कॉलोनीज हैं, मैं नाम अगर लूँ तो संजय कॉलोनी है, एसडीएम नगर जिसको कहते हैं, डबुआ है, पाली है, ये सारे एरियाज वहाँ है जहाँ पर छोटे छोटे घर बने हुए हैं
0: बिल्कुल,
1: और एक एक घर में 5-5 किराएदार रह रहे हैं, यानी एक एक कमरा जो है वो दिया गया है। ज्यादा इसमें मजदूर वर्ग होता है या फिर अलग अलग जगह से आए हुए वो लेबर हैं जो इधर उधर काम करने जाते हैं, और इनके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होता। जो आप कहना चाह रही हैं कि हमने कहीं पर भी कोई दर्ज नहीं कराया हुआ है कि इनका नाम क्या है, इनका आधार कार्ड या वेरिफिकेशन नहीं है, सो वो कैसे कराएं, क्योंकि लोग अभी भी नहीं कराते। और हम कॉलोनीज को छोड़ दें तो मैंने बड़े बड़े घरों में देखा है वहां कोई ऐसे वेरिफिकेशन नहीं कराता है।
0: देखिए ये पुलिस के द्वारा एक पखवाड़ा भी चलाया जाता है कि जो भी मतलब जिनके घर में भी किराएदार रहते हैं, अभी पीछे जो हुआ जैसे कि ये एक पखवाड़ा चला था पीछे कि जितने भी मतलब बाहर से आए हुए लोग रह रहे हैं तो क्या आपने उसकी वेरिफिकेशन करवाई है, लेकिन एक बहुत बड़ा मतलब नंबर निकल के आया सामने कि
1: नहीं कराई हुई थी।
0: और ये बिल्कुल ठीक बात है कि संजय कॉलोनी जो है वहाँ पर मैं खुद बताना चाहूँगी कि मेरे पास पूरी रात फ़ोन बजते रहते हैं कि मेरा पति पीट रहा है या मेरी बेटी आज घर नहीं आई है। तो संजय कॉलोनी का जो नाम है वो सबसे ऊपर बिल्कुल ठीक लिया है
1: एनआईटी एरिया में।
0: हाँ हाँ, तो संजय कॉलोनी में इस तरह का ये घटनाएं होती रहती हैं, और वो शायद इसलिए होती हैं क्योंकि वो लोग अवेयर ही नहीं हैं, और उनको अगर हम पुलिस अवेयर भी करना चाहती हैं तो भी वो नहीं होना चाहते, तो ये एक उनकी सोच पर भी निर्भर करता है। लेकिन जब भी वो पुलिस के पास आते हैं तो पुलिस उनके साथ खड़ी है, उनकी सहायता के लिए हमेशा खड़ी है।
1: जी जी, ये तो बात हो गई किराएदारों की। और जैसा कि अभी हाल ही में हमने थोड़े टाइम पहले देखा भी था, अल्फला यूनिवर्सिटी में जो केसेस निकले वहां पर भी जो किराएदार थे, जो प्रोफेसर्स थे या डॉक्टर्स थे, उनके भी कहीं पर भी कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई थी। सो ऐसे मैटर से बचने के लिए भी मुझे लगता है कि जरूर कराना चाहिए, ऐसे केसेस ज्यादा दिक्कत दे सकते हैं आगे जाकर।
0: बिल्कुल, ये देखिए ये जो दिशा निर्देश है ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से ही है सभी मकान मालिकों, सभी स्कूल कॉलेज को कि भाई अपने यहाँ पर जो भी कार्यरत है उनकी वेरिफिकेशन आप करवाए, और कंपनी के लिए भी ये एक मतलब दिशा निर्देश जरूर दिया जाता है। लेकिन लोग अपनी जिम्मेवारी निभाने शायद पीछे हटते हैं, लेकिन अभी पीछे पुलिस ने अल्फला यूनिवर्सिटी में ये जो मतलब हादसा हुआ तो इसके बाद पुलिस ने खुद घर मतलब डोर टू डोर जाकर लोगों की वेरिफिकेशन की है और मतलब सबको अवेयर भी किया है। तो ये पुलिस मतलब समय समय पर करती रहती है इस तरह के प्रयास। लेकिन हमारी तो एक मतलब पब्लिक से भी, आम पब्लिक से भी हम यही गुहार करते हैं कि आप हमारे साथ खड़े रहकर इस काम में हमारी मदद करें।
1: जी बिल्कुल,
2: तो बहुत सारी बातें आज हम कर रहे हैं इंस्पेक्टर माया से, जो कि SHO हैं वुमेन सेल NIT फरीदाबाद की, और बहुत सारी बातें हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक SHO की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एक आम महिला किस तरीके से खुद को सशक्त महसूस कर सकती है। बातें करेंगे और भी बहुत सारी, लेकिन वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। मैं हूं दीक्षा, आपके साथ सुन रहे हैं आप प्रोग्राम सुरक्षा संवाद।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपके अपने शहर का पहला रेडियो स्टेशन. और हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम सुरक्षा संवाद में. आज SHO वुमेन सेल फरीदाबाद NIT इंस्पेक्टर माया जी से, जिनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर महिलाएं इस शहर में कितना सुरक्षित महसूस करती हैं. और महिला दिवस तो हम मनाते हैं, लेकिन क्या महिलाओं की वो बेसिक सुरक्षा जो उनके घर, उनके रास्ते या उनके ऑफिस, हर जगह पर उन्हें महसूस होनी चाहिए, क्या उन्हें मुहैया कराई जा रही है? और अगर नहीं तो फिर वो अपना हक कैसे ले सकती हैं? बहुत सारी बातें जारी हैं हमारी.
1: अब बात करते हैं कुछ ऐसे कंप्लेंट्स की जो अक्सर आती हैं आपके पास. हमने जो देखा है या जो आंकड़ों में देखा है, ज़्यादातर रेप के केसेस हैं या डोमेस्टिक वायलेंस है या किडनैपिंग के मामले हैं. और किस तरीके के मामले सबसे ज़्यादा आप डे टू डे रूटीन में देखती हैं?
2: देखिए, ये रेप केसेस जो है महिला थाने में आते हैं, बिल्कुल आते हैं. उसमें सबसे ज़्यादा ये होता है कि कुछ बच्चे जो 2 या 3 साल तक साथ रहते हैं, फिर वो शादी के लिए लड़का मना कर देता है, तो इस तरह का रिपोर्टिंग ज़्यादा है. लिव इन वाला हम उसको बोल सकते हैं, लेकिन कानून के उसमें ये अपराध है. तो हम उसको बिना, मतलब लड़की की सुन के बिना देरी के उसको दर्ज करते हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं. और अगर लगता है कि लड़की बिल्कुल सच बोल रही है तो हम अपराधी को तुरंत गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर देते हैं. लेकिन अगर लड़का फिर भी अपनी मतलब बचाव पक्ष में कोई भी साक्ष्य सबूत रखता है तो हम उसके साथ भी ऐसा कोई अन्याय नहीं करते कि उसकी ना सुनी जाए. लेकिन मैं मतलब बोलना चाहूँगी कि जो लड़कियाँ हैं वो 4-4 साल अगर साथ रहती हैं तो उनको फर्स्ट डे ही, बिल्कुल अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो वो फर्स्ट डे ही आकर मतलब उसकी आवाज़ उठाएं. और महिला थाने में डोमेस्टिक वायलेंस जो आज के दिन बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं, क्योंकि उसका एक रीज़न है कि लोग शायद आज भी महिलाओं को कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि वो दबके ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है. तो क्योंकि जब हम काउंसलिंग करते हैं तो हमारे सामने ये विचारों का मतलब एकदम से उनका आमना सामना हम करवाते हैं, तो पुरुष जो है उनका विचार ये निकल के आता है कि मैं इससे नौकरी नहीं करवाना चाहता, और ये फिर भी जाती है. तो इस बात को भी लेकर डोमेस्टिक वायलेंस जो है एक बड़ा रूप ले लेता है
1: जी.
2: और फिर महिला को हार थक के हमारे पास आना पड़ता है.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
2: और महिला थाने में पॉक्सो केस जो है, बच्चों से संबंधित केस, वो भी बहुत ज्यादा आजकल, क्योंकि उसमें ये होता है कि बच्चों के साथ बैड टच बहुत ज्यादा,
1: बहुत कॉमन हो गया.
2: हाँ, बहुत कॉमन हो गया है. और ये सिर्फ हम अवेयरनेस से ही इसको दूर कर सकते हैं, या हम माँ बाप को भी अवेयर करते हैं, बच्चों को भी अवेयर करते हैं, तो ये हमारा प्रयास जारी रहता है
1: जी. जैसे नोन लोग जो हैं, आपके जान पहचान के लोग हैं, अगर वो भी कुछ ऐसा कर रहे हैं तो बच्चों को पता होना चाहिए और पेरेंट्स को पता होना चाहिए.
2: ये देखिए, हम नुक्कड़ नाटक के द्वारा भी स्कूलों में इस तरह से बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं
1: जी.
2: और एक खुले शब्दों में भी मतलब थोड़ा सा जैसे देख लेते हैं कि बच्चा किस तरह से समझेगा. तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हम बच्चों को समझाएं कि आपके साथ बैड टच कब कब होता है और बैड टच होता क्या है. तो बच्चों को ये समझाने का प्रयास किया जाता रहा है पुलिस के द्वारा भी, और टीचर को भी हम काफी मतलब काउंसलिंग करके समझाते हैं
1: जी, जी.
2: और पेरेंट्स को भी
1: जी जी. माया जी, पिछले कुछ समय में बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है कि बदलाव आया है. पहले कंप्लेंट्स बहुत कम नोटिस होती थी, शायद सोशल मीडिया की वजह से या अवेयरनेस की वजह से. अब क्या सिनेरियो है, कंप्लेंट ज्यादा आती है, अवेयरनेस ज्यादा है महिलाओं में?
2: मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि अब महिलाएं जो है अपनी कंप्लेंट करने से बिल्कुल भी डरती नहीं है. उसका एक रीजन ये है कि क्योंकि उनको पता है कि उनके जिले में जो है महिला थाना है, और महिला थाना उनके लिए ही खुला है, क्योंकि मतलब बार बार जैसे दुर्गा शक्ति है, 112 की गाड़ियां हैं, तो और स्कूलों में ज्यादातर महिला थाना ही जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम करता है, तो उसके कारण ये बिल्कुल ठीक है कि कंप्लेंट अब ज्यादा आने लग गई है, चाहे वो फोन के द्वारा है, चाहे मेल के द्वारा है, और चाहे 112 पे, चाहे सीधे तौर पर थाने में आकर दी गई हो
1: जी. मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इतनी कंप्लेंट्स आती हैं, ऑन एन एवरेज एक दिन में कितनी कंप्लेंट्स आती होंगी आपके पास?
2: देखिए, अगर मैं अपने थाने का पिछले महीने का जनवरी का मैं बताऊं तो 70 कंप्लेंट जो है मेरे पास डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड मुझे मिली है, और उन पे फिर वुमेन सेल जो है हमारा वो काम करता है. उन वहाँ पर एक अलग सेल बनाई हुई है थाने में, तो उसके उनके द्वारा वहाँ पर काम किया जाता है,
1: काउंसलिंग करना
2: बिल्कुल
1: जी जी. तो 70 कंप्लेंट सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस की,
2: सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस.
1: और आपका जो स्टाफ है वो कितना है, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि लोगों को लगता है कि पुलिस खाली बैठी हुई है. बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि पुलिस वाले जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, और ये एक आम धारणा बनी हुई है.
2: देखिए जो पब्लिक, जो जनता, जो इंसान महिला थाने में या किसी भी थाने में आता है, तो अगर वो वहाँ पर 3 या 2 घंटे भी रह जाता है तो उसकी समझ में आ जाता है कि पुलिस बहुत काम कर रही है। क्योंकि महिला सेल में मैं बता देती हूँ कि एक ASI सोनिका जो पोस्टेड है और उसके हमने उसकी मदद के लिए 2 लेडी कॉन्स्टेबल वहाँ बिठा रखी हैं। तो देखिए 70 कंप्लेंट पे मतलब 1 दिन में 10 लोगों को हम बुलाते हैं तो वो 50 की भीड़ आती है, लेकिन उसको सुन रही होती है एक हमारी आईओ, और फिर उसके बाद मैं सुनती हूँ। तो मतलब 10 को सुनना और फिर उससे अलग भी केसेस हमें सुनने होते हैं। तो महिला थाने में 25-26 का स्टाफ है, लेकिन उसमें जो आईओ है वो 8 या 9 ही काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है, लेकिन शायद हमें मतलब इस तरह से काम करने में कोई परेशानी नहीं आती है क्योंकि हम अपना मैनेज करके रखते हैं। लेकिन बस ये ही हम ध्यान रखते हैं कि कोई भी बिना सुने चला ना जाए।
1: बिल्कुल। अब ये कैसे आप पता लगाती हैं, क्योंकि बहुत सारी फेक कंप्लेंट्स भी आती हैं आज के टाइम पे। हमने बहुत कुछ देखा है इंटरनेट पे और बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं, हाईलाइट हो जाते हैं मीडिया में, जो फेक होते हैं। ज़्यादातर डिवोर्स केसेस में हमने ये देखा है, बहुत सारे ऐसे हमने देखे हैं जहाँ पर डोमेस्टिक वॉयलेंस के ज़रिए महिलाएं जो हैं आजकल थोड़ा पुरुषों पर भी इल्ज़ाम लगाती हैं जो जेन्युइन नहीं होते हैं। वो कैसे आप पता लगाती, क्योंकि इनमें समय बहुत वेस्ट होता है अगर कंप्लेंट फॉल्स हो तो।
2: बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल ठीक बात है कि कुछ कंप्लेंट बिल्कुल ही निराधार

0: उसको फाइल पे लेते हैं। और ऐसा एक तो देखिए पुलिस का जो आईक्यू लेवल है वो बहुत हाई लेवल का होता है, ये मैं बिल्कुल, क्योंकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि पुलिस के पास कोई ऐसी डिग्री है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस भी होता है, 25-25 साल की नौकरी है,
1: बिल्कुल।
0: तो वो दिन प्रतिदिन हमारा यही काम है, और मेन फोकस हमारा होता है सबूतों पे और गवाहों पे, तो हम डिसीजन ले पाते हैं
1: जी। यानी हर केस के लिए इन्वेस्टिगेशन जरूरी है,
0: बिल्कुल,
1: और उसके बाद जो है वो कदम उठाते,
0: क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करके ही सच और झूठ का पता लगाया जा सकता है। और पुलिस का एक ही मेन मतलब हमारी सोच होती है कि कोई निर्दोष अंदर जाए ना और दोषी छूटे ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो बहुत सारी बातों का जिक्र और भी चलता रहेगा, आपके अगर प्रश्न है या आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लग रही है तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। नंबर बहुत आसान है 8010781078, या फिर हमारे इंटरनेट रेडियो ऐप रेडियो मानव रचना को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिए, और ये सारा पॉडकास्ट जो है वो आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिसे इस जानकारी की बहुत ज़रूरत हो, क्योंकि पुलिस जब आपके साथ सहयोग में होती है तो डेफिनेटली आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, आप एक सशक्त महिला भी बन जाती हैं। तो ये जानकारी ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। मैं हूं दीक्षा आपके साथ, प्रोग्राम का नाम सुरक्षा संवाद।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 FM आपके अपने शहर का पहला रेडियो स्टेशन। मैं हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है सुरक्षा संवाद, जिसे हम लेकर आए हैं फरीदाबाद पुलिस के साथ सहयोग से। और आज हम बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा के बारे में कि महिला फरीदाबाद में अगर अपने घर से बाहर निकल रही है तो कितना सुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि हाल ही में हुए कुछ ऐसे केसेस हैं जो पिछले कुछ समय से हाईलाइट हुए हैं, लेकिन उसमें गलती किसकी थी, क्या गलती परिवार की थी, क्या गलती उस महिला की या फिर उस बेटी की थी, या फिर गलती है सड़क पर चलने वाले उस पुरुष की जो हर महिला को अपनी जायदाद समझ लेता है। बातें करें हैं बहुत सारी। माया जी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, जो कि SHO हैं महिला सेल NIT फरीदाबाद में। माया जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी कि महिलाएं जो होती हैं, बहुत आपके पास बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स आती होंगी जहां पर अपराध होने के कई सालों बाद लड़कियां या महिलाएं आती हैं कंप्लेंट लेकर। डोमेस्टिक वायलेंस शादी के अगले दिन से ही शुरू हो जाता है कईयों के साथ, या फिर इतना ज़्यादा उन्हें ट्रॉमेटाइज किया जाता है, लेकिन वो उठ के आती हैं जब बात बहुत आगे बढ़ जाती है, तब तक वो सहनशीलता से सहती रहती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में केसेस देखे हैं, लिव इन में भी ऐसे, जैसे आपने बताया कि बहुत बार ऐसा कुछ होता है। सो एक लेडी को, एक या फिर एक टीनेजर है, बच्ची ही है, उसे कब आपको अप्रोच करना है, कौन कौन सी परिस्थिति में, चाहे वो रेप का केस हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो पॉक्सो में आ रहा है, बैड टच गुड टच की हम बात करें, कब आपके पास आना है?
1: देखिए, जब भी किसी महिला या बच्चे के साथ या लड़की के साथ जब भी फर्स्ट टाइम कोई मतलब अपराध हो रहा है, चाहे उसको धमकाया जा रहा है, चाहे उसको दबाया जा रहा है, या उसके साथ मारपीट है, तो मुझे लगता है कि उनको फर्स्ट डे ही उस चीज के लिए आवाज उठानी चाहिए। अगर वो फर्स्ट डे ही आवाज उठाएगी तो उसका मतलब जो है उसके साथ इतना बड़ा अपराध होने से भी बचेगा, और पुलिस जो है अपनी कार्रवाई को मतलब एक सबूतों के साथ बहुत अच्छे से मतलब उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो फर्स्ट डे ही किसी के साथ कुछ भी बुरा होता है तो पहले ही दिन आवाज उठाएं और अपनी मदद मांगे।
0: जी जी, यानी अगर घर में आपके साथ कोई बदतमीजी हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में अगर कुछ आ रहा है, कोई आप पर हाथ उठा रहा है, तो ये आपके लिए एक रेड फ्लैग है, इसको समझिए और कंप्लेंट जो है वो दर्ज कराइए। माया जी, आपने लिव इन के बारे में अभी बात करी थी, और लिव इन के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, लिव इन रिलेशनशिप्स मेट्रो सिटीज में डे बाय डे कॉमन होते जा रहे हैं। कॉलेज के बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स लिव इन रिलेशनशिप में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में होते हैं, चार चार पांच पांच साल रहते हैं और फिर वो रिश्ता खत्म हो जाता है। फिर अचानक से कहीं पे कोई उनमें, बहुत सारे अखबार में हम केसेस पढ़ते हैं जहां पर मर्डर्स हो जाते हैं, रेप्स हो जाते हैं। सो ये कैसी सिचुएशन हो जाती है, क्या इसके लिव इन के नेगेटिव्स क्या सामने आते हैं आपके सामने?
1: देखिए, जितना इन्वेस्टिगेट मैंने किया है, क्योंकि मैं पर्सनली हर केस को देखती हूँ, तो हर लड़की को मैं सुनती हूँ, तो कुछ एक में तो बहुत ज़्यादा ये बिल्कुल ठीक लड़कियाँ रोती हैं कि मतलब मैं 4 महीने से इसके साथ थी या 2 साल से इसके साथ थी, लेकिन मैं अब बात नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इसकी हैबिट का, इसके बैकग्राउंड का, इसकी आदतों का पता लग गया है कि ये गलत लड़का है, और अब मैं जब इससे पीछे हटना चाहती हूँ तो ये मुझे मेरी वीडियो दिखाता है, क्योंकि आजकल एक ये बड़ा चलन में है कि हर लड़का मतलब अपने फ़ोन में लड़कियों की फ़ोटो मतलब रिलेशन बनाते समय तक की वीडियो जो है वो रख लेते हैं, और फिर जब लड़की मतलब बैक होना चाहती है तो वो उसको दिखा के ब्लैकमेल करते हैं। तो मतलब हम 100% इसको झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ एक में सबूत मिलते हैं तो हम बिल्कुल लड़की का साथ देते हैं और जो लड़के को पकड़ के बिल्कुल उसको सजा दिलवाते हैं। लेकिन कुछ एक में क्या होता है कि लड़का शादी करना चाहता है, लड़की बिल्कुल ये कि नहीं मैं नहीं करना चाहती हूँ, और फिर वो रिपोर्टिंग करती है, तो हम ऐसे केस में बिल्कुल मुकदमा दर्ज हम जरूर करते हैं लड़की के बयान पर, लेकिन जो सच्चाई होती है उसके आधार पर ही, हम अगर झूठा है तो झूठा है, फिर हम लड़की के खिलाफ भी कार्रवाई कर देते हैं।
0: जी,
1: 182 बिल्कुल,
0: यानी अगर कोई लड़की फॉल्स केस करी है तो उसके अगेंस्ट
1: उसके बिल्कुल हम अगेंस्ट 182 की कार्रवाई करते हैं, 217 BNS की।
0: और इसमें क्या प्रावधान होते हैं?
1: इसमें 6 महीने तक की सजा होती है, और अगर कोर्ट चाहे तो उस पर एक फाइन भी रख सकती है।
0: जी, यानी जो लड़कियां फॉल्स केसेस जो करती हैं लड़कों पर, उनको भी सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि आप पर भी उल्टी कार्रवाई हो सकती है, और फिर लड़के का नुकसान हो या ना हो, आपका नुकसान बड़ा हो सकता है। सो फोटो शेयर करने वाली एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको हम साइबर फ्रॉड के अंडर भी रखते हैं। बहुत सारे ऐसे हमने केसेस भी सुने हैं जहां पर लड़कियों को उनकी फिल्म, उनकी वीडियो के जरिए जो ब्लैकमेल किया जा रहा है, ऑनलाइन डाल दी जाती हैं पिक्चर्स, वायरल हो जाती हैं और फिर लड़की कोई गलत कदम उठा लेती हैं। तो साइबर के तरीके से कैसे उनको, लड़कियों को, लेडीज़ को जो है फंसाया जाता है?
1: देखिए, अभी जितने भी केस हैं, मतलब ये साइबर, मैं इसको कम मानूंगी, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसमें हम उसको दर्ज करते हैं और उसमें इंस्पेक्टर लेवल का ही जो अधिकारी होता है वो इन्वेस्टिगेट करता है। तो मैंने खुद से ऐसे केसेस, 12 केसेस अभी मैंने किए हैं और अभी हाल ही में मतलब 2-3 केस ऐसे हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है कि ये लोग जो है किसी वेबसाइट पे मतलब दोस्ती करते हैं, तो वेबसाइट पे दोस्ती करना मतलब वो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि एक अनजान, वहाँ पर अनजान लोगों का ग्रुप है, कौन है क्या है, वो बस कुछ तारीफ करके लड़कियों को अपने झांसे में लेते हैं
0: सोशल मीडिया
1: से। तो इंस्टाग्राम जो है इसका सबसे बड़ा मतलब एक सामने आता है, चैनल सामने आता है कि इस पे सबसे ज्यादा, और फिर लड़कियों के फोटो को एडिट करके उनको डराया धमकाया जाता है, तो लड़कियां बताती नहीं है डर के मारे। उसमें स्कूल के भी बच्चे हैं और कुछ, एक मतलब एक बैंक मैनेजर का भी केस मेरे सामने आया, तो मतलब बड़ा अचंभा होता है कि एक बैंक मैनेजर होने के बावजूद भी मतलब आप इस तरह के क्राइम को सहते आ रहे हैं और एक साल बाद आप आवाज उठा रही हैं।
0: मैं चाहूंगी आप थोड़ी केसेस भी इलैबोरेट करें, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, वो इनसे सतर्क हो जाए।
1: देखिए, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है, मतलब जिसको हम साइबर फ्रॉड भी कह सकते हैं, क्योंकि सबको साइबर फ्रॉड का ज़्यादा मतलब एकदम से क्लिक होता है दिमाग में, लेकिन जब भी किसी लड़की की फ़ोटो अगर कोई भी एडिट करके किसी भी साइट पर डालता है, चाहे फेसबुक पे है चाहे कहीं, तो उस पे आप बिल्कुल भी डरे ना, क्योंकि वो आपकी, उसमें आपकी गलती नहीं है, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत दें और उसका जो मुकदमा दर्ज होगा वो आईटी एक्ट में होगा और आपकी पूरी मदद की जाएगी। लेकिन अगर लड़की जब तक बताएगी नहीं तो पुलिस उसमें कुछ कर नहीं सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ एक तो मतलब जानकार ही उनको बदनाम करने की नीयत से ऐसा करते हैं, अलग सिम ले लेंगे या फ्रॉड नंबर से उसको करेंगे और फिर वो एक लिंक भेजते हैं, लिंक जो लड़की है या बच्चा है कोई भी है वो उसको क्लिक कर देता है, तो उसका पूरा फोन हैक हो जाता है और वो ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है वहां से, फिर पैसे मांगने का भी एक सिस्टम शुरू हो जाता है। अभी हाल ही में मेरे पास मतलब आते रहते हैं केसेस, तो अभी एक बच्चे का केस ऐसे आया था कि वो पिछले एक साल से इसी तरह से इंस्टाग्राम पे वो जुड़ी और वहाँ पर उससे जो लड़का है, जो क्रिमिनल है, वो ना उसने लड़की ने लड़के को देखा है, बस वो इंस्टाग्राम से ही बातचीत होती है चैटिंग कर करके, लेकिन वो लड़की से उसकी न्यूड वीडियो भी मंगवा लेता है कि तुम अगर नहीं भेजोगी तो तुम्हारी ये फोटो जो है, जबकि वो एडिट की हुई फोटो थी, अगर उस बच्चे को इतना अवेयर होती वो तो शायद ना भेजती, फिर उससे पैसे भी लिए गए हैं। तो इस तरह के क्राइम जो है वो आते रहते हैं। और जो मैंने बैंक मैनेजर का बताया, तो मतलब वो तो मैरिड थी और 2 बच्चों की माँ भी थी, तो लेकिन उनको फिर बाद में बड़ा पछतावा हुआ कि काश मैं पहले ही ये रिपोर्टिंग कर देती। तो इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि जब भी घटना हो तो पहले ही दिन आप आवाज उठाएं। उसमें कई बच्चे या लड़कियां इसलिए नहीं आते हैं कि पुलिस हमें ही गलत बोलेगी। तो मैं बताना चाहूंगी, मैं बोलना चाहूंगी इस चैनल के माध्यम से कि पुलिस बिल्कुल भी उनको गलत नहीं मानती है, ना ही उनको गलत ठहराती है, बल्कि हम उनको समझाते हैं और यही समझाते हैं कि आप विक्टिम हैं, कि आपको अवेयरनेस नहीं थी, आप जागरूक नहीं थे, आपको पता नहीं था कि ऐसा भी क्राइम होता है, लेकिन अब जब हो गया है तो आप यहाँ आए हो, तो आप बिल्कुल भी मतलब इसमें दोषी नहीं हो, आप विक्टिम हो और हम आपके साथ खड़े हैं। और हम उनको बताते हैं कि आप अपने साथ वाले बच्चों को या लड़कियों को या घर में जितने भी सदस्य हैं उन सबको ये चीजें बताएं, छुपाएं ना,
0: जानकारी दें कि कोई भी पिक्चर अगर आपकी एडिटेड है, AI जनरेटेड है और वो ऑब्सीन है, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत 112 पे कॉल करें या अपने नजदीकी महिला थाने में जाएं, वहां पर जाकर आप कंप्लेंट करें। महिला थाना अगर आपको नहीं पता है तो आप नॉर्मल पुलिस स्टेशन में जाएं, पुलिस चौकी में जाएं, पर जाकर उनकी हेल्प जरूर लें, क्योंकि इस तरीके के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी महिला को शिकार बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। उनका ये बिजनेस होता है, उनका ये बिजनेस मॉडल होता है, जिससे बचने के लिए आपको अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आपकी उम्र 14 साल हो, 24 हो, 34 हो या फिर 50 हो, आपको अपने आप को सेफ और सिक्योर रखने के लिए अवेयर होना जरूरी है। बहुत सारी बातें और भी होती रहेंगी, बहुत सारी जानकारियां और भी शेयर करते रहेंगे आपके साथ, लेकिन अभी वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। मैं हूं दीक्षा, आपके साथ सुन रहे हैं आप सुरक्षा संवाद, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 पर।